नमस्कार। मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलो हर्ट्स पर ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के श्रावण मास की पांचवी तिथि, तदनुसार 27 जुलाई सन 2026। इस समय सुबह के 5:57 होने को हैं। अब हमारी आज की पहली सभा आरंभ होती है।

0: ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। सुबह के 6 बजने को हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिन्हें हम दिल्ली से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। सरकार आज लोकसभा में लोक परीक्षाएं अनुचित तरीकों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। इसके माध्यम से लोक परीक्षाएं अनुचित तरीकों की रोकथाम अधिनियम में संशोधन किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ये विधेयक सदन में प्रस्तुत करेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रश्न पत्र लीक और परीक्षा में गड़बड़ियों के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन तथा कड़े दंड का प्रावधान करने वाले इस विधेयक के मसौदे को शुक्रवार को मंजूरी दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों के लिए उच्च स्तरीय कार्यबल के गठन की घोषणा की है। प्रधानमंत्री ने वीडियो संदेश में कहा कि यह कार्यबल परीक्षा सुधारों पर ध्यान केंद्रित करेगा।
2: लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन निलेकनी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा।
1: इस कार्यबल में आईबी के पूर्व निदेशक तपन डेका, इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉ एस सोमनाथ, आईआईटी मद्रास के निदेशक वी कामकोटी, पूर्व शिक्षा सचिव अनीता करवाल और प्रबंधन विशेषज्ञ

यज्ञ अमृत लाल मीणा भी शामिल है। दिल्ली सरकार ने दिल्ली महिला आयोग और दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया है। लता गुप्ता को दिल्ली महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्याम बाला, मालती वर्मा, लता सोढ़ी, सनरिका शर्मा झा और रेणु भल्ला आयोग की सदस्य बनाई गई हैं। निर्मल जैन दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। कुलदीप सिंह और मोहम्मद हारून आयोग के सदस्य बनाए गए हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा, सशक्तिकरण, अल्पसंख्यक समुदाय का कल्याण और उनके संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए यह पहल की गई है। अमेरिका और ईरान ने लगातार दूसरे दिन एक दूसरे पर हमले नहीं किए। इससे लगभग दो सप्ताह की सैन्य कार्रवाई के बाद अस्थायी युद्ध विराम पर फिर से बातचीत शुरू होने की उम्मीद जगी है। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका के राजदूत माइक वॉल्ट्स ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कूटनीतिक प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि ओमान, ईरान और अन्य पक्ष लगातार बातचीत कर रहे हैं। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू कल वाशिंगटन जाएंगे, जहां वे राष्ट्रपति ट्रंप के साथ क्षेत्रीय हालात पर चर्चा करेंगे। जर्मनी में बर्लिन प्राइड हमले का संदिग्ध पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। इस हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 29 घायल हुए थे। संदिग्ध की पहचान लेबनानी मूल के जर्मन नागरिक अब्दुल बल्लौट के तौर पर हुई। लगभग 24 घंटे तक चले खोजबीन अभियान के दौरान शहर के बाहरी इलाके में हमलावर को मार गिराया गया। फ्रांस और स्पेन के जंगल में भीषण आग के कारण लगभग 3 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। दमकल कर्मी तेजी से फैलती आग को बुझाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने पर मीराबाई चानू को बधाई दी है। मीराबाई चानू सैखोम ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता। मीराबाई ने महिलाओं की 48 किलोग्राम भारोत्तोलन स्पर्धा में 190 किलोग्राम वजन उठाकर यह उपलब्धि हासिल की। इससे पहले ऋषिकांत सिंह चानम्बम ने पुरुषों के 60 किलोग्राम भारोत्तोलन में कुल 264 किलो भार उठाकर रजत पदक जीता। उधर भारत ने हरारे में तीसरे और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में मेजबान जिम्बाब्वे को 35 रन से हराकर सीरीज 3-0 से अपने नाम कर ली। भारत ने 5 विकेट पर 192 रन बनाए। वैभव सूर्यवंशी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सिर्फ 49 गेंद पर 81 रन बनाए। जिम्बाब्वे निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 157 रन ही बना सका। वैभव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: इस समय आप हैं हमारे साथ।
1: जी हाँ, मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर के साथ।
2: ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

आज की सुबह को पावन बनाने के लिए हम सबसे पहले उस धरा को नमन करते हैं जिसने हमें जीवन दिया। राष्ट्र की वंदना ही ईश्वर की सच्ची आराधना है, क्योंकि देश से बढ़कर कोई मंदिर नहीं। आइए इसी भाव के साथ सुनते हैं आज की यह ओजस्वी प्रस्तुति।

इस राष्ट्रभक्ति के गीत ने हमारे भीतर अपनी माटी के प्रति गौरव और ऊर्जा को जगा दिया। आइए हम इसी पवित्र ऊर्जा को ईश्वर के चरणों में समर्पित करते हुए सुनते हैं आज का ये पहला दिव्य भजन।

ईश्वर की भक्ति में वो शक्ति है जो हर अशांत मन को स्थिरता दे देती है। प्रभु की शरण में आकर ही जीव को सच्चा संबल मिलता है। इसी भाव को शब्दों में पिरोती प्रस्तुत है अगली मधुर रचना।

सुरों का यह संसार सीधे आत्मा को छू रहा है। जब सुर और श्रद्धा एक हो जाते हैं तो परमात्मा दूर नहीं रहता। आइए भक्ति रस के इस सफर को आगे बढ़ाते हुए डूबते हैं अगले भजन के आनंद में।

समर्पण और अटूट विश्वास ही एक सच्चे भक्त की पहचान है। जहां पूर्ण समर्पण है वहां ईश्वर की कृपा स्वतः बरसने लगती है। सुनिए श्रद्धा से सरोबार यह सुंदर प्रस्तुति।

तो श्रोताओं, राष्ट्र के प्रति हमारा कर्तव्य और ईश्वर के प्रति हमारी आस्था दोनों ही हमारे जीवन के मजबूत स्तंभ हैं। हमारी यह निष्ठा हमेशा बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ आज की वंदना को हम विराम दे रहे हैं। नमस्कार।

0: कितनी सुहानी है आज की ये सुबह।
1: सच कहा। इसे और सुहाना बना रही है मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर।
0: तो सुनते रहिए आकाशवाणी इंदौर।
1: ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। सुबह के 6:30 बजने को हैं। लीजिए अब सुनिए चिंतन। आलेख है रोमी सेन का, वाचक है मनीष कुमार सोनी।
2: मनुष्य के जीवन में सफलता और असफलता को लेकर सदियों से एक प्रश्न चर्चा का विषय रहा है कि क्या जीवन में सफलता मेहनत से मिलती है या किस्मत से। कुछ लोग मानते हैं कि यदि भाग्य साथ दे तो बिना अधिक प्रयास के भी इंसान ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है, जबकि कुछ का विश्वास है कि कठोर परिश्रम ही सफलता की असली कुंजी है। वास्तव में देखा जाए तो मेहनत और किस्मत दोनों का अपना अपना महत्व है, लेकिन यदि तुलना की जाए तो मेहनत का स्थान अधिक महत्वपूर्ण दिखाई देता है, क्योंकि किस्मत भी उसी का साथ देती है जो प्रयास करना जानता है। मेहनत वो शक्ति है जो साधारण व्यक्ति को भी असाधारण बना देती है। संसार में जितने भी महान व्यक्तियों ने सफलता प्राप्त की है, उनके जीवन के पीछे कठिन संघर्ष और निरंतर परिश्रम छिपा हुआ है। कोई भी व्यक्ति जन्म से महान नहीं होता, उसकी मेहनत ही उसे महान बनाती है। विद्यार्थी यदि पूरी लगन से पढ़ाई करे तो वो परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकता है। किसान यदि खेत में मेहनत न करे तो अच्छी फसल की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसी तरह हर क्षेत्र में सफलता का आधार मेहनत ही होती है। दूसरी ओर किस्मत एक ऐसी चीज है जिसे इंसान न देख सकता है और न ही पूरी तरह नियंत्रित कर सकता है। कई बार हम देखते हैं कि कुछ लोगों को बिना अधिक संघर्ष के अवसर प्राप्त हो जाते हैं, जबकि कुछ लोग बहुत मेहनत करने के बाद भी पीछे रह जाते हैं। ऐसी परिस्थितियों में लोग किस्मत को दोष देने लगते हैं, लेकिन यदि गहराई से विचार किया

0: जाए तो ये समझ में आता है कि किस्मत केवल अवसर दे सकती है, सफलता नहीं। अवसर का लाभ वही उठा सकता है जिसके पास मेहनत और योग्यता हो। कई लोग अपनी सफलता का कारण खराब किस्मत को मान लेते हैं। वो ये सोचकर प्रयास करना छोड़ देते हैं कि जो भाग्य में लिखा हुआ है वही होगा, वही मिलेगा। ये सोच व्यक्ति को कमजोर बना देती है। यदि वैज्ञानिक, खिलाड़ी, लेखक या स्वतंत्रता सेनानी केवल किस्मत के भरोसे बैठे रहते तो शायद वे कभी भी इतिहास नहीं बना पाते। महान वैज्ञानिक थॉमस एडिसन ने बल्ब का आविष्कार हजारों असफल प्रयासों के बाद ही किया। यदि वे किस्मत को दोष देकर हार मान लेते तो दुनिया शायद आज भी अंधेरे में होती। इससे यह स्पष्ट होता है कि मेहनत ही वो साधन है जो असंभव को संभव बना सकती है। हालांकि ये भी सत्य है कि कभी कभी मेहनती व्यक्ति को तुरंत सफलता नहीं मिलती। कई बार परिस्थितियां उसके विरुद्ध होती है। ऐसे समय में धैर्य और आत्मविश्वास बनाए रखना बहुत आवश्यक होता है। मेहनत का फल देर से मिल सकता है लेकिन कभी व्यर्थ नहीं जाता। प्रकृति का नियम भी यही है कि जो बीज बोया जाता है वही समय आने पर फल देता है। इसलिए इंसान को परिणाम की चिंता किए बिना अपने कर्म को करते रहना चाहिए। भारतीय संस्कृति में भी कर्म को सबसे अधिक महत्व दिया गया है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, कर्मण्ये बाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। यह शिक्षा हमें बताती है कि व्यक्ति को किस्मत की चिंता छोड़कर पूरी ईमानदारी और निष्ठा से अपना कार्य करना चाहिए। जब इंसान पूरी लगन मेहनत से कार्य करता है तो उसकी किस्मत भी बदलने लगती है। आज के समय में युवा पीढ़ी जल्दी सफलता प्राप्त करना चाहती है। कई लोग शॉर्टकट अपनाने की कोशिश करते हैं और असफल होने पर किस्मत को दोष देते हैं, लेकिन वास्तविक सफलता वही होती है जो कठिन परिश्रम से प्राप्त की जाए। मेहनत से प्राप्त सफलता आत्मविश्वास, अनुभव और संतोष देती है, जबकि बिना मेहनत की सफलता अधिक समय तक टिक नहीं पाती। इसलिए कहा जा सकता है कि मेहनत और किस्मत दोनों जीवन के महत्वपूर्ण पहलू है, लेकिन मेहनत के बिना किस्मत भी निष्क्रिय रहती है। सच्चा परिश्रम, धैर्य और आत्मविश्वास ही जीवन में सफलता का वास्तविक मार्ग है। वास्तव में किस्मत उन्हीं का साथ देती है जो अपनी मेहनत पर विश्वास रखते हैं।
1: ये था चिंतन, आलेख था रोमी सेन का और वाचक थे मनीष कुमार सोनी। आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है, लीजिए अब सुनिए खेती की बातें। इसमें आज जानकारी दी जा रही है डीएपी के अधिक उपयोग से होने वाले नुकसान और सही उपयोग का सुझाव दिया जाएगा। आलेख और वाचन है डॉक्टर अनुराधा शर्मा का।
2: सगला किसान भाई बहनों के डॉक्टर अनुराधा शर्मा की राम राम। भाई बहनों, आज अपन बात करांगा डीएपी उर्वरक का अधिक उपयोग से होने वाला नुकसान और उपयोग का सही सुझाव उनका बारे में। हमारा किसान भाई बहन जाने कि डीएपी को पूरा नाम है डाई अमोनियम फॉस्फेट। डीएपी में नाइट्रोजन की मात्रा रहे 18%, वहानिका में फॉस्फोरस जो रहे वो 46% रहे। तो फॉस्फोरस की मात्रा डीएपी में बहुत ज़्यादा अधिक है और फॉस्फोरस जो है पौधा उनकी जड़ का विकास के लिए और प्रारंभिक वृद्धि के लिए बहुत आवश्यक भी है। पर अभी जो गड़बड़ हुई रही है नहीं, वे ये है कि आवश्यकता से अधिक और लगातार असंतुलित मात्रा में डीएपी को उपयोग हमारा किसान भाई बहन कर ही रहा है और उसका कारण बहुत सारी समस्या उन खेती में आई रही है। जब किसान खेत में नाइट्रोजन या यूरिया नाखे तो यूरिया से भी फसल उनके नाइट्रोजन मिली जाए, और जब डीएपी नाखे तो डीएपी से भी बहुत ज्यादा नाइट्रोजन मिली जाए। तो ज्यादा नाइट्रोजन होना से हमारा पौधा उन कमजोर और कोमल हुई जाए और कमजोर पड़ी के टूटी के गिरी जाए। तो ये एक तरफ तो नाइट्रोजन की अधिकता हुई जाए और दूसरा तरफ जिस सूक्ष्म पोषक तत्व है ना, जिंक है, बोरान है, आयरन है, ये सारा सूक्ष्म पोषक तत्व उनकी कमी पड़ी जाए। एकासी फसल उनकी गुणवत्ता प्रभावित होए, उनकी उपज पैदावार पे भी असर पड़े। और जो 46% फास्फोरस डीएपी में थे नहीं, इतो फास्फोरस डीएपी में जब मिले तो वो पौधा हो तो अनावश्यक रहे उनका लिए, क्योंकि वो तो इतना सारा फॉस्फोरस ले ही नहीं पाए, तो मिट्टी में फॉस्फोरस को अनावश्यक संचय होने लगी जाए और लंबा समय तक असंतुलित उर्वरक न का उपयोग से

0: जलाशय में भी पोई जाए तो ऐसी स्थिति में तालाब और जलाशय का पानी की गुणवत्ता भी प्रभावित होए, तो फिर किसान भाई बहनों के सही उपयोग किना तरीका से करनु है इका पे बात करला। भाई मृदा स्वास्थ्य कार्ड, सॉइल हेल्थ कार्ड जी है नी, वे मृदा परीक्षण का बाद हमारा किसान भाई बहनों के मिली जाए। यदि मृदा परीक्षण का बाद मृदा स्वास्थ्य कार्ड उनके मिले हुए तो उनका आधार पे उनके उर्वरक को उपयोग अब खेती में करना चाहिए। तो अब डीएवीपी को प्रयोग संतुलित उर्वरक प्रबंधन का तहत करेगा भाई होन। और सबसे बड़ी बात कि खाली नाइट्रोजन और फास्फोरस या पोटाश या तीन पोषक तत्व खेती के लिए आवश्यक नहीं है। किसान भाई बहनों उनके ये भी समझना पड़ेगा कि सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी से भी उनकी खेती बिगड़ी जाएगी, तो उन्हें उनका लिए सूक्ष्म पोषक तत्वों को संतुलित उपयोग भी बहुत आवश्यक रूप से करना है। आपका खेत किना क्षेत्र में है, वहाँ का क्षेत्र में उर्वरक न की अनुशंसित मात्रा जी है उसको पालन करना बहुत आवश्यक है। और जहाँ तक संभव है जैव उर्वरक न को उपयोग, जैविक खाद, गोबर की सड़ी हुई खाद, कंपोस्ट खाद, इन्हीं सब चीजों को उपयोग करके भी हमारा किसान भाई बहनों अपनी मिट्टी के समुचित उपयोग से समुचित प्रबंधन करके सभी पोषक तत्व हमारा फसल का दे देगा। तो आज को संदेश है डीएपी की जितनी आवश्यकता उतनी मात्रा, अधिक प्रयोग से उत्पादन नहीं बढ़ेगो खर्चो बढ़ेगो। आज हमारा किसान भाई बहनों से योज कहनु है।
1: ये थी खेती की बातें। इसमें आज आपने जाना डीएपी के अधिक उपयोग से होने वाले नुकसान के बारे में और साथ ही दिए गए सही उपयोग के सुझाव। वाचन था डॉक्टर अनुराधा शर्मा का।
2: युवाओं के जोश, उमंग और ज्ञान से भरे कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण होता है प्रतिदिन शाम 5 बजे,
3: जिसमें होती है नित नई जानकारियाँ, मनोरंजन और ज्ञान की बातें।
2: तो सुनते रहिए मालवा की शान,
4: आकाशवाणी इंदौर।
3: आकाशवाणी इंदौर अब मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है।
1: ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। लीजिए अब प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान में आज का प्रसंग।

कपटी मुनि के षड्यंत्र के फलस्वरूप राजा प्रताप भानु 100,000 ब्राह्मणों को अनजाने ऐसा भोजन परोसने का पाप कर बैठा जिसमें ब्राह्मणों का मांस मिला हुआ था। निमंत्रित ब्राह्मण भोजन करने ही वाले थे कि आकाशवाणी हुई, हे ब्राह्मणों, उठ उठ कर अपने घर जाओ, ये अन्न मत खाओ। ब्राह्मण तो मानव मांस खाने से बच गए, किंतु राजा प्रताप भानु ब्राह्मणों के शाप से नहीं बच सका। कालांतर में यही प्रताप भानु रावण के रूप में पैदा हुआ। उसका वीर और पराक्रमी भाई अरिमर्दन कुंभकर्ण होकर जन्मा तथा मंत्री धर्मरुचि रावण का सौतेला भाई विभीषण हुआ। सागर के बीच में त्रिकुट नामक पर्वत पर ब्रह्मा का बनाया हुआ एक अत्यंत विशाल दुर्ग था, जो इंद्र की नगरी अमरावती से भी अधिक सुंदर और आकर्षक था। रावण ने उस नगर पर अधिकार कर लिया। उसे अत्यंत दुर्गम जानकर रावण ने वहीं अपनी राजधानी बनाई और कुबेर को परास्त करके उनसे पुष्पक विमान जीत लिया। एक बार खेल खेल में ही उसने कैलाश पर्वत को अपनी भुजाओं में उठा लिया। नित्य प्रति उसका वैभव, संपत्ति, सेना, पुत्र, सहायक, जय, प्रताप, बल ऐसे ही बढ़ते जाते।

ये था श्री रामचरित मानस गान में आज का प्रसंग। कलाकार थे रविंद्र साठे, संगीत संयोजन था सतीश भाटिया का। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। लीजिए अब पेश है आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण।

सुबह 9:30 बजे शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाएंगे भुवनेश कोमकली का गाया राग अहीर भैरव।

सुबह 10:05 पर होगा सजीव फोन इन कार्यक्रम MH हॉटलाइन, जिसमें श्रोता शामिल होकर अपनी पसंद के गीत सुन सकेंगे। सुबह 11 से दिन के 3 तक आकाशवाणी मध्य प्रदेश से कार्यक्रम रिले किए जाएंगे। इसमें 11 होगा कार्यक्रम फोन करें गीत सुने, 12:30 आप सुन सकेंगे कार्यक्रम संग्रहालय से, 1 होगा कार्यक्रम स्वास्थ्य दर्पण, 1:30 पर लोक संगीत, 1:45 पर सुगम संगीत, फिल्म संगीत होगा दिन में 12:00, 2:00 और फिर 2:30 पर।

0: शाम की सभा आरंभ होगी 5 बजे युवाणी कार्यक्रम के साथ। इसमें आज का आकर्षण है कुछ बातें कुछ गीत। 5:45 पर होगा फिल्म संगीत। एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग प्रसारित किया जाएगा शाम 6 बजे। पंडित कुमार गंधर्व के स्वर में सुगम संगीत सुनिएगा शाम 6:30। सात बजकर 20 मिनट पर ग्रामीण महिलाओं के लिए होगा कार्यक्रम ग्राम लक्ष्मी। इसके तहत आज खरीफ में टमाटर की वैज्ञानिक खेती के बारे में कुलेंद्र सिंह यादव से तुलसा की बातचीत सुनवाई जाएगी। रात 8 बजे होगी संसद समीक्षा। रात 9:30 दिल्ली से रिले करेंगे कार्यक्रम पब्लिक स्पीक। रात 10 बजे संसद में प्रश्नकाल में की गई कार्यवाही की रिकॉर्डिंग सुनवाई जाएगी। रात 10:30 शास्त्रीय संगीत के तहत आप सुनेंगे भुवनेश कोमकली का गाया राग शुद्ध कल्याण। ये था आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। अब थोड़ी देर में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार और फिर हिंदी में समाचार।
1: वाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी परीक्षा परिष्कारार्थम् उच्चस्तरीय कार्यबलस्य निर्माणस्य घोषणां कृतवान्। अस्य कार्यबलस्य अध्यक्षतां विख्यातः प्रौद्योगिकी विशेषज्ञः नंदन नीलेकणी करिष्यति। अस्मिन् कार्यबले आईबी इत्यस्य पूर्व निदेशकः तपन डेका, पूर्व इसरो अध्यक्षः एस सोमनाथः, आईआईटी चेन्नई इत्यस्य पूर्व निदेशकः वी कामकोटिः, पूर्व शिक्षा सचिवा अनीता करवालः तथा आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन विशेषज्ञः अमितलाल मीणा च सदस्याः भविष्यन्ति। एकस्मिन् दृश्य श्रव्य संदेशे प्रधानमंत्री अवदत् यत् एतत् कार्यबलं परीक्षा व्यवस्थायाः सुदृढीकरणे विशेषं ध्यानं प्रदास्यति। तस्य अनुशंसानाम् आधारेण भावि परीक्षाणां विश्वसनीयतां सुनिश्चेतुम् आवश्यकोपायाः यथाशीघ्रं क्रियन्ते। तेन एतदपि उक्तं यत् परीक्षा सम्बद्धानाम् अनियमिततानां निवारणाय कठोर प्रावधानयुक्तं नूतन विधेयकं प्रशासनम् अद्य संसदि प्रस्तौति।
2: हम पार्लियामेंट के अंदर कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन नीलेकणी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा।
1: प्रशासनम् अद्य लोकसभायां सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयकम् 20/26 इति प्रस्तुतं करिष्यति। एतस्य विधेयकस्य सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियमम् 20/24 इत्येतस्मिन् संशोधनमस्ति। केन्द्रीय मंत्री डॉ जितेन्द्र सिंह एतद् विधेयकम् लोकसभायां प्रस्तोष्यति। गत शुक्रवासरे केन्द्रीय मंत्रिमंडलेन प्रश्नपत्रस्य गोप्य

0: भंगे परीक्षासु च अनुचित साधन प्रयोगस्य प्रकरणेषु द्रुत न्यायालयानां स्थापनाय दोषिभ्यः कठोरतर दंड विधानं च सुनिश्चेतुं प्रारूप विधेयकं अनुमोदितम्। केन्द्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी शिक्षा मंत्रिणः कार्यभारं अधिगृहीतवान्। धर्मेन्द्र प्रधानस्य त्यागपत्रानन्तरं गतशनिवासरे सः अस्मिन् पदे नियुक्तः। श्रीजोशी स्ववर्तमान मंत्रालयैः सह शिक्षा मंत्रालयस्य दायित्वमपि निर्वहिष्यति। रक्षामंत्री राजनाथ सिंहः उक्तवान् यत् पाकिस्तान देशेन सह कापि वार्ता न भविष्यति। भारतस्य सम्पूर्णं ध्यानं केवलं पाकिस्तानाधिकृतस्य जम्मू कश्मीर प्रदेशस्य भागं पुनः प्राप्तौ एव भविष्यति।
1: भारत पाकिस्तान के हर मिस एडवेंचर का जवाब उसकी कल्पना से कहीं अधिक कठोर तरीके से देने की क्षमता रखता है, और मैं इस मंच से यह साफ संदेश देना चाहता हूं, भारत की संप्रभुता की ओर बढ़ने वाला हर नापाक कदम का यही अंजाम होगा। साथियों, हमारा इंटेंशन साफ है कि अब पाकिस्तान से कोई बात नहीं होगी, और अगर बात होगी तो सिर्फ पीओके पर ही बात होगी, जो कि भारत का हिस्सा है जिस पर पाकिस्तान ने अवैध तरीके से कब्जा किया था।
0: रक्षा मंत्री ह्यः लद्दाखस्य द्रास नगरे 27वें कारगिल विजय दिवस समारोहं संबोधयन् एतद् वक्तव्यं प्रदत्तवान्। दिल्ली प्रशासनेन दिल्ली महिला आयोगस्य दिल्ली अल्पसंख्यक आयोगस्य च निर्माणं कृतम्। लता गुप्ता दिल्ली महिला आयोगस्य अध्यक्षा नियुक्ता, तया सह श्याम बाला, मालती वर्मा, लता सोढ़ी, सरनिका शर्मा झा च रेणु भल्ला सदस्यत्वेन नियुक्ताः। निर्मल जैन इत्येषः दिल्ली अल्पसंख्यक आयोगस्य अध्यक्षः नियुक्तः। अमेरिका ईरान देशौ द्वितीय दिने आक्रमणानि स्थगितवन्तौ, येन प्रायः सप्ताहद्वयानन्तरं वर्धमानस्य सैन्याक्रमणस्यानन्तरं अन्तरिम युद्ध विराम विषये पुनः वार्तालापस्य सम्भावना समुत्पन्ना। संयुक्तराष्ट्रसंघस्य अमेरिका देशस्य राजदूतः माइक वॉल्ट्ज इत्येषः ह्यः अवदत् यत् राष्ट्रपति ट्रम्पः कूटनीतेः अवकाशं प्रददाति। ग्लास्को नगरे प्रचलितासु राष्ट्रमंडल क्रीडासु महिलानां 48 किलोग्राम स्पर्धायां भारतीय भारोत्तोलिका मीराबाई चानू इत्येषा स्वर्णपदकं विजितवती। इति वार्ताः।

0: सरकार आज लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। इसके माध्यम से 2024 के लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम में संशोधन किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ये विधेयक सदन में प्रस्तुत करेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रश्न पत्र लीक और परीक्षा में गड़बड़ियों के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन तथा कड़े दंड का प्रावधान करने वाले इस विधेयक के मसौदे को शुक्रवार को मंजूरी दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों के लिए उच्च स्तरीय कार्यबल के गठन की घोषणा की है। श्री मोदी ने वीडियो संदेश में कहा कि कार्यबल परीक्षा सुधारों पर ध्यान केंद्रित करेगा।
1: लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन नीलेकणी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा।
0: कार्यबल में आसूचना ब्यूरो आईबी के पूर्व निदेशक तपन डेका, इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉ एस सोमनाथ, आईआईटी मद्रास के निदेशक वी कामकोटी, पूर्व शिक्षा सचिव अनीता करवाल और प्रबंध विशेषज्ञ अमृत लाल मीणा शामिल हैं। दिल्ली सरकार ने दिल्ली महिला आयोग और दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया है। लता गुप्ता को दिल्ली महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। श्याम बाला मालती वर्मा, लता सोढ़ी, संडिका शर्मा झा और रेणु भल्ला आयोग की सदस्य बनाई गई हैं। निर्मल जैन दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। कुलदीप सिंह और मोहम्मद हारून आयोग के सदस्य बनाए गए हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा, सशक्तिकरण, अल्पसंख्यक समुदाय का कल्याण और उनके संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए ये पहल की गई है। अमरीका और ईरान ने लगातार दूसरे दिन एक दूसरे पर हमले नहीं किए। इससे लगभग दो सप्ताह की सैन्य कार्रवाई के बाद अस्थायी युद्ध विराम

0: पर फिर से बातचीत शुरू होने की उम्मीद जगी है। संयुक्त राष्ट्र में अमरीका के राजदूत माइक वॉल्ट्ज ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप राजनीतिक प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि ओमान, ईरान और अन्य पक्ष लगातार बातचीत कर रहे हैं। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू कल वाशिंगटन में राष्ट्रपति ट्रंप के साथ क्षेत्रीय हालात पर चर्चा करेंगे। जर्मनी में बर्लिन प्राइड हमले का संदिग्ध पुलिस मुठभेड़ में मारा गया है। इस हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और 29 लोग घायल हुए थे। संदिग्ध की पहचान लेबनानी मूल के जर्मन नागरिक अब्दुल बल्लॉट के तौर पर हुई है। लगभग 24 घंटे की खोजबीन अभियान के दौरान शहर के बाहरी इलाके में हमलावर को मार गिराया गया। फ्रांस और स्पेन के जंगल में भीषण आग के कारण लगभग 3 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। दमकल कर्मी तेजी से फैलती आग को बुझाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने पर मीराबाई चानू को बधाई दी है। राष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्रमंडल खेलों में लगातार स्वर्ण पदक जीतकर मीराबाई ने असाधारण साहस, दृढ़ संकल्प और उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि देश के लिए सर्वोच्च स्तर पर लगातार पदक जीतना उनके असाधारण समर्पण और बेहतरीन इच्छा शक्ति को दिखाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रमंडल खेलों में लगातार स्वर्ण पदक और कुल मिलाकर 4वां राष्ट्रमंडल पदक जीतने के साथ वो हर भारतीय के लिए प्रेरणा बनी हुई हैं। श्री शाह ने कहा कि शानदार उपलब्धि ने चानू का नाम इतिहास में दर्ज कर दिया है। वो राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक की हैट्रिक लगाने वाली भारत की पहली भारोत्तोलक हैं। मीराबाई चानू सैखोम ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता है। मीराबाई ने महिलाओं की 48 किलोग्राम भारोत्तोलन स्पर्धा में कुल 190 किलोग्राम वजन उठाकर ये उपलब्धि हासिल की। इससे पहले ऋषिकांत सिंह चानम्बम ने पुरुषों के 60 किलोग्राम भारोत्तोलन में कुल 264 किलोग्राम भार उठाकर रजत पदक जीता। भारत ने हरारे में तीसरे और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में मेजबान जिम्बाब्वे को 35 रन से हराकर श्रृंखला 3-0 से अपने नाम कर ली है। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 5 विकेट पर 192 रन बनाए। जवाब में जिम्बाब्वे निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 157 रन ही बना सका। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है।
2: युवाओं के जोश, उमंग और ज्ञान से भरे कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण होता है प्रतिदिन शाम 5 बजे,
3: जिसमें होती है नित नई जानकारियाँ, मनोरंजन और ज्ञान की बातें।
2: तो सुनते रहिए मालवा की शान,
4: आकाशवाणी इंदौर।
3: आकाशवाणी इंदौर अब मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है।

ये आकाशवाणी का इंदौर है, इंदौर केंद्र है। सुबह के 7:10 होने को हैं। थोड़ी देर में रिले करेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे भोपाल केंद्र से।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। परीक्षा सुधारों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनाया उच्च स्तरीय कार्यबल, नंदन नीलकेणी करेंगे नेतृत्व। लोकसभा में आज पेश होगा पेपर लीक रोकने वाला संशोधन विधेयक, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह करेंगे प्रस्तुत। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने निवाड़ी को दी 109 करोड़ रुपए की विकास सौगात, खोलेंगे नए महाविद्यालय। और प्रदेश में मॉनसून फिर सक्रिय, 6 जिलों में आज भारी बारिश का अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों पर एक उच्च स्तरीय कार्यबल के गठन की घोषणा की है। इस कार्यबल का नेतृत्व प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ नंदन नीलकणी करेंगे। एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि यह कार्यबल परीक्षा सुधारों पर काम करेगा और इसकी रिपोर्ट के आधार पर आगामी परीक्षाओं की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जाएंगे।
1: विद्यार्थियों के भविष्य के लिए भारत सरकार लगातार अनेक कदम उठा रही है। हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट बना चुके हैं। हम पार्लियामेंट के अंदर भी कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन नीलकणी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा।
0: उन्होंने कहा कि देश की परीक्षा प्रणाली विश्वसनीय और पारदर्शी होनी चाहिए। कार्यबल में पूर्व इसरो अध्यक्ष एस सोमनाथ और आईआईटी चेन्नई के निदेशक वी कामकोटी सहित कई विशेषज्ञ शामिल होंगे। सरकार आज लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। ये विधेयक लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन के लिए लाया जा रहा है। इसे केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह पेश करेंगे। शुक्रवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने त्वरित न्यायालयों की स्थापना और पेपर लीक के मामलों में कड़ी सजा सुनिश्चित करने वाले विधेयक के मसौदे को मंजूरी दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल मन की बात कार्यक्रम में प्रदेश के सीधी और नरसिंहपुर जिले में जल संरक्षण के कामों की सराहना की। उन्होंने बताया कि सीधी में करीब 1500 तालाब बनाए गए हैं, जबकि नरसिंहपुर में अमृत सरोवरों को नया रूप दिया गया है। प्रधानमंत्री ने बताया कि 4 जुलाई से देश भर में कैच द रेन अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने लोगों से अपने आसपास के तालाब, कुएं और बावड़ियों की जिम्मेदारी लेने की अपील की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विकसित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत सीमावर्ती गांवों का भ्रमण कर लौटे युवाओं से संवाद किया। ग्वालियर जिले में युवा विक्रम सिंह बघेल भी इस कार्यक्रम में शामिल युवाओं में से एक हैं। ये कार्यक्रम 4 जून से 30 जून तक आयोजित किया गया था, जिसमें युवाओं को लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के 74 सीमावर्ती गांवों का भ्रमण कराया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि माय भारत मंच से अब तक 2.5 करोड़ से ज्यादा युवा जुड़ चुके हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कल निवाड़ी में 109 करोड़ रुपए से ज्यादा लागत के 44 कार्यों का लोकार्पण किया। उन्होंने 54 करोड़ रुपए के 15 विकास कार्यों का भूमि पूजन भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में राज्य सरकार गरीब, युवा, नारी और किसानों के कल्याण के लिए काम कर रही है।
2: अभी दूध का उत्पादन 12% है, इसको 20% तक ले जाने वाले हैं। जो मछली पालन करते वो मछली पालन के लिए, जो सिंगाड़े की खेती करते सिंगाड़े के लिए, जो कमलगट्टे का काम करते वो कमलगट्टे के लिए, और तो और राज्य में युवाओं के काम के लिए पृथ्वीपुर में कारखाना चालू हो गया। जोरदार ताली बजाए अपने लिए।
0: उन्होंने बताया कि इस साल 14 लाख किसानों से समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदा गया। मुख्यमंत्री ने निवाड़ी में विधि महाविद्यालय और एमबीए महाविद्यालय खोलने की भी घोषणा की। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को ज्ञान, संस्कार और प्रेरणा का सतत प्रवाह बताया है। भोपाल के कमला नेहरू सांदीपनी कन्या शासकीय विद्यालय में छात्राओं को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। उन्होंने कार्यक्रम से पहले छात्राओं के साथ मन की बात का सामूहिक श्रवण भी किया। राज्यपाल ने कहा कि ये कार्यक्रम देश के हर क्षेत्र से प्रेरक प्रसंग सामने लाता है। उन्होंने छात्राओं से इस कार्यक्रम को नियमित सुनने और दूसरों को भी प्रेरित करने की अपील की। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना छोटे व्यापारियों और स्वरोजगार से जुड़े हितग्राहियों के लिए आर्थिक संबल साबित हो रही है। झाबुआ जिले के मेघनगर में इस योजना का लाभ लेकर एक महिला ने अपने छोटे व्यवसाय को सफल उद्यम में बदल दिया है। अधिक जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता हरीश यादव।
4: कविता राठौर ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का लाभ लेकर आत्मनिर्भरता की नई मिसाल पेश की है। योजना के तहत उन्होंने बैंक से पहले चरण में 10,000 रुपए का ऋण मिला, जिसे उन्होंने एक सिलाई सेंटर के साथ रेडीमेड कपड़ों की दुकान शुरू की। समय पर ऋण चुकाने के बाद उन्होंने दूसरे चरण में 25,000 और तीसरे चरण में 50,000 रुपए का ऋण प्राप्त हुआ। कविता राठौर ने आकाशवाणी को बताया
5: कि जो सहायता हमको मिली है वो सही समय में मिलने से हमारा परिवार का भरण पोषण में कर पा रही और आत्मनिर्भर बनी हूँ, इसीलिए मैं प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ।
4: अधिकारियों का कहना है कि यह योजना छोटे व्यापारियों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। मेघनगर CMO LS राठौर ने आकाशवाणी को बताया कि
6: नगर पंचायत द्वारा पात्र हितग्राहियों को योजना से जोड़ने और उन्हें सभी चरणों का लाभ दिलाने के लिए निरंतर कार्य किया जा रहा है।
4: प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना छोटे व्यापारियों के लिए केवल आर्थिक सहायता नहीं बल्कि आत्मनिर्भरता और सम्मानजनक आजीविका की दिशा में एक सशक्त कदम बनकर उभर रही है।

0: यह आकाशवाणी समाचार के लिए झाबुआ से हरीश यादव।
1: दतिया विधानसभा उपचुनाव से पहले चुनाव आयोग के निर्देश पर पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल किया गया। पुलिस मुख्यालय ने चंबल ग्वालियर अंचल में तैनात 14 निरीक्षक और उप निरीक्षकों को हटाकर नई पदस्थापना के आदेश जारी किए हैं। ये कार्रवाई निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करने के लिए की गई है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल दतिया उपचुनाव के तहत बसई में भाजपा प्रत्याशी आशुतोष तिवारी के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस भ्रम फैलाने की राजनीति करती है। उन्होंने कहा कि 2003 से पहले ग्वालियर चंबल में डकैतों और अपहरण का आतंक था, जिसे उनकी सरकार ने खत्म किया। श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश तेजी से विकास कर रहा है। भोपाल के वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में कल बाघ सप्ताह के तहत रन फॉर टाइगर का आयोजन किया गया। इसमें करीब 600 प्रतिभागियों ने भाग लिया। और अब बात मौसम की। प्रदेश में मॉनसून का मजबूत सिस्टम फिर सक्रिय हो गया है। कल प्रदेश के पूर्वी हिस्से में तेज बारिश हुई, जबकि आज 6 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। भोपाल, इंदौर, उज्जैन सहित बाकी जिलों में कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश जारी रहेगी। भारत ने कल हरारे में तीसरे और अंतिम टी20 मुकाबले में जिम्बाब्वे को 35 रनों से हराकर श्रृंखला में क्लीन स्वीप किया। जिम्बाब्वे की टीम 193 रनों के लक्ष्य के जवाब में 20 ओवर में 7 विकेट पर 157 रन ही बना सकी। भारत की ओर से मयंक यादव ने 3 विकेट और यश ठाकुर ने 2 विकेट लिए। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में ओलंपिक पदक विजेता भारोत्तोलक मीराबाई चानू ने भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इससे ग्लासगो में भारत के कुल पदकों की संख्या 4 हो गई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। करगिल विजय दिवस के अवसर पर जबलपुर में आयोजित त्रिदिवसीय फोटो प्रदर्शनी के दूसरे दिन कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेडियो कार्यक्रम मन की बात का सामूहिक लाइव प्रसारण किया गया। रायसेन में करगिल विजय दिवस के अवसर पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा देश के अमर शहीदों की स्मृति में मशाल यात्रा निकाली गई। खंडवा में नशा मुक्त फॉर विकसित भारत कार्यक्रम आज स्थानीय किशोर कुमार सभागृह में आयोजित किया जाएगा। झाबुआ में नशे से दूरी है जरूरी 2.0 अभियान के तहत पुलिस द्वारा व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। वहीं धार में कल नशा मुक्ति जन जागरूकता मैराथन का आयोजन किया गया। उधर कटनी में संचालित नशे से दूरी है जरूरी 2.0 अभियान के तहत चौकी क्षेत्रों में हाट बाजार बस स्टैंड बाजारों में जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।

0: सवेरा बनारस का,
1: शाम अवध की,
0: वादियां हिमालय की,
1: क्या बात है।
0: और इन सब के साथ शान हो मालवा की तो
1: यहाँ की सुबह और रातें किसी से कम नहीं।
0: तो सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।
2: आकाशवाणी इंदौर से लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम गुड मॉर्निंग इंदौर।

श्रोताओं, मित्रता जीवन का वह मधुर संगीत है जो हर सुख दुख में हमारे मन को संबल देता है। यह केवल साथ चलने का नाम नहीं बल्कि विश्वास, अपनापन और निस्वार्थ भाव का सबसे सुंदर रूप है। अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस बहुत नजदीक है। ये दिन हमें रिश्तों की गर्माहट और उनकी कद्र करना सिखाता है।

जी हाँ श्रोताओं, जुलाई का ये अंतिम सप्ताह हमें दोस्ती, प्रेरणा और संगीत के महत्व को याद दिलाता है, क्योंकि आज हम याद कर रहे हैं भारत रत्न राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब को, जिन्होंने अपने ज्ञान, सादगी और कर्म से करोड़ों दिलों में जगह बनाई, जिन्हें भारत का मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा गया।

श्रोताओं, आज गुड मॉर्निंग इंदौर में महान गायक मोहम्मद रफी साहब को भी हम याद कर रहे हैं, जिनकी पुण्यतिथि आने वाली 31 जुलाई को है। दिल के बादशाह, आवाज के शहंशाह रफी साहब, जिनके गाए ना भूलने वाले गीत आज भी हमें उनका मुरीद बना देते हैं।

हंसी के फूल, गजल की मिठास, फलसफे की गंभीरता से लबरेज उनकी पुरकशिश आवाज को हर चाहने वाला यही कहता है। कहता है कोई दिल गया दिलबर चला गया, कहता है कोई दिल गया दिलबर चला गया, साहिल पुकारता है समंदर चला गया, लेकिन जो बात सच है वो कहता नहीं कोई, लेकिन जो बात सच है वो कहता नहीं कोई, दुनिया से मौसकी का पयंबर चला गया। तुम

श्रोताओं, मेरी आज की इन सभी बातों से तो आप समझ ही गए होंगे कि आज गुड मॉर्निंग इंदौर में बहुत कुछ खास है। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुड मॉर्निंग इंदौर,

0: श्रोताओं, इस वक्त हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं कुछ ऐसे युवा जिनके लिए कलाम साहब बहुत आदरणीय हैं, उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं और उन्हें मोटिवेट करते हैं ऊंचाइयों को छूने के लिए। आइए उन युवाओं से बातचीत करते हैं। गुड मॉर्निंग इंदौर।
1: गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम आयुषी गोखले है। नमस्कार प्रीति जी,
2: कार्यक्रम में स्वागत है। आयुषी, ये बताओ क्या करती हैं आप?
1: स्टूडेंट हूँ और मुझे सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना है।
2: आपने कहा कि एक डेवलपर आपको बनना है, तो ये विचार कैसे आया कि यहाँ तक पहुँचना है?
1: एक्चुअली मुझे मतलब बहुत इंटरेस्ट था कोडिंग वगैरह, एप्स वगैरह में कैसे क्या चीजें होती है जानने का, तो उसके थ्रू मैंने इनिशिएट करा कुछ कुछ चीजें जानने का, तो इंटरेस्ट बढ़ता गया तो मैंने ये चीज चूज किया मेरे एज अ करियर।
2: बहुत अच्छी बात है कि आप अपने करियर को लेकर इतना विचार कर रही हैं। आज हम अब्दुल कलाम साहब की पुण्यतिथि मना रहे हैं, तो आप उन्हें कैसे याद कर रही हैं?
1: अब्दुल कलाम को हम बहुत रिस्पेक्ट के साथ याद कर रही हूँ फिलहाल, और उनका जो इंस्पिरेशन है वो बहुत यूथ के लिए हमारे बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। उनका एक बहुत ही फेमस कोट है, एवरी यूथ हैज इग्नाइटेड माइंड, जो कि मुझे बहुत इंस्पायर करता है। उनके बहुत ही सारे फेमस कोट्स है जो इंस्पिरेशन देते हैं, जैसे कि उनका बहुत कहना आता है कि आप अपने सपने देखते हो तो उनके लिए मेहनत करना भी जरूरी है और तभी आप उन्हें मतलब रियलिटी में बदल सकते हो, तो ये चीजें सारी मुझे इंस्पिरेशन होती है। और उन्हें मिसाइल मैन इसीलिए कहा जाता है क्योंकि जो हमारा मिसाइल और डिफेंस डिपार्टमेंट है, वहाँ में जो इसरो और डीआरडीओ डिपार्टमेंट्स हैं, वहाँ पे उन्होंने हमारे इंडिया का बहुत ही ज्यादा नाम किया है डेवलपमेंट करने में, इसीलिए हम उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहते हैं, और इसीलिए जैसे आज हम उन्हें याद करते हैं।
2: बहुत अच्छी बात है, आप उन्हें याद करती हैं और आपके लिए बहुत ही प्रेरणा का स्रोत है वो।
1: प्रदीप जी, कलाम साहब के बारे में एक और खास बात बताना चाहूंगी जो मुझे बहुत इंस्पायर करती है। उनका एक बहुत ही फेमस कोट है, वो कोट कुछ इस तरीके से है कि इफ यू फेल नेवर गिव अप बिकॉज फेल मींस फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। मतलब हम फेल को फेल की तरह ना लेके उसे हमारा एक लर्निंग के लिए फर्स्ट अटेम्प्ट ले, और इफ यू एंड इज नॉट द एंड, इफ इनफैक्ट एंड मींस एफर्ट नेवर डाइज। If you get no as an answer, remember, no means next opportunity. So let's be positive. इसे लेकर आप हमेशा positive रहिए। तो मैं इसी कोट से थ्रू सभी युवाओं को ये बोलना चाहूंगी कि आपने जीवन में पॉजिटिव रहे और अपने ड्रीम्स के लिए एक्शंस लेते रहे, और जो एपीजे अब्दुल कलाम के इंस्पायरिंग थॉट्स है उन्हें अपने लाइफ में डेवलप करें।
2: हम यही चाहते हैं कि तुम भी आगे बढ़ो और कलाम साहब को ऐसे ही याद करते रहो।
3: गुड मॉर्निंग इंदौर। नमस्कार,
2: आप अपना नाम बताएं।
3: मेरा नाम कबीर महाड़िक है, मैं अभी फिलहाल फोर्थ ईयर स्टूडेंट हूँ एंड मैं पाइथन डेवलपमेंट में अभी अपना कोर्स कर रहा हूँ।
2: बहुत अच्छी बात है कि आप इस फील्ड में अपना करियर बना रहे हैं। कबीर, हम ये आपसे जानना चाहेंगे कि आज कलाम साहब की पुण्यतिथि है, तो आप कैसे याद कर रहे हैं आज उन्हें?
3: मैम, आज कलाम साहब की पुण्यतिथि पे हम, बल्कि उनकी सोच, उनकी कोशिश जो देश के प्रति है, उनके थ्रू हम उन्हें याद कर रहे हैं। उन्होंने जो हमें सिखाई है, बड़े सपने देखो लेकिन उन सपनों को सिर्फ देखकर मत छोड़ो, उनके लिए रोज मेहनत करो। उनकी सिंप्लिसिटी, ह्यूमिलिटी और देश के लिए उनका जो डेडिकेशन है, कॉन्ट्रीब्यूशन है, मुझे सबसे ज्यादा वो इंस्पायर करता है।
2: बहुत अच्छी बात है। एपीजे अब्दुल कलाम साहब को वाकई में हम सभी लोग आज याद कर रहे हैं। उन्हें मिसाइल मैन कहा जाता था क्योंकि उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया है। कबीर, आगे हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आज हम कलाम साहब को याद कर रहे हैं, तो उनकी ऐसी कौन सी बात है जो आपको बहुत प्रेरित करती है?
3: मैम, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर कहते थे, जो उनकी बात मुझे सबसे ज्यादा प्रेरित करती है, ड्रीम इज नॉट दैट विच यू सी वाइल स्लीपिंग, ड्रीम इज समथिंग दैट डज नॉट लेट यू स्लीप। इसका मतलब यह है कि असली ड्रीम्स वो नहीं होते जो हम सोते वक्त दिखते हैं, असली ड्रीम्स वो होते जो हमें सोने नहीं देते, हमें इंस्पायर करते हर वक्त काम करने के लिए। वो हमें कम्फर्ट जोन से बाहर निकालते और हमें रोज इंस्पायर करते हैं और बेटर बनने के लिए, हमें मोटिवेट करते हैं हर टाइम।
2: बहुत अच्छी बात है कि मोटिवेट करते हैं हर समय। तो आप इन विचारों को फॉलो करते हैं?
3: जी मैम, बिल्कुल।
2: क्या बात है, आपने ड्रीम भी ऐसा ही देखा है कि बहुत कुछ करना है लाइफ में।
3: यस मैम।
2: कबीर, युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे?
3: मैम, मैं उन्हें संदेश देना चाहूंगा कि आपको हमारे देश के लिए छोटे छोटे कंट्रीब्यूशन भी कर सकते हैं तो करिए, क्योंकि वो कंट्रीब्यूशन भी बहुत मैटर करते हैं। आपको रोज अपने लाइफ डिसिप्लिन जीना पड़ेगी, नॉट आपको कम्फर्ट जोन में नहीं रहना पड़ेगा, अपनी लाइफ सिंप्लिसिटी से जीना पड़ेगी। यू कैन डू दिस, मैं अपना यही संदेश देना चाहता हूँ,
2: तभी हम अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। आपकी फरमाइश का एक गीत आप जरूर बताएं जो श्रोताओं के साथ हम आपको सुनवाएं।
3: मैम, आजकल गाने तो बहुत है, बट मैं अक्सर मोहम्मद रफी साहब को याद करता हूँ। उनके जो गीत है जो बहुत मेलोडियस है, मतलब हम सबको इंस्पायर करते हो, बहुत सूदिंग वॉइस है उनकी। एंड उनका वन ऑफ द सॉन्ग है जो मुझे बहुत इंस्पायर करता है, अभी ना जाओ छोड़कर, विच आई लाइक द मोस्ट।
2: क्या बात है, तो थोड़ा सा गुनगुना दो हमारे लिए।
3: जी मैम, अभी ना जाओ छोड़कर के दिल अभी भरा नहीं।
2: लीजिए अपने रेडियो सेट पर सुनिए आपकी पसंद का ये खूबसूरत सा गीत।

0: श्रोताओं, इस वक्त हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं श्री सुनील साहू जी। सुनील जी, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग इंदौर।
1: गुड मॉर्निंग इंदौर, सभी सुनने वालों को मेरा नमस्कार। प्रीति जी, आपको मेरा नमस्कार।
0: नमस्कार, आप क्या करते हैं?
1: मैं एक टेक्निकल ऑथर हूँ। मैं जावा या पाइथन टेक्नोलॉजी पे बुक्स लिखता हूँ। साथ ही साथ मेरी एक IT फर्म है जिसमें हम सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, और मेरा एक बिजनेस भी है जिसके अंदर हम बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी में प्लेस करते हैं। ये मेरा छोटा सा परिचय है। मैं सन 2006 में US से वापस आया था, जब मेरे फादर ने US आने से मना किया। उस समय मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और US की टॉप 3rd कंपनी में काम किया करता था। उसके बाद यहाँ इंदौर आने के बाद मैंने सोचा कि यहाँ एजुकेशन में टेक्निकल स्किल का बड़ा गैप है और यहाँ के बच्चे मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने लायक या कॉम्पीट करने लायक अभी नहीं है। तो उस समय मैंने 2006 में अपना एजुकेशन टेक्नोलॉजी का इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया।
0: जी, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करके। सुनील जी, विश्व मित्रता दिवस बहुत करीब है, तो आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि वैश्विक दृष्टिकोण से विश्व मित्रता दिवस का क्या महत्व है?
1: वैसे प्रीति जी, मेरे लिए मित्रता ईश्वर का वो वरदान है जो मैं समझता हूँ कि हर परिस्थिति में आपके अस्तित्व की, आपके आत्मसम्मान की, आपके स्वाभिमान की रक्षा करता है। और मित्रता केवल दो व्यक्तियों के बीच नहीं होती, बल्कि दो देशों के बीच भी होती है।

0: बहुत अच्छी बात आपने बोली है। आपके लिए मित्रता के क्या मायने हैं?
1: मेरे लिए माता पिता के बाद मेरे को लगता है कि सबसे जो सुंदर रिश्ता है वो है मित्रता का है। मेरे शिक्षा में, मेरे करियर में, मेरी सफलता में, मेरे कठिन समय में, हर मोड़ पे मैंने मेरे मित्रों को अपने साथ खड़े हुए पाया है। मुझे आज भी याद है करीबन 32 साल पहले जब मुझे MCA की डिग्री करना थी और मुझे मेरे पास एडमिशन के पैसे न थे, उस समय मेरे मित्र थे जिन्होंने अपने पिताजी से विश्वास दिलाकर मेरे को उस समय अपने एडमिशन के पैसे दिलाए थे, और शायद वही विश्वास था जिसने मुझे मेरी जिंदगी की नई दिशा दी। तो मुझे लगता है कि मैं अक्सर कहता हूँ कि मेरे जीवन में मेरे मित्र कई बार भगवान श्री कृष्ण की तरह मार्गदर्शक बन के आए हैं, और उन्होंने केवल मेरा साथ ही नहीं दिया है बल्कि सही समय पर सही दिशा भी दिखाई है। तो मेरे लिए मित्रता का अर्थ विश्वास, निस्वार्थ सहयोग, एक दूसरे की सफलता में सच्ची खुशी है, यही मेरे लिए मित्रता की डेफिनेशन है।
0: बहुत अच्छी डेफिनेशन आपने बताई है मित्रता के लिए। आपके अनुसार जीवन साथी का सबसे अच्छा दोस्त होना कितना जरूरी है?
1: प्रीति जी, मेरे विचार से जीवन साथी केवल जीवन का साथी नहीं होता बल्कि आपका सबसे अच्छा मित्र भी होना चाहिए। जब पति पत्नी के रिश्ते में मित्रता हो तो वहाँ अधिकार से अधिक विश्वास होता है, शिकायतों से अधिक संवाद होता है और प्रतिस्पर्धा की जगह सहयोग होता है। तो एक अच्छा जीवन साथी आपकी कमियों को स्वीकार करता है, तो यदि वो अच्छा मित्र भी है और आपकी खूबियों को आगे बढ़ाता है, हर परिस्थिति में कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ खड़ा रहता है, वो आपकी सफलता पर सबसे अधिक खुश होता है और असफलता में सबसे पहले आपका हौसला बढ़ाता है। तो ऐसा मेरा मानना है कि सफल वैवाहिक जीवन की सबसे मजबूत नींव मित्रता ही है।
0: क्या बात है। आज के युवाओं को दोस्ती और रिश्तों को लेकर आप क्या संदेश देना चाहेंगे इस खास मौके पर?
1: जी, जो मेरा टेक्नोलॉजी और एजुकेशन का अनुभव रहा है उसको देख के मुझे लगता है कि आज का युवक वास्तविक मित्रों की अपेक्षा वर्चुअल मित्रों की तरफ अधिक बढ़ रहा है। सोशल मीडिया पर हमारे हजारों मित्र हो सकते हैं लेकिन जीवन की कठिन कड़ी में अक्सर एक असच्चा मित्र ही हमारे साथ होता है। तो मैं युवाओं से कहना चाहूंगा कि टेक्नोलॉजी का उपयोग अवश्य करें और जितना ज्यादा कर सकते हैं उतना ज्यादा करें, लेकिन वास्तविक रिश्तों को कभी कमजोर ना होने दें। ऐसे मित्र बनाएं जिनके साथ आप खुलकर बात कर सकें। हम ऐसे युग में प्रवेश कर रहे हैं जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोट हमारे काम में मदद करेंगे, लेकिन मैं गारंटी से बोल सकता हूं कि ये कभी भी आपको संवेदनाएं, अपनापन और सच्ची मित्रता नहीं दे सके। इसलिए मेरा संदेश है कि अच्छा करियर जरूर बनाएं लेकिन उसके साथ साथ अच्छे मित्र भी बनाएं, क्योंकि सफलता आपको ऊंचाई तक पहुंचा सकती है लेकिन सच्चे मित्र उस ऊंचाई पर आपको संभाल कर रखते हैं।
0: बहुत ही प्रेरणादायी आपका संदेश है
1: प्रीति जी। आज आपका टॉपिक विश्व मित्रता दिवस बहुत अच्छा था, बड़ा ही अच्छा सब्जेक्ट रहा, और क्योंकि मेरी जीवन संगिनी मेरी सबसे अच्छी दोस्त है वो भी आपसे बात करने के लिए अति उत्साहित है, तो मैं चाहूंगा कि आप उससे जरूर बात करें।
0: बिल्कुल, हम चाहते हैं कि उनसे जरूर बात हो। गुड मॉर्निंग इंदौर।
2: गुड मॉर्निंग, नमस्ते प्रीति जी।
0: नमस्कार।
2: बहुत बहुत धन्यवाद प्रीति जी, मुझे आपने इस कार्यक्रम में शामिल किया। मेरा नाम रेखा साहू है, मैं इंदौर में रहती हूँ।
0: रेखा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
2: थैंक यू।
0: रेखा जी, अभी हमने सुनील जी से बात करी कि वो आपको सच्चा मित्र मानते हैं, तो हाँ। मित्रता दिवस के खास मौके पर आपके क्या विचार हैं विश्व मित्रता दिवस को लेकर?
2: मित्रता दिवस को लेकर मेरे ये विचार हैं, ये मेरे खुद के अपने ऐसा मानना है मेरा, दोस्ती जो है बहुत अच्छा एक सबसे अनमोल रिश्ता रहता है। एक सच्चा मित्र हमारे सुख दुख में हमेशा साथ खड़ा रहता है, बिना किसी स्वार्थ के हमारा साथ निभाता है। उसको ये नहीं लगता है कि मैं ये काम करूंगा तो इससे मुझे ये प्रॉफिट होगा, वो अपना बिना स्वार्थ के वो अपने दोस्त की सहायता करता है। मेरा मानना है कि पति पत्नी का पहला रिश्ता जो है वो एक फ्रेंड का होना चाहिए, दोस्ती का होना चाहिए, इसके बाद कोई दूसरा रिश्ता डेवलप होना चाहिए। जैसे चाहे वो पति पत्नी का हो, बहन भाई का हो, माँ बाप का हो, चाहे माँ बेटी का हो या माँ बेटे का हो, तो पहले तो दोस्ती होनी चाहिए, इसके बाद ही सारे रिश्ते, ताकि वो अच्छे से मेंटेन कर पाए।
0: बहुत अच्छी बात आपने कही है।
2: दोस्ती एक खुले विचार की तरह होती है, वहाँ कोई ईगो नहीं होता है, ऊंच नीच नहीं होती है, अपन आसानी से अपने वर्ड को बोल सकते हैं, उससे संकोच नहीं होता अपने को, तो ये दोस्ती का सबसे अच्छा एक सहारा है।
0: जी जी, बहुत अच्छी बात आपने कही है कि दोस्ती सहारा होती है जिंदगी में, और जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए हमें दोस्तों की आवश्यकता होती है, मित्र की आवश्यकता होती है। इस दिन को किस तरह से मनाना पसंद करती हैं आप?
2: इस दिन को मैं अपने ओपन खुले विचार से बोलना, समय देना, समय अगर आप एक दूसरे को देंगे तो आप अच्छे से बातें कर पाएंगे, पुरानी बातों को ताजा करना, पुरानी चीजों को बोलना, जो आपके कुछ अच्छे पल रहे हैं उसको शेयर करना, तो उससे अपनी पुरानी बातें भी ताजा हो जाती हैं। मन में त्याग, समर्पण, पोलाइटनेस, ये सारी चीजें भी अपने अंदर होनी चाहिए, तभी अपन एक दोस्ती भी अच्छे तरीके से निभा पाएंगे।
0: बहुत अच्छी बात कही है आपने। बहुत अच्छा लगा रेखा जी आपसे बातचीत करके, और सुनील जी से भी बातें करके हमें बहुत मजा आया। अब
3: सुनील जी और रेखा जी, आप दोनों से हम ये जानना चाहेंगे कि ऐसा कौन सा गीत है जो आपको बहुत पसंद है।
1: ये जुलाई का खास महीना है, रिमझिम बारिश हो रही है और रफी जी अपने आप में बहुत महान गायक रहे हैं, तो

0: मैं आशा जी के साथ एक गाना गाया था आराधना में, गुनगुना रहे हैं भौरे खिल रही है कली कली, तो मैं चाहूंगा कि हम दोनों के लिए गाना अवश्य बजाएं।
1: बहुत ही प्यारे गीत की फरमाइश की है
2: प्रीति जी। ये जो आराधना फिल्म का ये जो गीत है ये मेरे को भी बहुत पसंद है और मैं ये आपको गुनगुना के बता रही हूँ।
1: सुनाइए।
2: गुनगुना रहे हैं भंवरे खिल रही हैं कली कली गली गली कली कली।
1: क्या बात है रेखा जी, बहुत ही प्यारे तरीके से आपने इस गीत को गुनगुनाया है और ये गीत आप दोनों का फेवरेट है तो निश्चित ही लोगों को भी बहुत पसंद आएगा। दीदी आपके रेडियो सेट पर सुनिए आपकी पसंद का ये खूबसूरत सेट।

0: गुड मॉर्निंग इंदौर।
1: गुड मॉर्निंग इंदौर।
0: नमस्कार
1: प्रीति जी, आपको भी नमस्कार। मैं प्रकाश खानोलकर, फिलहाल मैं संगीत से जुड़ा हुआ हूँ। मैं फार्मास्यूटिकल कंपनी में रीजनल मैनेजर था।
0: आपने कहा है कि आप संगीत से जुड़े हैं, तो कितने वर्षों से आप संगीत साधना कर रहे हैं?
1: मैं वैसे तो बचपन से कर रहा हूँ, लेकिन 36 वर्ष हो गए उत्कर्ष संस्था हमारी चल रही है इंदौर में।
0: जी जी जी, ये तो आपको पता ही है कि 31 जुलाई को हम रफी साहब की पुण्यतिथि मना रहे हैं, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे सर कि रफी साहब के बारे में आपके क्या विचार हैं?
1: रफी साहब एक बेहतरीन गायक, भाव प्रधान गायक, एक अच्छे इंसान और म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए एक अच्छे सहयोगी और नए संगीतकारों के मददगार थे।
0: जी, उनके गाए हुए गीतों का संयोजन किस तरह से करते हैं आप?
1: हम तो उसके जो 1960 और 65 के गीत है जिसमें

0: उस समय मेलोडी ज्यादा हुआ करती थी संगीत में, उन्हीं गीतों को हम लोग स्टेज से प्रस्तुत करते हैं और उसमें हर रंग के गीत होते हैं उनके, चाहे सीरियस हो, कुछ रोमांटिक हो, कुछ मस्ती भरे हो और क्लासिकल हो।
1: जी, क्लासिकल गीतों के बारे में आपका क्या रुझान है, किस तरह से आप संगीत संयोजन करते हैं?
0: क्लासिकल में मैडम ऐसा है कि अगर आपको गाने को लोकप्रिय बनाना है स्टेज से या कहीं पर भी, तो उसमें आपको क्लासिकल संगीत डालना बहुत आवश्यक हो जाता है। और जब तक क्लासिकल बेस नहीं होगा उस गाने को, गाना इतना लोकप्रिय नहीं होता है, चाहे लोग समझते नहीं है लेकिन उनको वो गाना अच्छा लगता है जिसमें क्लासिकल बेस हो।
1: हम आपसे ये जानना चाहेंगे, आप कुछ वाद्य यंत्र भी बजाते हैं?
0: जी, मैं बुलबुल तरंग बजाता हूँ और जिसको बैंजो भी कहते हैं, और ये वाद्य आजकल बहुत कम सुनने और देखने को मिलता है।
1: जी बिल्कुल, मेरे ख्याल से इंदौर में तो आप ही एक कलाकार हैं जो बैंजो बजाते हैं।
0: हाँ, ऐसा लगता है मुझे, मैंने किसी को सुना नहीं है, पर होंगे तो सही बजाने वाले, ऐसा तो नहीं है कि नहीं होंगे।
1: जी जी, तो ये वाद्य यंत्र आपने कब से बजाना शुरू किया है?
0: मैं 1968 से बजा रहा हूँ मैडम इसको।
1: जी, रफी जी के जो गीतों का जो संयोजन है, क्या इस बुलबुल तरंग पर भी आप करते हैं?
0: बिल्कुल, बुलबुल तरंग हमारे इसमें म्यूजिक ऑर्केस्ट्रा में वाद्य वृंद में एक मेन इंस्ट्रूमेंट होता है। जब से बजाते हैं उनके गाने के संयोजन में, तो हम लोग पूरा गाना नहीं बजाते हैं, सिंगर गाते हैं, उसके जो प्रीलूड और इंटरलूड होते हैं वो इस पर बजाए जाते हैं।
1: बुलबुल तरंग के बारे में जरूर बताएं हमारे श्रोताओं को कि किस तरह का वाद्य यंत्र है ये।
0: मैडम, बुलबुल तरंग 1930 के करीब अपने भारत में आया है ये इंस्ट्रूमेंट, और इसमें 11 तार होते हैं करीब, और इसको हाथ से बजाया जाता है, स्ट्रोक करके टोकिंग होता है इसमें, और हारमोनियम टाइप या टाइप राइटर टाइप इसमें वो होते हैं, जिसको बोलना चाहिए बटन कीज होती है।
1: जी जी,
0: और तार उसमें एक ही इसमें मिलते हैं, अलग अलग तार नहीं मिलते, 11 हो, 12 हो, जितने भी आपको लगाना हो, 12 तक मैक्सिमम लगाते हैं
1: जी।
0: तो उसमें एक ही इसमें मिलते हैं, एक ही स्वर में, उसको अलग अलग नहीं मिलाते हैं।
1: क्या बात है, तो ये इतना मुश्किल जो वाद्य यंत्र है उस पे आप संगीत संयोजन करते हैं, बहुत ही कमाल की बात है ये तो, और लोग भी काफी पसंद करते हैं आपकी बजाए हुए
0: पसंद करते हैं बुलबुल तरंग का, बहुत पसंद करते हैं।
1: जी, बहुत अच्छी बात है। तो रफी साहब को आप किस तरह से याद करते हैं?
0: मैडम, मैं उनको ऐसा याद करता हूँ कि एक वो जो मददगार का जो मैंने आपको अभी बोला, उनका मुझे किस्सा याद है। वो इतने मतलब सिंपल व्यक्ति थे कि एक बार उदित नारायण जी स्टूडियो में कहीं खड़े हुए थे चुपचाप, रफी साहब को उन्होंने देखा और थोड़े से छुप गए, तो उन्होंने उनको देख लिया था उदित नारायण जी को, तब उन्होंने बोला बेटा शर्माओ मत, मैं भी जब आप जैसा था तो मैंने भी आके कोरस में गाया है, इसलिए किसी मेरे से छुपने की जरूरत नहीं है आपको। और एक बार एक रिकॉर्डिंग में जा रहे थे तो लिफ्टमैन ने उनसे सलाम किया और ये बोला अच्छा कैसे हो, और फिर ऊपर रिकॉर्डिंग करके आए तो उसने बोला आज मेरी बेटी की शादी है, तो उन्होंने उनके जेब में जो लिफाफा था उनको मिला था स्टूडियो में रिकॉर्डिंग के बाद, वो पूरा लिफाफा उनको दे। हाँ, और दूसरा यह था कि वो जो किसी ने अगर कोई गाना रिकॉर्ड कर दिया है दूसरी आवाज में, और इनको पता पड़ जाता था कि गाना ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुका है पहले और अब मुझसे गवाया जा रहा है, तो वो मना कर देते थे, और बाद में पता चलता था तो वो सारे गाने मुझसे कैंसिल करवा देते थे।
1: अरे वाह, दूसरों का भी बहुत सम्मान करते थे,
0: बहुत सम्मान करते थे।
1: जी जी जी, उनके गाए गीतों की क्या खासियत है जो आपको बहुत प्रेरित करती है?
0: मुझे सबसे ज्यादा उनकी खासियत लगती है कि जब वो उनका कोई भी आप गीत सुनते हैं तो उनकी ये शैली है गाने की कि आपको गीत सुनते समय उस किस नायक पे है वो गाना, उसका सूरत आपके सामने आ जाती थी, मतलब जिसको बोलना चाहिए ना, वो अपने आवाज से अभिनय करते थे।
1: बिल्कुल, जब हम किसी कलाकार के ऊपर उनके गाए गीतों का फिल्मांकन देखते थे तो ऐसा लगता था कि ये उन्हीं के लिए गाया जा रहा है, उन्हीं की आवाज
0: के लिए गाया, सामने आ जाता चेहरा।
1: जी जी,
0: और खासकर जो शम्मी कपूर और देवानंद और जानी अवकर, इन तीनों में तो आप बिल्कुल फर्क ही नहीं कर सकते, अगर अगर जानी अवकर का गाना हो तो जानी अवकर आपके सामने आ जाएगा चेहरा, इन लोगों का तो बहुत अच्छे मैच करते थे आवाज,
1: तभी ये लोग शायद अपनी आवाज के लिए मोहम्मद रफी साहब को ही बोलते थे कि आप मेरा गाना गाएं।
0: हाँ, नहीं तो वो पिक्चर साइन नहीं करते थे कि हमारे रफी साहब ही गाएंगे।
1: क्या बात है, बहुत अच्छी बात आपने बताई है। रफी साहब आपको बहुत पसंद है और
0: पसंद है।
1: जी जी जी, तो आप कुछ प्रोग्राम वगैरह भी करते रहते हैं इस खास मौके?
0: हाँ, हमारे हर 31 जुलाई को हमारा पिछले 36 वर्षों से 1990 से ये प्रोग्राम होते आ रहा है रफी साहब की यादगार में, इसमें रफी साहब के ही गीत होते हैं, भी होते हैं, सभी होते हैं।
1: जी,
0: पर इसको हो गया करीब 36 साल हम कर रहे हैं।
1: क्या बात है,
0: इसमें कोई रुकावट नहीं आई अभी तक।
1: जी जी जी, बहुत अच्छी बात है कि आप इस तरह से कार्यक्रम का आयोजन करते हैं, रफी साहब की यादों को समेटते हैं। और आप इस खास मौके पर ऐसा कौन सा गीत है जो रफी साहब के लिए सुनना चाहेंगे, या क्या ऐसी चीज है जो उनके लिए कहना चाहेंगे?
0: मैडम, शम्मी कपूर जो है ना मेरे पसंदीदा अभिनेता थे
1: जी,
0: और फिल्म प्यार किया डरना क्या क्या गाना है, जाने बहार हुस्न तेरा बेमिसाल है, ये शम्मी कपूर जी पे ही है, और ये गाना मुझे बहुत पसंद है। उनके बारे में मैडम ये है कि वो जैसे दूसरों को जो शिक्षा देते थे, वो उनकी एक शिक्षा होती थी कि आपकी नजर

0: हमेशा जमीन पे होना चाहिए, अपना चरित्र को बचा के चलो और दूसरों को जितना हो सके आगे लाने की कोशिश करो, उनको पीछे मत धक्का दो। तीन चीजें से मैं बहुत प्रभावित हूँ और वो प्रैक्टिकली भी ऐसा करते थे।
1: बहुत अच्छी बात आपने कही है। आजकल के युवा गायक बहुत कुछ कॉपी करते हैं रफी साहब की, तो आपको लगता है कि वो रफी साहब तक पहुंच सकते हैं?
0: बहुत मुश्किल है, उतनी साधना आजकल होती नहीं है जितनी साधना उन लोगों ने की है और जितनी करना चाहिए, उतनी साधना आजकल कोई करता नहीं है।
1: आप क्या ऐसा टिप्स देना चाहेंगे जो रफी साहब के फैन है वो उनके गाए गीतों को गाना चाहें, तो आप क्या कहना चाहेंगे?
0: मैं तो उनको यही कहूंगा कि आप रियाज करें और अच्छी शिक्षा लें, कम से कम किसी से सहयोग जरूर लें, कुछ तो सीखें, थोड़ा बहुत शास्त्रीय संगीत सीखें, उसके बाद ही उनको गाने की कोशिश करें।
1: तो कौन सा गीत इस खास मौके पर उनका सुनना चाहेंगे आप?
0: जाने वार उसमें तरह बेमिसाल है।
1: क्या बात है, ये गीत बहुत ही अच्छा है। लीजिए आपके रेडियो सेट पर सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत, और आपसे इतनी अच्छी बातचीत हुई, आपने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

श्रोताओं, मोहम्मद रफी साहब की मधुर आवाज को हम सलाम करते हैं, जिसने मोहब्बत और इंसानियत को सुर दिए। साथ ही डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब को उनके सपनों भरे दृष्टिकोण और प्रेरित विचारों के लिए नमन करते हैं। और श्रोताओं, मित्रता दिवस की उस सच्ची भावना को मनाते हैं जो दिल को जोड़ती है। इन्हीं तीनों प्रेरणाओं के साथ आइए हम अपने शब्दों, कर्मों और रिश्तों में उम्मीद, संगीत और अपनापन बनाए रखें। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगली बार एक नए विषय के साथ आपसे होगी फिर मुलाकात। अब अनुमति दें प्रीति जोशी को। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे साप्ताहिक कार्यक्रम गुड मॉर्निंग इंदौर। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। सुबह के 8 बजने को हैं। थोड़ी देर में दिल्ली से रिले करेंगे समाचार प्रभात।

0: खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
1: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
0: और लाइट बिल के।
1: अब 0 रुपए कैसे दूँ?
0: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखिए, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
5: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। सरकार आज लोकसभा में लोक परीक्षाएं अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 प्रस्तुत करेगी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सभी सांसदों से परीक्षा सुधार विधेयक पर चर्चा में भाग लेने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों के लिए प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ नंदन नीलेकणी के नेतृत्व में उच्चाधिकार प्राप्त कार्यबल के गठन की घोषणा की। प्रधानमंत्री का युवाओं से भारत के सीमावर्ती गांवों के साथ संबंध मजबूत करने का आग्रह, विकसित गांवों को विकसित भारत की मजबूत नींव बताया। मौसम विभाग ने आज उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में अत्यधिक तेज वर्षा की चेतावनी जारी की और भारत की भारोत्तोलन क्वीन मीराबाई चानू ने महिलाओं के 48 किलोग्राम भार वर्ग में राष्ट्रमंडल खेलों का लगातार तीसरा स्वर्ण पदक जीता। ऋषिकांत सिंह को पुरुषों के 60 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक। सरकार आज लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। इसके माध्यम से 2024 के लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम में संशोधन किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ये विधेयक सदन में प्रस्तुत करेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रश्न पत्र लीक और परीक्षा में गड़बड़ियों के मामले में फास्ट ट्रैक अदालतों की गठन तथा कड़े दंड का प्रावधान करने वाले इस विधेयक के मसौदे को शुक्रवार को मंजूरी दी थी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने परीक्षा सुधार विधेयक पर चर्चा के लिए सभी सांसदों से संसद की कार्यवाही में भाग लेने की अपील की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री रिजिजू ने युवाओं की आवाज सुनने और विद्यार्थियों के भविष्य के लिए इस ऐतिहासिक विधेयक का समर्थन करने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों के लिए उच्चाधिकार प्राप्त कार्यबल के गठन की घोषणा की है। प्रधानमंत्री ने

0: वीडियो संदेश में कहा कि ये कार्यबल परीक्षा सुधारों पर ध्यान केंद्रित करेगा।
1: लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन निलेकनी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा।
0: इस कार्यबल में गुप्तचर ब्यूरो के पूर्व निदेशक तपन डेका, इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर एस सोमनाथ, आईआईटी मद्रास के निदेशक वी कामकोटी, पूर्व शिक्षा सचिव अनीता करवाल और प्रबंध विशेषज्ञ अमृत लाल मीणा भी शामिल हैं। दिल्ली सरकार ने दिल्ली महिला आयोग और दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया है। लता गुप्ता को दिल्ली महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्याम बाला, मालती वर्मा, लता सोढ़ी, संद्रिका शर्मा झा और रेणु भल्ला आयोग की सदस्य बनाई गई हैं। निर्मल जैन दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। कुलदीप सिंह और मोहम्मद हारून आयोग के सदस्य बनाए गए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
2: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से भारत के सीमावर्ती गांवों के साथ संबंध मजबूत करने का आग्रह किया है। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में देश के युवाओं की भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है।
2: मेरा हमेशा से ही ये दृढ़ विश्वास रहा है कि भारत के नौजवान 21वीं सदी की दुनिया को शेप करने वाले हैं। भारत के युवा की यही असली नियति है। आज का युवा विकसित भारत की ऊर्जा भी है और विकसित भारत का सबसे बड़ा लाभार्थी भी है। इसलिए युवा शक्ति जब देश की चुनौतियों और समाधानों से सीधी जुड़ेगी तो भविष्य निश्चित ही उज्जवल होगा।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को सीमावर्ती गांवों को देखने, समझने और उनसे जुड़ने के लिए प्रेरित करना है। उन्होंने कहा कि विकसित गांव ही विकसित भारत की मजबूत नींव है और इस लक्ष्य को हासिल करने में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। सरकार की सीमावर्ती गांव पहले गांव की सोच के तहत इन क्षेत्रों में तेजी से विकास हो रहा है। श्री मोदी ने कहा कि आजादी के बाद पहली बार कई गांवों तक सड़क, बिजली और नल से जल जैसी बुनियादी सुविधाएं पहुंची हैं।
2: हर कठिनाई के बावजूद सीमावर्ती गांवों के लोग देशभक्ति को पल प्रतिपल जीते हैं। कुछ वर्ष पहले तक तो बॉर्डर के गांवों को अंतिम गांव कहकर अपने हाल पर छोड़ दिया गया था। इन गांवों में सड़क, बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल, ऐसी हर बेसिक सुविधाओं का अभाव था और हमें इस पर गर्व होना चाहिए कि ऐसी परिस्थितियों में भी सीमावर्ती गांवों के लोगों की देशभक्ति कभी भी कमजोर नहीं पड़ी।
1: राष्ट्र आज पूर्व राष्ट्रपति और सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। उन्होंने भारत के अंतरिक्ष और मिसाइल विकास कार्यक्रमों में प्रमुख भूमिका निभाई थी। डॉक्टर अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पूर्व राष्ट्रपति और भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री बिरला ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम विकसित, आत्मनिर्भर और सशक्त भारत के दूरदर्शी स्वप्न दृष्टा थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी डॉक्टर कलाम को श्रद्धांजलि अर्पित की। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि डॉक्टर कलाम बहुमुखी व्यक्तित्व

0: धनी थे।
1: भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की पुण्यतिथि है। डॉक्टर कलाम के व्यक्तित्व में कई प्रेरक रूप थे, लेकिन उनके हृदय के सबसे करीब एक शिक्षक की भूमिका थी। वे बच्चों और युवाओं को बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित करते थे।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने भी डॉक्टर कलाम को श्रद्धांजलि अर्पित की है। उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के प्रभाव से आज उड़ीसा में तेज वर्षा का पूर्वानुमान है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कई जिलों में रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किए गए हैं।
2: उड़ीसा में आज मानसून का जोरदार असर दिख रहा है, क्योंकि उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र के कारण राज्य भर में व्यापक बारिश हो रही है। उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने और आज सुबह या दोपहर के समय पारादीप और सागर द्वीप के बीच उत्तरी उड़ीसा पश्चिम बंगाल तट को पार करने की उम्मीद है। मौसम विज्ञान विभाग IMD ने आज सुंदरगढ़, केंदुझर और मयूरभंज जिले के लिए रेड वार्निंग जारी की है, जबकि कई उत्तरी, मध्य और तटीय जिलों के लिए ऑरेंज वार्निंग लागू। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ में आज कुछ स्थानों पर अत्यधिक तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर और त्रिपुरा के कुछ स्थानों पर आज तेज वर्षा हो सकती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने पर मीराबाई चानू को बधाई दी है। मीराबाई चानू ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता। मीराबाई ने महिलाओं की 48 किलोग्राम भारोत्तोलन स्पर्धा में कुल 190 किलोग्राम वजन उठाकर ये उपलब्धि हासिल की।
3: मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि ये तीसरा गोल्ड मेडल दे पाई हूँ इंडिया के लिए, और इस बार भी मेडल दे तो पाऊंगी। इस बार सोच रहा था कि पूरा इंडियन वेटलिफ्टिंग टीम को अच्छा परफॉर्मेंस देने के लिए मेरा थर्ड गोल है और मेरा फोर्थ मेडल है कॉमनवेल्थ गेम्स का, इससे और ज्यादा खुशी क्या हो सकता है।
0: इससे पहले ऋषिकांत सिंह चानम्बम ने पुरुषों के 60 किलोग्राम भार वर्ग में कुल 264 किलो भार उठाकर रजत पदक जीता। भारत के पदकों की संख्या अब 4 हो गई है। इसमें 1 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक शामिल हैं। पैरा पावर लिफ्टर झंडू कुमार ने प्रतियोगिता के पहले दिन पुरुषों के हैवीवेट वर्ग में कांस्य पदक जीतकर देश का खाता खोला था। भारत ने हरारे में तीसरे और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में मेजबान जिम्बाब्वे को 35 रन से हराकर श्रृंखला 3-0 से अपने नाम कर ली। भारत ने 5 विकेट पर 192 रन बनाए। वैभव सूर्यवंशी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सिर्फ 49 गेंद पर 81 रन बनाए। जिम्बाब्वे निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 157 रन ही बना सका। वैभव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में वेक्टर जनित रोग, रोकथाम, सुरक्षा और जन जागरूकता विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। स्वास्थ्य विशेषज्ञ और राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण केंद्र के पूर्व निदेशक डॉक्टर अक्षय धारीवाल और नई दिल्ली स्थित एम्स के चिकित्सा विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर पीयूष रंजन परिचर्चा में भाग लेंगे। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
4: धन्यवाद मुकेश। परीक्षा में सुधार के लिए प्रधानमंत्री के टास्क फोर्स बनाने की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, पेपर लीक पर प्रहार के लिए टास्क फोर्स बनाई, मोदी का ऐलान, नंदन नीलकर्णी होंगे अध्यक्ष, परीक्षा प्रणाली में आधुनिक तकनीक पर जोर। नवभारत टाइम्स के अनुसार PM ने नीलकर्णी को सौंपा परीक्षा में सुधार का जिम्मा। अमर उजाला ने इस्तीफे से आगे शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, नीट UG प्रश्न पत्र लीक प्रकरण से पैदा हुए युवाओं के आक्रोश के बीच शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा राजनीतिक परिस्थितियों की अनिवार्य परिणति माना जा सकता है, लेकिन महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या यह कदम देश के समग्र परीक्षा तंत्र में सुधार की कोई वास्तविक गारंटी बन सकेगा। राजस्थान पत्रिका ने बदलाव शीर्षक से लिखा है, जेन जी का सबक, रील ने बदली राजनीति, अब IT नहीं इंस्टाग्राम सेल, युवा शक्ति ने बदली आंदोलन की तस्वीर, पार्टियां बदलेंगी रणनीति। दैनिक जागरण ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के हवाले से लिखा है, पाकिस्तान से अब बातचीत सिर्फ गुलाम जम्मू कश्मीर पर होगी। रक्षा मंत्री ने कहा सेना को

0: दुश्मन के घर में घुसकर मारने की खुली छूट, करगिल की विजय आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेगी। जनसत्ता ने आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के हवाले से सुर्खी दी है, भारत वैश्विक रक्षा साझेदार के रूप में उभर रहा। श्री मोदी ने करगिल युद्ध के वीर सैनिकों को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। नवभारत टाइम्स के अनुसार 13 दिन के बाद अमेरिका और ईरान ने रोके अपने हमले, सीज फायर पर बात को फिर से पटरी पर लाने की कोशिशें तेज। हिंदुस्तान का शीर्षक है, पिनाक खरीदने के लिए देशों में होड़, ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइलों के बाद एक और हथियार प्लेटफॉर्म को भी कई देश खरीदने के इच्छुक। पत्र के अनुसार अगस्त में रफाल विमानों के सौदे पर जवाब सौंपेगा फ्रांस। पंजाब केसरी की सुर्खी है, मीराबाई चानू ने ग्लासगो में जीता गोल्ड, लहराया तिरंगा, ऋषिकांत को रजत, भारतीय पुरुष 4x200 मीटर फ्री स्टाइल रिले टीम भी फाइनल में। दैनिक भास्कर ने खास खबर में लिखा है, दिमाग जीत जल्द भूल जाता है, हार याद रखता है, आत्मविश्वास का खाता बनाइए, खुद पर शक होने लगे तो यह बताइएगा आप हारेंगे नहीं।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, सरकार आज लोकसभा में लोक परीक्षाएं अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 प्रस्तुत करेगी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सभी सांसदों से परीक्षा सुधार विधेयक पर चर्चा में भाग लेने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों के लिए प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ नंदन नीलेकणी के नेतृत्व में उच्चाधिकार प्राप्त कार्यबल के गठन की घोषणा की। प्रधानमंत्री का युवाओं से भारत के सीमावर्ती गांवों के साथ संबंध मजबूत करने का आग्रह। मौसम विभाग ने आज उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में अत्यधिक तेज वर्षा की चेतावनी जारी की। और भारत की भारोत्तोलन क्वीन मीराबाई चानू ने महिलाओं के 48 किलोग्राम भार वर्ग में राष्ट्रमंडल खेलों का लगातार तीसरा स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस, गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस पब्लिक एग्जामिनेशंस प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस अमेंडमेंट बिल 2026 इन लोकसभा टुडे। Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju urges all MPs to participate in discussion on exam reform bill. Prime Minister Narendra Modi announces formation of high-powered task force led by technology expert Nandan Nilekani. Prime Minister urges young people to strengthen their connection with India's border villages, describes developed villages as foundation of Viksit Bharat. IMD forecasts very heavy rainfall in Odisha and Chhattisgarh today. And India's weightlifting queen Meerabai Chanu wins third successive Commonwealth Games gold medal in women's 48 kg category. Rishikant Singh bags silver in men's 60 kg class. And now the news in detail. The government will introduce the Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026 in the Lok Sabha today. The bill seeks to amend the Public Examinations Prevention of Unfair Means Act 2024. It will be introduced by Union Minister Dr. Jitendra Singh. On Friday, the Union Cabinet had approved a draft bill to set up fast-track courts and to ensure stricter punishment in cases of paper leaks and exam malpractices. Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju has appealed all members of Parliament to participate in the discussion on the exam reform bill. In a social media post, Mr. Rijiju said, after listening to the voice of the young generation and the historic decisions taken by Prime Minister Narendra Modi for the future of students, he appeals all MPs to participate in the discussion today. We have a report.
3: The bill has strong penal provisions to deal with any case of paper leaks. According to the listed agenda of Lok Sabha, Union Minister Jitendra Singh will introduce the bill in the House. The bill introduces 7 key amendments designed to plug enforcement loopholes, establish dedicated judicial mechanisms, and accelerate criminal trials. It also seeks to significantly overhaul the 2024 framework by instituting strict time frame for both investigations and judicial proceedings. State governments and Union Territory Administrations will be empowered to designate courts of sessions as special fast-track courts dedicated exclusively to trying offences under the Act. According to the provisions of the bill, proceedings in special fast-track courts must be

0: आप सुन रहे हैं मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।
1: ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। सुबह के 8:30 हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। श्रोताओं, आज का फिल्म संगीत समर्पित है भारत के पूर्व राष्ट्रपति, महान वैज्ञानिक, प्रेरणा स्रोत और करोड़ों युवाओं के प्रिय व्यक्तित्व डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को। उनका जीवन हमें सिखाता है कि बड़े सपने देखने वाले ही इतिहास रचते हैं।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से। वाह,
3: अनजान ऐप से बचें।
4: आरबीआई कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
5: डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में एक साधारण परिवार में हुआ। आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने कभी शिक्षा का साथ नहीं छोड़ा। बचपन में अखबार बांटकर अपनी पढ़ाई का खर्च उठाने वाले इस बालक ने आगे चलकर भारत के अंतरिक्ष और मिसाइल कार्यक्रम को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। वे इसरो में भारत के पहले स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान SLV-3 की सफलता से जुड़े और बाद में DRDO में अग्नि और पृथ्वी जैसी मिसाइलों के विकास का नेतृत्व किया। इसी कारण उन्हें पूरे देश ने मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना। भारत को अपनी सुरक्षा के लिए हथियारों के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की नींव उन्होंने रखी और आज भारत इस पथ पर काफी आगे बढ़ चुका है और विश्व में अपनी पहचान बना रहा है।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: शुद्धो सन 1998 में पोखरण परमाणु परीक्षणों में भी डॉक्टर कलाम की महत्वपूर्ण भूमिका रही। विज्ञान और तकनीक में उनके योगदान के लिए उन्हें पद्मभूषण, पद्म विभूषण और फिर देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। सन 2002 से 2007 तक वे भारत के राष्ट्रपति रहे, लेकिन राष्ट्रपति भवन में रहते हुए भी वे सबसे अधिक समय विद्यार्थियों के बीच ही बिताना पसंद करते थे। उनका मानना था, सपने वो नहीं जो आप सोते समय देखते हैं, सपने वो हैं जो आपको सोने नहीं देते। युवाओं में कई बार कुछ ऐसा नया करने की जिद होती है, कुछ ऐसा करने का सपना होता है जो कोई सोच भी नहीं पाता, और ऐसे सपनों को कभी न सच होने वाला और ऐसे व्यक्तियों को बावला कह करके उन पर हंस दिया जाता है। पर अगर ऐसे बावले सपने नहीं होते तो शायद आज हवाई जहाज नहीं होता, मोबाइल फोन्स नहीं होते और ऐसे कई और आविष्कार नहीं होते। तो सपने देखते रहिए।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: डॉक्टर कलाम एक महान वैज्ञानिक ही नहीं बल्कि संवेदनशील लेखक और शिक्षक भी थे। उनकी प्रसिद्ध पुस्तकें विंग्स ऑफ फायर, इग्नाइटेड माइंड्स और इंडिया 2020 आज भी युवाओं को प्रेरित करती हैं। 27 जुलाई सन 2015 को भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलांग में विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए वे मंच पर ही गिर पड़े। अंत तक वे वही काम करते रहे जिसे वे सबसे अधिक पसंद करते थे, और वो था युवाओं को प्रेरित करना।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: श्रोताओं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहा करते थे, यदि सूरज की तरह चमकना है तो पहले सूरज की तरह जलना सीखिए। उनका जीवन विनम्रता, परिश्रम, देशभक्ति और ज्ञान का अनुपम उदाहरण है। आइए हम भी उनके सपनों के भारत के निर्माण में अपना योगदान दें। और इसी के साथ फिल्म संगीत का समापन हम कर रहे हैं एक ऐसे गीत से जो नई उड़ान और नए विश्वास का संदेश देता है, हौसला बनाए रखने का संदेश देता है।

0: अभी आप सुन रहे थे मराठी कार्यक्रम, ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। थोड़ी ही देर में शास्त्रीय संगीत होगा, पहले सुनिए ये संदेश।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
3: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: आकाशवाणी इंदौर से लीजिए प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत। इसके तहत आज हम आपको सुनवा रहे हैं भुवनेश कोमकली का गाया राग अहीर भैरव। एक ताल में निबद्ध विलंबित रचना के बोल हैं रसिया मारा, द्रुत रचना के बोल हैं बेग बेग आओ। संगीतकार हैं तबले पर संगीता अग्निहोत्री और वायलिन पर पंडित कमल कांबली।

0: शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आपने सुना भुवनेश कोमकली का गाया राग अहीर भैरव। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। थोड़ी देर में भोपाल से रिले करेंगे जिले की चिट्ठी।
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है जिले की चिट्ठी।
2: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है निवाड़ी जिले की चिट्ठी। आलेख प्रादेशिक समाचार एकांश, वाचन स्वर दीपा सिंह। जिले की चिट्ठी में सबसे पहले बात मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के दौरे की। कल डॉ. यादव ने निवाड़ी जिले में करीब 193 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। उन्होंने निवाड़ी को प्रदेश की अयोध्या बताते हुए कहा कि ओरछा में भगवान राम के राम राजा लोक का निर्माण हो रहा है। मुख्यमंत्री ने रिमोट के जरिए नवनिर्मित संयुक्त कलेक्ट्रेट भवन और जिला अस्पताल का लोकार्पण किया। निवाड़ी दौरे के दौरान वे ओरछा भी पहुंचे। यहाँ उन्होंने श्री राम राजा सरकार मंदिर में दर्शन पूजन किया। मुख्यमंत्री के दौरे के बाद प्रशासनिक स्तर पर जिले में गतिविधियां तेज हो गई हैं। इसी क्रम में नवागत SDM विनीता जैन ने क्षेत्र के सभी पटवारियों की समीक्षा बैठक

उन्होंने फार्मर रजिस्ट्री शत प्रतिशत पूरी करने, सीएम हेल्पलाइन के शिकायतों का त्वरित निराकरण करने, सीमांकन और बंटवारे के लंबित प्रकरणों का समय सीमा में निपटारा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। वहीं कलेक्टर जमुना भिड़े ने पिछली साप्ताहिक जनसुनवाई में प्राप्त 80 आवेदनों पर सुनवाई की। उन्होंने सीमांकन, नामांतरण, बंटवारा, भूमि कब्जे से जुड़े मामलों में अधिकारियों को स्वयं मौके पर जाकर जांच पीड़ितों को न्याय दिलाने के निर्देश दिए। जिले में प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़ी एक और खबर है। नवागत अपर कलेक्टर और अपर जिला दंडाधिकारी इकबाल मोहम्मद ने कलेक्टर कार्यालय में पदभार ग्रहण किया। इस अवसर पर अधिकारियों और कर्मचारियों ने पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका स्वागत किया। जिला प्रशासन ने यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए निवाड़ी तिगैला स्थित पुरानी मंडी परिसर के अस्थायी बस स्टैंड से अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। प्रशासनिक अमले ने जेसीबी की मदद से अस्थायी दुकानों और अवैध निर्माणों को हटाया। शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी खबरों की बात करें तो जिले के शासकीय स्कूलों में शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने 45 नौ चयनित शिक्षकों की नियुक्ति की है। जिला शिक्षा अधिकारी और उन्मेश श्रीवास्तव ने सभी नवनियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। इनमें प्राथमिक स्तर पर खेल और संगीत के 3 शिक्षक और माध्यमिक विद्यालयों के लिए 42 शिक्षक शामिल हैं। समग्र शिक्षा के अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक रोहित शुक्ला ने लड़वारी के शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय और झुकियाई के शासकीय हाई स्कूल का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण में लड़वारी विद्यालय में अवकाश प्रक्रिया में लापरवाही पर प्राचार्य से स्पष्टीकरण मांगा गया। रोजगार के क्षेत्र में जिले के शासकीय पीजी कॉलेज में युवा संगम के अंतर्गत अप्रेंटिसशिप मेले का आयोजन किया गया। मेले में 8 कंपनियों ने भाग लिया, जिसमें 220 आवेदकों ने हिस्सा लिया। इनमें से 115 युवाओं का प्राथमिक चयन विभिन्न कंपनियों द्वारा किया गया, जबकि 2 आवेदकों का अप्रेंटिसशिप के लिए चयन हुआ। नगर विकास से जुड़ी खबर में नगर परिषद अध्यक्ष नीलू केशव खटीक और मुख्य नगर पालिका अधिकारी अरविंद कुमार तिवारी ने वार्ड क्रमांक 5 और 6 में डोर टू डोर भ्रमण कर पेयजल व्यवस्था का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने नागरिकों से जल आपूर्ति, पानी के प्रेशर और स्वच्छता की भी जानकारी ली। स्वास्थ्य के क्षेत्र में जिले में बच्चों की बेहतर स्वास्थ्य सुरक्षा के उद्देश्य से दस्तक अभियान 2026 की शुरुआत की गई है। अभियान के तहत स्वास्थ्य दल घर घर पहुंचकर 5 वर्ष तक के बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण कर रहे हैं। वर्षा ऋतु में संभावित हादसों की रोकथाम और बच्चों की सुरक्षा को लेकर कलेक्टर ने जिले के सभी संवेदनशील जल स्रोतों पर सख्त सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। नदियों, तालाबों, बांधों और जल भराव वाले क्षेत्रों की पहचान कर वहाँ चेतावनी बोर्ड, फेंसिंग और बैरिकेडिंग लगाने के लिए कहा गया है। नशा मुक्ति अभियान के तहत जिले में नशे से दूरी है जरूरी 2.2 जनजागृति अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत शासकीय पीएम श्री कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में कार्यक्रम आयोजित किया गया। कचरा प्रबंधन को लेकर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर प्रदेश के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बैठक आयोजित की गई। बैठक में कलेक्टर सहित जिले के अधिकारियों ने सहभागिता की। अधिकारियों को कचरा पृथक्करण, वैज्ञानिक निस्तारण, बल्क वेस्ट जनरेटर की जिम्मेदारी तय करने और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर स्पॉट फाइन लगाने के निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति विशेष परियोजना वित्त पोषण योजना के तहत अनुसूचित जाति वर्ग के बेरोजगार युवक युवतियों से स्वरोजगार स्थापित करने के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। योजना में उद्योग, सेवा, कृषि आधारित परियोजना, एग्रो प्रोसेसिंग, मिल्क प्रोसेसिंग सहित विभिन्न क्षेत्रों के लिए अधिकतम 2 करोड़ रुपए तक का अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा। किसानों के लिए ई कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर आवेदन की प्रक्रिया जारी है। प्रधानमंत्री धनधान्य योजना के तहत पात्र किसान ड्रिप सिस्टम, स्प्रिंकलर और मिनी स्प्रिंकलर के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए फार्मर आईडी अनिवार्य है। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।

0: ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। सुबह के 10:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए सजीव फोन इन कार्यक्रम एमएच हॉटलाइन।
1: हेलो एमएच हॉटलाइन।

एमएच हॉटलाइन कार्यक्रम में सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आरती जादौन। श्रोताओं, ये कार्यक्रम है आपके लिए, आपकी पसंद के गीत आपको सुनवाने के लिए। इससे पहले कि हम कार्यक्रम शुरू करें, हमारे नए श्रोताओं के लिए हम बता दें, हमारी फोन नंबर 2710

0: 2723 और 2710224। इंदौर का एसटीडी कोड है 0731। और एक बार फिर हम अनुरोध कर दें, जिन श्रोताओं ने हमें कॉल किया हो एक महीने के अंदर, कृपया वो कॉल ना लगाएं। हम अनुरोध ही कर सकते हैं और उम्मीद कर सकते हैं कि आप हमारी बात मानेंगे। तो चलिए लेते हैं पहला कॉल। हेलो
1: हेलो
0: हेलो जी, कौन बोल रहे
1: हैं? जी नमस्ते।
0: नमस्ते,
1: प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ।
0: प्रेम सिंह जी, जी प्रेम सिंह जी, आपको कॉल किए हुए एक महीना शायद नहीं हुआ।
1: जी करीबन हो चुका है।
0: करीबन हो चुका है। चलिए, आज कौन सा गीत सुनना चाहते हैं आप?
1: फिल्म का नाम है बड़े मियाँ छोटे मियाँ।
0: बड़े मियाँ छोटे मियाँ
1: जी। और गाने के बोले तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं, मैं तो रास्ते से जा रहा था।
0: मैं तो रास्ते से जा रहा था। गोविंदा जी की फिल्म का गीत आप सुनना चाह रहे हैं?
1: हाँ, और कॉमेडी वाला गाना है और सभी श्रोताओं को बड़ा अच्छा लगेगा, हंसी मजाक वाला गाना है
0: जी। गाना तो जो है वो बहुत मशहूर है। इसकी शुरू की जो लाइन है, शुरू ये कहाँ से होता है?
1: जो ना ये मैं तो रास्ते से जा रहा था।
0: ठीक है।
1: और अभी आरती जी मौसम कैसा है इंदौर का?
0: इंदौर का मौसम तो अच्छा है, थोड़ी सावन की झड़ी जो है वो पहले से ही लग चुकी है
1: जी,
0: है ना?
1: यहाँ पर मतलब कल तो नहीं परसों हल्की बारिश हुई थी पूरे दिन
0: जी,
1: लेकिन कल मौसम साफ था और आज भी तो अभी पानी वानी कुछ भी नहीं है, अच्छा मौसम है। और हम खेत में अभी काम कर रहे हैं मजदूर के साथ में।
0: तो आपने क्या बो दिया है खेत में?
1: जी सोयाबीन की फसल लगाई है हमने।
0: सोयाबीन की फसल, अच्छा। सोयाबीन के अलावा मक्का वगैरह भी बोते हैं क्या?
1: हाँ, कुछ किसान ने मक्का की फसल भी लगाई है
0: जी,
1: बट थोड़ा कम ही लगा, तो सोयाबीन की फसल ज्यादा होती है।
0: अच्छा, सोयाबीन के ज्यादा करते हैं। तो अभी जो है, अभी जो मौसम है ये, क्या उसके लिए बिल्कुल अच्छा है?
1: बिल्कुल अच्छा है। और थोड़ी सी बारिश और हो जाती है ना तो और भी फायदा होता है फसलों को।
0: अच्छा ठीक है
1: जी।
0: तो ये अभी जो है मुझे इसमें जो दिख रही है जानकारी, कुली नंबर 1 फिल्म का गीत है ये, मैं तो रास्ते से जा रहा था, बजाय बड़े मियाँ छोटे मियाँ का
1: वो।
0: हाँ, इसीलिए उस फिल्म में जो है उनका ये गीत तो जो है वो बहुत प्रसिद्ध है, पर बड़े मियाँ छोटे मियाँ के अंदर जो है ये गाना नज़र आ नहीं रहा था। पर चलिए, अब हाल फिलहाल हमारे पास ये गीत है तो हम आपको सुनवा देते हैं, ठीक है? और अभी तो चूंकि आपकी बुवाई और ये सब चल रही होगी तो आप भी व्यस्त होंगे, आप गीत सुनते जाइए और अपना काम भी करते जाइए।
1: थैंक यू सो मच आरती जी, मुझे आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा।
0: धन्यवाद।

0: चलिए अब हम बात करते हैं हमारे अगले श्रोता से. हेलो हेलो एम एच हॉटलाइन.
1: हेलो दीदी नमस्कार.
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: गिराम हीरापुर जिला सीहोर मध्य प्रदेश से भगवान सिंह परमार बोल रहा हूँ दीदी.
0: नमस्कार भगवान सिंह जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में.
1: बहुत बहुत धन्यवाद दीदी.
0: आज आप क्या सुनना पसंद करेंगे, कौन सी फिल्म का गीत?
1: फिल्म का नाम है आई मिलन की रात और गाने के बोल है देखे अपनी किस्मत में कांटा है के फूल है.
0: देखे अपनी किस्मत में कांटा है कि फूल है, सही है. वैसे अक्सर हम देखते हैं कि हमारे जीवन में दोनों ही चीजें हमें मिलती हैं.
1: जी दीदी बिल्कुल, दुख और सुख साथ चलते हैं.
0: दोनों साथ चलते हैं तो कुछ अगर अच्छी चीजें हैं तो साथ में कुछ ऐसी चीजें भी आती हैं कि जो हम नहीं चाहते हैं, ऐसे कुछ कष्ट और दुख भी रहते हैं.
1: जी हाँ दीदी.
0: और आपका खेती किसानी का काम है
1: जी,
0: तो इसमें तो आपको और ज्यादा, क्योंकि हमारे यहाँ मानसून पर निर्भर होती है खेती, तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में पूरी तरह से संभावना बता पाना मुश्किल होता है कि क्या होगा.
1: जी हाँ दीदी, अभी बरसात हमारे इधर बहुत कम हुई है दीदी, हर साल की अपेक्षा में 10% बरसात हुई अभी तक दीदी.
0: अच्छा
1: जी,
0: तो ऐसे में फिर सिंचाई साधनों पर निर्भर रहना होता है.
1: जी दीदी, बरसात के फसल के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है दीदी, लेकिन जो अगली फसल हम लेंगे गेहूं की दीदी, उसमें सिंचाई पर आधारित है दीदी, और वाटर लेवल जब बढ़ेगी जब भी हम मोटर से पानी निकाल पाएंगे दीदी.
0: अच्छा, अगर उधर भी कम हो गया तो फिर और दिक्कत हो जाती है.
1: जी जी दीदी.
0: तो इसीलिए बहुत जरूरी है ये प्रयास करना कि हमारे ग्राउंड लेवल तक भी पानी पहुंचता रहे, इसलिए रिचार्जिंग सिस्टम्स को, क्योंकि अभी मौका है, बारिश का मौसम है, तो आप भी जैसे आपका ट्यूबवेल या जो रहता है तो उसके पास रिचार्जिंग सिस्टम या अपने उसमें कहीं कोई छोटा तालाब जैसा इस तरह का कोई सिस्टम आपने बना के रखा है क्या,
1: ताकि मैं आपको बताना चाहूंगा मेरे गांव में करीबन छोटे छोटे 15-20 तालाब बनाए हैं गांव वालों ने.
0: अच्छा अच्छा.
1: और उस तालाब से दीदी सिंचाई भी करते हैं, वो वाटर लेवल में फायदा होता है दीदी.
0: चलिए ये तो बहुत अच्छा है, क्योंकि आसपास ही अगर वो है तो फिर ये समस्या बहुत नहीं रहेगी कि गर्मी शुरू होते ही वाटर लेवल इतना नीचे चला गया कि ट्यूबवेल में भी पानी आना बंद हो जाए.
1: जी जी.
0: जैसा कि अक्सर होने लगता है अगर बारिश कम हुई हो तो.
1: जी दीदी, वैसे हमारे इधर मतलब ज्यादा पानी की कमी नहीं रहती, हमारे गेहूं में करीबन 3 पानी तो आराम से फ्री जाते हैं कितनी कम बारिश हो जब भी.
0: चलिए बहुत अच्छी बात है, तो इस चीज़ को जारी रखें और अपने आसपास के गांव वालों को भी प्रेरित करें, क्योंकि जितना हम पानी का संचय करेंगे हमको ही उतना फायदा होगा.
1: जी हाँ दीदी.
0: चलिए अब आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गीत.
1: बहुत बहुत धन्यवाद दीदी.
0: धन्यवाद कॉल करने के लिए.

0: चलिए अब हम बात करते हैं अपने अगले श्रोता से. हेलो एमएच हॉटलाइन. हेलो
1: हेलो
0: जी, आवाज आ रही है?
1: हाँ बिल्कुल क्लियर आ रही है.
0: क्लियर आ रही है, चलिए अब तो हमको भी जो है वो क्लियर आपकी आवाज आ गई है. अपना परिचय दीजिए प्लीज.
1: है ग्राम सनोतिया जिला गुना मध्य प्रदेश से बहन जी, आपका भाई मांगीलाल चंदेल बोल रहा.
0: मांगीलाल जी आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में. आप गुना से बोल रहे हैं और इससे पहले हम कुछ और बात करें तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आज कौन सा गीत आप सुनना चाहते हैं, क्या फरमाइश है आपकी?
1: बहन जी फिल्म का नाम रहेगा दो रास्ते.
0: बिल्कुल,
1: तो ये पसंद तो फिल्म मेरी है दो रास्ते
0: जी,
1: और इसमें सॉन्ग आपकी पसंद रहेगा.
0: क्या बात है. चलिए फिर भी आपको जो गीत पसंद है वो भी बता दीजिए, वो मिल गया तो हम आपको वही गीत सुनवा देंगे.
1: हाँ इसमें क्या है, बढ़िया गाने एक से बढ़कर एक हैं दो.
0: हाँ गाने बहुत अच्छे हैं.
1: हाँ आप कोई सा भी गाना लगा देना वो मेरी पसंद बन जाए.
0: चलिए क्या बात है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का इसमें संगीत है.
1: संगीत है
0: हाँ, लता मंगेशकर, किशोर कुमार, मोहम्मद रफी के गाने हैं. और फिल्म देखी थी आपने?
1: नहीं फिल्म तो नहीं देखी लेकिन गाने सुन रखे.

0: या गानी है
1: अच्छा गाने सुन रखे हैं, फिल्म कभी नहीं देखी। मुमताज हैं इसमें है ना जी, उन पर फिल्माया हुआ गीत भी है। तो चलिए आपको सुनवा देते हैं दो रास्ते फिल्म का गीत।
0: तो बहन जी कुछ मित्रों को याद कर सकते?
1: बिल्कुल याद कीजिए, आप अपने मित्रों को याद कीजिए।
0: नरेश प्रजापति जी हैं, गजराज बेदी जी हैं, वसंती लाल जी हैं और शेख हैदर खान जी हैं रतलाम से, बलवंत कुमार वर्मा जी हैं त्रिमलेगन आलोट जिला रतलाम,
1: ये भी रतलाम से जी,
0: रतलाम से भगवान सिंह परमार जी हैं और तमाम राम बाबू शर्मा जी हैं
1: जी,
0: तमाम सभी श्रोताओं को ये गाना डेडिकेट
1: है। अच्छा ये जो आपने रतलाम के श्रोताओं के नाम लिए वो आपके वैसे मित्र हैं, आप मिलते रहते हैं या फिर श्रोता मित्र हैं, आकाशवाणी मित्र हैं?
0: आकाशवाणी मित्र हैं, हम सालों से मिलते रहते हैं।
1: क्या बात है, बहुत अच्छा।
0: हमारे अध्यक्ष, हमारे टीम के अध्यक्ष हैं बलवंत कुमार वर्मा जी।
1: अच्छा अच्छा अच्छा
0: जी
1: जी, क्या बात है। तो मतलब आप रतलाम भी गए हैं?
0: हाँ कई दफे रतलाम, वो हमारे घर गुना आ गए, हम उनके पास चले गए।
1: ये तो बड़ा अच्छा भाईचारा है कि आकाशवाणी के जरिए आप मिले हैं और अच्छी दोस्ती निभा रहे हैं। चलिए तो
0: हाँ, कई तो सम्मेलन करवाए, श्रोता सम्मेलन करवाए आलोट में।
1: अच्छा अच्छा, उसमें आप शामिल हुए थे?
0: हाँ हम शामिल हुए, तो बहुत दूर दूर के श्रोता आते हैं उस सम्मेलन।
1: चलिए बहुत अच्छी बात है ये तो अब आपको जो है, आपको और आपके मित्रों को, सभी को आपकी पसंद का एक गीत सुनवा रहे हैं
0: जी।

0: आकाशवाणी इंदौर से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एमएच हॉटलाइन। अब हम जुड़ते हैं हमारे अगले श्रोता से। हेलो
1: हेलो, एमएच हॉटलाइन।
0: जी, एमएच हॉटलाइन में आपका स्वागत है।
1: जी आरती जी, नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: जी मोहम्मद यूनुस खत्री बोल रहा हूँ, छिपा कॉलोनी खंडवा से, और हम मेरे दोस्त के साथ खड़े हैं, पेंटर विजय मोहबिया।
0: हाँ, विजय जी मोहबिया और खत्री जी।
1: जी
0: जी, आप दोनों को नमस्कार
1: करेंगे।
0: हाँ
1: जी जी, ये भी एक जोड़ी की मिसाल रहेगी कि भाई आकाशवाणी ऐसे ऐसे होता भी है,
0: क्या बात जोड़ी
1: है, से बात भी करते हैं। और हमारी दोस्ती बहुत पुरानी, 45 साल पुरानी, जब से रेडियो से जुड़े हैं ना।
0: अच्छा, तो आपकी जो दोस्ती हुई शुरू, वो ऐसे ही हुई आकाशवाणी के जरिए या पहले से जानते थे?
1: आकाशवाणी के जरिए से ही हुई ना।
0: अच्छा अच्छा।
1: हाँ, हम इनके पास पूछने आते थे कि भाई हमारे पत्र शामिल हुए कि नहीं।
0: अच्छा,
1: ये हमारे पास पूछने आते थे, हमारे पत्र शामिल हुए नहीं यार, पत्र डाले यार मेरे शामिल नहीं हो रहे, रोज डाल रहा है, मेरे पत्र शामिल नहीं हो रहे।
0: सुनने
1: का दौर था, वो सुनने समझने का दौर बहुत बढ़िया था।
0: अच्छा, तो ऐसे आपकी जो है वो दोस्ती शुरू हुई।
1: जी हाँ, और मन भवन जाता था मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, रविवार मन भवन।
0: अच्छा,
1: हम सब पूरा रिकॉर्ड भी करते थे आज किस किस
0: के पत्र जो है वो शामिल हुए। क्या बात है।
1: पत्र अच्छा, भी शामिल हुए, कौन कौन
0: किस किस के,
1: और किसने प्रोग्राम पेश किया,
0: वाह,
1: किसकी मधुर आवाज है, किसकी अच्छी आवाज है, किसी की प्यारी आवाज है, जैसे आपकी।
0: क्या बात है, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, आगे हम बात करें, उसके पहले फिल्म बता दीजिए, गीत बता दीजिए जो हम श्रोताओं को सुनवाएंगे।
1: जी हमारे तो ये है की गाना सुनना हमको, तो ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे।
0: क्या बात।
1: और ये हमारे पेंटर विजय मोबिया जी से बात कर लो।
0: जी जी,
1: ये भी मोहब्बत के बहुत भूखे हैं।
0: बताइए, उनसे बात करवाइए।
2: नमस्कार आरती जी।
0: नमस्कार विजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। आपके खत तो देखिए शामिल होते रहते हैं, बात आपसे पहली बार हो रही है। जी, कैसे हैं आप?
2: बहुत बढ़िया।
0: खत्री जी ने बताया आपकी दोस्ती के बारे में कि बहुत लंबा वक्त आप लोगों को हो चुका है एक साथ आकाशवाणी सुनते हुए, और अपनी जो भी गिले शिकवे हैं और जो भी खुशियां हैं उनको बांटते हुए, कि भाई आज खत शामिल हो गया या फोन शामिल हो गया या नहीं हो पाया।
2: ये तो आप लोगों की मोहब्बत है जो हमको जिंदा रखी हुए मैं तब क्या है।
0: आकाशवाणी भी अपने श्रोताओं से ही है।
2: हाँ,
0: कि भाई हमारे श्रोता हैं तो ही तो आकाशवाणी है, इसलिए ये बात जो है वो आप पर भी लागू होती है कि सारे श्रोताओं की मोहब्बत है जिसकी वजह से ये कार्यक्रम है। अब आखिर अगर हम फोन इन कार्यक्रम कर पाते हैं तो इसीलिए कर पाते हैं क्योंकि श्रोता कतार में होते हैं फोन करने के लिए। बल्कि कभी कभी तो ये दिक्कत हो जाती है कि भाई हमारा फोन नहीं लगा क्योंकि कुछ लोगों के ज्यादा फोन लग रहे हैं, तो ऐसी नोक झोंक भी चलती रहती है,
2: होता है, वो सब जगह होता है।
0: जी, पर बहुत अच्छा लगा ये भी जानकर के कि अभी, क्योंकि इससे पहले वाला कॉल भी था उसमें पता चला कि आकाशवाणी के जरिए आप दोस्त बने हैं, और ऐसे दोस्त बने हैं कि 40-40 साल से, 45 साल से आप उस दोस्ती को निभा रहे हैं।
2: हाँ मैडम, बिल्कुल सच्चे वचन है ये बात की।
0: जी
1: हेलो आरती जी।
0: जी जी खत्री जी,
1: एक बात और भी है कि देखो हमारे यहाँ अभी धूम मची हुई है उन्हीं वाले दादाजी की।
0: अच्छा,
1: आप आमंत्रित थे हमारे, हमारी खंडवा नगरी में।
0: अरे दादाजी, क्या बात है। हाँ, उस समय बहुत खंडवा का जो है वो बिल्कुल रूप ही बदला हुआ होता है, काफी सुना है। सौभाग्य नहीं मिला उस समय पहुंचने का, पर इसके बारे में जो है वो सुना बहुत है। बहुत सारे उनके जो श्रद्धालु हैं, जो भक्त हैं, वो इकट्ठा होते हैं और पूरा खंडवा जो है उसमें एक अलग ही रौनक

0: जमी हुई होती है।
1: 300 भंडारे लगते हैं यहाँ पर।
0: अच्छा, गुरु पूर्णिमा के समय ये होता है ना कार्यक्रम?
1: जी जी, अभी कल कल से 3 दिन है लगा।
0: अच्छा, 3 दिन के लिए रहेगा।
1: जी जी जी, आप सभी आकाशवाणी पूरा परिवार आमंत्रित है।
0: आपको बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए।
1: भी आ सकते हैं।
0: जी जी बिल्कुल,
1: तो जरूर हमसे मुलाकात करें, तो हम आपको पूरा यहाँ से वहाँ तक सब घुमाएंगे।
0: क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए।
1: हमारी दोस्ती की एक मिसाल है
0: जी
1: पूरे आकाशवाणी में।
0: जी जी, वो जानकर के बहुत खुशी हुई हमको।
1: जी जी।
0: और आपके इस आमंत्रण के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे बाकी श्रोता भी सुन रहे हैं, जो भी इच्छुक हैं वो जा सकते हैं, पहुंच सकते हैं वहां तक।
1: जी जी बिल्कुल,
0: धन्यवाद। और आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।
1: ये गीत सुनते सुनते हम भी पहुंच रहे हैं आकाशवाणी खंडवा।
0: अच्छा, तो गीत आपने जो है फरमाइश आकाशवाणी इंदौर में की है, और अब आप जा रहे हैं गीत सुनते हुए आकाशवाणी खंडवा।
1: आकाशवाणी खंडवा,
0: क्या बात है, चलिए आनंद लीजिए।
1: जी जी जी।

0: हेलो, आई एम एच हॉटलाइन।
1: नमस्कार सर जी।
0: नमस्कार, कैसे हैं अनोखी सिंह जी?
1: नॉर्मल है।
0: अब जो है आपकी आवाज पहचान में आने लगी है जी।
1: 11 से सावन लगी गया है हमारे मालवा में।
0: अच्छा,
1: और आज सोमवार है।
0: बिल्कुल,
1: सभी तो, शिव भक्तों के लिए
0: जी
1: महादेव की अगर आरती हो जाए तो अच्छी बात है।
0: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। तो आप को आज महादेव जी की आरती सुनवाएं, ये आप सुनना चाहेंगे?
1: हाँ हाँ, हम वो सभी शिव भक्त महादेव भक्त हर कोई सुनना चाहेगा।
0: बिल्कुल,
1: कोई रेडियो बंद थोड़ी कर देगा अगर आरती चालू होगी तो।
0: नहीं, बिल्कुल नहीं, सब खुश होंगे। और सोमवार के दिन अगर आज ये होता है तो बहुत अच्छी बात है। सुबह में अगर ये मिलती है तो एक सार्थक दिन शुरू होता है हमारा। तो चलिए, आप

0: हाँ, तो
1: हाँ
0: चलिए आप कुछ गीत गुनगुनाना चाहेंगे?
1: गीत गुनगुनाना नहीं, हम तो देखो ये बहुत विचलितता आती है हमको कि यार हमको समय नहीं देते हो, ये न
0: नहीं,
1: मालूम कैसे कैसे कहाँ कहाँ समय दे देते, लाइन सुनने में कहीं शेर सुनने में
0: वो
1: कहीं
0: आती
1: शायरी
0: है,
1: सुन।
0: बताना
1: देखो
0: चाहते हैं तो आ जाती है।
1: जीविका और जीवन दोनों सुधरना चाहिए, सब वार्तालाप
0: चलिए,
1: होना चाहिए।
0: ये आपकी लाइन बहुत अच्छी लगी, जीविका और जीवन दोनों जो हैं वो अच्छे होना चाहिए, ये वाली चीज़
1: वो
0: बहुत
1: तो
0: अच्छी
1: लाइन
0: लगी।
1: बनना चाहिए, गुरु
0: बिल्कुल,
1: है ये रेडियो, कोई वो तो है ही नहीं फालतू चीज।
0: बहुत अच्छी बात आपने बोली है, और ये बात देखिए लिए अच्छी लगी कि एक सुंदर पंक्ति आपकी तरफ से आई है, और अगर आप इसी तरह से और शेयर करते हैं तो जो बात निकलती है कड़ी में चलती जाती है, तो कुछ जो है बात करना पसंद करते
1: भाई
0: हैं तो
1: जीवन
0: बात निकल
1: सुधरना
0: जाती है।
1: चाहिए,
0: और
1: जीविका चलना चाहिए,
0: जी
1: ये विषय होना चाहिए।
0: बिल्कुल, जीविका से
1: और
0: जुड़ी
1: ये
0: हुई
1: मानो
0: बातें भी
1: ना
0: हम
1: कि
0: करते
1: हंसी
0: हैं।
1: मजाक, ये शेर शायरी इनके लिए थोड़ी कोई है आकाशवाणी, ये तो आप
0: जी
1: सुना
0: अब
1: चाहिए।
0: देखिए अनोखेलाल जी, सबकी अपनी अपनी पसंद होती है, गीत शेर शायरी ये तो आकाशवाणी में है
1: भाई
0: ही,
1: ये
0: इसी के
1: परिवार है,
0: साथ
1: पारिवारिक
0: शिक्षा भी है।
1: रेडियो है, इसमें जितनी शुद्धता आएगी उतना अच्छा रहेगा।
0: बिल्कुल अच्छी बात है, चलिए आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो एमएच हॉटलाइन।
1: हेलो एमएच हॉटलाइन
0: जी।
1: आरती जी नमस्कार।
0: नमस्कार।
1: धर्मपुरी जिलाधार से शेख फहीम मोहम्मद।
0: स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
1: शुक्रिया आरती जी।
0: आज आपकी पसंद क्या है?
1: अलबेला फिल्म का गीत है, महमूद और अमिता अभिनीत फिल्म ही है, 1971 की फिल्म है। इसका एक गीत है लता जी का, जो बहुत ही खूबसूरत गीत है
0: जी,
1: देवता माना और पूजा तेरी तस्वीर को
0: जी। और शंकर जयकिशन का संगीत है इसमें।
1: जी जी बिल्कुल।
0: और साथ ही हसरत जयपुरी के बोल हैं। और जैसा कि हमेशा आपकी एक अनूठी अलग पसंद रहती है, तो उसी है ना, उसी तरह का एक गीत है जो आज आपने फिर पसंद किया है। और अच्छी चीज़ ये भी है कि हमें वो गीत मिल भी गया है, तो आपकी आपको आपकी पसंद का ये गीत हम पेश कर रहे हैं
1: जी। आरती जी शुक्रिया।

0: अब हम ले रहे हैं अगला कॉल. हेलो.
1: हेलो.
0: हेलो जी.
1: हाँ नमस्कार, राजू अग्रवाल बोल रही हूँ, राजा राम नगर देवास से.
0: जी राजू जी बोलिए, आज कौन सा गीत आप सुनना चाहते हैं?
1: आज गीत है ये
0: कुमारा बाप. आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही है.
1: हाँ रेडियो बंद कर दिया.
0: जी कुमारा बाप फिल्म का गीत सुनना चाहते हैं आप?
1: मेरी माँ.
0: हाँ कौन सा गीत?
1: ऐसा गीत है.
0: हाँ हाँ काफी प्रसिद्ध गीत है ये इस फिल्म से.
1: हाँ ये शादियों में.
0: हाँ जी चलता है बिल्कुल ठीक है.
1: रजनी साहब की पुण्यतिथि भी है, 23 जुलाई की महमूद जी की पुण्यतिथि थी,
0: तो उसके बीच में आप जो है वो एक ये गीत सुनना चाह रहे हैं. हेलो.
1: हाँ
0: हेलो. आपकी आवाज जो है वो कुछ दिक्कत आ रही है, पूरी पहुंच नहीं पा रही हम तक. हेलो. चलिए तो कुमारा बाप फिल्म का गीत आपको सुनना है, सज रही गली मेरी माँ.
1: जी
0: चलिए आपको ये सुनवाते हैं आपकी पसंद का गीत.

0: श्रोताओं, वक्त हो चला है कि कार्यक्रम का आखिरी कॉल हम लें। हेलो, आई एम एच हॉटलाइन।
1: हाँ, वो हेलो हॉटलाइन, मैं जिला पन्ना मतलब से हर्षवर्धन पांडे बात कर रहा हूँ।
0: पांडे जी नमस्कार, आप तो हीरों की नगरी पन्ना से बात कर रहे हैं।
1: हाँ, और मैं आपका आकाशवाणी इंदौर ये ऑनलाइन से सुनता हूँ
0: जी,
1: मोबाइल पे, क्योंकि रेडियो में तो ये सुनाई नहीं देता है।
0: अच्छा,
1: तो
0: अच्छा।
1: ये, हाँ, तो वो ऑनलाइन हम मोबाइल से ही सुनते हैं। और ये जो है ये न्यूज ऑन AIR पर।
0: अच्छा, न्यूज ऑन AIR ऐप का उपयोग आप कर रहे हैं, तो अच्छे से आपको प्रसारण सुनाई देता है।
1: हाँ हाँ, हमको न्यूज ऑन AIR में ये प्रसारण पक्ष सुनाई देता है।
0: चलिए,
1: और जो है आपके हॉटलाइन कार्यक्रम में आज हम जो है दुलारी फिल्म के गीत की प्रवाह कर रहे हैं
0: जी। दुलारी फिल्म का हाँ, कौन सा गीत?
1: हाँ, ये मोहम्मद रफी के स्वर में ये सुहानी रात ढल चुकी न जाने तुम कब आओगे।
0: बहुत प्यारा सा गीत आपने चुना है, जो रफी साहब का भी पसंदीदा गीतों में से ये एक था। तो चलिए पांडे जी, आपकी फरमाइश बिल्कुल पूरी करते हैं, आपके साथ साथ सभी श्रोताओं को सुनवाते हैं ये गीत।
1: धन्यवाद।

0: जी आरती को नमस्कार।
1: हेलो MH हॉटलाइन,
0: ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। थोड़ी देर में अगला कार्यक्रम हम रिले करेंगे आकाशवाणी मध्य प्रदेश से।
2: फोन करें, गीत सुने।
3: नमस्कार, कार्यक्रम फोन करें गीत सुने। इस कार्यक्रम में आज मैं हूं आपकी रेडियो मित्र श्वेता। तो सभी को मेरा नमस्ते। एक बात आज मैं कहना चाहूंगी कि ना कोई ओहदा है, ना कोई रुतबा, ना कोई दिखावा होता है। दोस्तों से मुलाकात कुछ इस तरह की मुलाकात होती है, आपकी और हमारी। तो आज फोन करें गीत सुने में हमें इंतजार है आपके फोन का। आप हमें फोन कर सकते हैं 2660902, बाहर के श्रोता साथी STD कोड 0755 लगाकर हमसे बात कर सकते हैं और सुन सकते हैं अपने पसंदीदा गीत। तो इंतजार है हमें आपके फोन कॉल का। हेलो।
4: हेलो मैडम जी, नमस्कार।
3: कार्यक्रम फोन करें गीत सुने में स्वागत है आपका।
4: जी नमस्कार।
3: नमस्कार, नाम बताएं अपना।
4: मैं उमरिया जिले के ग्राम नी दरबार से बात कर रहा हूँ
3: जी। आपका नाम?
4: राजभान विश्वकर्मा
3: जी। फोन करें गीत सुने इसमें आपका फोन लगा हुआ है। और कैसे हैं आप बताएं?
4: हम ग्लाइंड पीरियड में चल रहे हैं मैडम जी, क्या बताएं।
3: जी। तो हम ये चाहेंगे कि सबसे पहले तो आप हमारा जो रेडियो सुनते हैं प्रोग्राम सारे इसके।
4: जी।
3: गीत संगीत का शौक है आपको?
4: बहुत कुछ, आज कम से कम 40 वर्ष से।
3: अच्छा, तो सुनते हैं गीत संगीत, आपको रुचि है इसमें?
4: जी।
3: चलिए तो बताइए कौन से फिल्म का गीत सुनना चाहेंगे?
4: आंदोलन फिल्म का है। दिल तो खोया है यहीं पे कहीं भी तू जरा बता।
3: ठीक है, एक और मूवी बता दीजिए आप हमें जिसका गीत सुनना चाहेंगे।
4: एक है जीवन युद्ध का।
3: जी
4: जीवन युद्ध।
3: जी बिल्कुल। तो इसी तरह आप हमारे कार्यक्रमों को सुनते रहिए। और आपने फोन किया। जी
4: लोग टुकुर टुकुर देखेंगे बजरिया में।
3: जी, बड़ा प्यारा सा गाना आपने पसंद किया है और आपने फोन किया, इसके लिए आपका बहुत

0: कार्यक्रम फोन करें गीत सुने में स्वागत है आपका।
1: बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, फोन करें गीत सुने।
0: जी आपका नाम बताएं।
1: जी मैं फूलचंद पाल बोल रहा हूँ, छतरपुर जिले के मनकारी गांव से।
0: जी आपका स्वागत है कार्यक्रम फोन करें गीत सुने में। बताइए कैसे हैं आप?
1: बहुत अच्छा हूँ, बहुत बढ़िया हूँ। आपका शुभ नाम?
0: जी मैं आपके रेडियो मित्र श्वेता बोल रही हूँ।
1: ओहो श्वेता जी, आपको मेरा बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार।
0: नमस्कार नमस्कार। बताइए कैसा मौसम है उधर का, छतरपुर का? बारिश हो रही है?
1: छतरपुर का श्वेता जी बहुत बढ़िया मौसम है। पानी अभी शाम के भी गिरा है और अभी सवेरे तो बादल है, अभी तो नहीं गिरा है, लेकिन शाम के बहुत अच्छी बारिश भाई। और लगभग बहुत अच्छा मौसम है और बहुत बढ़िया खेती किसानी भी बढ़िया है।
0: हाँ, खेती किसानी भी अच्छी हो रही है।
1: हाँ लेकिन बस इतना है कि जो तालाब है वो नहीं भर पा रहा।

0: बाकी किसानी के हिसाब का तो पानी बहुत अच्छा बरस रहा है।
1: अभी तो और बरसेगा पानी है ना, बहुत अच्छे से बारिश होगी।
0: अभी तो अभी 4-6 नक्षत्र मघा नक्षत्र भी बाकी है, अभी सुविधा है
1: जी। तो बताएं कौन से फिल्म का गीत सुनना चाहेंगे?
0: बिल्कुल श्वेता जी, फिल्म का नाम है साजन चले ससुराल। और गीत के बोल हैं कि चाहत से है बेगानी मेरी सुबह शाम, मेरे दिल के कोरे कागज पे नहीं लिखा है कोई नाम।
1: बिल्कुल, तो ये प्यारा सा गीत हम आपको जरूर सुनवाएंगे।
0: और श्वेता जी साथ अगर आपकी आज्ञा हो तो कुछ हमारे मित्र हैं उनका नाम बोल लूं?
1: हाँ बोलिए
0: जी। सबसे पहले तो ये आपको डेडिकेट रहेगा गीत, और हमारे प्रेमदास बाबा जी हैं, बेटा सिंह यादव जी हैं, जितेंद्र पाल, मणिराम पाल जी हैं, मांगीलाल चंदेल जी हैं, और हमारे चित्रकूट धाम से दिनकर सिंह जी हैं, और कानपुर से पूनम बहन है हमारी, पूनम जी
1: जी जी,
0: और हमारे जयपाल यादव जी हैं महोबा से। सारे जितने श्रोता माताएं बहनें सुन रही हैं सभी को ये डेडिकेट रहेगा, और ये गीत लगभग पहली बार बज रहा होगा शायद आपकी आकाशवाणी से।

0: कार्यक्रम फोन करें गीत सुने में स्वागत है आपका।
1: जी बहन प्रणाम नमस्कार।
0: नमस्ते, आपका नाम बताएं।
1: जी मैं राजू यादव बुंदेलखंड हमीरपुर से।
0: जी तो कैसे हैं आप बताएं।
1: हम तो बहना जी बढ़िया हैं, मस्त हैं, व्यस्त हैं, स्वस्थ हैं, बिंदास हैं और बगीचे में बैठे बैठे ठंडी ठंडी हवा ले रहे हैं।
0: बिल्कुल, सभी लोगों को इस तरह रहना चाहिए है ना, मस्त व्यस्त अपने कामों में है ना।
1: जी बहन जी
0: तो बताइए कौन से फिल्म का गीत सुनना चाहेंगे।
1: बहना जी एक मूवी का नाम रहेगा रंग।
0: रंग जी,
1: रंग मूवी का कोई भी गीत चलेगा बहन।
0: बिल्कुल, तो चलिए हम यही चाहेंगे कि आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने कामों में व्यस्त रहें और साथ ही साथ हमारे गानों को और रेडियो सेट के प्रोग्रामों को भी सुने।
1: जी बहन मैं राजू यादव ग्राम उपरह का श्रीरामपुर डेरा सरीला राठ मुस्करा हमीरपुर बुंदेलखंड से। कुछ मित्रों को नाम ले ले बहन।
0: बताइए आपके मित्रों के नाम।
1: हमारे मित्र हैं लोकेन वर्मा जी हैं, गौतम राय भोले जी हैं, राजेंद्र गंगवार जी हैं, बलवान सिंह यादव हैं, छोटे यादव हैं और अनुप कुमार राजपूत जी हैं।
0: जी तो इन सभी को भी मेरा बहुत नमस्कार और आपने फोन किया और हमसे बातें की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।

0: कार्यक्रम फोन करें गीत सुने में स्वागत है आपका।
1: जी मैम नमस्कार।
0: नमस्कार, नाम बताएं आपका।
1: दीदी हम ग्राम पोस्ट तालगांव तहसील भांडेर जिला दतिया मध्य प्रदेश से दीदी मेहरबान सिंह नागल बोल रहे हैं।
0: मेहरबान सिंह नागर
1: नागल जी। दीदी
0: जी तो बताएं आप कैसे हैं?
1: बिल्कुल बढ़िया हैं। आकाशवाणी का बचपन से शौक है रेडियो सुनने का।
0: अच्छा,
1: और जो आप लोगों की बातचीत रहती है सुझाव देते हैं आप लोग, बड़े ध्यानपूर्वक कार्यक्रम सुनते हैं।
0: कौन कौन से प्रोग्राम आपको पसंद है रेडियो पर?
1: देखिए आपके कार्यक्रम में तो जो फोन करें गीत सुने आप तो जो भी हम सुन ले, तो और भी अन्य भी कार्यक्रम आते हैं तो समय समय पे हम सब कार्यक्रम सुनते हैं।
0: चलिए हमें जानकर बड़ा अच्छा लगा कि आप इतनी ध्यान से हमारे कार्यक्रमों को सुनते हैं। कौन से फिल्म का गीत सुनना चाहेंगे?
1: दीदी फिल्म का नाम तो याद नहीं आ रहा लेकिन गीत के बोल हैं, तेरी मेरी प्यार भरी बातों में आग लग गई बरसातों में।
0: फिल्म का नाम एक और बताएं आप, इसका बताएं।
1: चलिए
0: एक और बताइए मूवी का नाम।
1: चलो तो फिर फिल्म का नाम है,
0: नहीं आप
1: फिल्म का सुनवा दें दीदी आप।
0: नहीं आप बताइए आप कौन से फिल्म का गीत सुनना चाहें।
1: नहीं तो निगाहें का सुनवा दो आप।
0: निगाहें का, चलिए
1: जी। गीत के बोले सारा सारा दिन तुम काम करोगे प्यार कब करोगे।
0: बिल्कुल, तो देखिए आपने फोन किया इसके लिए।
1: मौसम कैसा है?
0: अच्छा है मौसम, बारिश भी हो रही है और काफी खुशनुमा हो गया मौसम। जी आपके इधर भी बारिश हो रही है?
1: हमारे इधर तो बारिश नहीं हो रही है।
0: अच्छा, चलिए हम यही कामना करते हैं कि आपके इधर भी खुशनुमा मौसम हो जाए। आपने फोन किया इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: दीदी बात कर रही हैं आप?
0: मैं आपकी रेडियो मित्र श्वेता बोल रही हूँ
1: जी। तो दीदी आपकी बातचीत को देते हैं तो हम लोग भरपूर आनंद भी लेते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद आपने फोन किया इसके लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार,
1: धन्यवाद।

0: जी नमस्ते।
1: नमस्ते दीदी। नमस्ते।
0: कार्यक्रम फोन करे गीत सुनने में स्वागत है आपका। नाम बताएं।
1: मैं सुरान पाल से गुर्जर बोल रहा हूँ।
0: अच्छा जी, तो बताएं कैसे हैं आप?
1: बढ़िया है, अच्छे।
0: आपकी जगह का नाम बताएं।
1: ग्राम बाबूपुरा
0: जी,
1: तहसील को जिला।

0: जी, गोपी का कौन सा गीत?
1: रामचंद्र कहेगा ये सिया से।
0: बड़ा प्यारा सा ये कहले भजन है। क्या करते हैं आप?
1: मैं शिक्षक हूँ। जी
0: जी जी जी, टीचर हैं आप? अच्छा अच्छा, चलिए तो आप रेडियो भी सुनते हैं अपने काम के साथ साथ, ये जानकर हमें खुशी हुई।
1: सुन लेते हैं, समय मिल जाता है।
0: जी, खुशी हुई हमें ये जानकर, और आपने फोन किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।

0: कार्यक्रम फोन करें गीत सुने में स्वागत है आपका।
1: जी नमस्कार मैडम।
0: नमस्कार, अपना नाम बताएं।
1: जी मैं तहसील सेंधवा मध्य प्रदेश से देवावाड़ी ले बोल रहा हूँ।
0: हाँ फिर से नाम बताएं आपका।
1: जी तहसील सेंधवा मध्य प्रदेश से देवावाड़ी ले बोल रहा हूँ।
0: अच्छा जी, तो बताएं क्या करते हैं आप।
1: जी मैं तो दुकान चलाता हूँ मैडम जी।
0: अच्छा, तो साथ साथ रेडियो भी सुनते हैं।
1: बिल्कुल, आपके बेटे बेटे प्रोग्राम सुनता हूँ।

0: आपको कुछ क्या लाभ मिलता है, आपको रेडियो से जानकारी मिलती है?
1: हाँ मिलती है मैडम जी, अच्छी अच्छी जानकारी मिलती है, बढ़िया।
0: और
1: मजा जाता है, क्वालिटी भी अच्छी आती है
0: जी जी। और साथ ही साथ मनोरंजन भी होता है आपका गानों से?
1: मनोरंजन भी होता है मैडम जी।
0: हमें बहुत अच्छा लगा ये जानकर। सुनते हैं आप प्रोग्राम हमारे? कौन कौन से प्रोग्राम सुनते हैं आप या सुन पाते हैं बताएं?
1: ये फोन करेगी सुने और वो आपकी फरमाइश है और जो भी मतलब जो कार्यक्रम आते फिल्मी की तरह सारे प्रोग्राम सुनते हैं मैडम
0: जी। हमें जानकर खुशी हुई।
1: दुकान दिन भर रेडियो चलते रहता है
0: जी जी। हमें जानकर ये खुशी हुई। कौन से फिल्म का गीत सुनना चाहेंगे
1: जी? मुझे गीत सुनना है गायक मुकेश की आवाज है, मुझे फिल्म का नाम मुझे याद नहीं है, पर गीत के बोले जो हो रहे तार मिले नदी के तल जल में।
0: अच्छा,
1: जो हो रहे तार मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कोने के जल में, वही जान लेना।
0: बिल्कुल, बड़ा प्यारा गीत है ये। और एक मूवी का नाम बता दीजिए आप जो आप सुनना चाहते हैं।
1: नाम और बता दूं मैडम जी, वो फिल्म का नाम है अंकुश।
0: अच्छा जी, तो हम चाहेंगे
1: हमें देना दाता।
0: बिल्कुल, हम ये चाहेंगे कि आपकी पसंद का गीत हम आपको जरूर सुनवाएं। आपने फोन किया इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार,
1: धन्यवाद, थैंक यू।

0: तो ये था कार्यक्रम फोन करें गीत सुने, इसी आशा के साथ कि ये मुलाकातों का सिलसिला रहेगा जारी हमेशा। लेकिन अब मुझे दीजिए अनुमति आपके रेडियो मित्र श्वेता की ओर से। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने, ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।

सिंधित्व की खुशबू से सराबोर सिंधी कार्यक्रम सुनना न भूलें प्रत्येक रविवार प्रातः 9:30 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से भारत के सीमावर्ती गांवों से अपना जुड़ाव मजबूत करने का आग्रह किया है। श्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विकसित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए विकसित गांवों को विकसित भारत की नींव बताया। पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न से सम्मानित और प्रख्यात वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आज पुण्यतिथि है। मिसाइल मैन के नाम से विख्यात डॉक्टर कलाम ने देश की रक्षा और अंतरिक्ष अनुसंधान को नई ऊंचाई तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने कहा कि विज्ञान, शिक्षा और राष्ट्र निर्माण में डॉक्टर कलाम का अद्वितीय योगदान अविस्मरणीय रहेगा। गृहमंत्री अमित शाह ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के जवानों और उनके परिवारों को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा है कि सीआरपीएफ ने भारत की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर लड़ाई जीतकर गौरव के अनगिनत मील के पत्थर स्थापित किए हैं। खंडवा में आज नई कृषि उपज मंडी परिसर में बलराम कृषि महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव किसानों से संवाद करेंगे। उज्जैन स्थित विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में आज तड़के प्रसिद्ध फिल्म निर्माता और निर्देशक मधुर भंडारकर ने भगवान महाकाल के दिव्य भस्म आरती में शामिल होकर पूजा अर्चना की। और मौसम विभाग के अनुसार आज भोपाल, इंदौर, उज्जैन सहित बाकी जिलों में कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश जारी रहेगी। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। पेश है आपकी फरमाइश कार्यक्रम। आपकी फरमाइश कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप सभी की फरमाइश लिखने वाले हैं खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति, नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका, नूपुर, ऋषिका और रॉबिन। आइए आप सभी की फरमाइश पे सुनवाते हैं मीरा का मोहन फिल्म से ये नगमा।

आपकी फरमाइश कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं आप सभी की फरमाइश। लिखने वाले हैं खौरी से राम सखी, परमानंद, सौरभ, गौरव, किशोरी बोस, एलबी, रोहित, ललूराम, पूरन, रोहित, छोटू और इनके परिवार के सभी सदस्य। नांदेड़ी से लिखने वाले

हे प्रभाकर और आरती, आप सभी ने सुनना चाहा है नींद हमारी ख्वाब तुम्हारी फिल्म का नगमा। आवाजें अशोक भोसले और मोहम्मद रफी की हैं। गीत है राजेंद्र किशन का, तुस बनाई मदन मोहन ने।

आपकी फरमाइश कार्यक्रम में आइए अब आपको सुनवाते हैं आप सभी की फरमाइश। लिखने वाले हैं इंदौर से अनिल, नेहा, सबीहा, कमल, पूरन, सुषमा और स्मिता। सिंहपुर बंडा से राजेश नेमा, संगीता, भावना और प्राची नेमा। आप सभी ने सुनना चाहा है साथी फिल्म का नगमा, जिसे आवाज़ दी है अनुराधा पौडवाल और साथियों ने नवाब आरजू के बोल हैं और नदीम श्रवण ने इसकी तर्ज बनाई।

बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी और फातिमा खातून अंसारी, पुराना तालाब डुमरा गांव से वसीमुल्ला अंसारी और अस्मा नाज अंसारी, चमन पार्क दिल्ली से डॉक्टर सोनम और डॉक्टर अतिबा, सरीमपुर बक्सर से राज एस डी अंसारी, खातून अंसारी अस्मा और गुलफराज भागलपुरी, इंदौर से लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता, सुनीता, पिंकेश, साक्षी, मनन और तानिया, आप सभी ने सुनना चाहा है फिदा फिल्म का नगमा, आवाज़ें उदित नारायण और

शाजापुर से मनमोहन राजावत, राज मधु राजावत, राशि रक्षित और इनकी परिवार के सदस्य, बटिंडा रोड डबवाली से राजेंद्र नागर, अंजू और मोहित नागर, आप सभी ने सुनना चाहा है लता मंगेशकर और किशोर कुमार के आवाज़ों में हाथी मेरे साथी फिल्म का नगमा, जिसे लिखा है आनंद बख्शी ने और तर्ज बनाई लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: इस गीत के साथ ही आपकी फरमाइश कार्यक्रम संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, कृपया अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।
1: आप सुन रहे हैं मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।
2: एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
3: मेहरबान कदरदान बच्चे बूढ़े और जवान, 100 बात की एक बात है सही, सिर्फ पैसे भेजने के लिए QR स्कैन करते हैं या पिन डालते हैं।

0: पैसे मिलने के लिए नहीं।
1: RBI कहता है QR कोड स्कैन करते समय या पिन डालते समय थोड़ा ध्यान से।
2: युवाओं के जोश, उमंग और ज्ञान से भरे कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण होता है प्रतिदिन शाम 5 बजे,
3: जिसमें होती है नित नई जानकारियाँ, मनोरंजन और ज्ञान की बातें।
2: तो सुनते रहिए मालवा की शान,
4: आकाशवाणी इंदौर।
3: आकाशवाणी इंदौर अब मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है।
5: अरे आप लोगों को मालूम पड़ा कि नहीं?
6: क्या?
5: अब आकाशवाणी इंदौर पूरी दुनिया में सुना जा सकता है।
6: वो कैसे?
5: वो ऐसे कि अब आकाशवाणी इंदौर न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।
6: पर सुनेंगे कैसे?
5: इसके लिए अपने मोबाइल फोन पर जाकर डाउनलोड कीजिए न्यूज ऑन AIR ऐप और लाइव रेडियो में जाकर सुनिए आकाशवाणी इंदौर के कार्यक्रम।
7: तो सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।

0: एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
3: अरे तनिष्का, कहाँ थी इतने दिनों से?
4: अरे राधिका, मैं गई थी कुल्लू मनाली।
3: तो क्या क्या किया कुल्लू मनाली में? मजा आया कि नहीं?
4: अरे काहे का मजा,
3: क्यों, क्या हुआ?
4: अरे मैंने वहाँ आकाशवाणी और विविध भारती इंदौर को बहुत मिस किया।
3: अरे इसमें मिस करने वाली क्या बात है, अब तो आकाशवाणी और विविध भारती इंदौर मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है, तुम्हें नहीं पता?
4: ऐसा क्या, तो अब मैं जब भी बाहर जाऊंगी मोबाइल ऐप के जरिए आकाशवाणी ऐप से जुड़ी रहूंगी।
3: ये हुई ना बात।

0: सवेरा बनारस का,
1: शाम अवध की,
0: वादियां हिमालय की,
1: क्या बात है।
0: और इन सब के साथ शान हो मालवा की,
1: तो यहाँ की सुबह और रातें किसी से कम नहीं।
0: तो सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।

0: आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है कार्यक्रम संग्रहालय से। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम आपको सुनवा रहे हैं कामिनी काय कांतारिक धारावाहिक का 12वां भाग।
1: प्रस्तुत है महेश कटारे द्वारा लिखे उपन्यास कामिनी काय कांतारे की रेडियो नाट्य प्रस्तुति। रूपांतरकार हैं प्रोफेसर प्रकाश दीक्षित और प्रस्तुतकर्ता चित्रेंद्र स्वरूप राजन। आज प्रस्तुत है कामिनी काय कांतारे के रेडियो नाट्य रूपांतरण का 12वां भाग। अब तक आपने सुना कि चंद्रसेन की अवंती में

वैसिका से भेंट होती है। वो उसकी सादगी और बुद्धि से प्रभावित होकर उसे बहन बना लेता है। चंद्रसेन आश्रम जाकर भेषज्ञ त्रिलोचन को वैसिका के बारे में विस्तार से बताता है। अब आगे।

उज्जैनी से लौटा चंद्रसेन कुछ खिन्न था और कुछ प्रसन्न। खिन्न इसीलिए कि ठीक से उज्जैनी का दर्शन नहीं कर पाया। उसने देखा कि राजधानी में कहीं अवकाश ही नहीं है, जिसे देखो वही व्यस्त। कहीं धन पद वैभव के लिए प्रतियोगिता है, तो कहीं पेट को भरने की प्रतिस्पर्धा में मनुष्य नट विट भाट बन गया है। सुरा और सुंदरी का ऐसा निर्बाध विनिमय उसकी कल्पना से बाहर था। महामात्य के व्यवहार से वो प्रसन्न था और वैसिका के बंधु होने से आत्मगर्वित। एक दिन अवसर पाकर चंद्रसेन ने पूछ ही लिया।

0: आर्य त्रिलोचन, एक बात पूछनी है।
1: एक ही क्यों, दो तीन जितनी चाहे पूछिए, पर औषधि शोधन की गति मंद ना पड़े।
0: आपकी मुखाकृति वैशिका दीदी से बहुत साम्य रखती है।
1: कौन वैशिका?
0: बताया तो था आपको, वही जिन्हें मैंने उज्जैनी में अपनी दीदी माना है।
1: ओ हाँ, बताया तो था तुमने।
0: वे औचक मेरा मुंह देखती रहीं और फिर पूछा, तुम्हारे भेषज्ञ क्या दक्षिणत्य हैं?
1: फिर तुमने क्या कहा?
0: मैंने कहा, हमारे आश्रम में कोई किसी की कुल जाति आदि नहीं पूछता, इसलिए मैं नहीं जानता। किंतु उन्होंने आग्रह किया कि आपसे पूछूं कि क्या आप दक्षिण देश से हैं और कलाधर हैं? यदि वे भी हैं तो क्या आपके बाएं कपोल पर किसी घाव का चिन्ह है? अरे आर्य, आपको क्या हुआ? आप स्वस्थ तो है ना आचार्य?
2: चंद्रसेन,
0: आचार्य
2: तुम्हारी दीदी की वह क्या होगी?
0: आश्चर्य आचार्य, वैशिका दीदी ने भी आपकी वय पूछी थी। निश्चित तो नहीं, 25 बरस के आसपास होगी।
2: चंद्रसेन,
0: आचार्य
2: मुझे तुरंत उज्जैनी जाना होगा।
0: आचार्य क्यों? आचार्य
2: मुझे लग रहा है कि तुम्हारी वैशिका दीदी ही मेरी सत्या दीदी है।
0: आचार्य ऐसा क्यों लग रहा है आपको?
2: देखो, मेरे बाएं कपोल पर क्षत का चिन्ह है।
0: अरे हाँ,
2: दीदी के साथ खेलते हुए एक वृक्ष के सूखी टहनी से मेरा कपोल छिल गया था।
0: अच्छा,
2: चिन्ह रह गया।
0: हाँ,
2: मैं दक्षिणत्य हूँ।
0: अरे,
2: कलापरी की कोख से जन्म लिया है मैंने। हाँ। और गोदावरी की जल यात्रा में मेरा सब कुछ छिन गया था।
0: क्या वैशिका दीदी ने ये सब क्यों पूछा?
2: गोदावरी में हमारी नाव पर दस्यु आक्रमण हुआ था, हमारे सेवकों की हत्या करके दस्यु ने मां की हत्या कर दी। मुझे गोदावरी में धकेल कर उन नौका का अपहरण करके ले गए। मैंने उन गिद्धों को मां की मृत देह से आभूषण नोचते देखा है। मुझसे हतभागा कौन होगा? उस नौका पर मेरी सत्या दीदी थी। जाने क्यों लगता है कि तुम्हारी वैशिका दीदी मेरी सत्या दीदी है। मैं घड़ी दो घड़ी में निकलता हूँ चंद्र।
0: आचार्य मैं भी आपके साथ चलूंगा, मुझे वहां कई लोग पहचानते हैं। महामात्य, वैशिका दीदी, देवी वसुंधरा और स्यात महादेवी पिंगला भी। आपकी भेंट सुगम हो सकेगी।
1: नहीं, यह तुम्हारे बिना सब कार्य रुक जाएगा।
0: लेकिन आचार्य,
1: मेरे पीछे तुम औषधि वितरण और सामान्य उपचार का दायित्व देखते रहना, मैं निकलता हूँ।
0: ठीक है आचार्य।

0: आचार्य त्रिलोचन उज्जैनी पहुंचते हैं। वो सीधे महालय पहुंचते हैं और प्रहरी को परिचय देते हैं।
1: मेरा नाम त्रिलोचन है, सेवाश्रम का भेषज्ञ हूँ। 3 सप्ताह पहले मेरे सहयोगी चंद्रसेन यहाँ अश्व नीलमणि को लेकर आए थे। मुझे देवी वैशिका से भेंट करनी है।
2: मान्यवर, राजमहालय में प्रवेश केवल महामात्य के अनुमति पत्र से ही संभव है। हम विवश हैं कि आपको प्रवेश नहीं दे पाएंगे। यूं सूचना थे कि वैशिका देवी कल ही महादेवी के संग किसी यात्रा पर जा चुकी हैं।
1: कब तक लौटेंगी?
2: महादेवी के यात्रा कार्यक्रमों की जानकारी अमात्यों और आस्पदों को भी नहीं होती, और हम ठहरे साधारण सेवक। वह आज भी लौट सकती हैं और कल भी, या अठवारे पखवारे में भी। सब अनिश्चित है।
1: पर कहां से जानकारी मिलेगी?
2: मान्यवर, हमें क्षमा करें।
1: अच्छा, ये तो बता सकेंगे कि यहाँ एक चिकित्सक मृगांक दत्त रहते हैं। मेरे सहपाठी हैं, आप उनके आवास आदि की जानकारी दे सकेंगे?
2: जी जी, अवश्य मान्यवर। श्रीमान मृगांक दत्त उज्जैनी के सुविख्यात चिकित्सक हैं। आप यहाँ से निकलकर दक्षिणी मार्ग लें, आगे एक त्रिपथ आएगा, वहां बाएं मुड़कर चलें। कुछ ही दूरी पर उनका आवास और चिकित्सालय है। आप किसी से भी पूछ लें, धन्वंतरी कुंज।
1: सचमुच दर्शनीय है ये महानगरी। कनक श्रृंगा उज्जैनी, वैभव और ऐश्वर्य तो सर्वत्र बिखरा पड़ा है, किंतु संभवतः यह वास्तविक चित्र ना भी हो, कुछ ऐसा हो जो अदृश्य है। किसी ने कहा भी है कि हर वैभव के नीचे कोई हाहाकार दबा होता है। त्रिपथ पर चलते चलते पर्याप्त देर हुई। किसी से पूछ तो लूं कि विख्यात चिकित्सक मृगांक दत्त कहां निवास करते हैं।
3: अरे बंधु ठहरिए।
4: जी मैं,
3: हाँ, यहाँ धन्वंतरी कुंज किस और है?
4: धन्वंतरी कुंज अर्थात चिकित्सक महाशय का आवास।
3: हाँ हाँ, वही भेषज्ञ मृगांक दत्त रहते हैं वहाँ।
4: किंतु आप तो स्वस्थ दिखाई दे रहे हैं।
3: बंधु, मैंने आपसे मार्ग की जानकारी चाहिए।
4: आप तो बुरा मान गए। क्षमा करें, मैंने तो इसलिए पूछा था कि यदि आप औषधि या उपचार के लिए जा रहे हैं तो आपका जाना व्यर्थ होगा, क्योंकि धन्वंतरी कुंज में केवल श्रेष्ठियों और श्रीमंतों के उपचार का स्थान है।
3: तो मृगांक दत्त निर्धन वंचितों का उपचार नहीं करते?
4: अरे निर्धन वहां पहुंचेगा ही क्यों, उनका उपचार इतना व्यय साध्य है कि श्रमिक और कृषक उपचार के स्थान पर मृत्यु को वरण्य मान लेते हैं। अरे नहीं नहीं, भ्रम में ना पड़िएगा। और भ्रम में पड़े भी क्यों ना आप, बाहर से आए प्रतीत होते हैं। अरे राजधानी में भ्रम ना पाले जाए तो उसे राजधानी कौन कहेगा? और मुझे क्या करना, 4 आवाज छोड़कर सीधे चले जाइए, धन्वंतरी के कुंज में पहुंच जाएंगे। भीड़ होगी वहां, रथों और शिविकाओं का रोगग्रस्त संकुल पहचान लेंगे आप।
3: लगता है बंधु तुम किसी कारणवश मृगांक से रुष्ट हो। कुछ बातें रोचक हैं तुम्हारी।

0: और अपना क्रमांक अंकित करवाना।
1: उपचार के लिए नहीं, भेंट के लिए आया हूं। सहपाठी मित्र हूं मृगांक का।
0: अन्यथा ना ले महोदय, मैं तो आज्ञा पालक अनुचर मात्र हूं। स्वामी के अनुमति के बिना प्रवेश संभव नहीं है यहाँ।
1: और अनुमति कौन देगा? इन प्रवेश करने वाले लोगों को तुम रोक नहीं रहे, इनका ऐश्वर्य तुम्हारे कर्तव्य पालन में बाधक है, यही बात है ना? अस तुम मेरे आने की सूचना मृगांक को जाकर दो, या मैं वैसे ही प्रवेश करूं, तुम मुझे रोक ना पाओगे बंधु। हाँ, यदि मृगांक मिलना ना चाहे तो अलग बात है।
0: देव आप इस कक्ष में जाकर विश्राम करें, मैं उनको खबर देता हूं।
2: त्रिलोचन अंदर कक्ष में जाकर ऊंचे स्वर में पूछते हैं,
1: श्रीमान मृगांक कहाँ है?
3: अरे दुष्ट त्रिलोचन, वर्षों से अता पता नहीं, आज आकाश से टपक पड़े अचानक। मैंने तो सोचा था कि कोई यक्षिणी तुम्हें उठाकर ले गई है। इधर बैठ शुभंकर
0: जी।
3: तुम अतिथि कक्ष की व्यवस्था करो और बाकी के रोगियों को देख लो, मैं अब अवकाश लूंगा
0: जी।
3: मेरा बिछड़ा हुआ मित्र युगों बाद मुझे मिला है।

0: त्रिलोचन, तुम आए हो तो कुछ दिन रुको भी। वैसे भी मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, चाहे मुझे बल प्रयोगी क्यों ना करना पड़े। तुम्हारे अपशब्द तो मेरे लिए नए नहीं है, और फिर तुम तो जानते ही हो कि मैं उतना ही नैतिक हूँ जितना आवरण के लिए आवश्यक है।
1: जानता हूँ।
0: बहुत समय से प्रतीक्षा थी कि स्मृतियों के पृष्ठ उलटू और खोजू कि कहाँ है मृगांक।
1: यह तुम कह रहे हो मृगांक? आश्चर्य है, तुमने तो 2 वर्षों की अवधि में ही ये सब वैभव, इतना सम्मान पा लिया है। तुम परम सुखी हो, तुम्हें कैसा क्लेश?
0: सभी बातें होंगी मित्र, तुम यहाँ कुछ दिन रुक जाओ बस। मेरे लिए तुम्हारी आंखों में जो विरक्ति, जो व्यंग है, उसके संग थोड़ी सी प्रतीति मुझे मिल जाए। तुम मेरे अनन्य और एकमात्र मित्र हो त्रिलोचन, सहपाठी। संसार में हमने साथ साथ अनुभव के गवाक्ष खोले थे, क्या तुम्हें स्मरण नहीं है? अच्छा ये तो बताओ कि उज्जैनी आने का तुम्हारा हेतु क्या है? इतना तो मैं जानता हूँ कि महाकाल के दर्शन करने तो तुम आए नहीं, और मेरे आवास तक पहुँचने की कृपा की तो वो भी मैत्री की उमंग में नहीं हुई होगी। फिर भी तुम जो चाहो, भ्रमण, वास, विलास या मेरा उपहास, करते रहना स्वतंत्रता पूर्वक। यहाँ रहोगे तो देखोगे कि जीवन से मैंने बंधना तो सीख लिया है, तथापि मैं नीच नहीं हुआ हूँ।
1: निश्चय ही तुम्हारे पास आने में मेरा स्वार्थ है मृगांक। स्वार्थ ना होता तो उज्जैनी आता ही क्यों? आकर भी संभव है कि तुमसे मिले बिना लौट जाता, पर यह मिलन भी अच्छा ही रहा। तुम्हारी जो छवि मेरे मन में बनी थी वो इस मिलन के बाद कुछ कुछ टूट रही है।
0: छवि तो एक मुखौटा है मित्र, मैं तुम्हें केवल ये दिखाना चाहता हूँ कि अवंतिका राज्य धर्म और व्यापार का केंद्र है। तीनों यहाँ अपने उत्कृष्ट और निकृष्ट स्तर पर विद्यमान है। यहाँ निकृष्ट को परिष्कृत करके उत्कृष्ट के समकक्ष खड़े कर देना ही कौशल समझा जाता है, जिसके लिए असत्य का आश्रय लेना ही पड़ता है मित्र। इसलिए अनित्य, असत्य, सत्याभास यहाँ के प्रभु वर्ग की जीवन शैली में आ गए हैं। महाकाल का घंटा और भी वेग से बजता है, प्रार्थना के स्वर ऊंचे और ऊंचे होते जाते हैं। ये अवंतिका है मित्र। लेकिन तुम्हारे लिए आश्रम ही उचित स्थान है, तुम्हें सही स्थान पर ले जाकर पटका है देव ने कि पट्टियां बदलते रहो और कुष्ठ रोगियों, उन्मादियों, लूले लगनों का उपचार करते रहो।
1: देखूंगा, तुम्हारी उज्जैनी भी देखूंगा। सांध कर्म से निवृत्त हो लूं, फिर जहां ले चलोगे मैं चलूंगा। अपने आने का हेतु भी तो तुम्हें बताना है।

0: जैनी की वीथियों में रथ पर सवार होकर घूम रहे हैं।
1: हम जा कहां रहे हैं मृगांक?
2: आए हो तो जैनी का दर्शन भी कर लो मित्र, प्रारंभ महाकाल से।
1: आज स्नान नहीं कर पाया हूँ, वस्त्र भी मलिन है, शुचिता का ध्यान भी तो रखना होगा।
2: फिर शिप्रा के इन घाटों की शोभा देखो मित्र, देखो तटवर्ती स्तंभ दीप जल में यूं प्रतिबिंबित हो रहे हैं जैसे एक समानांतर उच्च से आलोक प्रस्फुटित हो रहा हो। कितनी सुंदरियां दीप दान के लिए यहाँ पर पंक्ति वक्त खड़ी है, पता नहीं चलता कि दीप की दीप्ति उनके मुख पर है अथवा मुख से ही दीप्ति प्रकट हो रही है। ये उज्जैनी के श्रीमानों का घाट है, अभी कुछ देर में यहाँ रसिक समूह एकत्र होंगे, सुंदरियों में अपनी प्रेसी की कल्पना करेंगे और उन पर प्रणय पुष्प लीचेंगे। ये अवंती के शरदोत्सव का पूर्वाभ्यास है मित्र।
1: सचमुच मन भावन है ये दृश्य, किंतु मुझे सेवा आश्रम की स्मृति हो रही, वहां निर्धन अपन अशक्त रोगियों को छोड़कर आया हूँ, अधिक समय नहीं रुक पाऊंगा तुम्हारी इस अवंती में।

0: मैंने तुम्हें कहा था अवंती केंद्रीय नगर है, राज वाणिक और धर्म तीनों का केंद्र, किंतु समय नहीं है किसी के पास त्रिलोचन। सब कुछ है, समय नहीं। तुम जिससे भेंट करना चाहो वह अपनी व्यस्तता के कारण उपलब्ध नहीं होता। यहाँ अपना समय साथ रखना होता है मित्र, अवसर की प्रतीक्षा करनी होती है। महामात और महाभोग की नगरी है, यहाँ महाकाल हैं, यहाँ महामाया भी हैं, महाराज महारानी महामात्य महास्पद यही हैं, महासेन महाबलाधिकृत महाश्रेष्ठी महापंडित महानायिका और महाधूर्त और महालंपट भी, इनसे महानगर उज्जैनी की संरचना होती है मित्र। लो अब हम तुम्हारी उज्जैनी नगरी में पहुंच गए।
1: उनका रथ अब श्रमिक वर्ग की नगरी से निकल रहा होता है।
0: सखा त्रिलोचन, ये भी उज्जैनी है किंतु ये कनक श्रृंगा नहीं है। यहाँ अनुचर किंकर दास कुलेक और हस्तिका बसते हैं। नदी तट पर जलते हुए चूल्हों की उठती हुई आग को देखते हो? वहाँ भुने हुए मांस की गंध से कुछ सुनने का प्रयास करो। अनेक कहानियां तुम सुन सकोगे। इस गंध में पसीना भी है और विवशता भी। मद की गंध और पथ के इधर उधर ग्राहक के साथ विनिमय के लिए प्रस्तुत रूप जीवाओं का सौंदर्य भी, यदि तुम उन्हें सुंदर कह सको तो।
2: ये मुझे कहां ले आए मृगांक? यहां तो सांस लेने में भी कष्ट है, ये तो नरक है नरक।
0: मित्र, इसी नरक से चलकर मैं उस धनवंतरी कुंज तक पहुंचा हूँ। और त्रिलोचन, यहां मैं अब कभी वापस नहीं लौटना चाहता।

0: त्रिलोचन, राजधानी के दोनों चेहरे तुमने देख लिए, अब कहाँ चले बताओ?
1: आवासी लोग चले, मुझे और कुछ देखने की रुचि नहीं रही है। मृगान, तुम्हारा आना जाना राजप्रासाद में तो होता ही होगा।
0: हाँ, उत्सवों आयोजनों के अवसर पर मिलता रहता है, चिकित्सा के लिए जाने का अवसर कभी नहीं मिला।
1: अच्छा, मुझे ये ज्ञात करके बताओ कि महारानी पिंगला कहाँ गई हैं और वो कब तक लौटेंगी?
0: ओ, महारानी से भेंट करना है, सीधी छलांग लगा रहे हो मित्र। वैसे मैंने सुना है कि महाराज भर्तृहरि कहीं अज्ञातवास पर है और महारानी भी वहीं चली गई हैं। ज्ञात करने में कुछ समय तो लगेगा। मेरी एक रोगिणी है जिसका आना जाना अंतापुर में है, सुनते हैं कि वो महारानी के साथ चौसर खेलती है।
1: तो कल तक ज्ञात कर सकोगे? मैं यहाँ रुकना नहीं चाहता, परंतु इस संबंध में जानकारी मेरे लिए तुरंत आवश्यक है।
0: कब तक ठहर सकते हो मित्र?
1: सूचना मिल जाने तक, किंतु 2-4 दिन बस।
0: मैं कल प्रयास करता हूँ महादेवी के संबंध में जानकारी जुटाने का। पूछा इसलिए कि राजा और राज परिवार के आसपास सया से एक रहस्य का वातावरण बुन दिया जाता है। सामान्य चीजें भी रहस्य में लपेट दी जाती हैं और अत्यंत गोपनीय विषय जानबूझकर प्रचारित किए जाते हैं। वैसे सुना है अवंती राज परिवार के रहस्य ठीक ठीक बस 3 ही व्यक्ति जानते हैं।
1: कौन है वो?
0: महामात्य पूर्णरथ, अंतेवास का कंचुकी प्रमुख और पिछले वर्ष से चर्चा में आई एक दासी। कहा जाता है कि अत्यंत तीक्ष्ण बुद्धि की है वो। राजा भर्तृहरि, रानी प्रिंगला और महामात उसकी सलाह का सम्मान करते हैं। उस दासी का नाम है वयसिका।
1: तुमने वयसिका को देखा है मृगांक?
0: सार्वजनिक उत्सवों में दासियों को प्रायः अलग ही रखा जाता है। मैंने उसके कारण पर बहुत सोचा और मुझे लगता है कि कुछ दासियां अपनी स्वामिनियों से अधिक सुदर्शना और सुसंस्कृत होती हैं। अहम टूटता होगा उनका। वैसे मित्र, मैंने दूर से वयस्का को देखा है, सुंदर है, वय भी कम है। मेरा आशा है अपनी स्वामिनी महारानी पिंगला से।
1: तुम मुझे वयस्का से ही मिलवा दो मृगांक।
0: हाँ, ये अपेक्षाकृत सुगम होगा। लेकिन मित्र, मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि तुम क्यों मिलना चाहते हो महारानी से या वयसिका से। तुमने मुझे कोई कारण भी नहीं बताया। अच्छा ठीक है, मैं नहीं पूछूंगा।

दूसरे दिन मृगांक को ये सूचना मिल गई कि महारानी पिंगला किसी बड़े अनुष्ठान के लिए गुप्तवास में है। वैसिका भी उनके साथ ही गई है। वो दोनों कहाँ हैं ये बात चंपा भी नहीं जानती। केवल महामात्य पूर्ण रथ को उसका अनुमान है और राजा भर्तृहरि भी राजधानी में नहीं है। संभवतः वो भी अज्ञातवास पर कहीं निकल गए हैं।

अभी आप महेश कटारे द्वारा लिखे उपन्यास कामिनी काय कांतारे की रेडियो नाट्य प्रस्तुति का 12वां भाग सुन रहे थे। रूपांतरकार थे प्रोफेसर प्रकाश दीक्षित। कलाकारों का भूमिका सहित परिचय इस प्रकार है: सूत्रधार चेतना भारद्वाज, चंद्रसेन बद्रवास्ती, त्रिलोचन उबैदुल्ला खां, प्रहरी मनोज राजानी, व्यक्ति भागीरथ साहू, द्वारपाल वकार हुसैन और मृगांक बालेंद्र सिंह, परिकल्पना पंडित रामस्वरूप रतौनिया, संयोजक राकेश ढौंडियाल और प्रस्तुतकर्ता चित्रेंद्र स्वरूप राजन।

आपको याद होगा कि राजा महालय से निकल जाते हैं। रानी पिंगला को राजगुरु देवश्री ध्यान लगाकर बताते हैं कि राजा दक्षिण दिशा में है, वाहन और अस्त्र के बिना। व्यथित होकर रानी पिंगला राजा की वापसी के लिए कठिन अनुष्ठान का निर्णय करती है। इस प्रसंग से हम अगले भाग में परिचय प्राप्त करेंगे।

0: कामिनी काय कांतारे, इसकी 12वीं कड़ी का प्रसारण अभी आपने सुना संग्रहालय से के अंतर्गत। ये प्रसारण आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। दोपहर के 12:58 होने जा रहे हैं। अब सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: राष्ट्रपति भारत रत्न से सम्मानित और प्रख्यात वैज्ञानिक डॉ एपीजे अब्दुल कलाम की आज पुण्यतिथि है। मिसाइल मैन के नाम से विख्यात डॉ कलाम ने देश के रक्षा और अंतरिक्ष अनुसंधान को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से भारत के सीमावर्ती गांवों से अपना जुड़ाव मजबूत करने का आग्रह किया है। श्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विकसित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए विकसित गांवों को विकसित भारत की नींव बताया। सरकार आज लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश कर रही है। यह विधेयक लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन के लिए लाया गया है। प्रदेश की ई प्रवेश प्रणाली ने उच्च शिक्षा में प्रवेश का नया रिकॉर्ड बनाया। 24 जुलाई तक प्रदेश के कॉलेजों में करीब 4,80,000 विद्यार्थियों ने प्रवेश ले लिया है, जो पिछले 4 वर्षों में सबसे ज्यादा है। दतिया विधानसभा उपचुनाव से पहले चुनाव आयोग के निर्देश पर पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल किया गया है। पुलिस मुख्यालय ने चंबल ग्वालियर अंचल में तैनात 14 निरीक्षक और उप निरीक्षकों को हटाकर नई पदस्थापना के आदेश जारी किए हैं। और मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों में उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, डिंडौरी, मंडला और बालाघाट में भारी बारिश हो सकती है। भोपाल, इंदौर, उज्जैन सहित बाकी जिलों में कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश जारी रहेगी। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। दोपहर के 1 बज चुके हैं। अब प्रस्तुत है स्वास्थ्य दर्पण। ये कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति है।

स्वागत है हमारे सभी श्रोताओं का स्वास्थ्य विशेष कार्यक्रम स्वास्थ्य दर्पण में। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त नेहा जैन। आप सभी को मेरा प्यार भरा अभिवादन, नमस्कार। श्रोताओं, आज की भागदौड़ भरी दुनिया में जिंदगी बदल रही है, जिससे हमारी आदतें बदल रही हैं और साथ ही बदल रहा है हमारा जीने का तरीका। श्रोताओं, आज हमारी हथेली में मौजूद एक छोटी सी स्क्रीन हमें पूरी दुनिया से जोड़ती है। हम ज्ञान भी वहां लेते हैं, काम भी करते हैं, मनोरंजन भी वहीं ढूंढते हैं और अपनों से भी जुड़ते हैं वहीं। लेकिन श्रोताओं, सुविधा और आवश्यकता के बीच ये स्क्रीन अनजाने में हमसे बहुत कुछ छीन भी रही है। ये हमारी सेहत पर भारी पड़ रही है। श्रोताओं, आज का समय तकनीक से दूरी बनाने का नहीं, बल्कि उसके साथ संतुलन बनाने का है, क्योंकि जब तकनीक समझदारी के साथ अपनाई जाती है, तभी वह जीवन को बेहतर बनाती है। यदि तकनीक का असंतुलित उपयोग किया जाए तो इससे कई समस्याएं होती हैं। श्रोताओं, लंबे समय तक मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप पर लगातार स्क्रीन देखने से आंखों में जलन, सूखापन, धुंधलापन, सिर दर्द, गर्दन और कमर में दर्द की समस्याएं हो सकती हैं। कई लोग तो रात में भी देर तक स्क्रीन देखते रहते हैं, जिससे शरीर का प्राकृतिक नींद का चक्र प्रभावित होता है। इसका असर मानसिक स्वास्थ्य, एकाग्रता, याददाश्त और कार्य क्षमता पर भी पड़ता है। श्रोताओं, इन सब परेशानियों से बचने के लिए हमें छोटी छोटी आदतों को अपनाना चाहिए, जिससे हमारी दिनचर्या को अधिक संतुलित, स्वस्थ और ऊर्जावान हम बना सकते हैं। लगातार स्क्रीन देखने के बजाय हर 20 मिनट में लगभग 20 सेकंड के लिए 20 फीट दूर किसी वस्तु को देखें। स्क्रीन की ब्राइटनेस और कमरे की रोशनी को संतुलित रखें। मोबाइल, कंप्यूटर का उपयोग करते समय सही पोस्चर में बैठें। गर्दन को झुकाकर लंबे समय तक स्क्रीन का उपयोग ना करें। यदि आपका काम लंबे समय तक स्क्रीन पर होता है तो बीच बीच में उठकर थोड़ा टहले, शरीर को स्ट्रेच करें और पर्याप्त मात्रा में पानी भी पीते रहें। सोने से एक घंटे पहले स्क्रीन का उपयोग ना करें और सबसे जरूरी, जब परिवार के साथ हो, भोजन कर रहे हो या किसी से बात कर रहे हो, तब भी मोबाइल का उपयोग ना करें। यानी जब स्क्रीन की जरूरत हो तभी उसका उपयोग करें और हर दिन कुछ समय बिना स्क्रीन के भी अपने लिए निकालें। श्रोताओं, जिंदगी सिर्फ स्क्रीन के साथ नहीं, उसके बाद भी बेहद खूबसूरत है। कभी अपनों के साथ खुलकर हंसिए, कभी उगते सूरज को देखें, कभी पेड़ों की छांव में कुछ पल बिताएं और बिना किसी नोटिफिकेशन के अपनी दिल की धड़कनों को महसूस करिए।

0: श्रोता आप सुन रहे हैं कार्यक्रम स्वास्थ्य दर्पण। श्रोताओं, बारिश का मौसम अपने साथ ठंडक और ताजगी तो लेकर आता है, लेकिन इसी मौसम में हमारी त्वचा और बालों को सबसे अधिक देखभाल की भी आवश्यकता होती है। तो किस तरह हम अपनी त्वचा और बालों की देखभाल करें, इस विषय पर आपको जानकारी दे रही हैं डॉक्टर पूर्वा शारदा और इनसे बातचीत की है महक गुप्ता ने।
1: नमस्ते मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम स्वास्थ्य दर्पण में। क्योंकि बारिश का मौसम चल रहा है, हम आपसे पूछना चाहेंगे कि इस वक्त आपके ओपीडी में ज्यादातर मरीज किन बीमारियों के आपको देखने मिलते हैं?
2: क्योंकि अभी बारिश का मौसम चल रहा है तो सबसे ज्यादा मरीज जो मेरे पास इस समय मेरी ओपीडी में आ रहे हैं, वो पहले तो फंगल इन्फेक्शन जिसको दांत खाज खुजली बोलते हैं, दूसरा बालों के झड़ने से रिलेटेड जितनी समस्याएं हैं, और तीसरा बिकॉज स्वेटिंग ज्यादा होती है, पसीना ज्यादा आता है, तो इसकी वजह से एक्ने के पेशेंट्स या पिंपल के पेशेंट्स भी अभी फिलहाल काफी ज्यादा है ओपीडी में।
1: आपने जैसे दांत खाज खुजली के पेशेंट्स बोले, तो ये किन वजहों से होते हैं ये बीमारियाँ?
2: दांत खाज खुजली पसीने की बीमारी है। अगर पसीना आप समय समय से अपने शरीर से हटा रहे हैं, या आप सूती के कपड़े पहन रहे हैं, या आप लूज कपड़े पहन रहे हैं, बहुत टाइट कपड़े जैसे कि जीन्स वगैरह है वो नहीं पहन रहे हैं, तो दांत की समस्या आपको नहीं होगी, है ना। बट अगर वही आपने टाइट कपड़े पहनने चालू कर दिए, आप बिल्कुल कुछ पाउडर नहीं लगाते हैं, आपका काम ही ऐसा है जिसमें आपको ज्यादा पसीना आता है, तो फिर दांत की समस्या होना बहुत ही निश्चित है
1: जी। तो इन बीमारियों से जैसा आपने बताया कि हम ढीले कपड़े पहन के, सूती कपड़े पहन के बच सकते हैं, सफाई बरकरार रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके अलावा मैम आपने बताया कि पिंपल्स की समस्या, एक्ने की समस्या बहुत ज्यादा आती है, फुंसी फोड़े ये बहुत ज्यादा होते हैं बारिश के मौसम में, क्या इनका भी यही कारण है?
2: हाँ, मतलब जो ग्लैंड होते हैं वो तो सेम ही होते हैं, ऑयल ग्लैंड और स्वेट ग्लैंड, जिससे अपने आप शरीर में तेल निकलता है जिसकी वजह से या तो पसीना निकलता है, तो बारिश के समय में इनका ब्लॉकेज हो जाता है, तो ज्यादा तेल या ज्यादा पसीना निकलने की वजह से पिंपल भी काफी ज्यादा देखने को मिलता है अभी फिलहाल ओपीडी में
1: जी। क्या प्रिकॉशंस हम ले सकते हैं, किन बातों का हम ध्यान रख सकते हैं कि ये बीमारियां हमें ना हो?
2: जो दांत खाज खुजली होती है, फंगल इन्फेक्शन, सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बोलना चाहूंगी कि सबसे पहले ये जो मौसम होते हैं, गर्मी का मौसम और सबसे स्पेसिफिकली ये जो बारिश का मौसम होता है, बिल्कुल सूती के कपड़े ही पहने, ढीले ढीले कपड़े पहने, जीन्स वगैरह इस मौसम में बिल्कुल भी ना पहने। दूसरा, अंडरगार्मेंट्स जो पहनते हैं वो भी बिल्कुल लूज फिटिंग के पहने। तीसरा, किसी प्रकार का एंटीपर्स्पिरेंट या तो डिओड्रेंट या तो सबसे जो बेस्ट होता है किसी भी प्रकार का कोई भी एक पाउडर लगाएं। सुबह तो सब नहाते ही हैं, बट एक बार रात में सोने से पहले अपने शरीर पे जितना भी पसीना होता है, जितनी गंदगी होती है, मुझे लगता है सबसे अच्छा तरीका होता है कि फंगल इन्फेक्शन ना हो इस मौसम में, तो स्पेसिफिकली रात में नहाना ही चाहिए एक बार रात में सोने से पहले। तो मुझे लगता है इसके अलावा कोई एंटी फंगल सोप या किसी प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं है, बस आपको साफ सफाई रखनी है, अपने जो तकिए की खोली आप उसको भी साफ रखें, कपड़ों को भले ही बारिश का मौसम हो बट कोशिश करें कि वही पुराने कपड़े वापस ना पहने, साफ सुथरे कपड़े पहने
1: जी। इसके अलावा इस मौसम में क्या मैम बालों की झड़ने की समस्या भी बढ़ जाती है?
2: डेफिनेटली बढ़ जाती है बालों की समस्या, मतलब यही मौसम होता है जब मुझे लगता है सबको लगता है कि हमारे बाल झड़ जाएंगे, मानसून जाता है, बारिश आती है, बाल झड़ने लगते हैं। हमारे जो बालों का स्ट्रक्चर है उसमें ऐसा होता है कि अगर पानी हमारे बालों पे बहुत देर तक पड़ा रहता है तो हमारे बालों के अंदर किसी प्रकार के ना पोर्स होते हैं, जिसकी वजह से पानी बालों के अंदर चला जाता है, उसकी वजह से जो बलूनिंग हो जाती है बालों की, थोड़ा सा स्वेलिंग हो जाती है बालों में, तो अगर किसी भी चीज में स्वेलिंग हो जाएगी तो वो उसके ब्रेक होने की ज्यादा संभावना होती है। तो मैं सारे पेशेंट्स को यही बोलती हूँ जिनको भी हेयर फॉल की समस्या स्पेसिफिकली मॉनसून के वेदर में होती है, अगर कोई दूसरा न्यूट्रिशनल कॉज ना हो कि खून में कोई इसी प्रकार की कोई समस्या ना हो, तो मैं अगर सिर्फ मॉनसून से रिलेटेड होता है, मैं बोलती हूँ कि मॉनसून में पहली बात तो बाल सबसे पहले तो धोना चाहिए, ऐसा नहीं कि बाल नहीं धो रहे हो, हर दूसरे दिन बाल धो। अगर बारिश के मौसम में अगर आपने बाल धोए हैं या बारिश में भीगने की वजह से आपके बाल गीले हो गए हैं, तो बाल पहली बात तो गीले कभी भी नहीं रखने हैं। आप घर जब भी पहुंचे या आप ऑफिस पहुंचे, आप एक जो सॉफ्ट वाले टॉवल्स आते हैं, जो फाइबर वाले टॉवल्स आते हैं, उससे पहली बात तो बाल अच्छे से सुखाएं। और जो ड्रायर होता है, ड्रायर में दो मोड होते हैं, तो एक हॉट हीट आती है या कोल्ड आती है, कोल्ड पे रख के मुझे लगता है सबको सुखा लेना चाहिए
1: जी,
2: है ना, ताकि अगर बाल सूखे रहेंगे तो फिर उसमें बलूनिंग नहीं होगी, बालों में स्वेलिंग नहीं होगी।

0: और उसकी वजह से बाल ब्रेक नहीं होंगे और आपके बाल बचे रहेंगे।
1: जी मैम, एक और चीज़ हम आपसे पूछना चाहेंगे कि सिर्फ टीनेजर्स में ही नहीं, हर उम्र के लोगों को अलग अलग समस्याओं का सामना करना पड़ता है अगर हम स्किन की या बालों की बात करें तो, तो आपके पास कोई सुझाव है हर उम्र के लोगों के लिए?
0: ओवरऑल सबको मैं बात करूँ तो मुझे लगता है आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि आपका स्किन का टाइप क्या है, है ना। स्किन का टाइप डिफाइन हो जाता है जब आप टीनेजर से आप स्टार्ट करते हो, कि किसी का ऑयली स्किन होता है, मतलब ज्यादा तेल वाला स्किन होता है, या किसी का बहुत ही रूखा स्किन होता है, बहुत ड्राई स्किन होता है, या कभी कभी पेशेंट होते हैं कुछ भी लगाने से स्किन सेंसिटिव टाइप होता है, या कभी कभी पेशेंट्स का स्किन टाइप कॉम्बिनेशन होता है, मतलब कहीं से ड्राई कहीं से ऑयली। तो पहले तो जानकारी पता होना चाहिए कि अपना स्किन का टाइप क्या है। जब स्किन का टाइप आपको पता है उसके बाद आपको, मुझे लगता है दो चीजें तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक सबसे पहली चीज तो एक अच्छा मॉइस्चराइजर जो आपके स्किन के अकॉर्डिंग हो, और दूसरा सनस्क्रीन, है ना। सनस्क्रीन भी ऐसा नहीं कि कोई भी सनस्क्रीन, सनस्क्रीन में भी बहुत प्रकार की वैरायटी आती है। मैं बोलूंगी कोई भी एक डॉक्टर रिकमेंडेड जो सनस्क्रीन होता है ना, क्योंकि उसमें पता है कि भाई अगर SPF 30 है तो SPF 30 ही है, ना कि 5 और 6। तो मुझे लगता है ये दो चीज तो सबको लगानी ही चाहिए, चाहे बच्चे हो चाहे प्रेग्नेंट हो, चाहे, मुझे लगता है आज डॉक्टर की सलाह लेके आप ये दो चीजें तो मुझे लगता है हर इंसान को लगानी चाहिए। इसके बाद एक अच्छा फेस वॉश होना चाहिए। फेस वॉश का मतलब ये नहीं होता कि अगेन कुछ भी आप इस्तेमाल कर रहे हो। अगर आपका ड्राई स्किन है उसके लिए अलग आता है, ऑयली स्किन के लिए अलग आता है, ताकि अपनी जो त्वचा है उससे अच्छी तरीके से क्लीन हो और बहुत ज्यादा रूखी भी ना हो। तो ये बेसिक चीजें हैं। फिर आप धीरे धीरे मूव करते जाइए कि अगर कोई बच्चा है उसको एक्ने है तो उसको पता होना चाहिए उसको अपने चेहरे पे क्या लगाना है। कोई अगर लड़की है और उसको पिगमेंटेशन की समस्या है, या उसको ऐसा लगता है टैनिंग की समस्या है, तो उसको पता होना चाहिए वो अपने स्किन पे कुछ एक चीज जो अपने चेहरे पे लगा सकती है। वही 30 में जब पेशेंट जाते हैं 30 साल की उम्र में, तो उनको पता होना चाहिए उस समय रिंकल्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं, तो एक प्रिवेंशन के तौर पे एक आध रेटिनॉल उनको लगाना चालू कर देना चाहिए। और 40 और 50 में तो क्या होता है रिंकल्स वगैरह बन जाते हैं, तो उस टाइम पे एक अच्छा अगेन मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन, फेस वॉश तो पता ही होना चाहिए, बट एक आध अच्छा एंटी एजिंग क्रीम अगेन डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब्ड, उनके अंडर गाइडेंस में लेकर ही मुझे लगता है सबको स्टार्ट करना चाहिए।
1: बिल्कुल। तो मतलब हर बीमारी की तरह चर्म रोग के बारे में भी हम ये कह सकते हैं कि डॉक्टर के पास तब ना जाएं जब बहुत देर हो चुकी हो, पहले से ही एक डॉक्टर की सलाह लेते हुए आगे बढ़ें, ताकि आपको पता हो कि आपको आपकी त्वचा का ध्यान किस तरह रखना है। सही,
0: बिल्कुल जी।
1: आजकल सोशल मीडिया की दुनिया में हर कोई एक एक्सपर्ट बनकर अपने सुझाव देता है, लेकिन बहुत कम ऐसा होता है कि कोई एक डॉक्टर के पास जाए और उनसे पूछे कि हमारे लिए क्या सही है। ऐसे में हम रोज नए नए केमिकल्स का नाम सुनते हैं, तो क्या इतने केमिकल्स चेहरे पर यूज करना, वो भी डॉक्टर की सलाह के बिना, ये सही है? कभी कभी हमें ये तक देखने मिला है कि 5 से 12 स्टेप्स का स्किन केयर रूटीन बताया जाता है और हर उम्र के लोग उसे कर भी रहे हैं।
0: पहली बात तो आपको इस प्रकार की जानकारी होना चाहिए कि कौन सही बता रहा है और कौन पेड प्रमोशंस कर रहा है या कोई डॉक्टर नहीं है। आज की तारीख में कोई इन्फ्लुएंसर से लेकर हर कोई स्किन के बारे में, मैंने तो न्यूट्रिशनिस्ट इवन जिम इंस्ट्रक्टर्स तक ये बताते हैं कि स्किन का रूटीन क्या होना चाहिए। तो आपको इस प्रकार की जानकारी होनी चाहिए कि ये एक्चुअली में स्किन के लिए एक्सपर्ट है, एज इन उसके पास कोई स्किन से रिलेटेड डिग्री है। और डिग्री का मतलब ये नहीं होता है कि मैं कॉस्मेटोलॉजिस्ट हूँ या मैं एक डिप्लोमा होल्डर हूँ। पहली बात, स्किन के डॉक्टर वही होते हैं जो एक डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, जिनके पास MD या DVL या DDVL की डिग्री होती है। अगर ये वही डॉक्टर हैं जिनको आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं और आपको वो कुछ बात बता रहे हैं, तो मुझे लगता है 90% टाइम पे वो सही बता रहे होंगे। बट वही चीज अगर आपको कोई पार्लर की लेडी बता रही है जिसको स्किन के बारे में इतनी जानकारी नहीं है, तो मुझे लगता है उसके पहले यूज करने के पहले एक बार आपको डॉक्टर की सलाह जरूर से लेनी चाहिए। कुछ भी 5 स्टेप स्किन केयर और 10 स्टेप स्किन केयर, मुझे लगता है पैसे का सिर्फ वेस्टेज है। सिर्फ एक भी चीज अगर आपके स्किन के अकॉर्डिंग हो मॉइस्चराइजर सनस्क्रीन के अलावा, मुझे लगता है वो भी बहुत वंडर्स कर देती है, इंस्टेड कि आप इस प्रकार के इतने स्टेप स्किन केयर रेजिम करें। तो मुझे लगता है कि सलाह सिर्फ उनसे ले जिनको इसकी जानकारी हो।
1: पार्लर की आपने बात कही, अधिकतर महिलाएं ऐसी होती हैं जो कम से कम महीने में एक बार तो पार्लर जाती ही हैं, लेकिन आज भारत में कई तरीके के ब्यूटी पार्लर चल रहे हैं। क्या आप अपने श्रोताओं को सुझाव देना चाहेंगी कि पार्लर चुनने से पहले इन चीजों का विशेषकर ध्यान रखें, ताकि आप पार्लर से कोई भी इन्फेक्शन ना उठा ले आएं?
0: मैं पार्लर के बारे में ऐसे कुछ टिप्पणी नहीं दूंगी, बट मैंने अपनी प्रैक्टिस में जो देखा है, मैंने देखा है कि जो लोग पेडिक्योर करवाते हैं पार्लर में या मैनिक्योर करवाते हैं, मैंने वार्ड्स बहुत देखे हैं अच्छे से अच्छे पार्लर में, मैंने देखा है कि वो लोग वही टब यूज करते हैं जिसमें दूसरे लोग वायरल इन्फेक्शन के साथ

0: आते हैं, और मैंने बहुत सारे मेल पेशेंट्स जो कि मेल सैलॉन्स जाते हैं, मैंने दाढ़ियों पे वार्ट्स बहुत देखे हैं बिकॉज वो लोग शेविंग कराते हैं, तो जो उस्तरा होता है वो शायद कॉमन होता है, और मतलब ऐसे छोटे मोटे नहीं, मैंने बड़े बड़े पार्लर के लोगों को, सैलॉन्स के लोगों को देखा है. तो मुझे लगता है एक कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे क्लीनलीनेस रखी जा रही है, और जो ऐसी दवाइयाँ और पार्लर वाले अगर आपको दे रहे हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो बोलें कि इससे आप बिल्कुल गोरे हो जाओगे और सुंदर हो जाओगे, है ना, तो वो मुझे लगता है पॉसिबिलिटी नहीं होती है. उसके अंदर वो बहुत हार्ड केमिकल्स डाल रहे हैं जिसमें से स्टेरॉइड सबसे ज्यादा है, है ना, तो उसकी वजह से मैंने किडनी फेलियर और मैंने डेथ्स भी देखी हैं. आपकी पार्लर वाली ने आपको एक क्रीम दी गोरा होने के लिए और आप समझे उससे आपकी मृत्यु हो रही है, कैसा लगेगा. तो मुझे लगता है इस प्रकार की अनवेरिफाइड चीजें, कुछ भी जो बिना लेबल के आती है, बिना FDA अप्रूव्ड आती है, नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत गड़बड़ होते हुए देखा है बहुत सारे मरीजों के साथ. तो मुझे लगता है कुछ भी आप करो एक वेरीफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट के अंडर ही करो
1: जी.
0: और पार्लर वालों से आप बस एक थोड़ा देखें कि उनका वैक्स कराने जा रहे हैं तो आप देखें कि वहाँ पे कितनी साफ सफाई है, वो किस प्रकार से कर रहे हैं, कितना क्लीन है, और मुझे लगता है कि कोई दिक्कत नहीं है अदरवाइज.
1: बिल्कुल. कोई और सुझाव आप आकाशवाणी के श्रोताओं को अपनी तरफ से देना चाहेंगी?
0: अल्टीमेटली जो आप खाते हैं वही आपके चेहरे पे और बालों पे और बाकी की बॉडी पे दिखता है. तो मुझे लगता है खान पान अभी बहुत अच्छा रखें, भीगे हुए बादाम कम से कम 5 से 10 बादाम रात में भिगाकर आप सुबह खाएं, अखरोट वॉलनट्स 3 से 4 वो भी भिगाएं अगले दिन खाएं, सीड्स जो कि मार्केट में आते हैं पम्पकिन सीड्स और वाटरमेलन सीड्स या चिया सीड वाटर रात में भिगा के अगले दिन सुबह पिएं, तो मुझे लगता है स्किन और हेयर के लिए काफी फायदेमंद होता है वो.
1: त्योहारों का मौसम आने वाला है तो एक के बाद एक त्योहार आएंगे, और हम हर त्योहार में अच्छा दिखना चाहते हैं तो हम चेहरे पर मेकअप तो जरूर लगाएंगे, बालों में भी हम या तो स्ट्रेटनिंग करेंगे या हम हेयर सेटिंग स्प्रे लगाएंगे, तो ऐसे में क्या प्रिकॉशंस हमें लेने चाहिए कि हमारे बालों को और त्वचा को नुकसान ना हो?
0: देखिए आपके अगर बहुत ज्यादा ओपन पोर्स हैं और आप बहुत ज्यादा अगर मेकअप लगा रहे हो अपने चेहरे के ऊपर, और आप मतलब मुझे लगता है 2-3 घंटे से ज्यादा मेकअप चेहरे पे नहीं होना चाहिए, बट अक्सर हम आते हैं रात में और हम इतने थक चुके होते हैं कि हमारे पास इतना समय भी नहीं होता हम अपना मुंह धोएं. मुझे लगता है अगर आप ढंग से मेकअप को पहले तो पूरी तरीके से निकाले रात में, अच्छे से उसको मॉइस्चराइज करें, अच्छा मॉइस्चराइजर लगाएं और फिर सोएं, है ना. तो मेकअप मुझे लगता है कि सभी लगाते हैं, किस लड़की को पसंद नहीं है मेकअप लगाना आज की तारीख में. मेकअप लगाएं बट उसको प्रॉपरली निकालें, और बालों में भी अगर स्ट्रेटनिंग कर रहे हैं तो बहुत सारे हीट प्रोटेक्टेंट स्प्रे मार्केट में अवेलेबल हैं जो बेसिकली सिलिकॉन बेस्ड होते हैं, तो आप मुझे लगता है पहले उसको लगाएं फिर स्ट्रेटनिंग करें. बट तब भी मैं ये बोलूंगी कि बहुत ज्यादा हीट नहीं लगानी चाहिए, किसी भी प्रकार की हीट, ना ब्लो ड्रायर ना स्ट्रेटनर के थ्रू. वंस इन अ वाइल महीने में एक आध बार मुझे लगता है कि कर लें तो ठीक है, बट आप सोचिए मैं रोज स्ट्रेटनर लगाऊंगी तो अल्टीमेटली हीट किसी भी प्रकार की बालों को डैमेज ही करेगी. महीने में एक आध बार के लिए तो मैं भी मना नहीं करूंगी, बट आप थोड़ा सा हीट प्रोटेक्शन स्प्रे या सिलिकॉन बेस्ड जेल्स जो आते हैं उसको लगाएं, फिर बालों की स्ट्रेटनिंग या ब्लो ड्राई कराएं.
1: बहुत अच्छा लगा मैम आपसे बात करके, उम्मीद करते हैं कि आपके ये सभी सुझाव हमारे आकाशवाणी के श्रोताओं के काम आएंगे. धन्यवाद.
2: श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे त्वचा और बालों की देखभाल विषय पर भेंटवार्ता. आपको कैसी लगी हमें बताइएगा जरूर अपने पत्रों के माध्यम से. और अब सुनते हैं ये खूबसूरत सा गीत.

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम स्वास्थ्य दर्पण। श्रोताओं, हेल्थ एंड टेक्नोलॉजी सेगमेंट में आज हम बात कर रहे हैं डिजिटल थेरेप्यूटिक्स की। श्रोताओं, ये एक ऐसी वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित डिजिटल तकनीक है जो मोबाइल ऐप, सॉफ्टवेयर या अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से कुछ बीमारियों के उपचार, प्रबंधन और रोकथाम में मदद करती है, यानी मरीज के इलाज में भी सक्रिय भूमिका निभाती है। श्रोताओं, ये तकनीक मधुमेह, अनिद्रा, डिप्रेशन, एंजाइटी, ओबेसिटी जैसी बीमारियों में दैनिक मार्गदर्शन देती है। ये व्यायाम, दवा खाने की याद दिलाना, बीमारी कितनी ठीक हो रही है जैसी कई सुविधाएं प्रदान करती हैं। श्रोताओं, डॉक्टर की सलाह से हम इस तकनीक का उपयोग करें और इस ऐप में स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और अपना लक्ष्य दर्ज करें, नियमित रूप से मिलने वाले निर्देशों का पालन करें, समय समय पर अपनी रिपोर्ट देखें और आवश्यकता होने पर डॉक्टर से संपर्क करें। श्रोताओं, डिजिटल थेरेप्यूटिक्स का उद्देश्य डॉक्टर की जगह लेना नहीं बल्कि डॉक्टर द्वारा दिए गए उपचार को अधिक प्रभावी बनाना है, क्योंकि जब तकनीक और सही इलाज साथ चलते हैं तो सफर भी खूबसूरत हो जाता है।

श्रोताओ, रोज की डाइट में अगर हम मखाने को शामिल करते हैं तो शरीर को कई स्वास्थ्य लाभ मिलते हैं। मखाना एक बेहतरीन सुपर फूड है। इसमें प्रोटीन, कैल्शियम, मैग्नीशियम और फाइबर पाया जाता है। यह हड्डियों को मजबूत बनाने के साथ पेट, दिल और त्वचा के लिए फायदेमंद होते हैं। इसमें कैलोरी अपेक्षाकृत कम और फाइबर ज्यादा होते हैं, जिससे पेट दर्द तक देर तक भरा रहता है। सुबह या शाम को 25 से 30 ग्राम मखाना कम घी या तेल में सेक कर खाना सेहत के लिए बेहतर होता है। और अब कार्यक्रम में वक्त हो गया है आप सब से विदा लेने का। आप सब स्वस्थ रहें, खुश रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अनुमति दीजिए नेहा जैन को। नमस्कार।

0: स्वास्थ्य दर्पण कार्यक्रम का प्रसारण अभी आपने सुना। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र का योगदान था। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। हमारा अगला कार्यक्रम इस अंतराल के उस पार।
1: आप सुन रहे हैं मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।
2: एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
3: युवाओं के जोश, उमंग और ज्ञान से भरे कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण होता है प्रतिदिन शाम 5 बजे,
4: जिसमें होती है नित नई जानकारियाँ, मनोरंजन और ज्ञान की बातें।
3: तो सुनते रहिए मालवा की शान,
5: आकाशवाणी इंदौर।
4: आकाशवाणी इंदौर अब मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है।
6: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
7: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी EMI गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान EMI के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
6: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
3: अरे तनिष्का, कहाँ थी इतने दिनों से?
4: अरे राधिका, मैं गई थी कुल्लू मनाली।
3: तो क्या क्या किया कुल्लू मनाली में? मजा आया कि नहीं?
4: अरे काहे का मजा,
3: क्यों, क्या हुआ?
4: अरे मैंने वहाँ आकाशवाणी और विविध भारती इंदौर को बहुत मिस किया।
3: अरे इसमें मिस करने वाली क्या बात है, अब तो आकाशवाणी और विविध भारती इंदौर मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है, तुम्हें नहीं पता?
4: ऐसा क्या, तो अब मैं जब भी बाहर जाऊंगी मोबाइल ऐप के जरिए आकाशवाणी ऐप से जुड़ी रहूंगी।
3: ये हुई ना बात।
8: इस समय आप हैं हमारे साथ।
9: जी हाँ, मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर के साथ।

ये प्रसारण आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। दोपहर के 1:30 हुए हैं। ये समय है लोक संगीत के कार्यक्रम का और इस कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं ध्रुवाराम मरकाम और साथियों के गाए हुए कुछ छत्तीसगढ़ी लोकगीत। आइए सुनते हैं।

0: गीत के कार्यक्रम में।
1: आए रे

और इसी लोकगीत के साथ लोक संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में आपने सुने ध्रुवाराम मरकाम और साथियों के गाए हुए छत्तीसगढ़ी लोकगीत। ये प्रसारण आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। 1:45 हो चुके हैं। ये समय है सुगम संगीत के कार्यक्रम का और इस कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं चंद्रशेखर चक्रवर्ती के गाए हुए कुछ भजन। कार्यक्रम का आरंभ मीरा की इस रचना से।

0: इसी भक्ति रचना के साथ सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में आपने सुने चंद्रशेखर चक्रवर्ती के गाए हुए कुछ भजन। ये प्रसारण आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। कुछ ही पलों में हमारा अगला कार्यक्रम होगा।
1: आप सुन रहे हैं मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर।
2: एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
3: युवाओं के जोश, उमंग और ज्ञान से भरे कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण होता है प्रतिदिन शाम 5 बजे,
4: जिसमें होती है नित नई जानकारियाँ, मनोरंजन और ज्ञान की बातें।
3: तो सुनते रहिए मालवा की शान
5: आकाशवाणी इंदौर।
4: आकाशवाणी इंदौर अब मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है।
6: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
7: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी EMI गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान EMI के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
6: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
3: अरे तनिष्का, कहाँ थी इतने दिनों से?
4: अरे राधिका, मैं गई थी कुल्लू मनाली।
3: तो क्या क्या किया कुल्लू मनाली में? मजा आया कि नहीं?
4: अरे काहे का मजा,
3: क्यों, क्या हुआ?
4: अरे मैंने वहाँ आकाशवाणी और विविध भारती इंदौर को बहुत मिस किया।
3: अरे इसमें मिस करने वाली क्या बात है, अब तो आकाशवाणी और विविध भारती इंदौर मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है, तुम्हें नहीं पता?
4: ऐसा क्या, तो अब मैं जब भी बाहर जाऊंगी मोबाइल ऐप के जरिए आकाशवाणी ऐप से जुड़ी रहूंगी।
3: ये हुई ना बात।
8: इस समय आप हैं हमारे साथ।
9: जी हाँ, मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर के साथ।

0: पेड़ लगाओ, तुम सब मिलकर बनेगा फिर पानी जमकर। नदी ताल में होगा पानी, फुर्र होगी चूचू की परेशानी। आओ मिलकर पेड़ लगाएं, धरती की खुशियां लौटाएं।
1: ये प्रसारण आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। अप्रस्तुत फिल्म संगीत।

द डिप्लोमेट फिल्म का ये गीत आप सुनने जा रहे हैं वरुण जैन, रोमी और अनुराग की आवाज़ों में। कौसर मुनीर ने इसे शब्द दिए हैं और धुन तैयार की है अनुराग।

0: और इसी गीत के साथ में फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब खत्म हुआ। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। प्रादेशिक समाचार थोड़ी ही देर में होंगे।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं राणा शाहिद। लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया गया। पहले स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही फिर शुरू होने पर कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने यह विधेयक सदन में प्रस्तुत किया। विधेयक पेश किए जाने के दौरान विपक्षी सदस्यों ने नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई पर चर्चा की मांग करते हुए हंगामा किया। इस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि परीक्षा सुधार की दिशा में यह विधेयक पहला महत्वपूर्ण कदम है और इस पर व्यापक चर्चा होनी चाहिए। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव आज खंडवा के नए कृषि उपज मंडी परिसर में आयोजित बलराम कृषि महोत्सव में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत प्रदेश के 82 लाख से अधिक किसानों के खातों में 3,300 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से अंतरित की। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और कृषि को लाभकारी बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। आज पूर्व राष्ट्रपति, भारत रत्न और प्रख्यात वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम

0: राम की पुण्यतिथि है। राष्ट्र उन्हें श्रद्धापूर्वक नमन कर रहा है। मिसाइल मैन के नाम से प्रसिद्ध डॉक्टर कलाम ने भारत के अंतरिक्ष और मिसाइल कार्यक्रमों को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि उनका जीवन और विचार सदैव देश के युवाओं को प्रेरित करते रहेंगे। प्रदेश के विद्यार्थियों को रोजगारोन्मुखी शिक्षा से जोड़ने के लिए उच्च शिक्षा विभाग ने बड़ी पहल की है। शैक्षणिक सत्र 2026-27 से प्रदेश के 68 शासकीय महाविद्यालयों में AI और फिनटेक विथ AI के निःशुल्क सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किए जाएंगे। IIT दिल्ली के सहयोग से संचालित इन पाठ्यक्रमों के माध्यम से विद्यार्थियों को आधुनिक तकनीकी कौशल का प्रशिक्षण दिया जाएगा। पहले चरण में 2000 विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने आज मंत्रालय में समीक्षा बैठक के दौरान रीवा के श्रीराम निजन संस्कृत परिसर में नए शैक्षणिक सत्र से सभी प्रस्तावित पाठ्यक्रम शुरू करने के निर्देश दिए। उन्होंने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और शोध को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक पदों के सृजन तथा समयबद्ध भर्ती प्रक्रिया सुनिश्चित करने को कहा। साथ ही परिसर को संस्कृत, वैदिक अध्ययन और भारतीय ज्ञान परंपरा के प्रमुख शिक्षा एवं शोध केंद्र के रूप में विकसित करने पर बल दिया। प्रदेश में मानसून एक बार फिर पूरी तरह सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक प्रदेश के कई हिस्सों में तेज से अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, डिंडौरी, मंडला और बालाघाट में भारी बारिश का अलर्ट है, जबकि भोपाल, इंदौर और ग्वालियर समेत प्रदेश भर में हल्की से तेज बारिश का दौर जारी रहेगा। इस मानसून सीजन में अब तक औसत से करीब 15% कम बारिश दर्ज की गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 में पुरुषों के 65 किलोग्राम भारोत्तोलन वर्ग में रजत पदक जीतने पर राजा मुथुपांडी को बधाई दी है। राष्ट्रपति ने कहा कि उनकी इस उपलब्धि पर पूरे देश को गर्व है। वहीं प्रधानमंत्री ने कहा कि राजा मुथुपांडी की सफलता से हर भारतीय गौरवान्वित है और उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। जबलपुर जिले में जैविक खेती को बढ़ावा देने और किसानों को सीधे उपभोक्ताओं से जोड़ने के उद्देश्य से कृषि उपज मंडी परिसर में साप्ताहिक जैविक हाट का आयोजन किया गया। शिवपुरी के शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में रिक्त सीटों पर संस्था स्तरीय काउंसलिंग के तहत प्रवेश प्रक्रिया जारी है। इच्छुक छात्र छात्राएं MP ऑनलाइन के माध्यम से रजिस्ट्रेशन कराकर आगामी 12 अगस्त तक कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल जैसी शाखाओं के प्रथम वर्ष में सीधा प्रवेश ले सकते हैं। और भोपाल मानस भवन में तुलसी मानस प्रतिष्ठान द्वारा 1-5 अगस्त तक 5 दिवसीय तुलसी जयंती समारोह आयोजित किया जाएगा। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए 7:10 पर। नमस्कार।
1: वाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश। विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा न होने देने से देश में सही संदेश नहीं जाएगा। अमरीका और ईरान के सैन्य हमले रुकने के बाद वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में लगभग 6% की गिरावट। बंगाल की खाड़ी के ऊपर हवा का गहरा दबाव बनने से उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान। ईशा सिंह ने ISSF विश्व कप निशानेबाजी में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। मनु भाकर को कांस्य पदक। और 22वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप नई दिल्ली में शुरू। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया गया। पहले स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही फिर शुरू होने पर कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने ये विधेयक सदन में प्रस्तुत किया।
2: आई rise to move.
3: मैं लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण विधेयक 2024 में संशोधन करने के लिए लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2000

0: 26 प्रस्तुत करने का प्रस्ताव रखता हूँ।
1: विधेयक पेश किए जाने के दौरान विपक्षी सदस्यों ने नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई पर चर्चा की मांग करते हुए हंगामा किया। इस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि परीक्षा सुधार की दिशा में ये विधेयक पहला महत्वपूर्ण कदम है और इस पर व्यापक चर्चा होनी चाहिए, लेकिन हंगामा जारी रहने पर सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: यह विधेयक परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता, निष्पक्षता और लोगों का भरोसा बनाए रखने के लिए लाया गया है। इसका उद्देश्य छात्रों के भविष्य को सुरक्षित रखना और परीक्षा प्रणाली को कानूनी रूप से और अधिक सशक्त बनाना है। इस विधेयक में सख्त प्रावधान किए गए हैं। दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की जेल, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। इसके अलावा मामलों का जल्द निपटारा सुनिश्चित करने के लिए सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित किए जाएंगे, जहां मामलों की रोजाना सुनवाई होगी। वहीं पुलिस में मामला दर्ज होने के 2 महीने के भीतर जांच पूरी करनी होगी। इसके अलावा आरोप पत्र दाखिल होने के बाद 3 महीने के भीतर मामले का निपटारा करने का प्रावधान है। इस विधेयक का उद्देश्य भर्ती और प्रवेश परीक्षाओं में होने वाली गड़बड़ियों पर रोक लगाने के साथ साथ परीक्षा व्यवस्था पर लोगों का भरोसा मजबूत करना है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने 23वें राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने वाले देश के भारोत्तोलकों को बधाई दी।
3: भारत की सुश्री मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग की 48 किलोग्राम वर्ग की प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। इस प्रतियोगिता में श्री ऋषिकांत सिंह चनम बम तथा श्री राजा मुथु पांडी ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए रजत पदक जीता है। मैं सदन की ओर से जीतने वाले सभी खिलाड़ियों को इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर हार्दिक बधाई तथा भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूं।
1: प्रश्नकाल शुरू होते ही विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई का मुद्दा उठाया। इस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि प्रश्नकाल के दौरान अन्य विषय नहीं उठाए जा सकते।
3: मैं कुछ दिनों से माननीय सदस्यों के विहार आचरण को देख रहा हूं। ये सदन की मर्यादाओं के आचरण के अनुरूप नहीं है। मैं फिर आपसे आग्रह कर रहा हूं, ऐसे माननीय सदस्यों के खिलाफ मुझे कार्रवाई करनी पड़ेगी जो सदन की मर्यादाओं परंपराओं को समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। ये सदन है, सदन की मर्यादा बनाना रखना आपकी जिम्मेदारी है।
1: राज्यसभा में भी विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई का मुद्दा उठाया गया। पहले स्थगन के बाद कार्यवाही शुरू होने पर विपक्ष ने फिर हंगामा जारी रखा। इसके बाद सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोक परीक्षा विधेयक पर चर्चा में बाधा डालने के लिए विपक्ष की आलोचना की है।
4: देश में जो एग्जामिनेशन होने का जो प्रक्रिया आज तक हमने देखा है, उसको मजबूती से जो रिफॉर्म्स लाया है, इस पे चर्चा होना ये सबसे प्राथमिकता होना चाहिए। मुद्दे को भटकाने के लिए और मुद्दे चेंज करने के लिए कोई कोशिश ना करें। इस वक्त स्टूडेंट का वेलफेयर, स्टूडेंट का फ्यूचर और स्टूडेंट का इंटरेस्ट, ये हम सबका प्राथमिकता होना चाहिए।
1: भाजपा महासचिव और राज्यसभा सांसद तरुण चुग ने कहा है कि प्रस्तावित विधेयक युवाओं और विद्यार्थियों के भविष्य को सुरक्षित करने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
5: प्रधानमंत्री जी ने विशेषज्ञों की टास्क फोर्स, कानून, विशेष अदालतें, देश के नौजवानों का भविष्य सुरक्षित हो उसके लिए फैसले लिए हैं और निरंतर भारत आगे बढ़े, भारत के नौजवानों के सपने और संकल्प पूरे हों। प्रधानमंत्री मोदी जी संसाधनों को खड़ा करके, सीटों को बढ़ाकर नए नए अवसर पैदा कर रहे हैं और देश की जेन जी भारत की तरक्की में भागीदार भी बन रही है और लगातार प्रयासरत है।
1: उधर टीएमसी की बागी नेता सयानी घोष ने परीक्षा सुधार से जुड़े विधेयक पर संसद में रचनात्मक बहस की मांग की। जनता दल यूनाइटेड नेता और राज्यसभा सांसद संजय झा ने कहा है कि परीक्षाओं में सुधार के लिए गठित उच्च स्तरीय कार्यबल मानवीय हस्तक्षेप कम कर प्रौद्योगिकी के बेहतर उपयोग पर जोर देगा।
6: ह्यूमन इंटरवेंशन कम होना चाहिए। लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन क्या है ये तो अभी का होगा, लेकिन परमानेंट ये फुल प्रूफ एग्जाम हो तो जितना टेक्नोलॉजी यूज होगा और ह्यूमन इंटरवेंशन कम होगा, उसी से आप फुल प्रूफ एग्जाम की तरफ जाए। प्रधानमंत्री जी ने डे वन से बच्चों के कंसर्न को एड्रेस किया और ये जो टास्क फोर्स बनाया है, ये टास्क फोर्स आपको जो भी मैकेनिज्म देगा वो फुल प्रूफ एग्जाम की तरफ जाएगी।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने परीक्षा पेपर लीक के मुद्दे पर प्रदर्शन के दौरान विद्यार्थियों पर पुलिस के अत्यधिक बल प्रयोग के आरोपों से जुड़ी कई याचिकाओं पर कल सुनवाई करने पर सहमति व्यक्त की है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची तथा वी मोहना की पीठ ने विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल पुलिसकर्मियों के परिजनों की याचिका पर भी सुनवाई करने का निर्णय लिया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि शांतिपूर्ण और वैध विरोध प्रदर्शन संवैधानिक अधिकार है। केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि वे अदालत की कार्यवाही में सहयोग करेंगे। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। अमरीका और ईरान द्वारा सप्ताहांत में सैन्य हमले रोकने के बाद आज वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में लगभग 6% की गिरावट देखी गई। दिन के कारोबार में ब्रेंट क्रूड कच्चे तेल की कीमत 6.1% गिरकर 90 अमरीकी डॉलर और 87 सेंट प्रति बैरल पर थी। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 1% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 656 अंक बढ़कर 76,716 जबकि निफ्टी 189 अंक के उछाल के साथ 23,956 पर पहुंच गया। सिक्किम सरकार ने राज्य में वन रक्षक पदों की भर्ती में अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण की घोषणा की है। कल गंगटॉक में कार्यक्रम में मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने कहा कि इसका उद्देश्य सशस्त्र बलों में सेवा पूरी करने के बाद अग्निवीरों को रोजगार के अवसर प्रदान करना है। मौसम विभाग ने बंगाल की खाड़ी पर बने हवा के गहरे दबाव के कारण उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल के गंगई क्षेत्र में कल तक मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़ और विदर्भ में भी कल तक अत्यधिक वर्षा हो सकती है। इस बीच ओडिशा के कई हिस्सों में मूसलाधार वर्षा हो रही है। हमारे संवाददाता ने बताया कि मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है।
7: उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बना डिप्रेशन अब डीप डिप्रेशन में बदल गया है, जिससे उड़ीसा के कई इलाकों में लगातार बारिश हो रही है। जगत सिंहपुर, संबलपुर, भद्रक, जाजपुर, केंद्रापड़ा, कटक, पुरी और खुर्धा जिले में बहुत ज्यादा बारिश की खबर है, जिससे जगह जगह पानी भर गया है और आम जनजीवन पर असर पड़ा है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने आगे भी भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी है और संवेदनशील इलाकों में अचानक बाढ़ आने की आशंका जताई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार।
1: असम में बाढ़ की स्थिति में सुधार होने के साथ ही अधिकांश इलाकों में बाढ़ का पानी कम हो गया है। शिवसागर, गोलाघाट, जोरहाट और सराईदियो जैसे अधिक प्रभावित जिलों में 109 राहत शिविरों में अब भी 37,000 से अधिक लोग रह रहे हैं। राज्य में बाढ़ के कारण अब तक 68 लोगों की मौत हो चुकी है। असम के मुख्यमंत्री डॉ हिमंता बिस्व सरमा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि जैसे जैसे राज्य बाढ़ से उबर रहा है, प्रभावित इलाकों में बिजली बहाल करने का काम चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है। उधर नागालैंड में मॉनसून से जुड़ी घटनाओं के कारण विभिन्न हिस्सों में फंसे लोगों को वायुसेना सुरक्षित निकाल रही है। वायुसेना ने राज्य के लोंगलिंग जिले के नामसांग सर्कल से 42 फंसे हुए यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। पूर्व राष्ट्रपति, भारत रत्न से अलंकृत और प्रख्यात वैज्ञानिक डॉ एपीजे अब्दुल कलाम की आज पुण्यतिथि है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल मन की बात कार्यक्रम में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि डॉ कलाम ने बच्चों और युवाओं को बड़े सपने देखने की प्रेरणा दी।
8: भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की पुण्यतिथि है। डॉक्टर कलाम के व्यक्तित्व में कई प्रेरक रूप थे, लेकिन उनके हृदय के सबसे करीब एक शिक्षक की भूमिका थी। वे बच्चों और युवाओं को बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित करते थे।
1: मिसाइल मैन के नाम से विख्यात डॉक्टर कलाम ने देश के रक्षा और अंतरिक्ष अनुसंधान को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
9: डॉक्टर कलाम ने भारत के पहले स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान को विकसित करने में प्रोजेक्ट डायरेक्टर के रूप में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसने जुलाई 1980 में रोहिणी उपग्रह को पृथ्वी की निकटतम कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया और भारत को स्पेस क्लब का एक विशेष सदस्य बनाया। पूर्व राष्ट्रपति अग्नि और पृथ्वी मिसाइलों के विकास व संचालन के लिए भी जिम्मेदार थे, साथ ही उन्होंने कई संस्थानों को एक साथ जोड़कर महत्वपूर्ण तकनीकों में स्वदेशी क्षमता

0: निर्माण में बड़ी भूमिका निभाई। डॉक्टर कलाम देश के सबसे प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों में से एक थे जिन्हें 30 विश्वविद्यालयों और संस्थानों से मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त करने का अनूठा सम्मान मिला था। उन्हें प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान पद्म भूषण, पद्म विभूषण और सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। डॉक्टर कलाम 25 जुलाई 2002 को भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पूर्व राष्ट्रपति डॉ एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। भारत की ईशा सिंह ने आज चीन के हांगचाओ में आयोजित आईएसएसएफ विश्व कप निशानेबाजी में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर ने कांस्य पदक अपने नाम किया। 22वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 का आज नई दिल्ली में शुभारंभ हुआ। उद्घाटन समारोह में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप से प्रतिभागी देशों के बीच संबंध मजबूत होंगे। उन्होंने कहा कि सरकार राष्ट्रीय राजधानी में खेल अवसंरचना में सुधार तथा खेल सुविधाओं को उन्नत बनाने पर लगातार काम कर रही है।
2: दिल्ली सरकार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज को और बेहतर करने के लिए, स्पोर्ट्स के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेस्ट करने के लिए काम कर रही है। मैं आज इस चैंपियनशिप में दिल्ली की ओर से ये कहना चाहती हूँ कि दिल्ली आप सबके लिए उन सभी फैसिलिटीज को यहाँ पर जरूर उपलब्ध कराएगी जिसके लिए आप यहाँ पर आए हैं।
1: दिल्ली के खेल मंत्री आशीष सूद ने कहा कि 25 राष्ट्रमंडल देशों के खिलाड़ियों की मेजबानी करना सम्मान की बात है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में मच्छर जनित रोग रोकथाम, सुरक्षा और जन जागरूकता विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। जन स्वास्थ्य विशेषज्ञ और राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण केंद्र के पूर्व निदेशक डॉ अक्षय धारीवाल और नई दिल्ली स्थित एम्स के चिकित्सा विभाग के प्रोफेसर डॉ पीयूष रंजन परिचर्चा में भाग लेंगे। श्रोता टेलीफोन नंबर 0112331 0481 या 2331444 पर अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश। विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा न होने देने से देश में सही संदेश नहीं जाएगा। अमरीका और ईरान के सैन्य हमले रुकने के बाद वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में लगभग 6% की गिरावट। बंगाल की खाड़ी के ऊपर हवा का गहरा दबाव बनने से उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के गांगई क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान। और ईशा सिंह ने आईएसएसएफ विश्व कप निशानेबाजी में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता, मनु भाकर को कांस्य पदक। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। अब सुनिए कार्यक्रम आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश के सभी सुनने वालों को शिवम का नमस्कार। कार्यक्रम का पहला नगमा हम आपको सुनवा रहे हैं, रफ़ी साहब का गाया हुआ। इस नगमे को सुनने के लिए हमारे जिन दोस्तों ने अपनी फरमाइश लिख भेजी है उन सभी के नाम इस गीत के बाद

आपकी फरमाइश के इस पहले नगमे को सुनवाने के लिए चिट्ठी लिख भेजी थी हमारे इन सभी दोस्तों ने। ये हैं सेक्स्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से, टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा और प्रतीक मल्होत्रा। साथ में हैं अनिल शर्मा, जयवीर सिंह ठाकुर और डॉक्टर अमनदीप। कालका से ये खत लिख भेजा है शुभचंद्र बजाज, साहिल और बिट्टा बजाज ने। गांधी चौक रोपड़ पंजाब से अगला खत आया है हरदेव मीका, बलविंदर बरीक, जैतक बरीक और मीका बरीक का। बक्सर बिहार से ये चिट्ठी आई है शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून, असलम और अक्रम अंसारी। साथ में हैं अल्ताफ अंसारी। हुमगांव बिहार से ये चिट्ठी

भेजी है डब्लू अंसारी, डॉक्टर सोनम अदीबा और दानिश ने। सारिमपुर बक्सर से ये चिट्ठी लिख भेजी है आसमा खातून, राज एस डी अंसारी, महताब आफताब और मेराज अंसारी ने। कमर कॉलोनी बड़वाह से हमारे अगले गीत को सुनवाने के लिए चिट्ठी लिख भेजी है हमारे इन दोस्तों ने, प्रवीण शिमाली, मीना आदित्य अदिति और शिवानी शिमाली ने। बेड़ी से हुकुम करमरकर, सुनीता हार्दिक प्राची और तनु करमरकर ने। किशोर कुमार का गाया हुआ एक गीत अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं। फिल्म का नाम आपको बता देते हैं, ये है जहरीला इंसान। फिल्म से ये गीत हमने लिया है, मजरूह ने इसे लिखा है और धुन बनाई है राहुल देव बर्मन ने।

है चंदानी, सुनीता, संगीता, पिंकीश, साक्षी, मनन और तानिया ने जयराज प्लॉट राजकोट से अगला खत लिख भेजा है मधुसूदन भट्ट, आरती, पूजा, जासमीन और प्रयागराज भट्ट ने। नेपाल पहले सागर से तिलक राणा, मीना, मोनिका, नुपुर ऋषिका और रॉबिन नाना इसी गीत को सुनना चाहते हैं। और ये अगली चिट्ठी लिख भेजी है सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा, हादिया, अस्मा, सालिया, शोएब और मुस्तबा खान ने। साथ में हैं रऊफ भाई और शाहिद। गांधीबाग आकोला से रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर ने भी इसी गीत को सुनना चाहा है। ये गीत है राहत फ़तेह अली खान की आवाज़ में, जिंदगी 50-50 फिल्म से। शब्बीर अहमद ने शब्द दिए हैं और धुन है अमजद नदीम की।

ये पैरोडी सॉन्ग हमने लिया था वारिस फिल्म से। मोहम्मद रफ़ी और आशरा भोसले ने इसे गाया था, राजेंद्र कृष्ण ने इसे शब्द दिए थे और धुन तैयार की थी राहुल देव बर्मन ने। सुनना चाहा था ग्राम जसवाड़ी से दुर्गीश, नागनपुरे वंदना भावना बिंदु गोलू और सूरज कुमार ढाकसे ने, औरंगाबाद से राजेश साबले पाटिल, शीतल राजदीप और राशि राजेश, प्रभाकर जोंघले ने साथ में हैं आरती। इन्होंने ये ख़त हमें लिख भेजा है गौतम नगर ज़िला नांदेड़ से, बिहार कॉलोनी लोनी से नसीमुल इस्लाम गुनौरी, प्रकाश वीर राजपूत, लोहारा बालौद से कमलेश जयपुरिया, टाउनशिप भिलाई से अनुश्री प्रदीप, पिंकी और प्रमिला प्रदीप ने भी इसी खत को भेजा था हमें, और जेल रोड रायगढ़ से लालचंद मिश्रा और नरेंद्र कुमार राम ने इसी गीत को सुनना चाहा था। घंटाघर चौक खंडवा से ये चिट्ठी लिख भेजी है संजय पंचोलिया, प्रियंका गुनगुन संप्रीत और हेमेंद्र ने, साथ में हैं सलमति पंचोलिया। इन सभी दोस्तों की फरमाइश हमने आपको सुनवाई और अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं हमारे इन सभी दोस्तों का भेजा हुआ ये ख़त जो हम शामिल कर रहे हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश में। पाकिज़ा रेडियो श्रोता संघ वैष्णव कॉलोनी सनावत मध्य प्रदेश से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अल्तमश और रमेश गौड। उपाध्याय नगर देवास से अगली चिट्ठी लिख भेजी है मुरारी लाल वर्मा मनीष और इनके साथियों ने। राजाराम नगर देवास से ही ये चिट्ठी लिख भेजी है राजू अग्रवाल, शांति महाजन और मुकेश महाजन ने। देवास से ही हमारे कुछ और श्रोताओं के ये खत आए हैं जिनमें हैं नागू सिंह कुमावत, राजकुमार और अभिषेक कुमावत। इन सभी दोस्तों की फरमाइश पर हम आपको सुनवा रहे हैं ये गीत।

0: ये गीत आप सुन रहे हैं जहर फिल्म से, आतिफ असलम ने इसे गाया है। सईद कादरी ने इस गीत को लिखा है और धुन तैयार की है रूप कुमार राठौर ने, और इसी नगमे के साथ कार्यक्रम आपकी फरमाइश अब संपन्न हुआ। आप सभी को हमारा नमस्कार। ये प्रसारण आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। 2:58 होने जा रहे हैं। अब पेश है इस घंटे की खास खबरें।
1: लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया गया। पहले स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही फिर शुरू होने पर कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने यह विधेयक सदन में प्रस्तुत किया। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव आज खंडवा के नई कृषि उपज मंडी परिसर में आयोजित बलराम कृषि महोत्सव में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत प्रदेश के 82 लाख से अधिक किसानों के खातों में 3,300 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से अंतरित की। प्रदेश के विद्यार्थियों को रोजगारोन्मुखी शिक्षा से जोड़ने के लिए उच्च शिक्षा विभाग ने बड़ी पहल की है। शैक्षणिक सत्र 2026-27 से प्रदेश के 68 शासकीय महाविद्यालयों में एआई और फिनटेक विथ एआई के निशुल्क सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किए जाएंगे। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने आज मंत्रालय में समीक्षा बैठक के दौरान रीवा के श्री रामानुजन संस्कृत परिसर में नए शैक्षणिक सत्र से सभी प्रस्तावित पाठ्यक्रम शुरू करने के निर्देश दिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 में पुरुषों के 65 किलोग्राम भारोत्तोलन वर्ग में रजत पदक जीतने पर राजा मुथुपांडी को बधाई दी है। और प्रदेश में मानसून एक बार फिर पूरी तरह सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक प्रदेश के कई हिस्सों में तेज से अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

ये प्रसारण आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। सभा समापन हो उससे पहले हम आपको जानकारी दे दें हमारी सांध्यकालीन सभा के कुछ प्रमुख कार्यक्रमों की। शाम 5:02 पर युवा दोस्तों के कार्यक्रम युवावाणी का प्रसारण किया जाएगा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र का योगदान होगा। NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम सुना जा सकेगा शाम 6:00। आजकल का प्रसारण होगा 6:40 पर और प्रादेशिक समाचार दर्शन आप सुन सकते हैं शाम 6:45 पर। संसद समीक्षा का अनुप्रसारण किया जाएगा आकाशवाणी दिल्ली से रात्रि 8:00। आकाशवाणी दिल्ली से ही आप सुनेंगे पब्लिक स्पीक, प्रसारण समय रहेगा रात्रि 9:30। और संसद में प्रश्नकाल के दौरान हुई कार्रवाई की रिकॉर्डिंग का अनुप्रसारण होगा आकाशवाणी दिल्ली से, प्रसारण का समय रहेगा रात्रि 10:00 से। ये थी उन कार्यक्रमों की जानकारी जिन्हें आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश और आकाशवाणी भोपाल के प्रसारण में हमारी सांध्यकालीन सभाओं में सुन पाएंगे। मीडियम वेव पर अब हमारी ये सभा संपन्न होती है। मीडियम वेव पर आप हमारी सभा से शाम 5:00 से पुनः जुड़ सकते हैं। इस बीच प्रसारण DTH पर जारी रहेगा। नमस्कार।

हेलो कंट्रोल, इस समय दीवार में 4:22 मिनट। यह है माय फोन नंबर। ठीक, ओके, डन।

मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। शाम के 5 बजे हैं, आरंभ होती है हमारी सांध्यकालीन प्रसारण सभा। सभा के आरंभ में प्रस्तुत है युवा श्रोताओं का दैनिक कार्यक्रम युववाणी।

0: नमस्कार श्रोताओं, शाम के 5 बज चुके हैं और आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त माधवी
1: और मैं अनुभूति। स्वागत है आप सभी का आज के कार्यक्रम में दोस्तों। और आज हम कई सारी बातें करने वाले हैं, आपको कई सारी जानकारियां देने वाले हैं और साथ ही मस्ती भरे गीत भी सुनने वाले हैं, तो बने रहिएगा हमारे साथ आज के इस कार्यक्रम में।
0: लेकिन अनुभूति, मुझे ऐसा लगता है कार्यक्रम की शुरुआत से पहले जो हम हमेशा करते हैं कि हम हमारे श्रोताओं से 2 सवाल पूछते हैं और अंत में उन सवालों का जवाब देते हैं, तो क्यों ना वो सवाल पूछ लिया जाए।
1: बिल्कुल।
0: तो आज का पहला सवाल है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है?
1: और आज का दूसरा प्रश्न है कि माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? तो इन दोनों प्रश्नों के उत्तर आप खोज कर रखिए दोस्तों, और कार्यक्रम के अंत में हम जब उत्तर बताएंगे तब अपने उत्तर आप हमारे साथ जरूर मिलाइएगा। तब तक आइए शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम की इस खूबसूरत गीत के साथ।

0: तक।
1: क्या आप कुछ नया खरीदना चाहते हैं इस फेस्टिवल और फैमिली फंक्शंस के लिए,
2: या फिर अपनी फैमिली के साथ एक ट्रिप पर जाना चाहते हैं?
1: क्या ये सारी विशेष फाइनेंशियल टेंशन की वजह से अधूरी रह रही हैं?
2: अब लाइए खुशियों का रंग अपने और अपनी फैमिली के लिए मन्नापुरम गोल्ड लोन के साथ।
1: आकर्षक गोल्ड लोन स्कीम्स जिसमें इंटरेस्ट सिर्फ उतने दिनों का लगेगा जितने दिनों तक लोन रखा हो।
2: कोई मिनिमम फिक्स्ड पीरियड का झंझट नहीं, न 7 दिन का न 15 दिन का। अपनी नजदीकी ब्रांच पर जाएं या हमें टोल फ्री नंबर पर कॉल करें 1800-420-2233।
3: आज यानी कि 27 जुलाई को एक ऐसा दिन है जो हमारे दिलों में एक खास जगह रखता है। आज पूरा देश हमारे सबसे चहेते पूर्व राष्ट्रपति, जनता के राष्ट्रपति और मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को उनकी पुण्यतिथि पर याद कर रहा है। अनुभूति ऐसा लगता है जैसे कल ही की बात हो जब उन्होंने हमें अलविदा कहा था, लेकिन उनकी यादों की ये जो रोशनी है ये आज भी उतनी ही चमकदार है। मुझे जेन्युइनली याद है कि मेरा 10th का बोर्ड्स का पेपर था अगले दिन, और जिस दिन इन्होंने हमें अलविदा कहा था। और यूजुअली अगर ऐसा होता है तो आप खुश हो जाते हो कि आपका पेपर नहीं होगा, बट मैंने इतना पढ़ रखा था इनके बारे में और मैं इतने अच्छे से जानती थी कि इन्होंने कितने वंडर्स किए हैं हमारे देश के लिए, साइंस के लिए, कि उस दिन जेन्युइनली एग्ज़ाम नहीं होने के बाद भी खुशी नहीं हुई।
4: क्या बात है, बिल्कुल सही कह रही हो तुम माधवी। डॉक्टर कलाम सिर्फ एक महान वैज्ञानिक या नेता नहीं थे, वे एक ऐसे जादूगर थे जिन्होंने पूरे देश को एक साथ पिरोने का सपना देखा। इसरो और DRDO में भारत के अंतरिक्ष और मिसाइल कार्यक्रमों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने से लेकर स्कूलों में बच्चों के बीच

0: मुस्कुराते हुए वक्त बिताने तक उन्होंने अपना पूरा जीवन इस देश को यानी कि भारत को समर्पित कर दिया।
1: और अनुभूति, उन्हें विज्ञान के साथ साथ कविताओं से भी बेहद लगाव था। वे अंग्रेजी में अपने प्रेरणादायक पंक्तियों के जरिए युवाओं को जोश से भर देते थे। उनकी एक अंग्रेजी की कविता है जिसकी ये लाइंस मुझे बहुत पसंद है। आई विल फ्लाई विद द पावर ऑफ स्पेस एंड टाइम, आई विल सोर हाई टू टच द स्टार्स एंड मेक देम माइन।
0: तुम्हें पता है माधवी, स्कूल में एक कंपटीशन के दौरान मैंने भी अब्दुल कलाम के ऊपर एक कविता बोली थी। उसकी लाइंस थी, अब्दुल कलाम ही हैड अ ड्रीम एंड लेबर्ड हार्ड विद इन अ टीम, ही गेव हिज कंट्री मिसाइल्स ग्रेट एंड मेड भारत अ न्यूक्लियर स्टेट। सचमुच ये पंक्तियाँ हर उस इंसान के मन में उसकी भावनाएं जगाती हैं जो सपनों के मसीहा डॉक्टर कलाम को मानते हैं।
1: बहुत ही सुंदर तरीके से तुमने बोली है कविता अनुभूति, और इस कविता ने तो दिल को छू ही लिया है। डॉक्टर कलाम हमेशा कहते थे कि अगर किसी देश को भ्रष्टाचार मुक्त और सुंदर दिमागों का देश बनाना है तो समाज के तीनों सबसे अहम लोग ये बदलाव ला सकते हैं, माता, पिता और शिक्षक।
0: बिल्कुल, अब्दुल कलाम का नाम देश के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है। तमिलनाडु के एक साधारण परिवार से निकलकर देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद तक पहुंचने वाले डॉक्टर कलाम ने ये साबित किया था कि मेहनत, ईमानदारी और शिक्षा के दम पर कोई भी व्यक्ति बड़ी से बड़ी सफलता हासिल कर सकता है। भारत की रक्षा और अंतरिक्ष कार्यक्रमों को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में उनका योगदान अतुलनीय रहा है। इसी कारण उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है।
1: राष्ट्रपति होने के बाद भी उन्होंने हमेशा छात्रों और युवाओं से संवाद को प्राथमिकता दी। उनका मानना था कि किसी भी देश का भविष्य उसके युवा तय करते हैं, और आज के दिन हम सब मिलकर उनके विचारों को अपने दिल में जिंदा रखने का संकल्प लेते हैं और आगे इसी के साथ बढ़ते हैं।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: अनुभूति, आजकल हर जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI की बात चल रही है, लेकिन तुम्हें पता है मुझे सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्या लगता है? सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग मुझे लगता है जब से AI का इस्तेमाल खेती में होने लगा है।
2: बिल्कुल, जैसे पहले लोग सोचते थे कि AI सिर्फ कंप्यूटर्स और रोबोट्स तक सीमित है, लेकिन अब कई सारी फील्ड्स के साथ साथ एग्रीकल्चर की फील्ड में भी, यानी कि एग्रीकल्चर जैसी ज़रूरी फील्ड में भी किसानों की मदद AI आजकल कर रहा है।
1: सच में टेक्नोलॉजी और खेती का ये जो कॉम्बिनेशन है, ये बहुत ही फैसिनेटिंग है। सोचो, जो काम पहले किसानों को अंदाजे से करना पड़ता था, अब AI सही जानकारी देता है और सही कॉम्बिनेशन के साथ वो चीज़ हो जाती है।
2: जैसे AI की मदद से ये पता लगाया जा सकता है साथियों कि मिट्टी में कौन से न्यूट्रिएंट्स की कमी है, फसल को कितने पानी की ज़रूरत है और कौन सी बीमारी फसल को नुकसान पहुंचा सकती है। वैसे माधवी, इससे किसानों का समय और मेहनत दोनों बचते हैं, और सबसे बड़ी बात ये है कि इससे फसल की क्वालिटी और प्रोडक्शन भी बेहतर होता है।
1: मुझे तो ये जानकर बहुत अच्छा लग रहा है कि अब ड्रोन्स भी खेतों में इस्तेमाल हो रहे हैं। वे ऊपर से पूरी फसल की तस्वीर लेकर ये बता देते हैं कि कहाँ पे अच्छी फसल है और कहाँ समस्या हो रही है।
2: बिल्कुल, और AI वेदर प्रेडिक्शन में भी बहुत मदद करता है। किसान पहले से ही मौसम पर पूरी तरह निर्भर रहते थे, लेकिन अब टेक्नोलॉजी उन्हें पहले से अलर्ट कर सकती है।
1: ये तो बिल्कुल सच कहा तुमने, खासकर आज के समय में जब क्लाइमेट चेंज की वजह से मौसम इतना अनप्रेडिक्टेबल हो गया है, कुछ भी डिसाइड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तब आती है बारी इंटरनेट की, और इंटरनेट के साथ AI हमें बताता है कि कब कैसा मौसम होने वाला है।
2: बिल्कुल, अगर किसान सही समय पर सही फैसला ले तो नुकसान काफ़ी कम हो सकता है।
1: और AI सिर्फ बड़े किसानों के लिए ही नहीं, बल्कि छोटे छोटे किसानों के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है।
2: जैसे कई मोबाइल ऐप्स अब किसानों को उनकी भाषा में सलाह देते हैं, जैसे कौन सी फसल लगानी चाहिए, कौन सी दवा इस्तेमाल करनी चाहिए और मार्केट में फसल का सही दाम क्या चल रहा है।
1: इससे पता है सबसे अच्छा काम ये होता है कि किसानों को दूसरों पर अपने काम के लिए निर्भर नहीं रहना पड़ता।
2: और यही टेक्नोलॉजी की सबसे अच्छी बात है, ये लोगों को एम्पावर करती है।
1: मुझे लगता है कि AI एग्रीकल्चर में इसलिए भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि दुनिया की ये जो पॉपुलेशन है वो लगातार बढ़ रही है, और सबके लिए पर्याप्त भोजन उपलब्ध करना बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है।
2: बिल्कुल, और अगर मॉडर्न टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल किया जाए तो कम रिसोर्सेज में भी ज़्यादा और बेहतर फसल उगाई जा सकती है,
1: और इससे पानी की बचत भी होती है। आजकल स्मार्ट इरिगेशन सिस्टम्स सिर्फ उतना ही पानी देते हैं जितने की फसल को ज़रूरत हो,
2: और इससे एनवायरनमेंट को भी कम नुकसान होता है। तो दोस्तों, AI सिर्फ शहरों की टेक्नोलॉजी नहीं है, ये गाँव में किसानों के भविष्य को भी बदल सकता है।

0: क्या आप कुछ नया खरीदना चाहते हैं इस फेस्टिवल और फैमिली फंक्शंस के लिए,
1: या फिर अपनी फैमिली के साथ एक ट्रिप पर जाना चाहते हैं?
0: क्या ये सारी विशेष फाइनेंशियल टेंशन की वजह से अधूरी रह रही हैं?
1: अब लाइए खुशियों का रंग अपने और अपनी फैमिली के लिए मन्नापुरम गोल्ड लोन के साथ।
0: आकर्षक गोल्ड लोन स्कीम्स जिसमें इंटरेस्ट सिर्फ उतने दिनों का लगेगा जितने दिनों तक लोन रखा हो।
1: कोई मिनिमम फिक्स्ड पीरियड का झंझट नहीं, न 7 दिन का न 15 दिन का। अपनी नजदीकी ब्रांच पर जाएं या हमें टोल फ्री नंबर पर कॉल करें 1800-420-2233।
2: वैसे माधवी, तुमने कल का क्रिकेट मैच देखा? क्या क्लीन स्वीप किया है टीम इंडिया ने, मुझे तो मजा ही आ गया मैच देखकर।
3: बिल्कुल सही बोल रही हो तुम, हमारे स्पोर्ट्स क्लब में अरे बहुत मजा आया। हमारे स्पोर्ट्स क्लब में भारतीय शेरों ने जो कमाल दिखाया है उसे देखकर दिल खुश हो गया। श्रेयस अय्यर की कप्तानी में भारत ने जिम्बाब्वे को 3-0 से वाइट वॉश कर दिखाया। यूके दौरे के निराशा के बाद इस युवा टीम को ऐसे ही दमदार वापसी की जरूरत थी।
2: बिल्कुल, इस पूरी सीरीज का सबसे बड़ा टेक अवे जो रहा है वो हमारी नजर में सिर्फ एक ही नाम है, 15 साल का वो युवा जिसका नाम है वैभव सूर्यवंशी। उन्होंने क्या बल्लेबाजी की है, पहले मैच में सिर्फ 19 बॉल्स से सबसे युवा अर्धशतक जड़ने वाले वो पहले भारतीय बने और उसका रिकॉर्ड उन्होंने बनाया, और फिर तीसरे मैच में 81 रन्स की आतिशी पारी भी खेली।
3: पूरे 3 मैचेस में इस खिलाड़ी ने सबसे ज़्यादा रन बनाए और प्लेयर ऑफ द सीरीज भी बन गए। लेकिन हमें ईशान किशन की उस दूसरे T20 की 81 रन्स की पारी और तिलक वर्मा की कंसिस्टेंसी को नहीं भूलना चाहिए। भारत ने दूसरे मैच में तो बोर्ड पर 219 रन का टोटल कर दिखाया था।
2: बल्लेबाजी तो हमेशा से ही भारतीय टीम की मजबूत रही है, लेकिन इस बार गेंदबाजी में भी भारतीय गेंदबाज जिम्बाब्वे को टिकने नहीं दे रहे थे। फिर चाहे वो मयंक यादव हो और उनकी जो एक्सप्रेस वे की रफ्तार थी वैसी बॉलिंग हो, और याद रखें हम तो 5 विकेट से उन्होंने इस मैच को अपने नाम किया था। पहले मैच में उनकी जो गेंदबाजी थी और तीसरे मैच में जो उनकी गेंदबाजी थी उसमें उन्होंने 3 विकेट का जो स्पेल खेला था वो वाकई काबिले तारीफ था।
3: बिल्कुल, मयंक की स्पीड का तो जवाब ही नहीं था जिम्बाब्वे के पास। इसके अलावा पार्ट टाइम स्पिनर अभिषेक शर्मा के दूसरे मैच में 3 विकेट और रवि बिश्नोई की फिरकी ने बखूबी साथ निभाया। हालांकि अनुभूति, एक बात जो मुझे थोड़ी खटकी वो ये थी कि हमारी फील्डिंग थोड़ी सी ओके ही थी। आखिरी मैच में भारत ने 5 कैचेस को गिरा दिया और इस पर थोड़ा काम करना चाहिए, है ना?
2: बिल्कुल, ये तो तुम सही कह रही हो, क्योंकि

0: बड़े टूर्नामेंट्स में ये गलतियां हमें भारी भारी पड़ सकती हैं। और जिम्बाब्वे की तरफ से भी जो बॉलर्स थे उन्होंने अच्छी लड़ाई लड़ी, लेकिन उन्होंने जो रन बनाए वो भी कहीं ना कहीं ठीक थे, लेकिन फिर भी आखिरी मैच में जो डिसाइडर मैच था उसमें काफ़ी मज़ा आया।
1: बिल्कुल, कप्तान के तौर पर श्रेयस अय्यर की ये पहली T20 इंटरनेशनल सीरीज की जीत है, तो उनके लिए भी ये दौरा बहुत खास हो गया होगा।
0: बिल्कुल, तो दोस्तों ये था भारत और जिम्बाब्वे के बीच जो 3 मैचों की T20 सीरीज खेली गई थी उसके बारे में हमने आपको बताया। इस मैच से जुड़ी आप कौन सी जानकारी जानते हैं हमें ज़रूर बताइएगा। तब तक आइए सुनते हैं अगला गीत।

0: श्रोताओं, आज यानी कि 27 जुलाई का दिन बॉलीवुड की बेहद प्रतिभाशाली और बहुमुखी अभिनेत्री कृति सैनन के नाम है। आज वह अपना जन्मदिन मना रही हैं। अपनी खूबसूरत सी मुस्कान, सादगी, शानदार अभिनय और लगातार बेहतरीन फिल्मों के चयन के कारण कृति ने बहुत कम समय में हिंदी सिनेमा में अपनी अलग ही पहचान बनाई है।
1: बिल्कुल, अभिनेत्री कृति सैनन का जन्म 27 जुलाई यानी कि आज के दिन 1990 को नई दिल्ली में हुआ। उनके पिता चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और उनकी माँ दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रह चुकी हैं। पढ़ाई में भी कृति हमेशा से बेहतरीन रही। उन्होंने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में ही अपने कोर्सेज किए हैं, जिसमें उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। इंजीनियरिंग के बाद उन्होंने मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखा और फिर अभिनय की ओर रुख किया।
0: दिलचस्प बात यह है कि कृति का फिल्मी दुनिया से कोई पारिवारिक संबंध नहीं था। उन्होंने अपनी मेहनत, आत्मविश्वास और अभिनय के दम पर बॉलीवुड में अपनी जगह बनाई। ये सफर उन युवाओं के लिए भी प्रेरणा है जो अपने सपनों को मेहनत से पूरा कर सकते हैं।
1: कृति ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत साल 2014 में तेलुगु फिल्म से की। उसी वर्ष उन्होंने बॉलीवुड में फिल्म हीरोपंती से अपना डेब्यू किया। इस फिल्म में उनके अभिनय और आत्मविश्वास को खूब सराहा भी गया और इसके लिए उन्हें फिल्म फेयर पुरस्कार भी प्राप्त हुआ।
0: इसके बाद कृति ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। दिलवाले में शाहरुख खान, काजोल और वरुण धवन जैसे बड़े कलाकारों के साथ काम करना उनके करियर का बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव बना। इसके बाद राबता, बरेली की बर्फी, लुका छुपी, अर्जुन पटियाला, हाउसफुल 4, मिम्मी, हम दो हमारे दो, बच्चन पांडे, भेड़िया, शहजादा, आदि पुरुष, तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया और द क्रू जैसी फिल्म में अपनी अलग अलग तरीके से किरदारों को बहुत अच्छे से बखूबी निभाया।
1: अगर उनकी सबसे प्रभावशाली फिल्मों की बात करें तो उनमें बरेली की बर्फी और मिमी का नाम सबसे ज़्यादा आता है। फिल्म बरेली की बर्फी में उन्होंने एक आत्मनिर्भर और बेबाक युवती का किरदार निभाया, जिसने छोटे शहरों की लड़कियों को सपने देखने के लिए बहुत आत्मविश्वास दिया। इस फिल्म ने ये संदेश दिया कि अपनी पहचान बनाना और अपने फैसले खुद लेना हर लड़की का अधिकार है।
0: बरेली की बर्फी के बाद आई मिम्मी। यह फिल्म कृति के करियर का मील का पत्थर साबित हुई। सरोगेसी जैसी संवेदनशील विषय पर बनी इस मूवी में उन्होंने एक ऐसी युवती की भूमिका निभाई जो बहुत सारी परिस्थितियों से लड़ते हुए जिम्मेदारी, मातृत्व और आत्मसम्मान की मिसाल बन जाती है। इस किरदार के लिए कृति ने शारीरिक और भावनात्मक दोनों स्तरों पर खूब मेहनत करी और उनके अभिनय की देश भर में सराहना हुई।
1: इस शानदार अभिनय के लिए कृति सैनन को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री से सम्मानित किया गया, जो उनके करियर की एक बड़ी उपलब्धि है।
0: इसके बाद आई लुका छुपी। ये भी एक ऐसी फिल्म रही जिसने मनोरंजन के साथ साथ समाज में बदलती सोच, रिश्तों और पारिवारिक मूल्यों पर हल्के फुल्के अंदाज में बात, वहीं भेड़िया, तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया जैसी फिल्म उन्होंने अलग अलग शैली के किरदार निभाकर ये साबित कर दिखाया कि वो खुद को दोहराने की बजाय नए प्रयोग करना पसंद करती हैं।
1: अभिनय के अलावा भी कृति सैनन फिटनेस, अनुशासन और सकारात्मक सोच के लिए भी जानी जाती हैं। सोशल मीडिया पर भी वो अक्सर युवाओं को मेहनत करने के लिए प्रोत्साहित करती हैं और साथ ही अभिनय के अलावा उन्होंने हाइफ़न करके उनकी खुद की एक कंपनी खोली है जो स्किन केयर प्रोडक्ट्स के लिए काफ़ी मशहूर है।

0: है ना माधवी?
1: बिल्कुल सही कह रही हो। तो हमारी ओर से कृति सैनन को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। वे स्वस्थ रहें, खुश रहें और अपनी शानदार अदाकारी से सिनेमा की जगत में समृद्धि हासिल करती रहें।

0: आपको आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा और इसी के साथ अब वक्त हो चला है आपको आज के प्रश्नों के उत्तर बताने का।
1: यही मैं कहना चाह रही थी अनुभूति, पर मुझे लगता है कि हम दोनों को बात करने की इतनी जल्दी है हमारे श्रोताओं से कि वो रह जाता है कि किसको पहले बोलना है
0: बात करने की और प्रश्नों के उत्तर बताने की, क्योंकि कब से रास्ता देख रहे हैं।
1: जिज्ञासा रहती होगी ना मन में कि क्या जवाब हो सकता है। तो दोस्तों, आज का जो पहला सवाल था वो ये था कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका उत्तर है 5 जून को।
0: और दूसरा प्रश्न था कि माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है, जिसका उत्तर है नेपाल और चीन की सीमा पर।
1: तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा कार्यक्रम अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा कार्यक्रम अच्छा लगा है तो आप हमें ये ज़रूर बता सकते हैं
0: पत्र और ईमेल के माध्यम से। इसी के साथ दीजिए इजाज़त अनुभूति
1: और माधवी को।
0: नमस्कार।

0: कार्यक्रम का पहला गीत आप सुन रहे थे आन मिलो सजना फिल्म से। स्वर थे लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी और साथियों के। आनंद बख्शी के बोल थे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।
1: क्या आप कुछ नया खरीदना चाहते हैं इस फेस्टिवल और फैमिली फंक्शंस के लिए,
2: या फिर अपनी फैमिली के साथ एक ट्रिप पर जाना चाहते हैं?
1: क्या ये सारी विशेज फाइनेंशियल टेंशन की वजह से अधूरी रह रही हैं?
2: अब लाइए खुशियों का रंग अपने और अपनी फैमिली के लिए मन्नापुरम गोल्ड लोन के साथ।
1: आकर्षक गोल्ड लोन स्कीम्स जिसमें इंटरेस्ट सिर्फ उतने दिनों का लगेगा जितने दिनों तक लोन रखा हो।
2: कोई मिनिमम फिक्स्ड पीरियड का झंझट नहीं, न 7 दिन का न 15 दिन का। अपनी नजदीकी ब्रांच पर जाएं या हमें टोल फ्री नंबर पर कॉल करें 1800420223।
0: कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं फिर कब मिलोगी फिल्म से। स्वर है मुकेश और लता मंगेशकर के। मजरू सुल्तानपुरी का लिखा गीत है, संगीत दिया है आर.टी. बर्मन ने।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत, ये आकाशवाणी इंदौर है। अब सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम NCERT उमंग।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। आप सबका स्वागत है आज के उमंग कार्यक्रम में। आइए करते हैं शुरुआत एक सुंदर विचार के साथ, जिसे हमें भेजा है बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से ममता मार्कंडेय, संजय मार्कंडेय और बेबी किट्टू जी ने। लिखते हैं,
2: जिंदगी परिवर्तनों से ही बनी है, घबराए नहीं। कुछ परिवर्तन आपको सफलता दिलाएंगे तो कुछ सफल होने के गुण सिखाएंगे।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस सुंदर विचार के लिए। आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है राधेनगर मदन महल के पीछे अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कारिया जी का। लिखते हैं, दिनांक 6/7/2026 को प्रसारित किया गया उमंग प्रोग्राम का श्रोता संवाद मुझे बेहद पसंद आया, जिसमें प्रोफेसर विनोद जी द्वारा परीक्षा के दौरान बच्चों पर होने वाले तनाव को कैसे कम करें इस विषय पर जानकारी दी गई है।
2: ये हमें बेहद पसंद आई और दिनांक 7 जुलाई 2026 से 10 जुलाई 2026 का उमंग प्रोग्राम भी बेहद पसंद आया, जिसमें आपने ये भी जानिए कि अंतर्गत पेड़ों के बारे में जानकारी दी। हमें बेहद अच्छी लगी। इतनी अच्छी जानकारी के लिए पूरी उमंग टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ।
3: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद राजेश कारिया जी। अगला संदेश हमें मिला है मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरेलकर और रतनमाला जी का। लिखते हैं,
2: विमलेश जी, अजीत जी, इन दिनों पेड़ों के बारे में हमारे ज्ञान में बहुत वृद्धि हो रही है। बहुत ही शिक्षाप्रद और रोचक जानकारी हमें सुनने को मिल रही है। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति चल रही है। इन दिनों सचमुच मजा आ रहा है। धन्यवाद जी।
3: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अगला संदेश हमें मिला है माँ महामाया चौक मेघापारा लोरमी छत्तीसगढ़ से राम कुशल पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल, दीपांजलि पटेल, दीपक पटेल और टेकलाल पटेल जी का। लिखते हैं,
2: उमंग कार्यक्रम हमें बहुत अच्छा लगता है। हम लोग बड़े ध्यान से सुनते हैं। 9 जुलाई दिन गुरुवार को आपने 5000 साल तक जीने वाले पेड़ के बारे में जानकारी दी। ये हमें बहुत अच्छी लगी। इतनी रोचक व ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए धन्यवाद। विमलेश जी और अजीत जी को हमारा नमस्कार।
3: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस सुंदर संदेश के लिए। और साथ साथ
2: गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरता बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलऊ दास, जय दास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतीम बाई मानिकपुरी जी का। लिखते हैं,
3: जय गुरुदेव, उमंग टीम को जय जोहार, पल पल बंदगी। 29 जून 2026 को उमंग में आदिवासी परिवार की कहानी बुधनी गई है जंगल कार्यक्रम सुनाया, जो हमें बहुत पसंद आया और पर्यावरण को बचाने की सीख भी हमें मिली। आपका उमंग कार्यक्रम स्वर्ग की तरह सुंदर है, सभी सुनने वालों को स्वर्ग की तरह अनुभूति कराता है, जीवन को खुशनुमा बना देता है। विमलेश मैडम जी और अजीत साहब जी को जय जोहार बंदगी करते हैं। धन्यवाद साहब
2: जी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। कांडला बंदरगाह कच्छ से जगदीश जोहरी, पूजा और पायल कुमारी
3: और गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी जी का। आप सबको धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। और अब बारी है श्रोताओं पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तरों को जानने की। तो हमारा पहला प्रश्न था कि मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया था।
2: इसका उत्तर है साथियों

0: मोबाइल या सेलफोन का आविष्कार अमेरिकी इंजीनियर मार्टिन कूपर ने 1973 में किया था।
1: जी, हमारा अगला प्रश्न था, जॉन बील मेला कहाँ और कब मनाया जाता है?
0: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। जॉन बील मेला असम के मोरीगांव जिले में हर वर्ष माघ बिहू यानी जनवरी में आयोजित होता है। इस मेले में आज भी वस्तु विनिमय प्रणाली से लेन देन होता है।
1: और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न, हमने पूछा था आपसे कि मोरुंग किसे कहते हैं?
0: इसका उत्तर है, मोरुंग नागालैंड का पारंपरिक युवा आवास है जो लकड़ी और बांस से बना होता है। यहाँ युवाओं को संस्कृति, आखेट, कला और युद्ध की शिक्षा दी जाती है।
1: जी, और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न, हमारा प्रश्न था श्रोताओं की, बहा उत्सव में कौन कौन से फूल चढ़ाए जाते हैं?
0: संथाल जनजाति के इस उत्सव में साल यानी सखुआ और महुआ के फूल चढ़ाए जाते हैं।
1: जी, और सुनिए हमारा अंतिम प्रश्न, हमने पूछा था कैल पौध उत्सव कहाँ और किन के द्वारा मनाया जाता है और कैल पौध शब्द का क्या अर्थ है?
0: इसका उत्तर है साथियों, कैल का मतलब हथियार या उपकरण होता है और पौध का अर्थ होता है उत्सव यानी हथियारों और उपकरणों का उत्सव। ये कर्नाटक की कोडावा जनजाति द्वारा मनाया जाता है।
1: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं, हमारी प्रश्नोत्तरी में भाग लेने के लिए। आपसे निवेदन है इसी प्रकार से जुड़े रहिए हमारे उमंग कार्यक्रम से। तो अब बारी है आज का प्रश्न सुनने की। हमारा आज का प्रश्न है, भारतीय फिल्म जगत का सबसे बड़ा सम्मान या पुरस्कार क्या है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
0: भारतीय फिल्म जगत का सबसे बड़ा सम्मान क्या है?
1: भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर। और हाँ, आप हमारे ईमेल पर यानी audio@cit.nic.in पर भी अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं।
0: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं। इसके द्वारा हमारी शैक्षिक गतिविधियों की निरंतर जानकारी आपको मिलती रहेगी। और हाँ, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों का ध्वनि रूपांतरण यानी ऑडियो बुक सुनना चाहते हैं तो
1: YouTube में जाकर टाइप कीजिए NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल। आपको वहाँ सर्च के विकल्प मिलेंगे, उन्हें फॉलो कीजिए और अपनी मनचाही पाठ्य पुस्तकों को सुनिए।
0: एक और जरूरी सूचना आपको दे दें कि यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों के PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो सीधे किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT Books PDF। सर्च के विकल्प पर जाकर आप यहां अपनी मनचाही पुस्तक डाउनलोड कर सकते हैं।
1: जी, तो श्रोताओं, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो पहला कार्यक्रम आपके लिए हम लेकर आए हैं, उसका शीर्षक है चेतक की वीरता।
0: कक्षा 6 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक की कविता की संगीतमय प्रस्तुति है, जिसमें हल्दी घाटी के युद्ध में महायोद्धा वीर महाराणा प्रताप के प्रिय घोड़े चेतक की चपलता, स्वामी भक्ति और वीरता का बखान किया गया है। कविता के द्वारा बच्चों के मन में जीव जगत के प्रति प्रेम और करुणा का भाव भी जागृत करने का प्रयास किया गया है।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम चेतक की वीरता। आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम, शीर्षक है अंगुलीमाल।
1: ये कार्यक्रम महात्मा गौतम बुद्ध के जीवन में घटित एक प्रेरक प्रसंग पर आधारित है, जिसमें बताया गया है कि महात्मा बुद्ध के मृदु भाव और विनम्रता से किस प्रकार उस समय के दुर्दांत डाकू अंगुलीमाल का हृदय परिवर्तन हो गया और वो महात्मा बुद्ध का अनुयायी बन गया।

0: एक जंगल में अंगुलीमाल नाम का एक डाकू रहता था। वो बहुत निर्दयी था। वो जंगल से आने जाने वालों को पकड़कर बहुत सताता था।
1: ए, जो कुछ है रख दो यहाँ।
2: मुझे छोड़ दो, हाथ वाले कहने भी उतारो, मुझे छोड़ो,
3: मेरी अंगूठी ले लो।
0: वो उन्हें मार डालता था, वो उनकी अंगुलियों की माला बनाता था, उस माला को गले में पहनता था, इसीलिए लोग उसे अंगुलीमाल कहते थे। सभी लोग उससे बहुत डरते थे और जंगल में नहीं जाते थे। एक बार महात्मा बुद्ध वहां आ गए। सभी लोगों ने उन्हें प्रणाम किया, उन्हें जंगल में जाने से रोका। लोगों ने महात्मा बुद्ध को अंगुलीमाल के बारे में सब कुछ बताया।
4: नाथ,
5: महात्मा,
4: प्रभु,
5: महात्मा,
4: प्रभु,
6: प्रभु, अब जंगल में मत जाएं।
5: वहाँ अंगुलीमाल है।
6: हाँ प्रभु,
5: वो बहुत बड़ा डाकू है।
7: हाँ प्रभु, आप वहाँ ना जाएं। हाँ प्रभु, वो डाकू लोगों को मार देता है।
8: डरने की कोई बात नहीं है, आप धैर्य रखें।

0: महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हुए जंगल में चले गए। जब अंगुलीमाल को महात्मा बुद्ध के आने का पता चला तो उसे बहुत गुस्सा आया।
1: कौन कौन है वहां?
0: वो गुस्से से भरा महात्मा बुद्ध के पास आया। महात्मा बुद्ध ने धैर्यपूर्वक मुस्कुराकर उसका स्वागत किया।
2: स्वागत है बंधु, आपका इस जंगल में परम स्वागत है।
3: अरे मेरा स्वागत?
0: इस प्रकार बिना डरे मुस्कुराकर स्वागत करना अंगुलीमाल के लिए नई बात थी। सब लोग तो उससे डरते थे और उससे घृणा करते थे। महात्मा बुद्ध ने अंगुलीमाल से कहा,
2: भाई गुस्सा छोड़ो और सामने वाले पेड़ से चार पत्ते तो तोड़ लो।
1: हाँ ठीक है।

0: पत्तों को जहां से तोड़ लाए हो फिर से वहीं लगाओ।
1: ये कैसे हो सकता है? जो पत्ता एक बार पेड़ से टूट गया वो फिर कैसे जुड़ सकता है?
0: तो तुम जानते हो कि जो एक बार टूट गया वो दोबारा जुड़ता नहीं।
1: जी जी महात्मा।
0: तो तुम तोड़ने का काम क्यों करते हो जब तुम फिर से जोड़ नहीं सकते?
1: जी

0: मैं समझ गया प्रभु, मैं समझ गया। क्षमा करे, क्षमा करे प्रभु, मुझे क्षमा करे।
1: कल्याण हो, आयुष्मान भव।

अंगुलीमाल महात्मा बुद्ध की बात समझ गया। वो उनकी शरण में आ गया और उनका शिष्य बन गया।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम अंगुलीमाल। आशा है कि आपको यह कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा। आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। हमारा अगला कार्यक्रम है फादर डॉक्टर कामिल बुल्के। ये कार्यक्रम हिंदी साहित्य के प्रकांड विद्वान डॉक्टर कामिल बुल्के के जीवन और उनके द्वारा हिंदी साहित्य को दिए गए योगदान के बारे में, विशेषकर तुलसी साहित्य में उनके द्वारा लिखे गए शोध की विस्तार से जानकारी देता है।
1: आइए सुनते हैं ये कार्यक्रम।
2: यूरोप के पश्चिमी भाग में एक छोटा लेकिन खूबसूरत देश है बेल्जियम। बेल्जियम में एक प्रांत है फ्लैंडर्स। इस प्रांत में एक छोटा सा शांत और सुंदर शहर है रम्स कपेला। 1 सितंबर 1909 को अडोल्फ और मारिया बुल्के के घर में एक बालक का जन्म हुआ। माता पिता ने बड़े प्रेम से उसका नाम रखा कामिल बुल्के।
3: कामिल का अर्थ होता है पूजा की वेदी और बुल्के का अर्थ है सुगंधित पुष्प। और सच में जैसा कि नाम था, उन्होंने अपने नाम को 100% चरितार्थ किया। बचपन से ही उनकी गहरी रुचि अध्यात्म और साहित्य में दिखाई देने लगी थी। माता पिता अक्सर उनके बारे में बातचीत किया करते।
4: मारिया, क्या तुम्हें नहीं लगता कि कामिल का अध्यात्म की ओर कुछ ज्यादा ही झुकाव है?
3: मुझे तो अब ये लगने लगा है कि यदि ऐसा ही रहा तो एक दिन वो चर्च में सन्यासी बन जाएगा।
4: मुझे भी ऐसा ही लगता है।
3: स्कूली शिक्षा के बाद उन्होंने ल्यूवेन विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग में बीएससी डिग्री प्राप्त की और 1930 में स्पष्ट दिव्य अनुभूति प्राप्त होने पर शिक्षक और पुरोहित बनाने वाले जेसुइट समाज में शामिल हो गए।
2: 6 नवंबर 1935 को 17 दिनों की समुद्री यात्रा के बाद वो बंबई आ गए, जो अब मुंबई है। उन्होंने भारत को अपनी कर्मस्थली के रूप में चुना।
3: उन्होंने भारत भूमि को नमन किया। ये गोस्वामी तुलसीदास जी की भूमि है। दरअसल अपनी पढ़ने की आदत के कारण बेल्जियम में ही उन्होंने तुलसीदास जी की कई चौपाइयों का जर्मन अनुवाद पढ़ा था।
2: उनमें से एक चौपाई से वो बहुत प्रभावित हुए। चौपाई थी, धन्य जन्मु जग तीतल तासु, पितहि प्रमोद चरित सुनि जासु।
3: अर्थात उस बेटे का जीवन धन्य है जिसका यश और कीर्ति सुनकर पिता आनंदित होता है। इन पंक्तियों से वे इतने प्रभावित हुए कि कवि तुलसीदास जी के अनन्य भक्त बन गए। उन्होंने लिखा था,
5: विश्व साहित्य में माता और पुत्र के संबंधों की बहुत सारी चर्चा मिल जाएगी, लेकिन पिता पुत्र के संबंधों की ऐसी व्याख्या और ऐसा ऊंचा आदर्श मुझे सिर्फ भक्त कवि तुलसीदास जी की रामायण में ही मिला।
3: भारत आने पर उन्होंने जो देखा उसने उनके संपूर्ण जीवन के चिंतन और दर्शन को एक नया आयाम दे दिया। उन्होंने अपने भारत आगमन के समय को याद करते हुए अपनी एक पुस्तक एक ईसाई की आस्था राम कथा और हिंदी में लिखा है,
5: 1935 में मैं जब भारत पहुंचा, मुझे ये देखकर आश्चर्य बड़ा आश्चर्य हुआ कि रास्ते में सभी संकेत पट

0: पर सूचनाएं और स्थानों के नाम अंग्रेजी में थे। मैंने ये जाना कि अनेक शिक्षित लोग अपनी सांस्कृतिक परंपराओं से अनजान थे और इंग्लिश में बोलना गर्व की बात समझते थे। मैंने विचार किया कि मैं हिंदी भाषा में सिद्धता को प्राप्त करने का पूरा प्रयास करूंगा। हिंदी स्थानीय और जनजातीय भाषाओं में जो ज्ञान प्रणाली और सीखने की सामग्री अंतर्निहित है, उनके संरक्षण और पुनरुत्थान से ही हमारा विकास संभव है।
1: मुंबई से वे दार्जिलिंग गए और अल्प प्रवास के बाद अंततः गुमला आ गए, जो आज के झारखंड राज्य में है। उन्होंने गुमला के सेंट इग्नेसियस विद्यालय में 3 साल तक गणित और भौतिकी पढ़ाया और हिंदी की कक्षा में अपने ही विद्यार्थियों को सहपाठी बनाकर हिंदी सीखने लगे। गणित पढ़ाने के बाद वे हिंदी की कक्षा में सबसे पीछे बैठ जाते थे और पूरी तन्मयता से हिंदी सीखते थे।
2: हिंदी के मूल रूप को समझने के लिए धीरे धीरे उन्होंने ब्रजभाषा और अवधी भी सीखी।
1: सन 1938 में झारखंड के ही एक शहर हजारीबाग गए और सेंट कोलंबस कॉलेज में पंडित बद्रीदत्त शास्त्री के निर्देशन में संस्कृत और स्वामी तुलसीदास की 2 प्रमुख रचनाओं रामचरितमानस और विनय पत्रिका का गहन अध्ययन करने लगे।
2: फिर उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्वतंत्र परीक्षार्थी के रूप में स्नातक की उपाधि प्राप्त की और उच्च अध्ययन के अभिप्राय से वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय पहुंचे और वहां के हिंदी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर धीरेंद्र वर्मा से मिले।
3: आइए आइए फादर बुलके, आपका स्वागत है।
0: जी डॉक्टर धीरेंद्र, आपके स्वागत से मैं अनुग्रहित और कृतार्थ हुआ। मेरी हार्दिक अभिलाषा है कि मैं हिंदी में अपना स्नातकोत्तर अध्ययन इलाहाबाद विश्वविद्यालय से करूं।
3: ठीक है, लेकिन उम्मीदवार की कुछ परीक्षा तो लेनी ही होगी।
0: जी मैं प्रस्तुत हूं।
3: तो फादर, मैं चाहता हूं कि आप तुलसीदास जी की विनय पत्रिका के 2 पदों की इसी समय सप्रसंग व्याख्या करें। ये लीजिए।
0: जी अवश्य।
1: फादर कामिल बुलके ने कुछ ही देर में उन पदों की लिखित व्याख्या कर दी।
4: ओह अद्भुत। तो फादर, अब विलंब कैसा? आप इसी समय से विश्वविद्यालय के हिंदी संकाय में अध्ययन के लिए आमंत्रित हैं।
0: धन्यवाद डॉक्टर धीरेंद्र, ये मेरा सौभाग्य होगा।
4: जी।
1: स्नातकोत्तर अध्ययन के बाद फादर कामिल बुलके ने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने डॉक्टर धीरेंद्र वर्मा की प्रेरणा से डॉक्टर माता प्रसाद के निरीक्षण में शोध कार्य किया।
2: इससे जुड़ी एक बड़ी रोचक घटना है। फादर कामिल बुलके चाहते थे कि उनका शोध हिंदी में प्रकाशित हो, लेकिन उन दिनों सभी शोध अंग्रेजी में ही हुआ करते थे।
1: उन दिनों इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर अमरनाथ झा थे। फादर कामिल बुलके ने इसके लिए विश्वविद्यालय के कुलपति से मिलने का समय मांगा।
0: क्या मैं अंदर आ सकता हूँ कुलपति महोदय?
5: आइए आइए फादर बुलके। मुझे बताया गया है कि राम कथा पर आपका शोध बहुत अच्छा बन पड़ा है। आपने इसमें बहुत से नए आयाम भी जोड़े हैं।
0: जी कुलपति महोदय, मैं अपने शोध पत्र को प्रकाशित करने के बारे में ही आपसे विमर्श करने आया हूँ।
5: जी जी,
0: मैं चाहता हूँ कि मुझे अपने शोध पत्र को देवनागरी में प्रकाशित करने की अनुमति दी जाए।
5: मगर फादर, आप जानते हैं कि विश्वविद्यालय के नियमानुसार शोध पत्र सिर्फ अंग्रेजी में ही प्रकाशित किए जा सकते हैं।

0: कुलपति महोदय, जैसा कि आपको ज्ञात है, मेरा शोध का विषय ही रामकथा की उत्पत्ति और विकास है।
1: जी,
0: मैं दृढ़ता से विश्वास करता हूं रामकथा और तुलसी की आत्मा के विराट सौंदर्य के दर्शन केवल और केवल उनकी मातृभाषा में ही हो सकते हैं।
1: जी, मैं आपकी भावनाओं का सम्मान करता हूं फादर पुलके।
0: तो मैं आपकी इस प्रतिक्रिया को एक सकारात्मक उत्तर के रूप में देखने की अपेक्षा करता हूं।
1: जी,
2: उन्होंने राम और राम कथा के बारे में अपने शोध ग्रंथ में लिखा है।
0: देखिए, राम वाल्मीकि कथा के मिथकीय पात्र नहीं है, बल्कि वे तो इतिहास पुरुष हैं, जिनकी व्याप्ति सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में है। रामायण सिर्फ धार्मिक साहित्य ही नहीं है बल्कि जीवन जीने के तरीके का दस्तावेज है।
3: उनके शोध की विशेषता ये है कि उन्होंने रामायण से संबंधित किसी भी विषय को छोड़ा नहीं है। हिंदी के अतिरिक्त उन्होंने तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, बांग्ला, कश्मीरी, सिहली आदि भाषाओं के साहित्य में भी उपलब्ध राम कथा की गहन छानबीन की है।
2: उन्होंने तेलुगु में रचित श्री रंगनाथ रामायण और महर्षि कम्बन द्वारा तमिल में रचित कम्ब रामायण को भी संदर्भित किया। चार भागों में विभक्त 600 पृष्ठों में छपी उनकी ये थीसिस एक प्रतिनिधि शोध ग्रंथ साबित हुई और भारत सहित पूरे विश्व में विभिन्न भाषाओं में प्रकाशित हुई। इसके बाद सारी दुनिया फादर बुलके को जानने लगी।
3: अब जहां भी राम कथा होती, फादर कामिल बुलके का नाम वक्ताओं की सूची में सबसे ऊपर होता। उन्होंने देश भर में राम कथा पर व्याख्यान दिए। वे कहा करते थे,
0: सब हैं नचावत राम गोसाई, मोहे नचावत तुलसी गोसाई।
3: फादर कामिल बुलके ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से सन 1949 में राम कथा पर डी फिल करने के बाद तुलसीदास के रामचरितमानस का और गहन अध्ययन किया। उन्होंने राम कथा की उत्पत्ति और विकास पर पीएचडी की।
2: डॉक्टर धीरेंद्र वर्मा कहते हैं,
4: इस शोध ग्रंथ को वास्तव में राम कथा संबंधी समस्त सामग्री का विश्वकोश कहा जा सकता है। हिंदी क्या किसी भी यूरोपीय अथवा भारतीय भाषा में इस प्रकार का कोई दूसरा अध्ययन उपलब्ध नहीं है।
3: सन 1950 में उन्हें बहुत सम्मान पूर्वक भारत की नागरिकता प्रदान की गई। इसी वर्ष वे रांची के सेंट जेवियर कॉलेज के हिंदी और संस्कृत विभाग के अध्यक्ष बना दिए गए और आजीवन उसी पद पर रहे। वे हमेशा अपने विद्यार्थियों को उनकी अपनी भाषा में ही बातचीत करने हेतु प्रोत्साहित करते थे।
2: सबसे मशहूर अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश लिखने वाले फादर कामिल बुलके ही हैं। 30 वर्षों की उनकी हिंदी साधना का जीवंत दस्तावेज उनका शब्दकोश माना जाता है।
3: उन्होंने इसमें 40,000 शब्द जोड़े और उसे प्रशासनिक, वैज्ञानिक और तकनीकी दृष्टि से अद्यतन करते रहे। फादर कामिल बुलके बहुभाषाविद थे। वो अपनी मातृभाषा फ्लेमिश के अतिरिक्त अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, लैटिन, ग्रीक, संस्कृत और हिंदी पर भी संपूर्ण अधिकार रखते थे। इन भाषाओं के ज्ञान के कारण ही उन्हें शब्दकोश बनाने में बहुत सहायता मिली। कामिल बुलके की हिंदी सेवाओं के लिए 1974 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया। 17 अगस्त 1982 को दिल्ली में इस अद्भुत शोध शिल्पी, राम कथा अनुरागी, बहुभाषाविद

0: और हिंदी भाषा के अनन्य सेवक का निधन हो गया। उनकी मृत्यु शैया पर मात्र दो पुस्तकें थीं, बाइबल और गोस्वामी तुलसीदास जी की विनय पत्रिका। उन्हें दिल्ली में ही दफनाया गया।
1: 36 साल बाद वर्ष 2018 में पद्म भूषण फादर कामिल बुल्के का पार्थिव अवशेष दिल्ली से उनकी कर्मभूमि रांची लाया गया। उनके अवशेष को पूरे सम्मान के साथ रांची सेंट जेवियर कॉलेज में दफनाया गया।
0: महान शब्द शिल्पी और हिंदी साहित्य के इस पुरोधा फादर कामिल बुल्के बाबा को हमारा आभार सहित शत शत नमन।
2: और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत और उमंग की तकनीकी टीम के साथ यानी
3: जगबंधु,
2: चेतना
3: और फैजान के साथ विमलेश को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
4: उमंग उमंग उमंग उमंग।
5: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT उमंग। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। लीजिए सुनिए सुगम संगीत। इसमें आज हम आपको सुनवा रहे हैं पंडित कुमार गंधर्व के गाए भजन।

0: और गंधर्व के गाए निर्गुण भजन। ये आकाशवाणी इंदौर है। थोड़ी ही देर में अगला प्रसारण आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से किया जाएगा।
1: प्रादेशिक समाचार दर्शन।

0: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम प्रादेशिक समाचार दर्शन। मैं हूं राणा शाहिद। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, इस कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं प्रदेश के विभिन्न जिलों की समसामयिक गतिविधियों पर अपनी विशेष रिपोर्ट। आज के इस अंक में हम जानेंगे कि प्रदेश के विभिन्न अंचलों में शासन की योजनाएं किस प्रकार आम नागरिकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रही हैं। तो आइए शुरू करते हैं प्रादेशिक समाचार दर्शन। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए हमारी पहली रिपोर्ट है पन्ना जिले से, जहां स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के द्वितीय चरण के तहत केवल खुले में शौच से मुक्ति ही नहीं बल्कि संपूर्ण स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। जिले में अपशिष्ट प्रबंधन को न केवल स्वच्छता का साधन बनाया गया है बल्कि इसे पंचायतों की आय अर्जन से भी जोड़ा गया है। पेश है पन्ना से हमारे संवाददाता दिलीप कुमार शर्मा की यह रिपोर्ट।
1: पन्ना जिले में स्वच्छ भारत मिशन के द्वितीय चरण के तहत केवल खुले में शौच से मुक्ति ODF ही नहीं बल्कि संपूर्ण स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। जिले में अपशिष्ट प्रबंधन को न केवल स्वच्छता का साधन बनाया गया है बल्कि इसे पंचायतों की आय अर्जन से भी जोड़ा गया है। इसका सबसे सटीक उदाहरण पन्ना जिले की आदर्श ग्राम पंचायत शाहनगर का मॉडल है, जिसने पूरे प्रदेश में सर्वोच्च राजस्व अर्जित कर प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इस उपलब्धि के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने पन्ना दौरे के दौरान ग्राम पंचायत शाहनगर सरपंच मनोज जैन को पन्ना में सम्मानित किया। शाहनगर पंचायत में डोर टू डोर कचरा कलेक्शन किया जाता है, जिसे वैज्ञानिक निस्तारण और जैविक खाद निर्माण में उपयोग किया जाता है। साथ ही बाजार क्षेत्र में प्रतिदिन झाड़ू और डस्टबिन प्रणाली लागू की गई है। वहीं अवशिष्ट के पुनर्चक्रण और बेहतर पंचायत कर प्रबंधन के माध्यम से मध्य प्रदेश में सर्वाधिक आय अर्जित करने वाली पंचायत बनी। पन्ना जिले की ग्राम पंचायत शाहनगर ने यह साबित कर दिया है कि सही प्रबंधन और दृढ़ इच्छा शक्ति से कचरा प्रबंधन को एक लाभदायक मॉडल में बदला जा सकता है। पन्ना जिले में ग्रामीण स्वच्छता अब केवल शौचालयों के निर्माण तक सीमित नहीं है बल्कि कचरा प्रबंधन को कचरे से कंचन वेस्ट टू वेल्थ के सिद्धांत पर संचालित किया जा रहा है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए पन्ना से मैं दिलीप कुमार शर्मा।
0: हमारी दूसरी खबर है रायसेन से, जहां जिले को पूर्णतः नशा मुक्त बनाने और युवाओं को एक स्वस्थ जीवन शैली की ओर प्रेरित करने के लिए नशे से दूरी है जरूरी 2.0 अभियान के तहत जागरूकता गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे रायसेन संवाददाता विनीत महेश्वरी।
2: रायसेन जिले को पूर्णतः नशा मुक्त बनाने और युवाओं को एक स्वस्थ जीवन शैली की ओर प्रेरित करने के उद्देश्य से संचालित नशे से दूरी है जरूरी 2.0 अभियान के तहत रायसेन जिले में व्यापक स्तर पर जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में रायसेन पुलिस कंट्रोल रूम में एक विशाल एवं भव्य जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। रैली में बड़ी संख्या में स्कूली छात्र छात्राओं एवं पुलिस कर्मियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। हाथों में प्रेरक नारों और स्लोगन लिखी तख्तियां थामे विद्यार्थी ने शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरते हुए आम जनमानस को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक किया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सांची विधायक एवं पूर्व मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी भी शामिल हुए। वहीं जिले के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र मंडीदीप में भी लगातार विभिन्न जागरूकता गतिविधियां आयोजित करते हुए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इन आयोजनों का मुख्य उद्देश्य श्रमिकों और युवाओं को नशे के लत से दूर रखकर एक स्वस्थ व नशा मुक्त समाज का निर्माण करना है। रायसेन SP आशुतोष गुप्ता ने बताया कि
3: प्रकार की जो नशा है वो जो है वो विनाश का कारण बनता है। उससे दूर रहें, स्वयं भी दूर रहें और अपने परिवार को भी इस नशे से दूर करें। आगामी 15 दिवस में हर एक थाना स्तर पर जो है जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए स्कूल कॉलेजेस और अलग अलग जो पब्लिक प्लेसेस हैं वहाँ पर जाकर के कोशिश की जाएगी कि ज्यादा से ज्यादा जनता को इसके संबंध में जागरूक किया जाए।
2: प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए रायसेन से मैं विनीत महेश्वरी।
0: हमारी अगली खबर है मंदसौर जिले से, जहां नशे से दूरी है जरूरी 2.0 अभियान चलाकर विभिन्न माध्यमों

0: से आमजन को नशे से होने वाले दुष्प्रभावों की जानकारी दी जा रही है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं मंदसौर से हमारे संवाददाता दीपक शर्मा।
1: मंदसौर जिले में नशे के विरुद्ध नशे से दूरी है जरूरी 2.0 विशेष अभियान चलाया जा रहा है। मंदसौर पुलिस लाइन में SP विनोद मीणा ने इसका शुभारंभ किया। नशे से दूरी है जरूरी विशेष अभियान के तहत जिले के पुलिस अधिकारी कर्मचारियों सहित स्कूली विद्यार्थियों NCC कैडेट्स ग्राम व नगर सुरक्षा समिति के सदस्य सामाजिक संस्थाओं और आम जन के द्वारा नशे के प्रति जागरूकता फैलाने हेतु जागरूकता रैली और अन्य आयोजन किए जा रहे हैं। इसके साथ ही 15 दिवसीय इस अभियान में जिले के सभी थानों के पुलिस कर्मचारियों द्वारा गाँव में चौपाल रैली सोशल प्लेटफॉर्म और अन्य माध्यमों से आम जन को नशे से होने वाले दुष्प्रभाव की जानकारी दी जा रही है। मंदसौर SP विनोद कुमार मीणा ने बताया कि
2: देखिए नशे से दूरी है जरूरी 2.0 पुलिस मुख्यालय भोपाल द्वारा यह जन जागृति अभियान नशे के विरुद्ध लगातार पूरे प्रदेश भर में चलाया जा रहा है। उसी अनुक्रम में हमारे यहाँ पे भी लगातार अवेयरनेस ड्राइव की जा रही है, जिसके अंदर मुख्यतः हमारा उद्देश्य स्कूल कॉलेजेस के लोगों से जुड़ना, साथ ही साथ गाँव में जा जाकर गाँव वालों को शिक्षित करना, साथ ही साथ शहर में लोगों को शिक्षित करना, साथ ही साथ हमारे द्वारा विभिन्न प्रकार के वीडियोस भी बनाए जा रहे हैं ताकि अधिक से अधिक सोशल मीडिया के अंदर उनकी रीच करना, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये संदेश पहुंचे। तो कुल मिला के हमारा यही प्रयास है कि जो नशे के दुष्परिणाम है, खास करके जो सिंथेटिक ड्रग्स होते हैं जैसे MDMA MD ब्राउन शुगर इत्यादि जो केमिकल से बनाए जाते हैं, उसका नशा कोई भी व्यक्ति ना करे, और साथ ही साथ कोई व्यक्ति अगर देखता है कि अन्य व्यक्ति इसका नशा कर रहा है तो उसे भी रोके और टोके।
1: प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए मंदसौर से मैं दीपक शर्मा।
0: हमारी अगली खबर है मंडला से, जहां कान्हा टाइगर रिजर्व में 14 जुलाई से अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 2026 के उपलक्ष्य में जन जागरूकता पखवाड़ा आयोजित किया जा रहा है। अभियान के माध्यम से विद्यार्थियों, ग्रामीणों एवं स्थानीय समुदायों को बाघों और जैव विविधता संरक्षण के प्रति जागरूक किया जा रहा है। विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे मंडला संवाददाता शशांक चौबे।
3: अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस प्रतिवर्ष 29 जुलाई को बाघों के संरक्षण, उनके प्राकृतिक आवास की सुरक्षा तथा वन्य जीवों के प्रति जन जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। इसी क्रम में कान्हा टाइगर रिजर्व मंडला द्वारा 14 जुलाई से अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 2026 के उपलक्ष्य में जागरूकता पखवाड़ा आयोजित किया जा रहा है। अभियान के माध्यम से विद्यार्थियों, ग्रामीणों एवं स्थानीय समुदायों को बाघों और जैव विविधता संरक्षण के प्रति जागरूक किया जा रहा है। पखवाड़े के दौरान कान्हा प्रबंधन द्वारा बफर क्षेत्र के विद्यालयों के साथ साथ मंडला नगर के विभिन्न शिक्षा संस्थानों में बाघ संवाद कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। PPT प्रस्तुतिकरण चित्रों और वीडियो के माध्यम से विद्यार्थियों को बताया जा रहा है कि बाघ स्वस्थ जंगलों और संतुलित पारिस्थितिकी तंत्र का महत्वपूर्ण आधार है। साथ ही विद्यार्थियों की जिज्ञासाओं का समाधान कर उन्हें वन्य जीव संरक्षण के लिए प्रेरित किया जा रहा है। सहायक संचालक कान्हा टाइगर रिजर्व आशीष पांडे ने बताया कि 25 जुलाई तक अभियान के अंतर्गत 40 से अधिक बाघ संवाद कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं, जिनमें 4000 से अधिक विद्यार्थियों से सीधा संवाद स्थापित किया गया। विशेष पहल के रूप में विद्यार्थियों से बाघ को पत्र भी लिखवाए जा रहे हैं, जिनमें वे अपने विचार, भावनाएं और वन्य जीव संरक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त कर रहे हैं। इसका उद्देश्य बच्चों में प्रकृति और वन्य जीवों के प्रति संवेदनशीलता को विकसित करना है। अभियान में ग्रामीण समुदाय की सक्रिय भागीदारी भी सुनिश्चित की गई है। इसके लिए चरवाहा सम्मेलन, कान्हा मित्र दल की बैठकें तथा विभिन्न जनसंपर्क कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मंडला नगर में जन जागरूकता रैली निकालकर नागरिकों को बाघ संरक्षण का संदेश दिया गया। कान्हा टाइगर रिजर्व के सहायक संचालक आशीष पांडे ने बताया कि
4: विश्व बाघ दिवस का उद्देश्य आम जनता में बाघ जो वन्य जीव है उसके संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाना है, और इसी का प्रयास कान्हा टाइगर रिजर्व कर रहा है। दिनांक 14 जुलाई 2026 से ये हम लोगों ने जन जागरूकता के कार्यक्रम प्रारंभ कर दिए थे। इसी क्रम में विद्यालयों में जाकर बाघ संवाद कार्यक्रम किया गया है, जिसमें लगभग 40 विद्यालयों में 4000 से अधिक छात्रों के मध्य पहुंचकर बाघ संरक्षण का संदेश दिया गया है। इसी प्रकार हमारे यहाँ इको विकास समितियां हैं, उन इको विकास समितियों में पहुंच करके हम लोग संगत के माध्यम से जन जागरूकता का कार्य कर रहे हैं।
3: प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए मंडला से मैं शशांक चौबे।
0: प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए अब हम चलते हैं खंडवा जिले की तरफ, जहां पुलिस विभाग के नेतृत्व में चलाए जा रहे नशे से दूरी है जरूरी 2.0 जन जागरूकता अभियान से युवाओं और आम नागरिकों को नशे के दुष्प्रभावों से अवगत कराया जा रहा है। अधिक जानकारी दे रहे हैं खंडवा से हमारे संवाददाता हीरा लाल लोंगरे।
5: भारत को वर्ष 2030 तक नशा मुक्त बनाने के संकल्प के साथ खंडवा जिले में आगामी 30 जुलाई तक नशे से दूरी है जरूरी 2.0 जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया

0: रहा है। कार्यक्रम के माध्यम से युवाओं और आम नागरिकों को नशे के दुष्प्रभावों से अवगत कराते हुए नशा मुक्त समाज के निर्माण का संदेश दिया जा रहा है। पुलिस विभाग के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम में शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय, आबकारी, वन एवं न्याय सहित विभिन्न विभागों के समन्वय से अनेक जागरूकता गतिविधियां आयोजित की जा रही है। कार्यक्रम में नशा मुक्ति शपथ, नुक्कड़ नाटक, जनसंवाद, जागरूकता रैली, चित्रकला एवं निबंध प्रतियोगिता, लघु फिल्म प्रदर्शन तथा अन्य जन जागरूकता गतिविधियों के माध्यम से लोगों को नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक श्री अगम जैन ने बताया कि अभियान में विद्यालयों, महाविद्यालयों, ग्राम एवं नगर सुरक्षा समितियों, स्वयंसेवी संस्थाओं, व्यापारिक संगठनों तथा आम नागरिकों की सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित की जा रही है। जिलेवासियों से अपील की गई है कि वे कार्यक्रम में भाग लेकर नशे से दूरी है जरूरी का संदेश जन जन तक पहुंचाने में अपनी भागीदारी निभाए। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए मैं खंडवा से हीरालाल लोंगरे।
1: हमारी अगली खबर है नरसिंहपुर से, जहां जिले की लगभग 450 ग्राम पंचायतों में स्वच्छता को लेकर विशेष अभियान चलाया जा रहा है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे नरसिंहपुर संवाददाता आशीष जैन।
2: मध्य प्रदेश में नर्मदा किनारे बसे नरसिंहपुर जिले की 450 से ज्यादा ग्राम पंचायतों में स्वच्छता को लेकर विशेष योजनाएं तैयार की जा रही हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में जैविक व अजैविक कचरे के संग्रहण की विशेष इंतजाम हैं, वहीं जैविक कचरे के संग्रहण के लिए कंपोस्ट पिट भी बनाए गए हैं। ठोस अवशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 के अनुपालन में जिले में चार प्रकार के कचरों को संग्रहण करने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं नरसिंहपुर के अपर कलेक्टर गजेंद्र नागेश।
3: ग्रामीण क्षेत्रों में जैविक और अजैविक प्रकार के कचरों को कलेक्ट करना है, उसके लिए एक विशेष कार्य योजना बनाई गई है। जैविक कचरा मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में गोबर, घास और इस तरीके की जैविक चीजों का होता है, जो शायद सबसे बड़ी मात्रा में होता होगा, 80% के आसपास। उसके लिए कंपोस्ट पिट बनाए गए हैं व्यापक पैमाने पे, और अभी भी ऐसे लक्ष्य किए गए हैं जिन जगहों पे हमारे कम्युनिटी एरियाज में कंपोस्ट की जरूरत होगी वो हम लोग कर रहे हैं, और व्यक्तिगत तौर पे भी लोगों को इस आशय की समझाइश दी जा रही है कि वो अपने कचरे की मात्रा के अनुसार वो कंपोस्ट पिट का स्वयं भी सृजन करें। जहां तक सूखे अजैविक कचरे की बात हो रही है, जो सबसे बड़ी एक चुनौती है, जिसमें पनी, प्लास्टिक, रेक्सिन, कांच जैसी चीजें आती हैं, उनको भी रोकने के लिए क्लस्टर लेवल पे अप्रोच किए जा रहे हैं। जिले में कुल 77 ऐसे सेग्रीगेशन सेट बने हुए हैं जहां पे कि इस तरीके का कचरा कलेक्ट किया जा रहा है। साथ ही साथ बाकी जगहों पर भी आवश्यकता अनुसार 10 वर्ग फीट से लेके 1 एकड़ तक की भूमि को चिन्हित किया गया है तथा उसमें इस तरीके का जैविक कचरा को इकट्ठा किए जाने की कार्यवाही की जा रही है।
2: इस अभियान में अधिकारियों, कर्मचारियों के प्रशिक्षण से लेकर ग्राम वासियों को भी कचरे के निष्पादन के लिए जागरूक किया जा रहा है। नरसिंहपुर से प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए मैं आशीष जैन।
1: हमारी अगली खबर है खरगोन से, जहां जिले की पहचान बन चुकी लाल मिर्च को हाल ही में GI टैग मिला है। विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे खरगोन संवाददाता आशुतोष पुरोहित।
4: खरगोन जिले के लिए यह गर्व और खुशी की बात है कि जिले की प्रसिद्ध निमाड़ी लाल मिर्च को GI टैग मिल गया है। वर्षों से अपने तीखे स्वाद, गहरे लाल रंग, उत्कृष्ट गुणवत्ता के लिए पहचान रखने वाली निमाड़ी लाल मिर्च अब राष्ट्रीय स्तर ही नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर भी अपनी विशिष्ट पहचान बनाएगी। करीब 50,000 हेक्टेयर में होने वाली मिर्च की खेती और बेड़िया की एशिया की दूसरी सबसे बड़ी मिर्च मंडी को इस उपलब्धि से नई पहचान मिलने की उम्मीद है। GI टैग मिलने से खरगोन की लाल मिर्च को कानूनी संरक्षण मिलेगा, नकली उत्पादों पर रोक लगेगी और किसानों को बेहतर नाम के साथ ही निर्यात के नए अवसर भी प्राप्त होंगे। प्रदेश सरकार पहले ही एक जिला एक उत्पाद योजना में खरगोन की लाल मिर्च का चयन कर चुकी है।
5: हमारे साथ प्रदेश के पूर्व कृषि मंत्री खरगोन के विधायक बालकृष्ण पाटीदार मौजूद है।
6: निश्चित रूप से खरगोन जिले में जो मिर्ची का उत्पादन है बड़े पैमाने पर होता है, इसको GI टैग मिलने से और इसको निर्यात के बहुत इसके लिए रास्ते खुलेंगे। पूरे विश्व के अनेक देशों में इसका निर्यात भी होगा और इससे किसानों को भी बहुत लाभ होगा।
4: प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए मैं खरगोन से आशुतोष पुरोहित।
1: तो श्रोताओं, ये था हमारा कार्यक्रम प्रादेशिक समाचार दर्शन। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इसी दिन इसी समय। दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिसे हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई पर जांच की मांग को लेकर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया गया। पहले स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही फिर शुरू होने पर कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने यह विधेयक सदन में प्रस्तुत किया। ये विधेयक लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 में संशोधन का प्रावधान करता है। विधेयक पेश किए जाने के दौरान विपक्षी सदस्यों ने नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई पर चर्चा की मांग करते हुए हंगामा किया। इस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कहा कि परीक्षा सुधार की दिशा में ये विधेयक पहला महत्वपूर्ण कदम है और इस पर व्यापक चर्चा होनी चाहिए।
2: लोक परीक्षा अनुचित साधारण निवारण संशोधन विधेयक 2026 हमारे देश के करोड़ों युवाओं के भविष्य, उनकी मेहनत और उनकी आकांक्षाओं से जुड़ा अत्यधिक महत्वपूर्ण विधेयक है। ये विधेयक पेपर लीक जैसे अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने, दोषियों के विरुद्ध कठोर प्रावधान कर देश के करोड़ों युवाओं के हितों की रक्षा और इस दिशा में एक महत्वपूर्ण विधेयक है।
1: राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। जब सदन दोपहर 3 बजे तीसरी बार स्थगित होने के बाद फिर शुरू हुआ तो उपसभापति हरिवंश ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी शुरू कर दी। श्री हरिवंश ने सदन को सुचारू रूप से चलने देने की अपील की। हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोक परीक्षा विधेयक पर चर्चा में बाधा डालने के लिए विपक्ष की आलोचना की है।
3: देश में जो एग्जामिनेशन होने का जो प्रक्रिया आज तक हमने देखा है, उसको मजबूती से जो रिफॉर्म्स लाया है, इस पे चर्चा होना ये सबसे प्राथमिकता होना चाहिए। मुद्दे को भटकाने के लिए और मुद्दे चेंज करने के लिए कोई कोशिश ना करें। इस वक्त स्टूडेंट का वेलफेयर, स्टूडेंट का फ्यूचर और स्टूडेंट का इंटरेस्ट, ये हम सबका प्राथमिकता होना चाहिए।
1: उत्तर प्रदेश सरकार ने आज सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि उसने अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट को प्राप्त चंदे में कथित गबन की जांच के लिए लखनऊ रेंज के पुलिस महानिरीक्षक किरण एस की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय विशेष जांच दल एसआईटी का गठन किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को एसआईटी में 5वें सदस्य के रूप में एक फॉरेंसिक ऑडिटर को शामिल करने का निर्देश दिया है। एसआईटी 2 सप्ताह के अंदर पहली स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। उत्तर प्रदेश में एक विशेष अदालत ने राम मंदिर तचंदा चोरी मामले में सभी 8 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ा दी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य को प्रवर्तन निदेशालय की याचिका पर जवाब देने के लिए 3 सप्ताह का समय दिया है। इस याचिका में निचली अदालत के नेशनल हेराल्ड धन शोधन मामले में उनके खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय के आरोप पत्र पर संज्ञान लेने से इनकार करने के आदेश को चुनौती दी गई है। न्यायमूर्ति मनोज जैन ने मामले की अगली सुनवाई 10 सितंबर को निर्धारित की है। विदेश मंत्रालय ने आज वाणिज्यिक पोत एमवी ओमोर्फी पर हुए हमले के बाद भारत में यूक्रेन के राजदूत अलेक्सांडर पालिश्चुक को तलब किया। इस हमले में एक भारतीय की मौत हुई थी। मंत्रालय ने घटना पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए वाणिज्य जहाजों पर ऐसे हमले की कड़ी निंदा की। उन्होंने समुद्री नौवहन की सुरक्षा और स्वतंत्रता तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर इनके प्रतिकूल प्रभाव को रेखांकित किया। मंत्रालय ने दोहराया कि ऐसे कृत्य निर्दोष नाविकों के जीवन को खतरे में डालते हैं, ये अस्वीकार्य है और इनसे बचना चाहिए। भारत की ईशा सिंह ने आज चीन के हांगचू में आयोजित आईएसएसएफ निशानेबाजी विश्व कप में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर ने कांस्य पदक जीता। गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शानदार प्रदर्शन के लिए ईशा सिंह और मनु भाकर को बधाई दी है। युवा मामले और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने ग्लासगो में आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए पहला पदक जीतने वाले पैरा पावरलिफ्टर झंडू कुमार को अपने आवास पर सम्मानित किया। खेल मंत्री ने उन्हें 10 लाख रुपए का नकद पुरस्कार भी प्रदान किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मीडियम वेव 462.96 मीटर पर ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। अब कार्यक्रम विवरण में जानकारी लीजिए इस सभा के शेष और कल की तीनों सभाओं के मुख्य कार्यक्रमों की। अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 7:20 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम ग्राम लक्ष्मी। इसमें आज हम आपको सुनवाएंगे खरीफ में टमाटर की वैज्ञानिक खेती विषय पर कुलेंद्र सिंह से ली गई भेंटवार्ता। साथ ही सुनिएगा घरेलू व्यंजन के बारे में जानकारी। रात 8 संसद समीक्षा और रात 9:30 कार्यक्रम पब्लिक स्पीक, ये दोनों ही कार्यक्रम दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे। सुर्खियों में ये कार्यक्रम होगा रात 8:15, इसे हम अपने भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। फिल्म संगीत का आनंद आप ले सकते हैं रात 8:30, चित्रगीत में रात 9:15 और 10:00 फरमाइशी फिल्मी गीतों के कार्यक्रम मन भावन में। आज रात 10:30 शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आपको सुनवाएंगे भुवनेश कोमकली का गायन, राग होगा शुद्ध कल्याण।

0: अब एक नज़र कल की तीनों सभाओं में प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों पर। कल सुबह 6:05 पर आप सुनेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। चिंतन का प्रसारण समय रहेगा सुबह 6:30। 6:35 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम खेती की बातें में मृदा परीक्षण विषय पर जानकारी देंगी प्रेरणा पहारे। श्री रामचरित मानस गान का प्रसारण समय रहेगा सुबह 6:40 पर। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सुनहरे पल सुना जा सकता है कल सुबह 7:20 पर और 8:30 आपको सुनवाएंगे खेल पत्रिका। कल सुबह 9:00 लोक संगीत में कलाकार होंगे देवीलाल भैरूजी बोराना और 9:15 सुगम संगीत में सुनिएगा रूप कुमार राठौर को। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में कल सुबह 9:30 आपको सुन पाएंगे विदुषी श्रुति साडोलीकर का गायन, राग होगा बहादुरी तोड़ी। 10:00 जिले की चिट्ठी का अनुप्रसारण भोपाल केंद्र से किया जाएगा। 10:05 से आप सुनेंगे।
1: ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
3: भाइयों ने अभी आज सोमवार छे सोमवार का दिन भगवान भोलेनाथ का सुमरान तो सुना जापन एक लोकगीत ममता शर्मा को गायल।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: भाई वर्णी, खरीफ की बुआई तो हमारा भाई ने करी, ने खरीफ की कई भाई हमारा सब्जी भाजी भी लगावा, टमाटर की खेती भी करा, तो एक बारा में और ज़्यादा जानकारी कर लेना अपन सुनान भेंट वार्ता। खरीफ में टमाटर की वैज्ञानिक खेती जानकारी दे रहा कुलेंद्र सिंह यादव, उद्यानिकी महाविद्यालय मंदसौर सी। तो सुनान अपन इन्हीं भेंट वार्ता। किसान भाई रोनी, आज हमारा साथ छे कुलेंद्र सिंह यादव, उद्यानिकी महाविद्यालय मंदसौर सी, जो कि हमको बताओगा कि खरीफ में टमाटर की वैज्ञानिक खेती कैसे करा। तो ये सब बात न जानना का लेना हम सबसे पहले तो कुलेंद्र सिंह यादव जी को स्वागत करा अपना कार्यक्रम में। राम राम कुलेंद्र सिंह यादव जी।
3: जी नमस्कार सभी किसान भाइयों को।
2: यादव जी, जसो की अभी खरीफ को समय चली रो न, हमारा जो किसान भाई छे वो बोनी करी रहा न, कई भाई ने तो खेत में बोनी करी भी दी न, कई भाई सब्जी भाजी भी लगावा, टमाटर की खेती भी करत। तो अभी इना समय खरीफ में टमाटर की वैज्ञानिक खेती हमारा किसान भाई किस तरह से करी सक, किस प्रकार से बोव, किस प्रकार से बीजोपचार कर, ये सब जानकारी हम अपना किसान भाई ने का बताओ।
3: क्या है कि भारत में सबसे महत्वपूर्ण लाभकारी सब्जी है टमाटर।
2: हाँ हाँ,
3: जिसकी डिमांड क्या है वर्ष भर रहती है। कुछ सब्जियां ऐसी रहती है मौसमी रहती है जिनका समय समय पर उसका रहता है, बाद बाकी ऑफ सीजन में उनकी डिमांड कम।

0: हो जाती है, लेकिन टमाटर एक ऐसी सब्जी है जिसकी डिमांड हमेशा साल भर बनी रहती है। तो वैसे सामान्यतः क्या है कि बरसात में थोड़ा सा टमाटर की खेती करना कठिनाई वाला होता है, परंतु अब इस समय पे अगर अपन खेती करते हैं टमाटर की, तो अपन को अतिरिक्त आय की प्राप्ति हो जाती है, एक लाभकारी सिद्ध होती है। हम जो टमाटर जो अपन लगाते हैं, उसको एक तो ये नंबर वन प्रोसेसिंग वेजिटेबल है, प्रोडक्टिव फ्रूट के रूप में जानी जाती है। नंबर वन प्रोसेसिंग मतलब जिसकी अदर दूसरी चीजें अपन बनाते हैं, चटनी वगैरह होगी, सॉस वगैरह होगी, तो मार्केटिंग इसकी प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्ट की महत्वता होने के कारण इसको नंबर वन प्रोसेसिंग वेजिटेबल कहते हैं। इसमें इसका जो न्यूट्रिशन वैल्यू लेंगे तो विटामिन ए, विटामिन सी, एस्कोरबिक एसिड और लाइकोपिन, जिसको अपन एक्सीओ ऑक्सीडेंट जिसमें क्वालिटी होती है, जो एंटी एजिंग और दूसरे अन्य विभिन्न प्रसाधन, सौंदर्य प्रसाधन और दूसरी दवाइयों में यूज होता है, उसका अच्छे खनिजों के ये भरपूर होता है टमाटर। इसमें अपना फास्फोरस है, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, आयरन हो गया, जिंक, मैग्नीज, कॉपर, सोडियम और सल्फर, इतने सारे इसमें खनिज पाए जाते हैं, इसलिए इसको अपन प्रोटेक्टिव फूड भी कहते हैं।
1: अच्छा यादव जी, जैसा कि अभी हमको अपना खेत में टमाटर लगाना, तो कल ये कई कई बातों को ध्यान रखना पड़ेगा।
0: इसके लिए सबसे पहले जो ध्यान रखने योग्य चीज है वो ये, वो सबसे पहले तो ये है कि अपन मौसम का पूर्वानुमान देखेंगे। कि मौसम का पूर्वानुमान इसलिए क्योंकि अधिक बारिश हो जाए, कम बारिश हो जाए, तो उससे क्या है कि हमारे पास किस प्रकार के संसाधन उपलब्ध हैं, तो उनको देखते हुए फिर हम दूसरी चीजों के ऊपर जाएंगे। अगर हमारे पास जो मौसम जलवायु है वो अगर ठीक है, तो अपन भूमि का चयन करेंगे। भूमि अगर अपनी उसकी पीएच 6 से 7 या 7.5 तक भी चलेगी, और जो मिट्टी है वो बलुई दोमट होनी चाहिए, और मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में ये तो सबसे बेस्ट है बलुई दोमट। बाद बाकी जो अपनी ब्लैक सॉयल है, इसमें भी इसका अच्छा उत्पादन आता है, अपने अपने मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में इसका काफी अच्छा उत्पादन होता ही है। इसके लिए अपन टेम्परेचर देखेंगे, टेम्परेचर है 20 से 24 डिग्री सबसे अच्छा होता है। अधिक टेम्परेचर रहता है अगर फ्रूटिंग के टाइम पे, अगर 27 डिग्री से अधिक जाता है, तो जो लाइकोपिन होता है एक पिगमेंट जिससे एक कलर आता है लाल और पीला, तो अगर 27 से ऊपर पहुंच जाता है तो लाइकोपिन बनना कम हो जाता है। और अगर इसकी क्या है कि 10 डिग्री से नीचे पहुंच जाता है कभी, तो भी लाइकोपिन नहीं बनता है। और 14 डिग्री टेम्परेचर से अगर इसका कम चला जाता है, तो फ्रूट सेटिंग कम हो जाती है इसकी, मतलब जो फ्रूटिंग रहेगी वो कम हो जाएगी, जिससे उत्पादन कम हो सकता है।
1: मतलब कि ये बात ध्यान रखूं कि तापमान सही होना चाहिए जब अपन
0: हाँ,
1: टमाटर की
0: तापमान
1: बोई
0: जो अपनी जो अपना पूरा क्रॉपिंग टाइम है पूरा अपना फसल का, तो
1: कर।
0: उस समय पे जो टेम्परेचर है 20-24 लगभग 27 तक चल जाएगा।
1: नहीं तो ये तो आपने बताया कि बुआई किस प्रकार से करा, अब एका बाद आगे कई बातों को ध्यान रखना चाहिए।
0: इसके बाद अपन को ध्यान रखना है कि उन्नतशील किस्में, उन्नतशील जो रोग रोधी और शुद्ध पैमाने पर जो अपन किस्में लेंगे, तो किस्में चयन करना बहुत जरूरी है। क्योंकि तो किस्म का चयन सफलता का पहला कदम है, कोई भी खेती करें ऑल ओवर, तो उसमें किस्म का बहुत ज्यादा महत्व है। क्योंकि अपन कितना भी अच्छा है, अगर किस्म की जो नेचर होता है, किस्म का कितना उत्पादन है, उसमें थोड़ा बहुत अंतर अपन ला सकते हैं, लेकिन अब मान लो कि 100 क्विंटल वाला अपन लेके 500 क्विंटल नहीं ले सकते
1: नहीं, इतना तो नहीं ले।
0: उत्पादन। हाँ, तो उसके लिए अच्छी किस्मों का चयन करना चाहिए। अच्छी किस्मों में है अपना अर्का विकास हो गया, अर्का रक्षक हो गया, अर्का रक्षक और अर्का सम्राट जो अपने बेंगलोर से निकली हुई है, एबन हाइब्रिड है। ये ट्रिपल डिजीज रेस्टेंट होती है, इसमें एक रोग लगते हैं बैक्टीरियल ब्लाइट और लीप कर रोग हो गया, अर्ली ब्लाइट हो गया, इनके प्रति रेस्टेंट है, ये प्रतिरोधी है, तो इनमें ये बीमारी नहीं लगती है और उत्पादन भी अच्छा आता है।
1: अच्छा।
0: इसके अलावा अपन अर्का अनमोल ले लो, काशी अमन हो गया, काशी आदर्श हो गया, अर्का अभेद हो गया, पूसा हाइब्रिड जो अपने IRI दिल्ली से निकली है, पूसा हाइब्रिड 2 और पूसा हाइब्रिड 8। इसके अलावा जो अपन निजी जो कंपनियां हैं उनकी भी अच्छी अच्छी कुछ वेराइटियां हैं जो किसान लगा रहे हैं, उनमें है हिमसोना जो बरसा सहनशील है, इसका उत्पादन 60 से 70 दिन पे इस पहले हार्वेस्टिंग हो जाती है। अपना नामधारी सीड का आता है 42-66 जो खरीफ अच्छी है, पौधा इसमें मजबूत रहता है तो गिरता नहीं है। ये इसमें क्या है, ये पॉली हाउस वाले किसानों के लिए ज्यादा उपयुक्त है, क्योंकि ये क्या है कि एक हैबिट होती है इसमें डिटर्मिनेट सेमी डिटर्मिनेट, तो ये डिटर्मिनेट टाइप की है जो लंबी लंबी बेल के रूप में बढ़ती है, तो इसमें मतलब पॉली हाउस में लगाएंगे इसको तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सामान्य तौर पर US 440 पूरे भारत में सबसे ज्यादा लोकप्रिय है, किस्म की प्रकार की होती है, अच्छा उत्पादन 600 से 800 क्विंटल प्रति हेक्टेयर का उपज देती है ये।
1: अच्छा यादव जी, ये तो आपने बताया कि किस में नकाब आ रहा है। अब जब टमाटर हमने अपने लगे दिया अपना खेत में, तो ओका बाद कई कई बातों को ध्यान रखना चाहिए, जो कीड़ा नहीं लगे अभी।

0: वगैरह किस प्रकार से देवा।
1: जी, इसके लिए अपन नर्सरी में ध्यान देना है। नर्सरी के समय से ही पौधा जो जन्म लेने के पहले ही अपन उसका ध्यान अच्छे से रखेंगे तो उसमें रोग दोष कम लगेंगे और वो
0: अच्छा
1: स्वस्थ स्वस्थ पौधा रहेगा। उसका रोपण करेंगे खेत में तो फसल भी अपने आप स्वस्थ हो आएगी, अच्छा उपज प्राप्त होगी। तो नर्सरी भी, अभी बरसात का समय चल रहा है तो बरसात में अपन नर्सरी को लगाएंगे तो उठी हुई कारियों का यूज करेंगे उसमें,
0: अच्छा
1: जिसमें उचित जल निकास हो, जल भराव नहीं होना चाहिए नहीं तो पौध अपनी सड़ने लगेगी। तो अपन 15-20 सेंटीमीटर जमीन से उठी हुई क्यारियां 1 मीटर चौड़ी और अपने सुविधा अनुसार लंबाई उसकी बना के उसको अच्छे से प्रिपेयर करके उसमें अपन बर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं, अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद अच्छे से मिक्स करके लाइन स्वयं छोटी छोटी 1-1.5-2 mm नीचे अपन सीड को लगाएंगे ऊपर से हल्का ऊपर
0: अच्छा
1: से मिट्टी डाल के। और उसकी अपन बीज उपचार बहुत जरूरी है। बीज उपचार क्या, एक इसमें एक डिजीज रोग लगता है नर्सरी अवस्था में जो छोटे
0: नहीं,
1: पौधे हैं।
0: जैसे आपने बीजोपचार की बात कही तो अपन नर्सरी में लगा जो का पहले बीजोपचार करना पड़ेगा ना
1: हाँ,
0: अपन को।
1: बीजोपचार पहले करना पड़ेगा।
0: हाँ,
1: बीजोपचार क्यों कर रहे हैं, क्योंकि नर्सरी में एक इसकी बहुत भयंकर रोग आता है डंपिंग ऑफ,
0: अच्छा
1: जो एक फफूंदनाशी फफूंद से उत्पन्न रोग है। इससे क्या है, पौधे एकदम खत्म हो जाते हैं
0: अच्छा
1: तुरंत गिर के। अपन जैसे समझेंगे आज तो अगर 1-2 दिन डिले कर दिया तो इतने में पूरी नर्सरी खत्म हो जाएगी, इतना भयंकर रोग होता है। इसके लिए अपन थायरम 2 ग्राम पर kg सीड में या कार्बेंडाजिम मैनकोजेब 2.5 से 3 ग्राम इसका अपन बीज उपचार कर लेना चाहिए। और 1 हेक्टेयर के लिए लगभग जो अपन अपन तैयार करेंगे नर्सरी, वो 250 स्क्वायर मीटर में जो अपन तैयार करेंगे तो 1 हेक्टेयर के लिए हो जाती है।
0: अच्छा
1: अब अपन ने नर्सरी तैयार कर ली है, नर्सरी
0: हाँ
1: तैयार करिए तो अपन खेत की तैयारी देखेंगे, खेत में
0: हाँ
1: क्या क्या होना चाहिए। तो
0: अच्छा
1: खेत जितना अच्छा तैयार होगा उसमें पौधों का विकास उतना ही अच्छा होगा, और पौधे जितना विकास उनका जड़ों का होगा उतना पौधे स्वस्थ और अच्छी उपज देने वाले बन सकते हैं। इसके लिए अपन को खेत को 3-4 बार अच्छे से क्रॉस जुताई कर ले, आड़ा तिरछा। उसके बाद उसमें अगर पहले कोई फसल लगाई है तो उसके अवशेष जो भी अपने डंठल वगैरह पड़े हैं तो उनको आप किसान भाई उनको हटा दें, ताकि उसमें अगर उनपे कोई रोग कीट पनप रहे हो तो अपनी फसल में ना पाए। और अब बरसात में कर रहे हैं तो बरसात में अपन ये अगर ध्यान दे पाएंगे, अगर अपने पास सुविधा हो तो अपन उठी हुई क्यारियां तो रेज बेड कहते हैं जिनको, बेड के रूप में उसके ऊपर लगाएंगे तो ज्यादा इफेक्टिव है। क्योंकि तो जब बारिश में अधिक पानी हो जाता है एक्सेसिव तो नालियों के सहारे निकल जाए और अपनी फसल मतलब जब फ्रूटिंग आए तो मिट्टी को उसमें सड़े ना।
0: मतलब अपन ऐसी क्यारी ने बनाओ कि जब बरसात में पानी आवे तो कम जमा नहीं हुए पानी निकल ही जाए।
1: पानी निकल जाए
0: हाँ, तो फसल का कोई नुकसान नहीं होने को फिर।
1: हाँ। और अगर अपन बेड पे लगाते हैं तो बेड पे लगाने से एक जो तकनीक है वैज्ञानिक, अपन बेड पे लगाएं रिज बेड पद्धति के अनुसार लगाएंगे, 30-40% उपज अपनी बढ़ जाएगी। उसके अलावा गुणवत्ता अच्छी आएगी। तीसरा, अगर गुणवत्ता अच्छी होगी तो अपने दाम भी अच्छे मिलेंगे मार्केट में और रोग कीट भी कम हो जाएंगे।
0: अच्छा, ये तो हाँ ये तो आपने
1: हाँ
0: बताया टमाटर की खेती के बारे में। अब एक प्रोसेसिंग कसो किस प्रकार से कई कई चीज बनी सका टमाटर से।
1: टमाटर से अपन मान लो कि अगर प्रोसेसिंग में ले रहे हैं तो चटनी का जो उद्योग, अगर आपने आसपास में हो, चटनी बनती है, प्यूरी बनता है, सूप बनता है,
0: अच्छा
1: अचार बनता है, सॉस बनता है। ड्राई जो अपन आजकल चल रहा है, जैसे अपन जो इनमें यूज होता है जैसे शुष्क सुखा के इसको और इसका पाउडर बनाना,
0: अच्छा
1: तो उसमें भी अपन यूज, अगर अपना अच्छा उत्पादन होता है अपने आसपास, जैसे हमारे मध्य प्रदेश में खरीफ में जो टमाटर सर्वाधिक होता है वो शिवपुरी और आसपास के बेल्ट में होता है,
0: अच्छा
1: तो बड़ी बड़ी कंपनियां वहां बाहर के भी और भारत के भी और दूसरे अन्य देशों के वहां पे व्यापारी पहुंचते हैं किसान के पास डायरेक्ट खेत में।
0: अच्छा
1: हाँ, तो अगर हमारे पास अगर अच्छी व्यवस्था है तो आसपास अपन इन फैक्ट्रियों में संपर्क कर लेंगे तो अपन को ज्यादा अच्छा आय प्राप्त हो जाएगी।
0: मुनाफा होएगा खासे।
1: जी,
0: अच्छा यादव जी, जैसे कोई अपना किसान भाई अभी टमाटर लगाना चाहता है तो उनको कई कई बात को ध्यान रखना चाहिए। अभी जैसे बरसात का मौसम चले जिन्हें लगाई दी वो तो कोई बात नहीं, लेकिन अब कोई लगाना भी चाहता हो तो उनको कई बात को ध्यान रखना चाहिए।
1: लगाने के लिए अभी नर्सरी लगाने का ही समय चल रहा है। अगर अपन बीज की बुआई अभी जुलाई में कर देंगे तो
0: हाँ
1: इसकी रोपाई लगभग 4-1 महीने के आसपास अपन पौध अच्छी हो जाती है तैयार अपने
0: हाँ
1: खेत में उनकी रोपाई करने के लिए। तो
0: अच्छा
1: रोपाई अभी अगर अपन बीज लगाते हैं तो अगस्त में हो जाएगा। तो जब फ्रूटिंग के समय पे क्या रहता है कि जैसे फल आता है,
0: हाँ
1: फल
0: हाँ
1: आएगा 50-60 रुपाई के 50 से 60 दिन पे फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी, फ्रूटिंग आ जाएगी। अब उस फ्रूटिंग के समय ज्यादा बारिश होना मतलब नुकसानदायक है, फ्रूट ड्रॉप हो जाएंगे, फल झड़ जाएंगे, फूल झड़ जाएंगे। तो अभी जो बरसात का मुख्य जो मेन टाइम पीरियड है तो उसमें वो निकल जाएगा अगस्त के बाद, जब तक वो

0: ग्रोथ होगी तब तक वो टाइम पीरियड निकल जाएगा, बारिश हल्की हो जाएगी, तो उससे अपने को जो अपने फूल झड़ने की समस्या है वो थोड़ा सा उसमें अपन को सुविधा मिल जाएगी।
1: बिल्कुल कुलेंद्र सिंह यादव जी, आपने हमारा किसान भाई ने खरीफ में टमाटर की वैज्ञानिक खेती कैसा करा, नौका सैरू कई कई चीज में बनी सकर, ये सब जानकारी दी ना। हमारा जो किसान भाई अपना कार्यक्रम सुनेगा तो कार्यक्रम का माध्यम से उनका बहुत अच्छी जानकारी भी लगेगा ना, अपना खेत में भी नया नया प्रयोग करेगा। तो इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद
2: भाई। अभी हम सुनी रहा था भेंटवार्ता खरीफ में टमाटर की वैज्ञानिक खेती, जानकारी दे रहा था कुलेंद्र सिंह यादव उद्यानिकी महाविद्यालय मंसूर सिंह न भाई। उन्होंने अब हमारा पास घरेलू नुस्खा आप आएगा तो हम घरेलू नुस्खा के बारे में आपको बता देवा भाई। उन्होंने देखो इना समय मिलने वाला जो जामुन छे केवल एक स्वादिष्ट फल नहीं आए बल्कि ये स्वास्थ्य का लेना भी बहुत फायदेमंद माना जाए। आयुर्वेद में जामुन का एक प्राकृतिक औषधि का रूप में हम उपयोग करा तो जाना एक कई फायदा छे। जामुन में उपस्थित तत्व रक्त शर्करा का स्तर का नियंत्रित करना में सहायता करल न एको बीज को पाउडर भी पारंपरिक रूप से उपयोग में आवल। जामुन में रेशा भरपूर मात्रा में रहे जो कि पाचन प्रक्रिया का सुधारना न कब्ज जैसी समस्या का कम करना में मदद करल। एका में विटामिन सी न एंटीऑक्सीडेंट रहे जो कि हमारा शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता का मजबूत बनावल। जामुन में उपस्थित पोटेशियम न एंटीऑक्सीडेंट हृदय का स्वस्थ रखना में मदद करल। जामुन का रक्त शुद्ध करने वाला फल का रूप में भी जानो जाए। जामुन में कैलोरी कम न रेशा ज्यादा रहे जो कि वजन नियंत्रित करना में मदद करल। एकासी त्वचा स्वस्थ न चमकदार रहे। एका में कैल्शियम न दूसरा खनिज तत्व रहे जो कि हड्डी न का मजबूत बनावल। जामुन का पत्ता न छाल दांत न मसूड़ा न का स्वास्थ्य का लेना भी बहुत फायदेमंद रहे। लीवर का कार्य कभी अच्छा बनावल। साथ ही एका में आशा तत्व रहे जो हमारा शरीर की हानिकारक विषाक्त पदार्थ न का बाहर निकालने में मदद करे। तो भाई उन्होंने जब भी एको जामुन को मौसम तभी चली रहे न जब भी हमको जामुन खाने को मौको मिले तो हम जामुन जरूर खावा कि स्वादिष्ट फल का साथ साथ हमारा स्वास्थ्य का लेना भी बहुत फायदा मंद रहे। न अब बात करा घरेलू व्यंजन की तो अभी आम भी चली रहा है बाजार में तो को आम पाक की मिठाई कसो बनावा या खा मैंगो बर्फी भी कवा तो बनाने के विधि के बारे में बात करा जब हम को मीठो आम को गुदो मावो न शक्कर इलायची को साथ गाढ़ो होने तक पकावांगा जो कि एक लोकप्रिय न स्वादिष्ट मिठाई भी छे। सबसे पहले तो हमको सामग्री की बात करा तो एका में हमको लगेगा पकेल आम को गुदो 2 कप करीब, मावो 250 ग्राम, शक्कर 1 कप, घी 1 चम्मच, इलायची पाउडर 1 छोटा चम्मच न बारीक कटेल पिस्ता न बादाम। सबसे पहले भाई हम आम न खा धोई न छीली लेवा न मिक्सी में बिना पानी डाली न बारीक पीसी लेवा। आव एक कढ़ाई में घी गरम करा न मावा खा धीमी आंच पर तब तक भुना जब तक कि ओका मसी अच्छी खुशबू नहीं आने लगी जाए। आव भुनेल मावा में आम को पल्प डाला न 4-5 मिनट तक मध्यम आंच पर लगातार चलाउते हुए का पकावा। एक अलग कढ़ाई में शक्कर न थोड़ो पानी डाली न एक तार की चाशनी बनी लेवा। इन्हीं चाशनी में इलायची पाउडर न आम ख न मावा ख मिश्रण ख मिलावा। आव मिश्रण ख कढ़ाई छोड़ने तक पकावा। आव एक थाली में पीस चिकनो करना का लेने का घी लगाई लेवा न ऊपर से ड्राई फ्रूट फैले देवा। एक बार ठंडो जब मिश्रण हुई जाए तो अपन मनचाहा टुकड़ा नमक काटी लेवा न अपनी जो आम पाक यानी कि आम की बर्फी तैयार छे। न भाई बहन होनी अब अपना कार्यक्रम में सुना अपन एक लोकगीत जेखा गायो बहन रेखा सोलंकी ने।

0: जहां आप हर महीने आसान EMI के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मणप्पुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: किसान बहनोनी, हमारा खेत में खरीफ की फसल लगेल छे, न खरीफ की फसल में अभी इस समय कई काम करनु छे, इन्हीं बातों को विशेष रूप से ध्यान रखा। देखो बहनोनी, कभी पानी ज़्यादा पड़ी जाए तो हमको जल निकास की व्यवस्था भी करनी चाहिए, क्योंकि अचानक से बरसात ज़्यादा होने से हमारी जो फसल से होकर नुकसान हुई सकल। एक कारण नुकसान से बचना का लेना मक्का गन्ना कपास बाजरा जो दूसरी फसल न छे न ओका में सिंचाई का लेना जो अपन नाड़ी न बनी थी ओका हम जल निकास का काम में लाई सका। यानी खेत में कभी पानी भरे हुए तो उन्हीं नाड़ी न का द्वारा हम खेत में भरेल पानी का बाहर निकाली सकान। खेत में पानी जमा होने से फसल न का बहुत नुकसान हुई सकल। जो फालतू पानी छे ओका गांव का तालाब में डाली देवा या फिर जरूरत पड़ने पर हम उना पानी का सिंचाई का काम में लाई सकान। साथ ही जल प्रबंधन को भी ध्यान रखा। धान में रोपाई का बाद हर हफ्ता पुराना पानी का खेत में से निकाली न ताजो पानी भरा जो कि 2 इंच से ज़्यादा गहरो नहीं हो। कदी पानी कम उपलब्ध हो तो हल्की सिंचाई करी न खेत का सिर्फ हम गीलो रखी सकान। अब बात करा पोषक तत्व न की तो जुलाई माह में जो छे नत्रजन खाद देते समय बरसात को विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जमीन में नमी बहुत ज़्यादा मात्रा में रहे जिका से यूरियो पूरी तरह से धुली जाए। पर कदी अधिक नमी या जल्दी बरसात हो उन्हीं स्थिति में यूरियो तब तक नहीं डाला जब तक मौसम न जमीन में नमी की उचित मात्रा नहीं रह जाती, नहीं तो बहुत सी नत्रजन पानी के साथ बहने चली जाएगा। साथ ही पानी का उन्हें सी चारों भी बहुत ही जाते कल समय समय पर निंदाई गुड़ाई भी करता रहा। कीट व्याधि न को प्रकोप भी बढ़ा तो कीट व्याधि न का प्रकोप कर खेत में निगरानी करता रहा। न जसो हमका लगा कि खेत में कीट व्याधि को प्रकोप दिखाई रो तो उका तुरंत को उपचार करा। न इस बात न को ध्यान रखांगा तो हमारी फसल अच्छी आवेगा। न भैनोनी, हमारा पास मंडी न का भाव आएगा तो वो आपको बता देवा। आज कृषि उपज मंडी समिति संयोगितागंज मंडी का भाव इस प्रकार से छे। मंडी में गेहूं की आवक रही 1414 क्विंटल, जिको भाव रहे 2512 से लगे न 2966 रुपया, न मॉडल भाव 2650 रुपया। मॉडल भाव यानी कि सबसे ज़्यादा सौदा इना भाव में हुआ। तिल्ली की आवक रही 1 क्विंटल, जिको भाव रहे 10405 से लगे न 10405, यानी कि एक को एक भाव रहे। सरसों की आवक रही 1 क्विंटल, जिको भाव रहो 5000 से लगे न 5150, न मॉडल भाव 5000 रुपया। सोयाबीन की आवक रही 661 क्विंटल, जिको भाव रहो 4300 से लगे न 7265 रुपया, न मॉडल भाव 6200 रुपया। चना की आवक रही 239 क्विंटल, जिको भाव रहो न्यूनतम 4899 से लगे न 8000 रुपया, न मॉडल भाव 6000 रुपया। मटर की आवक रही 46 क्विंटल, जिको न्यूनतम भाव रहो 2265 रुपया, अधिकतम भाव 3725 रुपया, न मॉडल भाव भी यज रहो। मूंग की आवक रही 192 क्विंटल, जिको भाव रहो 6005 से लगे न 7035 रुपया, मॉडल भाव 6400 रुपया। तुवर की आवक रही 5 क्विंटल, जिको भाव रहो 6395 से लगे न 6700 रुपया, न मॉडल भाव रहे को 6395 रुपया। करंज बीज की आवक रही 1 क्विंटल, जिको भाव रहो एको एकज भाव रहो 3005 रुपया। डॉलर चना की आवक रही 1811 क्विंटल, जिको भाव रहो न्यूनतम 5200 रुपया, अधिकतम 9115 रुपया, न मॉडल भाव 8600 रुपया। ये तो था मंडी न का भाव। न चलते चलते काल की भी तय कर लेवा। काल खेती की बात में अपन सुनांगा मृदा परीक्षण का बारे में जानकारी, न संजा की घड़ा खेती गृहस्थी में आज की बात होएगा प्रधानमंत्री जनधन योजना का बारे में, न एक अलावा अपन लोकगीत भी सुनांगा, न चलता चलता एक लोकगीत आरू सुनी लेवा जेखा गायो अपनी बहन उषा रायकवार ना।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन।

उषा रायकवार का गायल ई लोकगीत का साथ है हमारो आज को ग्राम लक्ष्मी कार्यक्रम को समय भी समाप्त हो रहे तो अपनी बैंक देव आज्ञा राम राम।

अभी ग्राम लक्ष्मी का प्रसारण किया गया। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। थोड़ी ही देर में अगला प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा करें।

अब आप मुनीश शर्मा से संसद में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। पहले लोकसभा, लेखक हैं पीटीआई भाषा के दीपक रंजन। सरकार ने प्रश्न पत्र लीक और परीक्षाओं में अनुचित साधनों के इस्तेमाल से जुड़े अपराधों के खिलाफ सख्त प्रावधान वाला लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण

संशोधन विधेयक 2026 आज लोकसभा में पेश किया। नीट प्रश्न पत्र लीक के मुद्दे पर पिछले सप्ताह दिल्ली में प्रदर्शन करने वाले छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सरकार द्वारा पेश किए गए इस विधेयक पर चर्चा शुरू कराने पर जोर दिया। अध्यक्ष ने सरकार और विपक्षी दलों से आज शाम तक सहमति बनाने की भी अपील की। सदन की बैठक दो बार स्थगित होने के बाद जब अपराह्न 2 बजे शुरू हुई तो अध्यक्ष ने कहा कि मैं आपको 3 घंटे का समय देता हूं, शाम को 5 बजे तक सरकार और सभी दल मिलकर सहमति बनाएं ताकि 5 बजे तक इस विधेयक पर चर्चा शुरू हो सके। इसके बाद उन्होंने कार्यवाही शाम 5 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। इससे पहले उन्होंने कहा कि लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 हमारे देश के करोड़ों युवाओं के भविष्य, उनकी मेहनत, उनकी आकांक्षाओं से जुड़ा एक अत्यधिक महत्वपूर्ण विधेयक है। ये विधेयक प्रश्न पत्र लीक जैसे अपराधों पर प्रभावी अंकुश और दोषियों के विरुद्ध कठोर दंड पर प्रावधान कर करोड़ों युवाओं के हितों की रक्षा की दिशा में अहम कदम है। उन्होंने कहा कि इस महत्वपूर्ण विधेयक पर सभी दलों के सदस्यों के मत और विचार आने चाहिए। श्री बिरला ने कहा कि नारेबाजी करने और तख्तियां लहराने से विधेयक पर विचार नहीं होता। उन्होंने इस विधेयक पर चर्चा के लिए 6 घंटे का समय देने तथा सदस्य चाहें तो और भी अधिक समय देने का आश्वासन दिया। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि यह बहुत महत्वपूर्ण विधेयक है और इस पर संशोधन के कई नोटिस आए हैं, जिसका मतलब यह है कि कई सदस्य इस विधेयक पर अपना मत रखना चाहते हैं। उन्होंने आसन के समीप प्रदर्शन कर रहे विपक्षी सांसदों की ओर इशारा करते हुए कहा कि फिर ये चर्चा रोकने के लिए नारेबाजी क्यों कर रहे हैं, युवाओं की इस पर नजर है, ऐसे महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा रोककर ये गलत संदेश दे रहे हैं। कांग्रेस से अनुरोध है कि अपने साथियों को समझाएं और चर्चा शुरू करें। इससे पहले 11 बजे सदन की बैठक शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने 23वें राष्ट्रमंडल खेलों में मीराबाई चानू समेत अन्य भारतीय खिलाड़ियों की उपलब्धियों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि स्कॉटलैंड के ग्लासगो में 23वें राष्ट्रमंडल खेलों में मीराबाई चानू ने वेटलिफ्टिंग के 48 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। उन्होंने भारोत्तोलन में ही रजत पदक जीतने वाले ऋषिकांत सिंह चानम्बम और राजा मुथु पांडी तथा कांस्य पदक विजेता पैरा पावर लिफ्टर झंडू कुमार की उपलब्धियों का भी उल्लेख किया। श्री बिरला ने सभी विजयी खिलाड़ियों, उनके प्रशिक्षकों और टीम इंडिया को बधाई और शुभकामनाएं दी। इसके बाद जब अध्यक्ष ने प्रश्नकाल शुरू करने को कहा तो कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों के सदस्यों ने प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई के मुद्दे को लेकर और गृहमंत्री अमित शाह के जवाब की मांग करते हुए हंगामा किया, जिसके कारण सदन की कार्यवाही शुरू होने के कुछ मिनट बाद ही दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी गई। श्री बिरला ने आसन के समीप हंगामा कर रहे कुछ विपक्षी सदस्यों को चेतावनी देते हुए कहा कि ऐसे सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई करनी होगी जो सदन की मर्यादाओं और उसकी परंपराओं को समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। लोकसभा की कार्यवाही एक बार के स्थगन के बाद जब दोपहर 12 बजे आरंभ हुई तो विपक्षी सदस्यों ने फिर नारेबाजी शुरू कर दी। इसी हंगामे के बीच प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने सदन में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। हंगामा न थमने पर भी बिरला ने दोपहर 12:08 पर सदन की बैठक अपराह्न 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 में संशोधन से संबंधित इस विधेयक में परीक्षाओं में प्रश्न पत्र लीक करने या अनुचित साधनों का इस्तेमाल करने वाले व्यक्तियों को कम से कम 5 साल और अधिकतम 10 साल तक के कारावास तथा 50 लाख रुपए तक के जुर्माने की सजा का प्रावधान है। इसमें संगठित अपराधों के लिए कम से कम 7 साल के कारावास और 10 करोड़ रुपए के जुर्माने का प्रस्ताव भी है। शाम 5 बजे बैठक फिर शुरू होने पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सारे सदस्य तैयारी के साथ आए हैं और विपक्ष के कई सदस्यों ने भी संशोधन के नोटिस दिए हैं तथा वे भी तैयारी के साथ आए हैं। उन्होंने कहा फिर भी कांग्रेस और उसके कुछ साथी इस महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा

नहीं होने दे रहे। उन्होंने आग्रह किया कि कांग्रेस के लोग ऐसा न करें। पीठासीन सभापति कृष्ण प्रसाद तेनेटी ने विपक्षी सदस्यों से चर्चा शुरू कराने में सहयोग करने का आग्रह किया और अपनी अपील का असर न होते देख कार्यवाही कुछ मिनट बाद ही दिन भर के लिए स्थगित कर दी। अब सुनिए राज्यसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखिका हैं पीटीआई भाषा की मनीषा श्रीवास्तव। नीट प्रश्न पत्र लीक के विरोध में राष्ट्रीय राजधानी में प्रदर्शन करने वाले छात्रों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई के मुद्दे पर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण राज्यसभा की बैठक आज बार बार बाधित हुई। चार बार के स्थगन के बाद अपराह्न शाम करीब 5:15 बजे कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। हंगामे की वजह से उच्च सदन में शून्यकाल, प्रश्नकाल और विधायी कामकाज नहीं हो पाया। विपक्ष ने मांग की कि प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस के बल प्रयोग के मुद्दे पर गृहमंत्री सदन में आए और बयान दें। पूर्वान्ह 11 बजे बैठक शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए। इसके बाद उन्होंने सदस्यों से शून्यकाल के तहत लोक महत्व के मुद्दे उठाने को कहा। इस बीच विपक्षी सदस्यों ने नीट प्रश्न पत्र लीक मामले को लेकर पिछले सप्ताह दिल्ली में प्रदर्शन करने वाले छात्रों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई का मुद्दा उठाया। सभापति से अनुमति 267 के तहत एक नोटिस दिया है। सभापति ने कहा कि वो नियम 267 के बारे में व्यवस्था दे चुके हैं। श्री राधाकृष्णन ने अपने पूर्व के निर्णय का हवाला देते हुए कहा कि नियम 267 के तहत केवल दिन की कार्यसूची में शामिल विषयों पर चर्चा कराई जा सकती है और वो भी विरलतम परिस्थितियों में तथा सदन की सहमति से। उन्होंने श्री खरगे से कहा कि सभापति को नियमों के अनुसार चलना है या नियम तोड़ने हैं, आप ही बताइए। श्री खरगे ने कहा कि अतीत में महत्वपूर्ण अवसरों पर नियम 267 के तहत दिए गए नोटिस स्वीकार किए गए हैं। श्री राधाकृष्णन ने कहा कि केवल विरलतम परिस्थितियों में ही ये संभव है। श्री खरगे ने कहा कि वो जो मुद्दा उठाने जा रहे हैं वो ऐसा ही है। उन्होंने कहा कि छात्रों के खिलाफ कथित पुलिस कार्रवाई ऐसा ही मामला है। इस पर सभापति ने कहा कि असाधारण परिस्थिति होने के साथ इस पर पूरे सदन की सहमति भी चाहिए, वो नहीं है तो वो क्या करें। श्री खरगे ने नीट प्रश्न पत्र लीक मामले को लेकर प्रदर्शन करने वाले छात्रों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई का मुद्दा उठाना चाहा। उन्होंने आरोप लगाया कि इन छात्रों के खिलाफ पुलिस ने पैलेट गन का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि भारत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि लड़कों को पीटा गया और उन्हें पैलेट से निशाना बनाया गया। सभापति ने उनसे कहा कि वो शून्यकाल चलने दें। इस पर विरोध जताते हुए विपक्षी सदस्य हंगामा करने लगे। सभापति ने सदस्यों से शांत रहने और शून्यकाल चलने देने की अपील की, लेकिन सदन में व्यवस्था बनते न देख उन्होंने बैठक दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। दोपहर 12 बजे जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो विपक्षी सांसदों ने फिर से छात्रों के खिलाफ कथित पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठाया। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने आरोप लगाया कि निर्दोष छात्रों को पीटा गया, उन पर लाठियां चलाई गई और लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार किया गया। उन्होंने मांग की गृहमंत्री अमित शाह इस मुद्दे पर सदन में आकर बयान दें। विपक्षी सांसद गृहमंत्री को सदन में बुलाने की मांग करते हुए नारेबाजी करने लगे। द्रमुक सदस्य तिरुचि शिवा ने कहा कि उनकी पार्टी ने नीट परीक्षा पर रोक लगाने की मांग करते हुए एक नोटिस दिया है। उन्होंने कहा कि हर परंपरा में अपवाद की गुंजाइश रहती है। उन्होंने कहा कि इतने सारे छात्रों ने आत्महत्या की, सरकार बहुत कुछ कर सकती है लेकिन उनकी जिंदगी वापस नहीं लौटा सकती। श्री शिवा ने कहा कि उन्होंने भी नीट के मुद्दे पर नियम 267 के तहत नोटिस दिया है। उन्होंने कहा कि नियम 267 के तहत दिए जा रहे नोटिस लंबे समय से स्वीकार नहीं किए जा रहे। नियम 267 के तहत सदन में सूचीबद्ध सभी काम रोककर किसी विषय पर चर्चा कराई जाती है। माकपा सांसद जॉन ब्रिटास ने कहा

0: संसद जनता का प्रतिनिधित्व करती है और भारत लोकतंत्र की जननी है। उन्होंने कहा कि देश के बच्चों का खून बहा है, लोकतंत्र की जननी राजधानी इस देश के निर्दोष बच्चों के खून से रंग गई है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के पी संतोष कुमार ने भी प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस के बल प्रयोग का मुद्दा उठाना चाहा। सत्ता पक्ष के सदस्य इस पर विरोध जता रहे थे, जबकि विपक्षी सदस्य सरकार के खिलाफ नारे लगाते रहे। हंगामे के कारण सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सदन की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 2 बार के स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे बैठक शुरू होने पर उपसभापति हरिवंश ने राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा शुरू कराने का प्रयास किया। ये विधेयक उच्च सदन में शुक्रवार को पेश किया गया था, जिसके प्रावधानों के तहत राष्ट्रगीत वंदे मातरम के गायन के दौरान किसी भी तरह का व्यवधान डालना या उसका अपमान करना आपराधिक कृत्य माना जाएगा और इसके लिए 3 वर्ष तक की सजा हो सकती है। इस विधेयक के तहत 1971 के मूल अधिनियम में संशोधन का प्रावधान किया गया। इस विधेयक पर सदन में चर्चा आज होनी थी। श्री हरिवंश ने इस विधेयक पर चर्चा शुरू करानी चाहिए, लेकिन इसी दौरान कांग्रेस के प्रमोद तिवारी, माकपा के जॉन ब्रिटास और द्रमुक सदस्य तिरुचि शिवा ने व्यवस्था का प्रश्न उठा दिया। उपसभापति ने कहा कि व्यवस्था का प्रश्न विधेयक से संबंधित ही होना चाहिए। उन्होंने गृह राज्य मंत्री नित्यानंद रॉय से विधेयक पर चर्चा को शुरू करने से पहले विधेयक के बारे में बोलने को कहा। इसी दौरान हंगामा और तेज हो गया और कुछ सदस्य अपने स्थानों से उठकर आगे आ गए। श्री हरिवंश ने कहा कि मॉनसून सत्र शुरू हुए 1 सप्ताह हो चुका है और अब तक कोई भी कामकाज हो नहीं पाया है। उन्होंने सदस्यों से शांत रहने, अपने स्थानों पर लौट जाने और विधेयक पर चर्चा शुरू करने की अपील की। अपनी बात का असर न होते देख श्री हरिवंश ने बैठक अपराह्न 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 3 बार के स्थगन के बाद अपराह्न 3 बजे बैठक शुरू होने पर उपसभापति हरिवंश ने फिर से राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्ष के कई सदस्य आसन के समीप आ गए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। उपसभापति ने हंगामा कर रहे सदस्यों से शांत होने और विधेयक पर चर्चा की अपील की, लेकिन सदन में हंगामा कर रहे सदस्यों पर उनकी इस अपील का कोई असर न हुआ। हंगामा थमते न देख उन्होंने बैठक शाम 5:15 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 5:15 बजे बैठक शुरू हुई और विपक्षी सदस्यों का हंगामा भी फिर से शुरू हो गया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि विपक्षी सदस्यों ने कार्य मंत्रणा समिति में राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा करने पर सहमति जताई थी, लेकिन अब इस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सदन में मौजूद हैं, आप वरिष्ठ सदस्य हैं, आप अपनी पार्टी के सदस्यों को समझाइए जो हंगामा कर रहे हैं। बाहर जाकर आप कहते हैं कि हमें सदन में बोलने नहीं दिया जाता, लेकिन यहां आपके आगे हम अनुरोध कर रहे हैं, फिर भी आप चर्चा में हिस्सा नहीं ले रहे। श्री खड़गे ने कहा कि वे सदन में चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि गृहमंत्री स्वयं सदन में आए, उपस्थित हों और प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई के मुद्दे पर बयान दें। हंगामे की वजह से उपसभापति हरिवंश ने बैठक को पूरे दिन भर के लिए स्थगित कर दिया। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। आकाशवाणी मध्य प्रदेश से अब सुनिए सुर्खियों में।
2: सुर्खियों में
3: ये आकाशवाणी है,
2: प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए लोक परीक्षा संशोधन।

0: विधेयक 2026 परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और सख्ती की नई पहल पर चर्चा। इसमें भाग ले रही हैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की पूर्व सदस्य और शिक्षाविद प्रोफेसर सुषमा यादव, कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं सोनू सूद।
1: लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया गया। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने ये विधेयक सदन में प्रस्तुत किया। और ये विधेयक लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण कानून 2024 में संशोधन करेगा। ये विधेयक का परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता, निष्पक्षता और लोगों का भरोसा बनाए रखने के लिए लाया गया है। इसका उद्देश्य छात्रों के भविष्य को सुरक्षित रखना और परीक्षा प्रणाली को कानूनी रूप से और अधिक सशक्त बनाना है। इस विधेयक के महत्व और विभिन्न पहलुओं पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ी हैं शिक्षाविद और यूजीसी की पूर्व सदस्य प्रोफेसर सुषमा यादव। प्रोफेसर यादव, आपका बहुत बहुत स्वागत आकाशवाणी में।
2: धन्यवाद और सबको नमस्कार।
1: प्रोफेसर यादव, जो ये विधेयक आज पेश किया गया लोकसभा में, लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026, इसके महत्व को आप वर्तमान परिदृश्य में कैसे आंकती हैं? किस तरह से हमारे ये पब्लिक एग्जामिनेशन इकोसिस्टम को मजबूत करने की ओर एक बहुत महत्वपूर्ण कदम माना जा सकता है?
2: जी देखिए, एक तो सबसे पहले अगर मैं बात कहूं तो अभी जो हम युवा पीढ़ी को थोड़ा असंतुष्ट, थोड़ा परेशान, एजिटेटेड देख रहे थे पिछले कुछ दिनों से, और प्रधानमंत्री जी ने उन्हें आश्वासन दिया था कि सरकार इसको रोकने में पीछे नहीं हटेगी, ये उस आश्वासन की तुरंत पूर्ति है। लेकिन यह संशोधन विधेयक है, सरकार 2024 में भी पहले ये विधेयक ला चुकी है, और क्योंकि उसके बाद भी प्रश्न पत्र लीक हुए और एक नहीं अनेक स्थानों पर लीक हुए, और उससे बच्चों का विश्वास इन परीक्षाओं से लगभग उठने लगा था, इसलिए यह विधेयक संशोधन आया है। और विशेष तौर पर यह सार्वजनिक और प्रतियोगी परीक्षाओं में होने वाले कदाचार, धोखाधड़ी, अनुचित साधनों के प्रयोग पर प्रभावी रोक लगाने का उद्देश्य रखता है। और परीक्षा प्रणाली इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आजकल अगर आप देखें अपने आसपास, तो युवा को बहुत सारी परीक्षाएं देनी पड़ती हैं। उनकी भी गलती नहीं है अगर वो कहीं असंतुष्ट होते हैं तो, क्योंकि एक तो वो जो आप परीक्षा पास करते हैं अपनी डिग्री के लिए, लेकिन उसके बाद एक के बाद एक कहीं प्रवेश परीक्षा है, कहीं प्रतियोगी परीक्षा है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो सार्वजनिक नौकरियों के क्षेत्र में हो। इसलिए शिक्षाएं महत्वपूर्ण है। तो इस परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता लाना, निष्पक्षता लाना और सबसे बड़ी बात उसमें विश्वसनीयता लाना, ताकि यह पीढ़ी उन पर विश्वास कर सके, ताकि प्रत्येक प्रतियोगी और अभ्यर्थी को समान अवसर मिल सके, यह इस विधेयक का एक बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य है।
1: जी,
2: साथ ही यह रोक लगाने का भी काम करना चाहता है, नकल पर रोक, प्रश्न पत्र के लीक होने पर रोक, क्योंकि वो बड़ी गंभीर चुनौतियां बन गई हैं इस समय, और उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई, मतलब मुझे तो बहुत ही कड़ी लग रही थी ये कार्रवाई जब मैंने इन प्रावधानों को पढ़ा, क्योंकि बेईमानी करते समय थोड़ा डरे व्यक्ति
1: जी
2: कि मैं जितना कमाऊं इसमें से उससे अधिक मेरा दंड में लग जाएगा, यह शायद एक भय उनके मन में ये विधेयक लाना चाहता है। और फिर एक इम्पर्सनेशन बहुत बढ़ने लगा है, जो ये हमारी युवा पीढ़ी है आसानी से चीजें प्राप्त भी करना चाहती है, तो मैं नहीं मेरी जगह ये परीक्षा दे ले, विशेष तौर पर दोज हु कैन अफोर्ड इट, उस पर भी सख्ती से रोक लगाने की बात है और दोनों को सजा देने की भी बात। फिर अब मात्र ये व्यक्तिगत मामला नहीं रह गया है, जब ये कोचिंग इंस्टीट्यूट्स आ गए हैं, एक प्रकार से ये पूरी इंडस्ट्री बन गई है, तो संगठित शिक्षा कदाचार भी बड़ी समस्या है और बड़ा अपराध भी हो गया है। तो यदि कोई गिरोह या संगठित समूह प्रश्न पत्र लीक कराए, नकल में या परीक्षा में धोखाधड़ी जैसी गतिविधियां आरंभ करे या उनमें शामिल हो जाए, तो उसके विरुद्ध यह विधेयक संगठित कड़ी कार्रवाई और त्वरित कार्रवाई करने की बात करता है।
1: जी बिल्कुल,
2: उसका उद्देश्य ये भी है, अगर मैं संक्षेप में कहूं तो ईमानदार अभ्यर्थियों के हितों की रक्षा, मेरिट पर आधारित चयन को प्रोत्साहन, और परीक्षा संस्थाओं की जवाबदेही या उत्तरदायित्व सुरक्षित करना भी इस विधेयक का उद्देश्य है।
1: बिल्कुल, जैसा आपने कहा कि बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक है, पूरा जो हमारा इकोसिस्टम है पब्लिक एग्जामिनेशंस का, कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस का, उसमें पारदर्शिता लाना, उसमें जिस तरह का चैलेंजेस हमने हालिया दिनों में देखे हैं वो फिर ना उत्पन्न हो, और उत्पन्न हो तो उनका तुरंत निवारण हो। उस संदर्भ में जिस तरह से आपने, एक तो आपने जिक्र किया कि जो जेल टर्म्स हैं या जो जुर्माना है उनको काफी हद तक बढ़ाया गया है, चाहे वो इंडिविजुअल्स हों या इंस्टीट्यूशंस हों, हर एक कैटेगरी में उनको बढ़ाया गया है ताकि

0: एक डर हो ऐसा कुछ भी ऑफेंस करने से पहले, जो हमारे सारे लाखों छात्रों को प्रभावित करता है। और दूसरा, जो जिस तरह से जो कार्रवाई है, कानूनी कार्रवाई है, उसको त्वरित करने की जो बात की गई है, उसको एफिशिएंट बनाने की बात की गई है, उसको आप कैसे देखते हैं? जिस तरह से स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाने की बात की गई है, और उसमें डे टू डे बेसिस पर, ये नहीं कि दो या तीन हफ्ते बाद की तारीख होगी, डे टू डे बेसिस पर ट्रायल्स, और वो 3 महीने में उन ट्रायल्स को पूरा करना, इस एस्पेक्ट आप कैसे देखती हैं?
1: देखिए, बिल जो है ये कहता है कि जो कोर्ट्स होंगे वो स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट के रूप में काम करेंगे, विद डे टू डे हियरिंग, ट्रायल्स टारगेटेड टू कंक्लूड, 3 महीने के अंदर वो समाप्त हो जाएं, चार्जशीट होने के, और एक सेंट्रल स्पेशल टास्क फोर्स की भी बात करता है, ताकि हाई स्टेक्स पेपर्स लीक जो होते हैं, या इंटर स्टेट और क्रॉस स्टेट पेपर लीक जो होते हैं, अंतर्राज्यीय होंगे, उनको ये देख सके और उन माल प्रैक्टिसेस को देख सके, और साथ ही स्पेशलाइज प्रोसिक्यूटर्स की भी बात करता है, हु आर डेडिकेटेड टू एग्जामिनेशन माल प्रैक्टिस केसेस, और एक और बात भी है, एक नया अपील मैकेनिज्म की भी ये बात करता है कि किसी भी निर्णय के विरुद्ध अपील की जा सके डिवीजन बेंच और हाई कोर्ट में या फिर हायर कोर्ट में विद इन 3 मंथ्स ऑफ एडमिशन, क्योंकि आप ये प्रायः ये माना जाता था जो सिविल केसेस होते हैं भारत में
0: जी,
1: उन सिविल केसेस में कोई जल्दबाजी करता ही नहीं है
0: जी,
1: और जब तक आप पुलिस को भी संतुष्ट कर लें तो फिर वो और भी देरी हो जाती है, और आप जानते हैं कि जिस प्रकार की व्यवस्था बनी है उसमें यदि संगठित गिरोह हो तो बड़ी आसान व्यवस्था को भी प्रभावी कर लेते हैं, और कुछ नहीं तो डिले तो कर ही सकते हैं। अब इसमें यदि डिले होता है तो नेचुरली बच्चों के तो साल जा रहे हैं ना
0: जी,
1: उनका हर साल, उनका हर महीना महत्वपूर्ण है, उस रूप में ये एक बहुत त्वरित न्याय का आश्वासन देने वाला कानून है, विधि है, और संशोधन भी ऐसे ही किए गए हैं ताकि जो पुरानी हमने देखी थी कहीं कहीं ढील है उस विधि में या कानून, उसको दूर किया जाए, और बच्चों को और युवा पीढ़ी को, और मात्र युवा पीढ़ी को नहीं, उनके माता पिता को भी, पूरे समाज को ये विश्वास हो कि पेपर लीक की समस्या या नकल रोकने की समस्या कोई छोटी सी समस्या नहीं है, एक बड़ा अपराध, उसको बड़े अपराध में देखा जाए, यह इस विधि का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, और इसकी सजा भी बढ़ाई है, देखिए 3 से 5 पहले वो 5 से 10 साल कर दी है, उससे भी अधिक जो फाइन बढ़ाया है वो तो बहुत ही अधिक बढ़ा दिया गया है, यानी डिटरेंस के रूप में, निवारण के में, निवारक प्रभाव ये पैदा करे, यह इसका उद्देश्य है, और प्रक्रियाओं में देरी भी कम होगी। लेकिन एक बात यहाँ मैं कहना चाहती हूँ, भारत संघीय व्यवस्था है, ये रखा गया है कि स्पेशलाइज्ड प्रोसिक्यूटर्स हों राज्यों में भी, यूटीज में भी, अपील मैकेनिज्म भी मजबूत हो, और साथ ही साथ सभी राज्य सरकारें भी इस प्रकार की कानून यदि पास करेंगी तो सच में इसका अर्थ युवाओं के लिए और पूरे समाज के लिए, और समाज के बाहर मैं कहूंगी राष्ट्र के लिए बस बन पाएगा।
0: जी बिल्कुल, और जैसे आपने कहा कि जब जुर्माना बढ़ाया जाता है या जो जेल सेंटेंस है उसकी अवधि बढ़ाई जाती है तो एक डेटरेंट के रूप में काम करता है, एक तरह से आपको जैसे एक डर होता है कि आप ये ऑफेंस ना करें या आपको बहुत भारी पड़ सकता है। इसमें भी अलग अलग कैटेगरीज हैं, जैसे इंडिविजुअल्स के लिए आपने जैसे अभी बताया पनिशमेंट, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स के लिए भी है, जो मिनिमम सेंटेंस है वो पहले 5 वर्ष था अब 7 वर्ष है, और पहले 1 करोड़ जुर्माना था उसे बढ़ाकर 10 करोड़ कर दिया गया है जी, और सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए भी उनको कहा है कि उन्हें आपको 4 साल के बजाय 8 साल के लिए डिबार कर दिया जाएगा पब्लिक एग्जाम कंडक्ट करने से। ये आपको लगता है कि बहुत इम्पोर्टेंट है कि हर लेवल पर जो है इस तरह की रोकथाम लगाई जाए?
1: जी, इसका मैं स्वागत करती हूँ, क्योंकि अभी जिस प्रकार का विशाल और विस्तृत परीक्षा व्यवस्था हमारी बन गई है, ये पूरी संस्था बन गई है, तो उसमें जो संस्थाएं परीक्षा करवाती हैं वो नेचुरली अपने आप में पर्याप्त नहीं होती, और उनको बहुत सारे सेवा प्रदाताओं की आवश्यकता पड़ती है। आपने देखा होगा CUET में, नीट में, नेट में, सभी में बहुत सारे, और इवन फॉर UPSC फॉर दैट मैटर, तो इन सभी में हमें बहुत सारे सेवा प्रदाताओं की आवश्यकता होती है, और उसमें प्रिंटिंग, डिजिटल सेवाएं, तकनीकी सहायता, परिवहन, अन्य सेवाएं प्रदान करने वाली बहुत सी एजेंसियां इसमें भूमिका महत्वपूर्ण होती है। अब उनकी मिलीभगत से, उनकी लापरवाही से, उनके लालच से, उनकी ग्रीड से कहीं भी इस सेवा में बाधा आ सकती है। इसलिए उन सेवा प्रदाताओं को भी इसमें उत्तरदायी बनाया गया है और उनके लिए भी निवारक प्रभाव कठोर दंड से पैदा करने का प्रयास किया गया है। नहीं तो ये मान लिया जाता है कि हमारा क्या, वी वर ओनली सर्विस प्रोवाइडर्स, और अभी तक उनको कोई सोचता भी नहीं था, उनकी भी जिम्मेदारी की गई है। और एक चीज जो अभी तक मैं भी नहीं कह पाई हूँ, तो साइबर अपराध जो इसमें अब शामिल हो गए हैं, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का अधिक से अधिक प्रयोग कर रहे हैं, डिजिटल तकनीकों का अधिक से अधिक प्रयोग कर रहे हैं
0: जी,
1: तो डेटा सुरक्षा, सर्वर सुरक्षा, इंक्रिप्शन, डिजिटल निगरानी, इन जैसे उनकी भी आवश्यकता पड़ गई है। क्योंकि साइबर अपराध मात्र राशि के क्षेत्र में या पैसों के क्षेत्र में नहीं बढ़ रहे हैं, साइबर अपराध जहां हम तकनीक का प्रयोग कर रहे हैं, डिजिटल सेवाओं का प्रयोग कर रहे हैं, वहां वहां ये बढ़ते जा रहे हैं। अब भी हम डिजिटल सेवाओं की ओर बढ़ रहे हैं, तो मैं एक क्वेश्चन भी यहां देना चाहती हूं कि हमें सरकार ने वादा किया है कि अगली बार से ये कंप्यूटर पर होंगी परीक्षाएं, तो वहां भी हमें डिजिटल सुरक्षा, साइबर सुरक्षा, इनकी विशेष प्रावधान बनाने होंगे, रखनी होगी, इनका ध्यान रखना होगा। क्योंकि मशीन अपने आप में तो कुछ नहीं करती, लेकिन मशीन को यूज करने वाले, मशीन का रख रखाव करने वाले तो व्यक्ति ही होते हैं, संस्थाएं ही होती हैं। तो उन संस्थाओं में और उन व्यक्तियों में भी अंततः इस विधि का, इस कानून का डर हो, भय हो। और साथ साथ इससे भी बड़ी बात, अगर आप थोड़ा और समय दें मुझे, तो इससे भी बड़ी कहना चाहती हूँ, ये तो विधि है, ये दंड है, ये अपराध है और उसको रोकने की व्यवस्था है, परंतु इन सबसे बड़ी नैतिकता है। जब तक वो नैतिकता व्यक्तियों और संस्थाओं में नहीं आएगी, और एक शिक्षाविद होने के कारण मैं भी अपराधी महसूस करती हूँ कई बार स्वयं को, क्योंकि जो पीढ़ी निकाली है, ऑल्दो ये पीढ़ी हमारे बाद की पीढ़ी है, जो पीढ़ी रहे हैं उसमें नैतिकता और शॉर्टकट चुनने की जो एक इच्छा हमेशा बनी रहती है, उस इच्छा से मुक्ति, ये जब तक हम बच्चों में नहीं लाएंगे, और माता में बड़े स्वप्न देखने की इच्छा और उन स्वप्नों को बच्चों के माध्यम से पूरा करने की इच्छा, वह भी बच्चों की आकांक्षाएं हैं, वो सपने हैं वो, लेकिन उन सपनों से भी कहीं ना कहीं बच्चों पर भार पड़ता है, और फिर ये सब कर एक ऐसे पर्यावरण का निर्माण करते हैं जहां अपराध होते हैं, पेपर लीक, नकल करना आसान लगता है, इम्पर्सोनेशन क्राइम नहीं लगता, अनैतिक नहीं लगता, और अंततः कोई भी शॉर्टकट मिल जाए, चाहे वो पैसे के माध्यम से मिले, चाहे वो प्रभाव के माध्यम से मिले, हर व्यक्ति उस तरफ चलना चाहता है। तो बच्चों को इनसे भी रोका जाए, माता पिता भी पर बोझ ना डालें, तो मैं समझती हूँ अपराधों से मुक्ति अधिक आसानी से मिल सकती है।
0: आपने बहुत ही एक गंभीर बात कही और बहुत ही अहम पहलू है इस पूरे जो प्रकरण है उसका। एक और मैं आपका जो ध्यान जिस तरफ आकर्षित करना चाहूंगी, आज सुबह पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर किरण रिजिजू ने सभी एमपी से अपील किया था कि जो भी विपक्ष के हों, पक्ष के हों, सब जो डिस्कशन है एग्जाम रिफॉर्म बिल पर, उसमें हिस्सा लें, अपनी ओपिनियंस दें, और उनके आधार पर जो है जो व्यवस्था है वो और ज्यादा मजबूत बनेगी। उसमें जो भी अगर हम कुछ और चेंजेस आप सजेस्ट करेंगे तो उनको भी पूरा तरह से कंसिडर किया जाएगा। तो आपको लगता है कि ये एक जिम्मेदारी सारे सांसदों की भी बनती है कि वो इस पर एक मीनिंगफुल डिस्कशन करें विदाउट डिस्ट्रप्शन?
1: जी बिल्कुल बनती है। देखिए, ये राजनीतिक विषय तो हो सकता है
0: जी,
1: लेकिन इस पर राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। वी शुड नॉट डू पॉलिटिसाइजेशन ऑफ दिस, क्योंकि ये बुनियादी जरूरत है और बुनियादी अधिकार भी है, और उस बुनियादी अधिकार की सुरक्षा और सब तक उसे पहुंचाना सभी सांसदों का, संपूर्ण सरकार का, हमारी पूरी विधायिका का कर्तव्य है।
0: सुषमा जी, लोकसभा में आज पेश लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर इस समग्र चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद और सबको नमस्कार एक बार फिर।
2: अभी आप सुन रहे थे लोक परीक्षा संशोधन विधेयक 2026, परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और सख्ती की नई पहल पर चर्चा। इसमें भाग ले रही थी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की पूर्व सदस्य और शिक्षाविद प्रोफेसर सुषमा यादव। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी सोनू सूद। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
3: सुर्खियों में अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुर्खियों में, ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।
4: मीटिंग वेव 462.96 मीटर पर, ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: कार्यक्रम का पहला गीत आप सुन रहे थे जुबैदा फिल्म से, कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ में। जावेद अख्तर का लिखा गीत था, एआर रहमान का संगीत। कार्यक्रम में आप सुनिए यस बॉस फिल्म का गीत अभिजीत के स्वर में। जावेद अख्तर के लिखे गीत को संगीतबद्ध किया है जतिन ललित ने।

कार्यक्रम के अंत में सुनिए वांटेड फिल्म का गीत शान और सुनिधि चौहान के स्वर में। अरुण भैरव के लिखे गीत को संगीतबद्ध किया है साजिद वाजिद ने।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत, ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। थोड़ी ही देर में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे।
1: मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, याद रखें समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या किस

0: उनकी जांच के लिए पुलिस महानिरीक्षक की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय विशेष जांच दल का गठन किया। सर्वोच्च न्यायालय ने टीम में एक फॉरेंसिक ऑडिटर को शामिल करने का निर्देश दिया। भारत ने वाणिज्यिक पोत एमवी ओमाफी पर हुए हमले में एक भारतीय नागरिक की मौत पर कड़ा विरोध जताते हुए यूक्रेन के राजदूत को तलब किया। उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बने गहरे दबाव के कारण ओडिशा में मूसलाधार बारिश, पूरे उत्तर भारत में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। और राष्ट्रमंडल खेलों में भारोत्तोलक ज्ञानेश्वरी यादव ने महिलाओं के 53 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। और अब समाचार विस्तार से। सदन के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित। एक रिपोर्ट।
1: मानसून सत्र के लगातार छठे दिन भी विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित रही। सत्र के दूसरे सप्ताह के पहले दिन नीट मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान छात्रों के खिलाफ दर्ज एफआईआर को वापस लेने की विपक्ष की मांग के कारण लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही बार बार स्थगित करनी पड़ी। लोकसभा की कार्यवाही 4 बार और राज्यसभा की कार्यवाही 5 बार स्थगित हुई। विपक्ष के हंगामे के बीच आज लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया गया। इसका उद्देश्य इस संबंध में बने 2024 के अधिनियम में संशोधन करना है। यह विधेयक परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता, निष्पक्षता और लोगों का भरोसा बनाए रखने के लिए लाया गया है। इसका उद्देश्य छात्रों के भविष्य को सुरक्षित रखना और परीक्षा प्रणाली को कानूनी रूप से और अधिक सशक्त बनाना है। इस विधेयक में सख्त प्रावधान किए गए हैं। दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की जेल, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दल जानबूझकर सदन में इस विधेयक पर चर्चा नहीं होने देना चाहते।
2: पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ आंसर मीन तो इम्पोर्टेंट बिल लेके आया है तो कांग्रेस, कल भी हमने अपील किया, आज भी सुबह से हमने अपील किया, फिर भी नहीं मान रहे हैं। हमने लोकसभा में भी बताया और यहाँ भी कहा, टाइम अलॉटेड है। कांग्रेस वाला बताते हैं कि पार्लियामेंट में बोलने नहीं देते हैं और यहाँ हम हाथ जोर जोर के कहते हैं कि आप बोलिए।
1: हंगामा जारी रहने के कारण लोकसभा और राज्यसभा दोनों को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया। चल रहे मानसून सत्र के दौरान अब तक संसद में कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं हो सका है। अनुपम मित्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने परीक्षा पेपर लीक के मुद्दे पर प्रदर्शन के दौरान विद्यार्थियों पर पुलिस के अत्यधिक बल प्रयोग के आरोपों से जुड़ी कई याचिकाओं पर कल सुनवाई करने पर सहमति व्यक्त की है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची तथा वी मोहना की पीठ ने विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल पुलिसकर्मियों के परिजनों की याचिका पर भी सुनवाई का निर्णय लिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने आज सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि उसने अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट को प्राप्त चंदे में कथित गबन की जांच के लिए लखनऊ रेंज के पुलिस महानिरीक्षक किरण एस की अध्यक्षता में 4 सदस्यों वाले विशेष जांच दल एसआईटी का गठन किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को एसआईटी में 5वें सदस्य के रूप में एक फॉरेंसिक ऑडिटर को शामिल करने का भी निर्देश दिया है। एसआईटी 2 सप्ताह के अंदर अपनी पहली स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। उत्तर प्रदेश में एक विशेष अदालत ने राम मंदिर चंदा चोरी मामले में सभी 8 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ा दी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्रालय ने आज वाणिज्यिक पोत एमवी ओमार्फी पर हुए हमले के बाद भारत में यूक्रेन के राजदूत अलेक्सांद्र पोलिशचुक को तलब किया। इस हमले में एक भारतीय की मौत हो गई थी। मंत्रालय ने इस घटना पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए वाणिज्यिक जहाजों पर ऐसे हमलों की कड़ी निंदा की है। उन्होंने समुद्री नौवहन की सुरक्षा और स्वतंत्रता तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर इनके प्रतिकूल प्रभाव को रेखांकित किया। मंत्रालय ने दोहराया कि ऐसे कृत्य निर्दोष नाविकों के जीवन को खतरे में डालते हैं, ये अस्वीकार्य हैं और इनसे बचना चाहिए। यूनाइटेड कश्मीर पीपुल्स नेशनल पार्टी UKPNP ने पाकिस्तानी अधिकारियों से संयम बरतने और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ बल प्रयोग न करने को कहा है। UKPNP ने कहा कि 5 जून से पाकिस्तान के कब्जे वाले क्षेत्र में जारी अशांति के बीच 40 से अधिक लोगों की जाने गई हैं। ये विरोध मार्च संयुक्त अवामी एक्शन

0: कमेटी और पाकिस्तानी अधिकारियों के बीच हुई बातचीत के विफल होने के बाद आयोजित किया गया। सिक्किम में नाथुला दर्रे के रास्ते से भारत और चीन के बीच सीमा व्यापार अगले महीने की पहली तारीख से फिर शुरू हो जाएगा। इससे कोविड 19 महामारी के कारण 2020 से निलंबित व्यापार फिर शुरू होगा। व्यापार की पुनः शुरुआत से सीमा पार व्यापार को और बढ़ावा मिलने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज स्काई रूट एयरोस्पेस के पवन चन्ना और नागा भरत डाका से बात की। श्री मोदी ने विक्रम 1 की सफलता के साथ साथ कई अन्य रोचक विषयों पर भी उनसे बात की। प्रधानमंत्री ने उनकी यात्रा और भविष्य की योजनाओं के बारे में सुनकर प्रसन्नता व्यक्त की। श्री मोदी ने कहा कि उनकी ऊर्जा, महत्वाकांक्षा और सकारात्मकता देश के निजी अंतरिक्ष इकोसिस्टम की जीवंत भावना को दर्शाती है। श्री मोदी ने स्काई रूट एयरोस्पेस की पूरी टीम को अपनी शुभकामनाएं भी दी। असम में भीषण बाढ़ के मद्देनजर इसराइल ने असम और भारत के लोगों के प्रति एकजुटता व्यक्त की है। भारत स्थित इसराइली दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राज्य में आई भीषण बाढ़ से प्रभावित सभी लोगों के साथ उनकी गहरी संवेदना है। असम में बाढ़ की स्थिति में सुधार होने के साथ ही अधिकतर इलाकों में बाढ़ का पानी अब कम हो गया है। शिवसागर, गोलाघाट, जोरहाट और चराईदेव जैसे सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों में बनाए गए 109 राहत कैंपों में भी 37,000 से ज्यादा लोग शरण लिए हुए हैं। बाढ़ के कारण अब तक 68 लोगों की मौत हो चुकी है। असम के मुख्यमंत्री डॉ हिमंत बिस्व शर्मा ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि जैसे जैसे राज्य बाढ़ से उबर रहा है, प्रभावित इलाकों में बिजली बहाल करने का काम चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है। ओडिशा में बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने गहरे दबाव के कारण मूसलाधार बारिश जारी है। कई जिलों में बाढ़ और जल भराव से फसलों और बुनियादी ढांचे को काफी नुकसान हुआ है। राज्य सरकार ने स्थिति से निपटने के लिए जिला प्रशासनों को 24 घंटे अलर्ट पर रखा है।
1: बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने गहरे डिप्रेशन के कारण उड़ीसा में लगातार बारिश हो रही है, जिससे कई जिलों में फिर से बाढ़ आ गई है और जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने मयूरभंज, केंदुझर, बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, देवगढ़, अनुगुल, ढेंकानाल, सुवर्णपुर, बौद्ध, नुआपड़ा और बलांगीर जिलों में इस महीने की 30 तारीख तक भारी बारिश होने की अनुमान जताया है। वासुदेवपुर में फिर से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं, जबकि सुवर्णपुर में फसलों को बड़े पैमाने पर नुकसान की खबर है। राजस्व और आपदा प्रबंधन मंत्री सुरेश पुजारी ने एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए सभी जिला प्रशासनों को राहत और बचाव कार्य तेजी से सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में उत्तराखंड में बारिश की संभावना व्यक्त की है। देहरादून, नैनीताल और बागेश्वर सहित कई पहाड़ी क्षेत्रों में अगले 24 घंटों के लिए तेज बारिश की चेतावनी जारी की गई है। राज्य सरकार ने सभी जिला प्रशासनों को सतर्क रहने का निर्देश दिया है। मौसम विभाग ने कल ओडिशा, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में तेज बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तटीय कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, दक्षिणांतरिक कर्नाटक और विदर्भ में भी कल तक इसी तरह के मौसम की संभावना है। 31 जुलाई तक तटीय आंध्र प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, झारखंड, केरल, माहे, कोंकण और गोवा, मध्य प्रदेश, उत्तर आंतरिक कर्नाटक और तेलंगाना में भी तेज बारिश का अनुमान है। 2 अगस्त तक अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी तेज बारिश की संभावना है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के सभी जवानों को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्र अपने वीर जवानों के शौर्य, उनके बलिदान और कर्तव्य निष्ठा के प्रति अटूट निष्ठा को सलाम करता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आंतरिक सुरक्षा की रक्षा से लेकर चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में नागरिकों की सेवा तक सीआरपीएफ कर्मियों ने हमेशा राष्ट्र को सर्वोपरि रखा। पूर्व राष्ट्रपति, भारत रत्न से अलंकृत और प्रख्यात वैज्ञानिक डॉ एपीजे अब्दुल कलाम की आज पुण्यतिथि है। मिसाइल मैन के नाम से विख्यात डॉ कलाम ने देश की रक्षा और अंतरिक्ष अनुसंधान को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल मन की बात कार्यक्रम में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा था कि डॉक्टर कलाम ने बच्चों और युवाओं को बड़े सपने देखने की प्रेरणा दी थी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। ग्लासगो में जारी राष्ट्रमंडल खेलों में भारोत्तोलक ज्ञानेश्वरी यादव ने 53 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीत लिया है। एशियाई चैंपियनशिप कांस्य पदक विजेता ज्ञानेश्वरी यादव ने महिलाओं के स्नैच में 88 और क्लीन एंड जर्क में 111 समेत कुल 199 किलोग्राम वजन उठाकर ये पदक हासिल किया। वहीं भारतीय मुक्केबाज सचिन सिवाच ने पुरुषों के 60 किलोग्राम स्पर्धा के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। सचिन ने इंग्लैंड के विलियम हैविट को शिकस्त दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारोत्तोलन में रजत पदक जीतने पर ज्ञानेश्वरी यादव को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने प्रतियोगिता में अपना व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन भी किया है। प्रधानमंत्री ने आशा व्यक्त की कि उनकी ये सफलता देश के युवाओं को प्रेरित करेगी। नई दिल्ली में 22वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप में भारत ने आज पुरुष और महिला टीम स्पर्धाओं में 3-0 की जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत कर दी है। भारतीय पुरुष टीम ने जिम्बाब्वे को और वहीं महिला टीम ने मालदीव को शिकस्त दी है। युवा मामले और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने ग्लासगो में आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए पहला पदक जीतने वाले पैरा पावर लिफ्टर झंडू कुमार को अपने आवास पर सम्मानित किया। खेल मंत्री ने उन्हें 10 लाख रुपए का नकद पुरस्कार भी प्रदान किया। झंडू कुमार ने पुरुषों के हैवीवेट वर्ग में 190 किलोग्राम वजन उठाकर कांस्य पदक जीता था। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में वेक्टर जनित रोगों, रोकथाम, सुरक्षा और जन जागरूकता विषय पर परिचर्चा का प्रसारण करेगा। जन स्वास्थ्य विशेषज्ञ और राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण केंद्र के पूर्व निदेशक डॉ अक्षय धालीवाल और नई दिल्ली स्थित एम्स के चिकित्सा विभाग के प्रोफेसर डॉ पीयूष रंजन परिचर्चा में भाग लेंगे। ओडिशा में विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा का समापन अनुष्ठान वार्षिक नीलाद्री बीजे आज पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर में मनाया जा रहा है। लाखों श्रद्धालु इस दिव्य वापसी के साक्षी बनने के लिए पुरी में एकत्रित हुए हैं। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा में लोक परीक्षा संशोधन विधेयक पेश, पेपर लीक के मामलों में सख्त कार्रवाई का प्रस्ताव। संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई नीट मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण बार बार बाधित। उत्तर प्रदेश सरकार ने राम मंदिर ट्रस्ट को मिले चंदे में कथित गबन की जांच के लिए पुलिस महानिरीक्षक की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय विशेष जांच दल का गठन किया। भारत ने वाणिज्यिक पोत एमवी ओमाफी पर हुए हमले में एक भारतीय नागरिक की मौत पर कड़ा विरोध जताते हुए यूक्रेन के राजदूत को तलब किया। उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी में बने गहरे दबाव के कारण ओडिशा में मूसलाधार बारिश और राष्ट्रमंडल खेलों में भारोत्तोलक ज्ञानेश्वरी यादव ने महिलाओं के 53 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीत लिया है। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashvani and I'm Saira Mujtaba with the news at 9. The headlines. Public Examinations Amendment Bill introduced in Lok Sabha proposing stricter action in paper leak cases. Both Houses of Parliament witnessed repeated adjournments amid ruckus by the opposition on alleged police action during protests over knee tissue. Uttar Pradesh government sets up 4-member SIT under IGP to investigate alleged Ram Temple Trust donation embezzlement. Supreme Court directs to include forensic auditor in team. New Delhi summons Ukrainian ambassador lodging strong protest over death of an Indian national in vessel attack. Deep depression over northwest Bay of Bengal triggers widespread torrential rainfall across Orissa. Orange alert for heavy rainfall issued across North India. And in Commonwealth Games, weightlifter Gyaneshwari Yadav clinches silver medal in women's 53kg category. And now the news in detail. The Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026 was introduced today. The bill seeks to amend the Public Examinations Prevention of Unfair Means Act 2024. Minister of State for Personnel, Public Grievances and Pensions, Dr. Jitendra Singh, introduced the bill in the House. However, both the Houses of Parliament witnessed repeated adjournments amid ruckus by the opposition parties on alleged police action during students' protest over NEET issue. A report.
3: For the sixth consecutive day of the monsoon session, the proceedings of both the Houses of Parliament continued to remain disrupted amid ruckus by the opposition. On the first day of the second week of the session, Lok Sabha and Raj Sabha faced repeated adjournments as opposition members demanded withdrawal of FIRs filed against students during the protest on the NEET issue. Lok Sabha saw 4 adjournments, while Raj Sabha faced 5 adjournments. Amid opposition uproar, the Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026 was introduced in the Lok Sabha today. The bill seeks to amend the Public Examinations Prevention of Unfair Means Act 2024. The legislation aims to strengthen the transparency, fairness and integrity of the examination system by establishing a robust legal framework while safeguarding the future of the students. It incorporates several significant provisions including stringent penalties such as imprisonment for up to 10 years, fines up to 10 crore rupees and the seizure of the properties of convicted offenders. Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju alleged that Congress and its allies are deliberately not allowing discussion in the House.
4: I would like to thank you for providing adequate time for discussion on this very important bill. A large number of amendment notices have also been submitted, which clearly shows that many members wish to express their views on this significant legislation. We have also assured the House that sufficient time will be given for the discussion. Then why are they raising slogans and trying to disrupt this debate? The entire nation, especially the youth, is closely watching these proceedings. I once again request the Congress party to counsel its members so that we can begin a meaningful discussion on the bill.
3: Despite repeated appeal from the chair and the government, the opposition members were on their feet in both the houses. As the pandemonium continued, both Lok Sabha and Raj Sabha were adjourned for the day to meet on Tuesday. During the ongoing monsoon session, so far, no substantive business has been transacted in Parliament. With Anupam Mishra, Anand Kumar, Akashwani News, Delhi.
2: The Uttar Pradesh government today informed the Supreme Court that it has set up a 4-member Special Investigation Team or SIT headed by Inspector General of Police for the Lucknow Range, Kiran S., to probe the alleged embezzlement of the donations received by the Ram Temple Trust in Ayodhya. The team will also include a DIG rank officer, a senior superintendent of police and an additional SP. The top court asked the state government to include a forensic auditor as the 5th member of the SIT, which will submit its first status report within 2 weeks. The bench was hearing a batch of petitions seeking a CBI investigation into the allegations of embezzlement of donations and audit of the Temple Trust finances. Meanwhile, a special court in Uttar Pradesh today extended the judicial custody of all 8 accused in the alleged Ram Temple donation theft case by 14 days. The Bombay High Court today granted permission to Union Road Transport and Highways Minister Nitin Gadkari to file a civil suit against Meta Platforms, X-Corp, Google LLC and other unidentified persons over the alleged circulation of defamatory deepfake and AI-generated content online. Mr. Gadkari has alleged that the AI-generated post falsely linked him and his family to financial gains from the ethanol blended fuel program, describing the claims as malicious and defamatory. Union Minister of Panchayati Raj, Rajiv Ranjan Singh, today launched the Atmanirbhar Panchayat program and the Samarth Panchayat portal in New Delhi. Mr. Singh said that these initiatives mark a significant step towards building financially empowered, technologically enabled and self-reliant panchayats in line with the vision of Viksit Bharat 2047. This is Akashwani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIO News Alerts. And for details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download the News on AIR app. Welcome back. You're listening to News at 9. The External Affairs Ministry summoned the Ukrainian ambassador, Dr. Alexandre Polishuk, following the attack on commercial vessel MV Amorefi, in which an Indian national was killed. The ministry conveyed its serious concern over the incident and condemned in strongest terms such attacks on commercial shipping and highlighted their adverse impact on the safety of maritime navigation, freedom of navigation and international commerce. The External Affairs Ministry said in a statement that the ambassador was requested to convey to the Ukrainian authorities India's strong concerns over the targeting of commercial vessels. The ministry reiterated that such actions that endanger the lives of innocent civilian seafarers are unacceptable and must be avoided. Saudi Arabia today said that it has shot down drones fired by Iran-backed militias in Iraq. The statement posted on social media today by the Saudi Defense Ministry came as the United States and Iran paused their attacks over the weekend after weeks of escalation. The statement said the drones targeted petroleum facilities in eastern Saudi Arabia and the capital Riyadh. Thousands of people gathered in Rawalkot in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir, or POJK, today to march towards Muzaffarabad after talks between the Joint Awami Action Committee, JAAC, and the Pakistani authorities failed to address the demands put forward by the committee. The march comes amid a 52-day-long protest movement, with demonstrators continuing to press for the release of detainees, withdrawal of cases registered against protesters, and acceptance of their wider demands. The developments coincided with the first phase of Legislative Assembly polling in 13 constituencies of the Mirpur division. Meanwhile, the Legislative Assembly elections in POJK have been postponed until the 10th of next month in the two districts of Sudhnoti and Rawalkot due to the ongoing protest sit-in organized by the Public Action Committee. Foreign Secretary Vikram Misri began his China visit today with a meeting with CPC International Department Vice Minister Song Haiya. They discussed ways to advance bilateral ties through leader-level guidance, priority issues, and greater political, people-to-people, academic, and think tank exchanges. Back home in Odisha, the annual Niladri Bijay, the concluding ritual of the world-famous Rath Yatra, is being observed at the Sri Jagannath Temple in Puri today. The sacred ceremony marks the ceremonial return of Lord Jagannath, Lord Balbhadra and Devi Subhadra to the Ratna Singhasan inside the Sanctum Sanctorum. Our correspondent reports, millions of devotees have gathered in Puri to witness the divine homecoming.

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: कार्यक्रम का पहला गीत मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज में आपने सुना बरखा फिल्म से, और लीजिए अब सुनिए वो कौन थी फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर की आवाज में। राजेंद्र कृष्ण के लिखे गीत को संगीतबद्ध किया है मदन मोहन ने।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: सदाबहार फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्र गीत इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से। लीजिए सुनिए कार्यक्रम के आखिर में वक्त फिल्म का गीत आशा भोसले के स्वर में, साहिर के बोल हैं, रवि का संगीत।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चित्र गीत, ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। थोड़ी ही देर में अगला कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक।

0: नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं कनकलता। आज हम मच्छरों से होने वाले रोगों और उनके उपचार पर चर्चा करेंगे। मच्छरों से होने वाली बीमारियां भारत सहित दुनिया भर में जन स्वास्थ्य के लिए गंभीर चिंता का विषय है। ये वो रोग हैं जो वायरस, बैक्टीरिया या परजीवियों के कारण होते हैं और वाहकों के माध्यम से मनुष्यों तक पहुंचते हैं। ये वाहक आमतौर पर मच्छर, टिक, सैंडफ्लाई और पिस्सू जैसे कीड़े या ऑर्थोपॉड होते हैं, जो संक्रमित जीव से रोगाणु ग्रहण करते हैं और उन्हें दूसरे जीव तक पहुंचाते हैं। सीधे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाले संक्रमणों के विपरीत मच्छरों से होने वाले रोग संचरण के लिए इन वाहकों पर निर्भर करते हैं। इन बीमारियों में मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, काला ज्वर, जापानी एंसेफ्लाइटिस, जीका, स्क्रब टाइफस आदि हैं। बारिश के मौसम में और बारिश के बाद इन बीमारियों का संक्रमण बढ़ जाता है, पर डेंगू का संक्रमण बारिश के अलावा अन्य मौसम में भी देखा जा रहा है। इन बीमारियों से बचने के उपाय और उपचार पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण केंद्र और राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र के पूर्व निदेशक तथा स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर अक्षय धारीवाल और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर पीयूष रंजन। स्टूडियो में आप दोनों का स्वागत है।
1: धन्यवाद।
0: श्रोताओं, स्टूडियो की फोन लाइन्स खुली हुई हैं। नंबर है 2331 0481, 2371 7117, 2371 7106 और 2331 4444। दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले 011 लगाना न भूलें। व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। आप हमारे एक्सेंजल @YIRNewsAlerts पर भी #AskYIR के जरिए अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और दूरदर्शन की DTH सेवा पर भी उपलब्ध है। सबसे पहले धारीवाल जी, ये बताइए कि मच्छर से होने वाली बीमारियां कौन कौन सी हैं?
2: देखिए, मच्छर विभिन्न प्रकार के होते हैं। मैं बात वहां से शुरू करना चाहूंगा और उससे पहले मैं ये बोलना चाहूंगा कि ये जो समय आपने रखा है वो बड़ा उपयुक्त समय है, क्योंकि अभी बारिशें चल रही हैं और बारिशों की वजह से पानी इकट्ठा होता है और ये जितने मच्छर जनित रोग हैं, मच्छरों की आप लोग देखते होंगे कि संख्या बढ़ जाती है इन दिनों में, तो उसका कारण का अपने को समझना है आज के कार्यक्रम में। और उससे जो होने वाले रोग हैं वो जैसा बताया गया कि कुछ वायरल डिजीज हैं, उसमें मुख्य डेंगू है, चिकनगुनिया है, जापानी एन्केफेलाइटिस है और पिछले कुछ सालों से जिका नाम की बीमारी भी जो है वो अपने देश में रिपोर्ट हुई है
0: जी।
2: और कुछ ऐसी जो है वो डिजीजेज हैं जो वनवासी क्षेत्रों में ज्यादा होती है, जैसे मलेरिया है
0: जी।
2: मलेरिया एक प्रोटोजोअल डिजीज है और फाइलेरिया है, उसका वैसे बारिशों से संबंध नहीं होता। और जो एक नाम लिया गया कालाजार, वो भी जो है वो जरूरी है, लेकिन उसका भी बारिशों से कोई ऐसा संबंध नहीं है, वो अलग उसका कीटाणु है, अलग कीट है उसका। सैंडफ्लाई का नाम जैसे आपने लिया, वो उससे जो है वो होता है और खास करके बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल और उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में कालाजार, और उसके लिए उन्मूलन कार्यक्रम चल रहा है और लगभग अच्छी बात है कि भारत ने लगभग उस पर विजय प्राप्त कर ली है और उसका जो WHO का सर्टिफिकेशन है हमारा वो हो जाएगा। तो मुख्य बात है कि मच्छर जो है वो इसमें तीन कैटेगरी में रखना चाहूंगा मैं। एक मच्छर जो दिन के समय काटते हैं,
0: जैसे डेंगू का है।
2: डेंगू और चिकनगुनिया का मच्छर का नाम आम बोलचाल की भाषा में टाइगर मॉस्किटो कहा जाता है इसको, जिसको कोई भी व्यक्ति देख करके पहचान सकता है। ऐसी बात नहीं है कि केवल डॉक्टर ही जो है वो पहचानेंगे या जो है वो जो विशेषज्ञ हैं वही पहचानेंगे। उसमें स्ट्रिप्स होती हैं, जैसे टाइगर के शरीर में स्ट्रिप्स होती हैं, व्हाइट ब्लैक, इसी तरह की, तो इसलिए उसको टाइगर मॉस्किटो कहा जाता है और वो दिन के समय काटता है, ये इसमें मुख्य बात है
0: जी।
2: और बाकी जो मच्छर होते हैं वो डॉन और डस्क कहा जाता है,
0: रात के
2: संध्या के समय पर या जो है वो प्रातः काल
0: अर्ली मॉर्निंग
2: अर्ली मॉर्निंग का। और तीसरी कैटेगरी होती है जो मिडनाइट में काटने के लिए आते हैं और खास करके
1: शिफ्ट में आते हैं
2: वो, तो इन लोगों में भी मच्छरों में मतलब एक कि उन्होंने अपना समय बांट रखा है, तो ये एक समाज के लिए मैसेज भी है कि देखिए वो अपनी जो है वो प्रजाति को बरकरार रखने के लिए कोई दिन में आता है, क्योंकि जरूरत क्यों पड़ती है उनको, मानव के खून की या पशु के खून की जरूरत मच्छरों को इसलिए पड़ती है कि उनको अपनी रिप्रोडक्शन के लिए, प्रजाति जो है वो चालू रखने के लिए कोई ना कोई किसी ना किसी का खून चाहिए। ऐसा जरूरी नहीं है कि केवल आदमी का ही, व्यक्ति का ही खून जो है वो काम करेगा। जानवरों में उनको जो है वो जूफिलिक जो है वो मच्छर कहा जाता है कि वो जानवरों पर ज्यादा जो है वो निर्भर करते हैं। तो ये मुख्य बात अपने को ध्यान रखनी है कि मच्छर दिन में काटने वाले डेंगू करेंगे और जो सुबह और शाम करने वाले हैं वो ज्यादातर मॉस्किटो न्यूसेंस मॉस्किटो कहलाते हैं, वो नहीं करते हैं, बीमारी नहीं जो है वो ट्रांसमिट करते हैं। और खास करके जो नालियां वगैरह होती हैं, गंदा जो है वो पानी इकट्ठा हो जाता है उसमें उसकी ब्रीडिंग जो है वो ज्यादा होती है। जो डेंगू का मच्छर होगा वो साफ पानी में और छोटे छोटे से आपके जैसे बॉटल बिस्लरी की बॉटल है या कप है उसमें पानी भी इकट्ठा हो गया तो उसमें भी ब्रीडिंग, तो और 7 दिन लगते हैं उसमें।
1: डेंगू मलेरिया और चिकनगुनिया सब में तेज बुखार आता है, लेकिन अलग अलग हम कैसे पहचानेंगे, लक्षण क्या होते हैं अलग अलग उनके?
2: देखिए डेंगू का लक्षण एक आम बोलचाल की भाषा में कहा जाता है कि हड्डी तोड़ बुखार, ब्रेक बोन फीवर, कि उसमें बुखार बहुत तेज होगा और उसके साथ उसको बॉडी एक जो है वो बहुत सीवियर होगा और उसमें एक खास लक्षण होता है कि रेट्रो जो आईज हैं, आई बॉल, उसके चारों तरफ जो है वो दर्द जो है वो रहता है और चकत्ते हो सकते हैं, क्योंकि इसमें एक डेंगू में खास करके ये संभावना होती है कि खून वगैरह निकल सकता है।
1: और चिकनगुनिया में?
2: चिकनगुनिया में जोड़ों का दर्द जो है वो होता है बुखार के साथ में।
1: और मलेरिया में डॉक्टर पीयूष
3: जी? ये तीनों बुखार जो है पोस्ट मानसून सीजन में पाए जाते हैं। अगर पहला बुखार बहुत तेज हो, जैसे बुखार शुरू हुआ और बहुत तेज बुखार हुआ और शरीर पे लाल रंग के रैसेस हुए और जैसा सर ने बताया कि ये तेज दर्द के साथ अगर ये होता है तो ऐसा माना जा सकता है कि ये डेंगू हो सकता है, आंखों के पीछे का दर्द इसका ही है। मलेरिया में बुखार पैरोक्सिज्म में आता है, यानी कि थोड़े समय तक बुखार आया, जारा कपकपी के साथ बुखार आया, ठीक हो गया। और अगर चिकनगुनिया में जो जोड़ों में दर्द होता है वो बुखार के बाद के समय में पाया जाता है,
1: मतलब बुखार ठीक होने के बाद
3: में। ये लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन जो दीर्घकालिक जो जटिलताएं के रूप में हम लोग इसे कहते हैं।
1: अच्छा, हमारे एक श्रोता जुड़ चुके हैं, योगेश जांगरे छत्तीसगढ़ से। योगेश जी?
4: जी नमस्ते।
1: नमस्ते योगेश जी, अपना सवाल पूछिए।
4: हम ये जानना चाहते हैं, दो प्रश्न है
1: जी।
4: पहला ये है कि ये मच्छर जनित रोग क्या जानलेवा भी हो सकते हैं, और दूसरा प्रश्न ये है कि हमारे आसपास की साफ सफाई में हमारी नैतिक जिम्मेदारी क्या है?
2: देखिए जहां तक योगेश जी जानलेवा की बात है तो ये बीमारियां, और क्योंकि आप छत्तीसगढ़ से आते हैं और छत्तीसगढ़ में खास करके मलेरिया का प्रकोप पहले बहुत होता था, और आपको शायद जानकारी होगी, आप कौन से जिले के हैं छत्तीसगढ़ में?
1: अभी हमारा संपर्क उनसे टूट गया, हालांकि वो हमें सुन पा रहे हैं, आप अपनी बात जारी रख सकते हैं।
2: छत्तीसगढ़ में मलेरिया का जो उन्मूलन प्रोग्राम चल रहा है उसके तहत जो बेड नेट्स हैं, मच्छरदानी है, और मच्छरदानी में भी ऐसी जिसमें कीट जनक पदार्थ जो है वो लगा रहता है, इसको हम लॉन्ग लास्टिंग इंसेक्टिसाइडल नेट्स बोलते हैं, उसके द्वारा मलेरिया की काफी कमी आई है। लेकिन जो आपका मुख्य प्रश्न है कि जानलेवा ये हो सकती है यदि जो है वो समय पर दवाई जो है वो ना ली जाए,
1: तो
2: इसी तरह से डेंगू में भी जानलेवा हो सकता है। बहुत कम केसेस में इस तरह के जो है वो लक्षण होते हैं, और चिकनगुनिया तो नहीं जो है वो बहुत
3: मोटे आंकड़े के तौर पर अगर देखा जाए तो एक एक से लेकर के 3% तक, ये डिपेंड करता है कई सारे चीज में कौन से स्पीसीज में है, तो मलेरिया और डेंगू जो है वो जानलेवा हो सकता है, जैसा कि डॉक्टर धारीवाल सर ने भी कहा। इसके लिए जरूरी है अर्ली डायग्नोसिस एंड अर्ली रिकॉग्निशन, यानी जल्द से जल्द इसे पहचाने और उपयुक्त इलाज इसका करें।
1: तो क्या जो नियमित रक्त जांच होती है उससे शुरुआत में पता चल जाएगा संक्रमण का?
3: जी हाँ, ये जैसे मूल तौर पे डेंगू और मलेरिया की बात करें तो दोनों में खून के जांच के द्वारा इसका पता चल सकता है। किस दिन बुखार के किस दिन कौन सी जांच कराई जाए या जांच अलग अलग होता है, तो उसके अनुसार हमें पता चल सकता है। और अब तो कई तरह के रैपिड डायग्नोस्टिक किट्स अवेलेबल हैं, जिसमें कि ये जिसकी की सेंसिटिविटी जो है 80-90% तक ऐसा रहता है, या इससे भी ज्यादा कई केसेस में होता है, जिसमें कि हम लोग बफीकोट और जो अगर उसे अगर इसे माइक्रोस्कोप के अंदर में थिक एंड थिन स्मेयर के द्वारा देखते हैं, तो ये सारी जांच बड़े प्रमाणिक हैं और बिल्कुल आसानी से आपके नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर उपलब्ध है। तो बारिश के मौसम के बाद जब कभी भी आपको बुखार और उसके लक्षण, जिसकी चर्चा हम लोग कार्यक्रम में आगे करेंगे, अगर आपको वैसा हो तो आप नजदीक के स्वास्थ्य केंद्र में जाकर के अपने डॉक्टर की सलाह पर ही आप उपयुक्त जांच करवाएं, और जांच के अनुसार जो उसका उपयुक्त इलाज है वो अगर आप करते हैं तो इसमें जो हम लोग जो मॉर्बिडिटी यानी आपके शरीर को होने वाले नुकसान को और जान को होने वाले खतरे को बिल्कुल शून्य के बराबर कर सकते हैं।
2: अभी एक योगेश जी का एक प्रश्न और था कि हमारा नागरिक होने के नाते क्या कर्तव्य है इन बीमारियों से बचने का, तो उसमें एक संदेश मैं देना चाहूंगा इस कार्यक्रम के द्वारा कि सप्ताह में एक दिन, ये जो आजकल का मौसम चल रहा है मानसून का, पानी जो है वो इकट्ठा ना होने दें। हफ्ते में एक बार चाहे जो भी आपको ठीक लगे, वो नागरिक जो है वो अपने अपने क्षेत्र के हिसाब से डिसाइड करके, और घर के आसपास जो डेंगू का मच्छर होता है वो बहुत ज्यादा दूर नहीं जो है वो जा सकता, केवल मीटर्स में ही उसकी जो है वो फ्लाइट रेंज होती है, इसको फ्लाइट रेंज बोलते हैं हम। तो घर और घर के आसपास यदि जो है वो हम हफ्ते में एक बार एक नियम बना लें कि परिवार के लोग निकलें और जो है वो ये देखें कि कहीं कोई कंटेनर तो नहीं पड़ा रह गया, कोई बॉटल तो नहीं पड़ी हुई है, कोई प्लास्टिक का कप तो नहीं पड़ा है, कोई प्लास्टिक का सामान तो नहीं पड़ा है, छत पर कोई ट्यूब वगैरह तो नहीं पड़ी है, टायर वगैरह तो नहीं पड़ा है, उसको जो है वो खाली कर दें।
1: और कूलर की सफाई भी बहुत
2: जरूरी है, कूलर की सफाई में उसमें रगड़ना जरूरी है,
1: सिर्फ पानी सुखाना ही नहीं रगड़ना भी जरूरी है।
2: रगड़ना जरूरी है, उसके पीछे साइंस यह है कि अंडा जो है वो चिपका रह जाता है दीवार से, और इसमें मच्छरों के जो अंडे होते हैं उसके द्वारा भी एक से दूसरे मच्छर को भी बीमारी जो है वो जा सकती है, जिसको हम ट्रांस ओवेरियन ट्रांसमिशन कहते हैं। तो ये एक संदेश
1: जी। विपिन है सागर मध्य प्रदेश से।
5: नमस्ते मैम।
1: नमस्ते विपिन जी।
5: मेरा सवाल ये था कि डेंगू मलेरिया और चिकनगुनिया जैसी जो तीनों बीमारियां हैं, क्या इनका होने का कारण एकमात्र मच्छर ही होता है या फिर कोई अन्य कारण से भी ये बीमारियां हो सकती हैं, या फिर किसी को बीमारी हुई है तो फिर मच्छर काटने से ही होती है?
3: देखिए, विज्ञान के तौर पर अगर हम लोग बात करें तो डेंगू और चिकनगुनिया ये एक वायरस की ये के द्वारा ये होता है, और मलेरिया जो है एक पैरासाइट की वजह से होता है। मच्छर सिर्फ इसे एक जगह से दूसरे जगह फैलाते हैं, तो ये ट्रांसमिशन कराते हैं, और मच्छर काटने की वजह से यह मूल तौर पर होता है।
1: देशदीप दास है हमारे साथ, अब यह है केंद्रापाड़ा ओडिशा से। जी
6: नमस्ते।
1: नमस्ते नमस्ते
6: जी। नमस्ते
1: जी। जी आप अपना सवाल पूछिए, हम आपको सुन पा रहे हैं।
6: जी मेरा सवाल है, वेक्टर जनित रोगों का कारण क्या है?
2: देखिए
1: आप प्रोग्राम सुन रहे हैं तो
3: शुरू में हम लोगों ने इसके संबंध में
1: हम अभी तक यही चर्चा कर रहे थे, फिर भी संक्षेप में एक बार फिर से बता दीजिए।
2: देशदीप जी, जो वेक्टर एक शब्द है जो हम लोग मेडिकल प्रोफेशनल्स यूज करते हैं, बाकी ये जो है वो जो आर्थ्रोपोड्स या कीट होते हैं जिसमें मच्छर आता है, मक्खी आती है, प्लेग का जैसे पिस्सू जो है वो जिसको ये कहा जाता है जो इसके ऊपर रहता है, चूहे के ऊपर रहता है, और स्क्रब टाइफस का एक माइट्स होता है, छोटा छोटे जो है वो कीटाणु होते हैं, उनसे होने वाले रोगों को वेक्टर बॉर्न डिजीजेस कहा जाता है।
1: अमित उपाध्याय हैं फोन लाइन पर सासाराम बिहार से। अमित जी क्या कहना चाहते हैं आप?
7: जी मैं अमित उपाध्याय बोल रहा हूँ सासाराम बिहार से। मैं ये मेरा ये सवाल था कि हर एक साल हम लोग देखते हैं कि हर एक जगह बाढ़ आता है, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में हमेशा मच्छर का प्रकोप ज्यादा रहता है और वैसे भी जो छोटे मोटे जो बरसात के दिनों में और भी जगह होता है, तो हम लोग को इसमें कुछ नए नए इतना टेक्नोलॉजी हम लोग अपडेट हो गया है, चाहे बहुत सारा हम लोग उपग्रह वैसा छोड़ते हैं, तो कुछ हम लोग ऐसा कुछ उपाय कर सकते हैं क्या कुछ ठोस टेक्नोलॉजी के माध्यम से कि इसमें कुछ ठोस हम लोग मच्छर को लेकर एक ऐसा कुछ बना दिया जाए ताकि उसके उसको कुछ मारा जा सके या कुछ वैसा कुछ दवाई या प्रयोग करके ताकि उसको कुछ मतलब परमानेंटली कुछ सलूशन हो जाए, खासकर बरसात के मौसम में।
3: चार पांच अमित जी आपका विचार बहुत उत्तम है। शायद

0: पर्सनल प्रोटेक्शन करें, यानी कि पूरे बाजू वाले ये कपड़े पहने, घर के बाहर जब कभी भी ये निकले तो मॉस्किटो रिपेलेंट लें, और जिन क्षेत्रों में मच्छरों का ज्यादा प्रकोप है वहां पर आप मच्छरदानी का प्रयोग करें। अब तो इंसेक्टिसाइड से जो अप्लाइड जो ये मॉस्किटो नेट रहता है, जो मच्छरदानी रहता है, उसका प्रयोग करें। इन सभी के प्रयोग के माध्यम से हम लोग मच्छर के काटे जाने के कारण जो कोई भी बीमारी होता है उसकी संख्या में को नियंत्रित कर सकते हैं।
1: ये बात ये भी कर रहे थे कि जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं वहां सरकार से अपेक्षा कर रहे हैं कि वहां सरकार कुछ करे मच्छरों से बचाव के लिए, क्योंकि छोटे स्केल पर तो लोग कर सकते हैं लेकिन बड़े स्केल पर तो सहयोग चाहिए।
2: नहीं, बिल्कुल ठीक बात है, और इसमें अमित जी का जो कहना है बाढ़ वाला, तो उसमें एक थोड़ा सा मैं साइंटिफिक फैक्ट्स रख दूं सामने कि जब बाढ़ आती है तो ये जितने ब्रीडिंग प्लेसेस होते हैं वो वॉश आउट हो जाते हैं। तो शुरू में तो ये मच्छर जनित रोग जो है वो कम होते हैं बाढ़ वाले में, लेकिन उसके बाद जब पानी रिसीड कर जाता है, हाँ, और पानी जब इकट्ठा हो जाता है, और खास करके छोटे छोटे पोखर जो बन जाते हैं,
1: जो रुक जाता है पानी
2: उसमें यदि 7 दिन से ज्यादा का होगा तो उसमें मच्छर होगा, और फिर उसका एक अपना इंक्यूबेशन पीरियड होता है
1: 7 डेज।
2: तो लगभग ये 7 डेज का उसका एडल्ट निकलने का टाइम, और उसको इन्फेक्ट होने का टाइम, और उसके बाद जो है वो व्यक्ति को वो काटेगा तब जो है वो। तो इसको लेकर के सरकार की तरफ से पूरी जो है वो इसमें विज्ञान की तरफ जो सैटेलाइट की बात की इन्होंने, तो वो सैटेलाइट से वो एरिया इंगित कर लिए जाते हैं, और उसमें फिर विशेष खास करके इंसेक्टिसाइड्स का जो है वो स्प्रे वगैरह किया जाता है, जैसे पहले डीडीटी का होता था, आजकल डीडीटी क्योंकि बैन हो गई है और उसकी जगह दूसरे केमिकल जो सिंथेटिक पायरेथ्राइड ग्रुप के वो हैं उनका स्प्रे होता है, और उसका प्रभाव काफी समय के लिए रहता है। तो सरकार की तरफ से ये सुविधा की जाती है।
1: हमारे अगले श्रोता है चौधरी महेंद्र सिंह, मथुरा उत्तर प्रदेश से। जी चौधरी जी, आप जी अपना सवाल पूछिए।
3: जी आदरणीय आमंत्रित विशेषज्ञ महोदय नमस्कार।
2: नमस्कार जी।
3: सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे ये डेंगू की बीमारी है, ये नर के काटने से फैलती है या मादा के से, और इसके लक्षण क्या है जब ये काट लेता है मच्छर का?
1: डेंगू के लक्षण तो हम बता ही चुके हैं।
0: डेंगू के लक्षण ये मादा मच्छर के काटने की वजह से होता है, तेज बुखार होना, शरीर में दर्द होना, आंखों के पीछे में दर्द होना, ये इसके प्रमुख लक्षण है।
1: चलिए डेंगू के प्रिवेंशन के लिए ड्राई डे का जो कॉन्सेप्ट है जो आप जिसके बारे में बात कर रहे थे, इसके बारे में थोड़ा और बताइए।
2: देखिए इसमें इसके पीछे जो विज्ञान है वो ये है कि जो मच्छर का लाइफ साइकिल है वो यदि पकड़े अपन एडल्ट यदि पकड़ते हैं तो एडल्ट अंडे देता है और वह प्यूपा में कन्वर्ट होता है, और प्यूपा से वो इमर्ज होकर के फिर एडल्ट होता है जो काटता है। तो ये सारी प्रक्रिया में अंडे से लेकर के और एडल्ट बनने तक लगभग 7 दिन का समय लगता है। ऐसा नहीं है कि मच्छर ने आज अंडा दिया और वो एडल्ट बन जाएगा। तो इसलिए यह 7 दिन का कंसेप्ट आया है कि यदि पानी आपका 7 दिन से ज्यादा खड़ा रहा है किसी भी जगह पर, चाहे वो आजकल जैसे प्लास्टिक ये चाय के कप्स वगैरह जो है वो मैं देखता हूँ जगह जगह जो है वो छोड़ देते हैं और उसका फिर कलेक्शन नहीं होता, तो बारिश हो जाती है तो उसमें जो पानी इकट्ठा होता है उसमें खास करके ये डेंगू के जो मच्छर हैं, एडीज मॉस्किटो जिसको बोलते हैं, टाइगर मॉस्किटोज, वो जो है वो, तो इसलिए वो 7 दिन वाला कंसेप्ट जो है वो आया है।
1: हमारे अगले श्रोता है राकेश शिमला से।
4: जी नमस्कार, मैं राकेश वाकरोखाई शिमला हिमाचल प्रदेश।
1: जी
4: जी, तो मेरा सवाल ये है कि जैसे डेंगू मलेरिया जो है अगर आप बच्चों को काटा है, क्योंकि छोटे बच्चों को ज्यादा बुखार से नहीं कर पाते हैं, तो उस समय हमें क्या करना चाहिए ताकि बच्चों को अगर मच्छर से बचाना हो?
2: राकेश जी, बच्चों को बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है, और उसके लिए ये जो है वो एक तरीका ये होता है कि दिन के समय में, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि डेंगू का जो मच्छर है वो दिन के समय काटता है, तो छोटी जो मच्छरदानी आती है उसमें बच्चे को

0: सुलाएं और बच्चे को कपड़े ऐसे पहनाएं कि उसमें मच्छर के खुला शरीर जो है वो ना रहे। और तीसरी बात ये कि जो है वो जालियों का, घरों में जालियों खिड़कियां खुली नहीं होनी चाहिए, और खास करके शिमला के क्योंकि आप हैं और क्लाइमेट चेंज का, जलवायु परिवर्तन का जो विषय चल रहा है उसकी वजह से भी ऐसा नहीं है कि हिमाचल प्रदेश अब जो है वो अछूता है।
1: कई पहाड़ी जगहों पर भी, जम्मू कश्मीर में भी है, नागालैंड में भी है।
0: बिल्कुल।
1: पीयूष जी, ये बताइए कि डेंगू को लेकर बहुत सारी भ्रांतियां हैं, वो क्या क्या है? जैसे प्लेटलेट्स को लेकर ही काफी बातें की जाती है कि इसे बढ़ाने के लिए घरेलू उपचार करो, कितना सच है, कितना कारगर है ये?
2: देखिए, डेंगू को लेकर के तीन चार मुख्य भ्रांतियां हैं। सबसे पहले ये कि डेंगू के इलाज में सिर्फ प्लेटलेट ही सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर नहीं रहता। किसी भी मरीज को या डेंगू के सीजन में हर कोई प्लेटलेट को लेकर के बड़ा जब बहुत ज्यादा पैनिकी होता है,
1: रोज उसकी संख्या देखी जाती है,
2: तो सबसे पहले प्लेटलेट की संख्या महत्वपूर्ण होती है, लेकिन इसकी संख्या बुखार ठीक होने पर यानी 5 से 7 दिन या उसके बाद में यह महत्वपूर्ण रहता है। शुरुआती समय में बुखार का नियंत्रण करना यह ज्यादा जरूरी रहता है, और इस दौरान हाइड्रेशन का एप्रोप्रिएट होना यह ज्यादा जरूरी रहता है। और इस दौरान अगर ब्लड की जांच भी कराई जाती है तो ब्लड में जो है पैक्ड सेल वैल्यू यानी हिमेटोक्रिट की जो वैल्यू देखी जाती है वह महत्वपूर्ण रहता है। तो सबसे पहले जब कभी भी डेंगू या इसकी संभावना अगर हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ पैरासीटामोल नाम की ही दवा लेनी चाहिए। डिक्लोफिनैक या निमोसिलाइड या ऐसे दूसरी कोई भी और दवाई जो लेनी नहीं चाहिए, क्योंकि उससे बाद में प्लेटलेट की संख्या कम होती है। पहली बात, शुरू के समय में जब बुखार बहुत तेज हो तो पैरासीटामोल भी एक डेफिनेट डोज तक दिया जा सकता है, जैसे कि 500 से लेकर के 1 ग्राम, एक दिन में मैक्सिमम 3 ग्राम तक एडल्ट आदमी को दिया जा सकता है। यहां मैं ये बताना चाहूंगा कि सिर्फ ये रेडियो पर सुन करके लोग खुद का इलाज ना करें, ये सिर्फ एक बताने के लिए डॉक्टर के पास जाकर के करें। और अगर बुखार उस समय ठीक ना हो तो फिर वो टेपिड वाटर से स्पॉन्जिंग करें, नंबर एक। नंबर दो ये हुआ कि प्लेटलेट की संख्या को लेकर के बहुत ज्यादा ना घबराएं। ऑल्दो 1 लाख से कम की संख्या को हम लोग थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहते हैं, लेकिन सीवियर टाइप ऑफ ब्लीडिंग की संख्या, ये ब्लीडिंग की संभावना बढ़ने के लिए 10,000 या उससे कम के लेवल पर ही प्रोफाइलेक्टिक प्लेटलेट को चढ़ाने की ये के इंडिकेशन बनते हैं।
1: 10,000 से ऊपर हो तो जरूरत
2: बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट हॉस्पिटल के में सेटअप में अगर आपको कोई एक्सटर्नल ब्लीडिंग नहीं हो रहा है तो वो और ज्यादा ये करने की जरूरत नहीं है। नंबर टू ये बात हो गया। नंबर तीन, किसी भी भोज्य पदार्थ के खाने से, जैसे लोगों के मन में ऐसा रहता है कि बकरी का दूध या फिर पपीते के पत्ते या छाला, ये पीने की वजह पीने से जो है प्लेटलेट की संख्या बढ़ती है। मैं इस बात को बिल्कुल पुरजोर ढंग से कहना चाहूंगा कि यह एक भ्रम है। किसी भी तरह के भोजन के पदार्थ को, चाहे वो कोई तरह का फल हो, कई लोग कीवी हो गया या पपीता हो गया, ये सब के खाने से किसी भी तरह से नहीं होता। और पपीते के छाले को पीने के वजह से जो है कई बार गैस्ट्राइटिस या फिर लीवर एंजाइम के बढ़ने की या हल्के तरह से लीवर में सूजन की आने की संभावना बढ़ जाती है। तो लोगों में मैं ये इवन एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटिशन में बताना चाहूंगा कि यह बिलीफ सिस्टम इतना ज्यादा स्ट्रांग है, और आजकल सोशल मीडिया के जमाने में लोग एक दूसरे को जो है वो शिक्षा जो है
1: हर आदमी
2: डॉक्टर बनने, तो यह नुकसान ज्यादा करता है। तो जब कभी भी डेंगू होने, डेंगू में 95% बिल्कुल खुद ब खुद ठीक हो जाता है, सिर्फ 3 से 4% लोग हैं जिनको कि अस्पताल जाने की आवश्यकता पड़ती है। तो जिसमें कि डेंगू के जो सीवियर साइन जो होते हैं वो अगर उसको आप देखते रहें, आप अपने नजदीक के स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर के संपर्क में रहें तो ये आपका ठीक रहेगा।
1: विजय कुमार कोल्हापुर से हमारे एक और श्रोता, विजय जी।
3: जी कनक दीदी नमस्ते।
1: नमस्ते,
3: विशेषज्ञों को नमस्कार।
2: नमस्ते जी।
3: हाँ, विजय कुमार महालिंगा, विजय कुमार स्वामी, गांव बस्तवर, तहसील शहर, जिला कोल्हापुर, महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ दीदी
1: जी।
3: मेरा सवाल यह है कि मच्छर कट गए तो, समझो मच्छर कटे तो कौन सी क्या सर्वप्रथम हमें क्या करना चाहिए?
2: अगर मच्छर काट ले तो फिर उसके बाद उस जगह को हल्का सा रब कर दें, और बस ताकि वो आपको जो दर्द हो रहा है वो ठीक हो जाए। मच्छर काटने से बचने के लिए ये आपके लिए ये ज्यादा जरूरी है जी।
1: मच्छर काटने के बाद बीमारी के लक्षण, रोग बुखार हो जाए, दर्द हो,
2: तब हो,
1: उल्टियां हो, तब आप डॉक्टर के पास जरूर जाए। धारीवाल जी, 21 जुलाई को सरकार ने डेंगू की नई वैक्सीन क्यूडेंगा को स्वीकृति दे दी है। कहा जा रहा है कि डेंगू नियंत्रण उपायों में ये मददगार साबित होगा, इस बारे में आप हमारे श्रोताओं का मार्गदर्शन करें।
0: ये बिल्कुल आपने ठीक जानकारी दी कि भारत सरकार ने ये क्यूडेंगा नाम की एक वैक्सीन है जो डेवलप हुई है और इसका लाइसेंस भारत सरकार ने इशू कर दिया है। और ये एक प्रक्रिया होती है जिस प्रक्रिया के द्वारा जो है वो इसकी टेस्टिंग होती है, और पहले भी ये बात चली थी और डेंगू की वैक्सीन जो है वो आई थी, लेकिन भारत सरकार ने उसको लाइसेंस नहीं जो है वो किया था। इस बार वाली जो वैक्सीन आई है ये क्यूडेंगा, ये अभी लाइसेंस हुई है मार्केटिंग करने के लिए। अभी इसका उपयोग पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम में, जैसे और दूसरी टीके लगते हैं बच्चों को, चाहे वो डीपीटी का हो, पोलियो का हो, या आजकल पेंटावेलेंट जो है वो दिया जा रहा है, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन दी जा रही है, तो ये पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम्स मतलब सरकार की तरफ से उपलब्ध कराई जाती हैं। अभी ये क्यूडेंगा वैक्सीन उस स्थिति में नहीं है,
1: भविष्य में उम्मीद कर सकते हैं।
0: भविष्य में इस पर जो अपना भारत सरकार का एक नियम है उसके द्वारा, विशेषज्ञों के द्वारा इसकी जो है वो कि जब मासेस में यूज होगी
1: जी,
0: मतलब इसमें आपके प्रोग्राम के द्वारा मैं ये बताना चाहूंगा कि जो डेंगू बुखार होता है वो चार तरह के है वायरल, लेकिन चार तरह के अलग अलग इसके वायरसेस होते हैं, जिसको डेंगू 1, डेंगू 2, डेंगू 3, डेंगू 4 ऐसा नाम जो है वो दिया गया है। डेंगू 1 और डेंगू 3 माइल्ड होता है
1: जी,
0: और डेंगू 2 और डेंगू 4 ये सीवियर फॉर्म में भी हो सकते हैं, जिसमें जो कहा जाता है कि ब्लीडिंग की जो है वो टेंडेंसी हो सकती है। तो वो जो है वो आपस में कैसी रिएक्ट करेंगे
1: जी,
0: तो वो पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम में जब यूज होंगे मासेस में तब उसका।
1: पीयूष जी, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन जो है वो म्यूनिसिपल एजेंसीज और हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ किस प्रकार सहयोग कर सकते हैं मच्छरों को दूर रखने के लिए, संक्षेप में?
2: जी, इन बीमारियों के नियंत्रण की जिम्मेदारी हर व्यक्ति और RWA की है। अपने आसपास जहां कहीं भी पानी अगर जमा हो रहा हो तो सप्ताह में एक दिन सभी लोग बाहर निकलें और उसके बाद ये करें, यह बीमारी जो है वो ठहरे हुए पानी में ये फैलता है। अगर ठहरे हुए पानी में आसपास अगर सफाई रखेंगे तो सरकार को और हम सभी स्वास्थ्यकर्मी को नियंत्रण करने में काफी मदद मिलेगी।
1: अब समय हो रहा है कार्यक्रम को समाप्त करने का। स्टूडियो में आने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं, आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा इस बारे में आप हमें ईमेल कर सकते हैं, पता है AIRNSJTalks@gmail.com। इसके साथ ही पब्लिक स्पीक का अंक यहीं समाप्त होता है। अगले सप्ताह सोमवार रात ठीक 9:30 बजे हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए कनकलता को आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
4: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक।
5: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार।
6: संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। एक रिपोर्ट।
7: मॉनसून सत्र के लगातार छठे दिन भी विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित।

कार्यक्रम मन भावन सुन रहे सभी श्रोताओं को महिमा का नमस्कार। आपके अपने प्यारे कार्यक्रम में अपनापन और अनगिनत यादों के साथ हम हाजिर हैं सुरीले सफर को लेकर। कार्यक्रम में आपके पसंद के गीत सुनवाएंगे, तो लेते हैं सबसे पहला गीत जिसे हमने लिया है फिल्म जमीन आसमान से। आवाज लता मंगेशकर किशोर कुमार की है, अनजान के बोल हैं, आरडी बर्मन का संगीत है। सुनना चाहते हैं आप सब देवेंद्र ताती, राकेश ताती, प्रकाश, निशा और देवेन, हरिभाव बिड़वे, शुभांगी, पूजा, श्रावण, अनीता बिड़वे भोकर से, नेवासा खुपटी से बंडू लोहार पोपलघट, माया शिवांश चंद्रकला देवीदास पोपलघट इसी गीत को पसंद करते हैं। नागपुर से वैशाली, शैलेश गावणकर, सुमित गावणकर, ध्वनि गावणकर, अभिजीत, सरिता, प्रिंस और एकांश महाराष्ट्र से, मोहित नारंग, राजन नारंग, अंजू नारंग डब्बाली से इस गीत को सुनना चाहते हैं। इसी गीत को पसंद किया सुनीता बाई घायल, सानिका गजानन घायल ने मालेगांव से, गाजीपुर से प्रतीक रॉय, रोशनी प्रांजल रॉय, गाजीपुर से ही अवधेश, प्रीति और नवनीत, बलिया से ओम प्रकाश, उषा, अमित और हैप्पी रॉय, खंडवा से रमेश पंचोली, बीनू देवी पंचोली, प्रकाश उर्मिला, दीपक दीपिका पंचोली, नंदिनी निखिल और गौरांज पंचोली। तो आप सभी की फरमाइश पर पेश है कार्यक्रम का ये पहला गीत।

कुछ खत हैं जिनमें बसी हैं अपनों की भावनाएं, कुछ नगमे हैं जिनमें छिपी हैं बीते लम्हों की परछाइयां। इन्हीं एहसासों को साथ लेकर और आगे बढ़ाते हुए सुरीले सफर को सुनवाते हैं ये अगला गीत, जिसे हमने लिया है यादों की बारात फिल्म से। आवाज किशोर कुमार आशा भोसले की है, मजरू के बोल हैं, आर डी बर्मन का संगीत है। सुनना चाहते हैं आप सब बड़वा से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य, अदिति, शिवानी और मीनू राज श्रीमाली। गौरीनगर इंदौर से आनंद कुमार कामले, रेखा कामले, राखी पारस तपस्या और करिश्मा कामले। देवास से नांगू सिंह, कुमावत, राजकुमार, अभिषेक, कपिल, निरंजन माली, हरिराम माली और विष्णु। सनावत से दिलीप मालाकार, योगेश मालाकार, सुनीता मुस्कान और धर्मेंद्र मालाकार। छबड़ा राजस्थान से नूर बानो, सलमा बानो और बेबी रुखसार। मलकापुर से संजय पटेल पाटिल, उषा पाटिल, प्रथमेश निवृत्ति, संजय कुमार। सांगली से श्याम कुलकर्णी और राम कुलकर्णी। मुरादाबाद से इस गीत को पसंद किया जाफर हुसैन, नईमा बेगम, कासिम अली, नदीम अली, जुनैद अब्बासी ने। और इसी गीत को सुनना चाहते हैं हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेहराज जहां। महाराष्ट्र से गजानन येले, नवदीप येले। अकोला से बलदेव दामोदर और अरुणा दामोदर।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी इंदौर और इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन भावन। लेते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, जिसे हमने लिया है चुपके चुपके फिल्म से। आवाज लता मंगेशकर मुकेश की है, आनंद बख्शी के बोल हैं, असली बर्मन का संगीत है। सुनना चाहते हैं आप सब उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम, रियाज रिफाकत, शमरीन परवीन, मोहम्मद रेहान, माहिरा नूर, खंडवा से मोहम्मद रफीक पवार, मोहम्मद साकिब, मोहम्मद हसनैन, ग्राम दीवाल से शंकरलाल गंगराड़े, वनीता छोटू, पूजा रोशनी, अजय और वामिका गंगराड़े, खंडवा से वंदना वाघे, अशोक कुमार वाघे, भूपेंद्र झवर वाघे, तनुश्री आरोही और कान्हा, खंडवा से ही संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया। इसी गीत को पसंद करते हैं अमरावती महाराष्ट्र से कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा हदिया, असमा सालिया, शोएब सायमा, पोतरा मुश्ताबा, पोत्री अफिया खान, राउफ और शाहिद। अकोला से रमेश कटनकर, वैशाली कटनकर, छत्तीसगढ़ से सतीश अनेजा, बिमला अनेजा, पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर विरक, जयतेक विरक और मीका विरक, बहरामपुर जिला खरगोन से तिलोक चंद वर्मा, भागवत वर्मा, अभिषेक, सीमा, अमित, राज, आर्यन, बेबी आरोही, इशिका, अंजलि, श्वेता वर्मा।

वक्त बदल जाता है लेकिन कुछ तराने नहीं बदलते, दिलों में बस जाने वाले अफसाने नहीं बदलते। लेते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, जिसे लिया है हमने छोटी सी बात फिल्म से। मुकेश की आवाज़ है, योगेश का लिखा।

गीत है सलिल चौधरी का, संगीत है। सुनना चाहते हैं हमारे श्रोता उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम, रियाज रिफकत, शमरीन परवीन, मोहम्मद रेहान और माहिरा नूर। पंजाब से रमेश कुमार जाजोरिया, गीतारानी जाजोरिया, गगनदीप और बेबी आरजू। लातूर हून से उस्मान शेख, सायरा बानो, दस्तगीर, फैज नबी, शाकिर, इस्लाम नबी, बाबा शेख, करिश्मा, सिमर, सानिया, शकील, बिस्मिला भी, गदर शेख, आणी, नीलोफर शेख, हिपर सोगा। नांदेड़ हून से आयूब सैयद, आणी और राजे अमन। इसी गीत को पसंद करते हैं नांदेड़ से प्रभाकर जोधले और आरती जोधले। और रौनक, रोशनी, दिव्यांशी, धीरज और श्रीधा पसंद करते हैं इंदौर से। इंदौर से ही अनिल भंडारे, उषा भंडारे, समता चित्रा और निशा भंडारे। इंदौर से ही नियाज मोहम्मद मंसूरी, सरताज बानो, उबेद, रजिया, जुनेद, अलीना, मुआज और

और अब कार्यक्रम समापन की ओर है, लेते हैं कार्यक्रम का आखिरी गीत आरजू फिल्म से। मोहम्मद रफी की आवाज है, हसरत जयपुरी की बोल, शंकर जयकिशन का संगीत। सुनना चाहते हैं चंडीगढ़ से टीरी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक, जयवीर सिंह, अमनदीप, अनिल वर्मा। कालका से शुभचंद्र बजाज, बिट्टा बजाज और साहिल। जालौन से सत्येंद्र कुमार चांसोलिया, आदर्श सार्थक और अलौकिक चांसोलिया। सहारनपुर से आशा नारंग और सुरेश नारंग। इंदौर से अनिल बामनिया, प्रमिला, नंदिनी मुस्कान, नीलम सावन, कृष्ण कुमार, ऋतिक, कृणाल, केतन और समस्त बामनिया परिवार। बेमेतरा से सुरेश सारथी, पूर्णिमा सारथी। कटई से नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, सीमा शारदा और दामिनी वर्मा। यवतमाल से राहुल मनवर, सरला मनवर, विशाल, चेतन, रोशनी और बेबी प्रियांशी।

अभी आप सुन रहे थे फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मन भावन, ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। अब प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं भुवनेश कोमकली का गायन, राग है शुद्ध कल्याण। संगीतकार तबले पर संगीता अग्निहोत्री और वायलिन पर पंडित कमल कामले।

0: शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे भुवनेश कोमकली का गायन। राग था शुद्ध कल्याण। संगीतकार तबले पर संगीता अग्निहोत्री और वायलिन पर पंडित कमल कामले। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। थोड़ी ही देर में समाचार दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। एक रिपोर्ट।
2: मॉनसून सत्र के लगातार छठे दिन भी विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित रही। सत्र के दूसरे सप्ताह के पहले दिन नीट मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान छात्रों के खिलाफ दर्ज FIR को वापस लेने की विपक्ष की मांग के कारण लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही बार बार स्थगित करनी पड़ी। लोकसभा की कार्यवाही 4 बार और राज्यसभा की कार्यवाही 5 बार स्थगित हुई। विपक्ष के हंगामे के बीच आज लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया गया। इसका उद्देश्य इस संबंध में बने 2024 के अधिनियम में संशोधन करना है। यह विधेयक परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता, निष्पक्षता और लोगों का भरोसा बनाए रखने के लिए लाया गया है। इसका उद्देश्य छात्रों के भविष्य को सुरक्षित रखना और परीक्षा प्रणाली को कानूनी रूप से और अधिक सशक्त बनाना है। इस विधेयक में सख्त प्रावधान किए गए हैं। दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की जेल, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दल जानबूझकर सदन में इस विधेयक पर चर्चा नहीं होने देना चाहते। उन्होंने कार्यवाही में बाधा डालने के लिए विपक्षी दलों के व्यवहार की निंदा की। हंगामा जारी रहने के कारण लोकसभा और राज्यसभा दोनों को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया। चल रहे मॉनसून सत्र के दौरान अब तक संसद में कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं हो सका है। अनुपम मिश्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: उत्तर प्रदेश सरकार ने आज सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि उसने अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट को प्राप्त चंदे में कथित गबन की जांच के लिए लखनऊ रेंज के पुलिस महानिरीक्षक किरण एस की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय विशेष जांच दल SIT का गठन किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को SIT में 5वें सदस्य के रूप में एक फॉरेंसिक ऑडिटर को शामिल करने का निर्देश दिया है। SIT 2 सप्ताह के अंदर पहली स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। इस बीच उत्तर प्रदेश में एक विशेष अदालत ने राम मंदिर चंदा

0: चोरी मामले में सभी 8 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ा दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज स्काई रूट एरोस्पेस के पवन चंदना और नागा भरत डाका से बातचीत की। श्री मोदी ने विक्रम 1 की सफलता के साथ साथ कई अन्य रोचक विषयों पर उनसे चर्चा की। श्री मोदी ने स्काई रूट एरोस्पेस की पूरी टीम को अपनी शुभकामनाएं भी दी। यूनाइटेड कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी UKPNP ने पाकिस्तानी अधिकारियों से संयम बरतने और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ बल प्रयोग न करने को कहा है। UKPNP ने कहा कि 5 जून से पाकिस्तान के कब्जे वाले क्षेत्र में जारी अशांति के बीच 40 से अधिक लोगों की जान चली गई है। ये विरोध मार्च संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी और पाकिस्तानी अधिकारियों के बीच हुई बातचीत के विफल होने के बाद आयोजित किया गया। विदेश मंत्रालय ने आज वाणिज्यिक पोत MV ओमोर्फी पर हुए हमले के बाद भारत में यूक्रेन के राजदूत अलेक्सांद्र पोलिश्चुक को तलब किया। इस हमले में एक भारतीय की मौत हो गई थी। मंत्रालय ने दोहराया कि ऐसे कृत्य निर्दोष नाविकों के जीवन को खतरे में डालते हैं। अमरीका और ईरान संघर्ष के दौरान सप्ताहांत में सैन्य हमले रोक दिए जाने के कारण वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में आज लगभग 7% की गिरावट आई। ब्रेंट क्रूड की कीमतें 7.2% गिरकर 89 अमरीकी डॉलर और 74 सेंट प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था। ग्लासगो में जारी राष्ट्रमंडल खेलों में भारोत्तोलक ज्ञानेश्वरी यादव ने 53 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीत लिया है। एशियाई चैंपियनशिप कांस्य पदक विजेता ज्ञानेश्वरी यादव ने महिलाओं के स्नैच में 88 और क्लीन एंड जर्क में 111 समेत कुल 199 किलोग्राम वजन उठाकर ये पदक हासिल किया। वहीं भारतीय मुक्केबाज सचिन सिवाच ने पुरुषों के 60 किलोग्राम स्पर्धा के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। सचिन ने इंग्लैंड के विलियम हेविट को शिकस्त दी। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल में भारोत्तोलन में रजत पदक जीतने पर ज्ञानेश्वरी यादव को बधाई दी है। ओडिशा में बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने गहरे दबाव के कारण मूसलाधार वर्षा जारी है। कई जिलों में बाढ़ और जलभराव से फसलों तथा बुनियादी ढांचे को काफी नुकसान पहुंचा है। राज्य सरकार ने स्थिति से निपटने के लिए जिला प्रशासनों को 24 घंटे अलर्ट पर रखा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani. The news read by R.S. Raghu. The Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026 was introduced today. The bill seeks to amend the Public Examinations Prevention of Unfair Means Act 2024. Minister of State for Personnel, Public Grievances and Pensions Dr. Jitendra Singh introduced the bill in the House. However, both the Houses of Parliament witnessed repeated adjournments amid ruckus by the opposition parties on alleged police action during students' protest over NEET issue. A report.
2: For the sixth consecutive day of the monsoon session, the proceedings of both the Houses of Parliament continued to remain disrupted amid ruckus by the opposition. On the first day of the second week of the session, Lok Sabha and Raj Sabha faced repeated adjournments as opposition members demanded withdrawal of FIRs filed against students during the protest on the NEET issue. Lok Sabha saw 4 adjournments while Raj Sabha faced 5 adjournments. Amid opposition uproar, the Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026 was introduced in the Lok Sabha today. The bill seeks to amend the Public Examinations Prevention of Unfair Means Act 2024. The legislation aims to strengthen the transparency, fairness and integrity of the examination system by establishing a robust legal framework while safeguarding the future of the students. It incorporates several significant provisions including stringent penalties such as imprisonment for up to 10 years, fines up to 10 crore rupees and the seizure of the properties of convicted offenders. Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju alleged that Congress and its allies are deliberately not allowing discussion in the
3: House. I would like to thank you for providing adequate time for discussion on this very important bill. A large number of amendment notices have also been submitted, which clearly shows that many members wish to express their views on this significant legislation. You have also assured the House that sufficient time will be given for the discussion. Then why are they raising slogans and trying to disrupt the debate? The entire nation, especially the youth, is closely watching these proceedings. I once again request the Congress party to counsel its members so that we can begin a meaningful discussion on the bill.
4: Bill